मीडियम वेव 401.1 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 10वीं तिथि तदनुसार 31 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:55 और 55 सेकेंड हुए हैं। आरंभ हो रही है आज की प्रातःकालीन सभा।

प्रकृति का सबसे अनुपम और मनमोहक रूप है भोर की सुंदर बेला, जहां उषा लालिमा अंबर में स्वर्णिम आभा बिखेर रही है। वहीं पंछियों का कलरव शीतल मंद बयार और ओस की बूंदों से चमकती धरती का सौंदर्य मन को असीम शांति और नव ऊर्जा प्रदान कर रहा है। श्रोताओं, सकारात्मक ऊर्जा लिए हम भी आ चुके हैं स्टूडियो लेकर आपके लिए मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ। आप सभी श्रोताओं को हमारा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हमारे श्रोता जो सुप्रभात के साथ ही रेडियो सेट को ऑन कर चुके हैं, उन्हें इंतजार होगा देश दुनिया की खबरों को जानने का। तो चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, बजने वाले हैं सुबह के 6, सुन लेते हैं समाचार आकाशवाणी दिल्ली से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सवेरे 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर प्रसारित किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी किया जाएगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता DK शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉक्टर जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया। DK शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकार ने 1 जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क से अस्थायी छूट देने का फैसला किया है। वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CP ग्राम्स के लिए AI सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।
1: सन 2014 से पहले केवल यहाँ पर 2 लाख शिकायतें दर्ज होती थी प्रति वर्ष, आज उसकी बढ़कर के संख्या 25 से 30 लाख होगी। कारण ये कि वी हैव बीन प्रॉम्प्ट, वी हैव बीन फॉलोइंग टाइमलाइंस, वी हैव बीन रिस्पॉन्सिव, और ये इसलिए संभव हुआ कि टेक्नोलॉजी का भरपूर और पर्याप्त उपयोग किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किया गया।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काई कास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काई कास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की ISI और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम करने वाले 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ला ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली

0: में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में आज वर्तमान चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना गुजरात टाइटन से होगा। अहमदाबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मेजबान इंग्लैंड ने दूसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट मैच में भारत को 26 रन से हरा दिया। ब्रिस्टल में कल इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बनाए। जवाब में भारत की टीम 9 विकेट पर 142 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की फ्रिया कैंप को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। उन्होंने केवल 13 गेंद में 39 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच मंगलवार को टोंटन में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है 747 किलोहर्ट्ज़ पर। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वैशाली आप सभी के साथ। आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार, सुप्रभात। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और श्रोताओं, वक्त है कृषि चर्चा कार्यक्रम का। आज की कृषि चर्चा में डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी हमारे किसान भाइयों को बताएंगे मक्का उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में।
2: शुभ प्रभात। मक्का का विश्व खाद्यान्न उत्पादन में दूसरा और अपने देश में तीसरा स्थान है। खरीफ फसलों में धान के बाद मक्का अपने उत्तर प्रदेश की मुख्य फसल है। इसका प्रयोग दाना, पशुओं के आहार, चारा के साथ साथ भुट्टा के रूप में किया जाता है। इसके अतिरिक्त मक्के का प्रयोग विविध तरीके से किया जाता है, जैसे मांड, शराब, एसिटिक और फिर लैक्टिक के साथ साथ रेयान, कागज, गोंद, रंग, कृत्रिम रबर, जूते का पॉलिश। कई तरह से उत्पाद तैयार किए जाते हैं जहां इसकी आवश्यकता होती है। इसलिए इसकी व्यापक मांग को देखते हुए, इसके महत्व को समझते हुए, हमें खेती के लिए अभी सन्नद्ध हो जाना है। कारण कि मक्का की खेती खरीफ मौसम में बहुत अच्छे ढंग से की जा सकती है। इसकी बुआई के लिए 25 मई से पूरा जून तक का समय होता है, जब तक कि बरसात अच्छी खासी होनी न शुरू हो जाए। वैसे तो यह कहा जाता है कि 25 जून तक किया जाता है। काफी कुछ निर्भर करता है कि बरसात कितना आगे हो रही है या पीछे जा रही है। ऐसी स्थिति में मक्का की खेती जब हम करने के लिए तैयार हैं, तो इसकी जो देशी जाति है उसको भुट्टा के लिए उत्पादन की दृष्टि से बेहतर माना जाता है। इनकी जो जातियां हैं वह बेहतर रहेंगी तो आपको इससे आय भी अच्छी होगी। मेरठ पीली और जौनपुरी सफेद, ये देशी मक्का में दो प्रचलित हैं और आज भी इनकी मांग है भुट्टा के रूप में। विशेषकर संकर मक्का में गंगा 2, गंगा 5, गंगा 11, सरताज, प्रकाश, डक्कन 107 और शक्तिमान 2 ये अच्छा खासा उत्पादन देती हैं। इसके लिए हमें जरूर इसके बीज अपनाने चाहिए। हाँ, पिछले वर्ष के जो बीज रखे हुए हैं उसका प्रयोग कदापि न करें, क्योंकि इन जातियों के बीज हर साल बदल देने चाहिए, नए लाने चाहिए। संकुल जो मक्का है उसमें तरुण, नवीन, कंचन, श्वेता, D756, सूर्या, अमर, आजाद, उत्तम, नवज्योति, माही, कंचन, प्रभात और शक्ति 1, न जाने ऐसी कितनी किस्में हैं जो हमारे क्षेत्र में प्रचलित हैं और ये संकुल श्रेणी में आती हैं, जो बेहतर उत्पादन देती हैं। थोड़ी सी देखरेख कर दी जाए तो बेहतर उत्पादन मिलता है संकर की अपेक्षा। संकुल मक्का का बीज 3 से 4 वर्ष तक स्वयं तैयार कर सकते हैं, यानी पिछले वर्ष का आपने रखा है तो उसे भी आप प्रयोग में ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ये 3 से 4 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। बीज की जो मात्रा प्रयोग की जाती है इसकी बुआई के लिए, वह है संकर में 18 से 20 किलोग्राम और संकुल में 20 से 25 किलोग्राम। हाँ, बीज शोधन भी करना जरूरी होता है। 3 ग्राम थायरम व 1 ग्राम बावेस्टीन या फिर 3 ग्राम

स्यूडोमोनास फ्लोरिसेंस व 1 ग्राम कार्बनडेजिम, इनका प्रयोग करें तो बेहतर स्थिति होगी। पौधों से पौधों की दूरी विशेष मायने रखती है मक्का में। आजकल हल के पीछे कोड़ों में बोने की प्रथा तो समाप्त ही हो गई है, कल्टीवेटर से छिड़काव विधि से इसे किया जाता है। तो कोशिश पहले यह होती थी कि हल के पीछे कोड़ों में या सीट कम्फर्टी ड्रिल आप प्रयोग कर रहे हैं तो 60x20 से 25 सेंटीमीटर और गहराई 5 से 7 सेंटीमीटर रखनी होती है। छिटकवा विधि से कर रहे हैं तो वह तो है ही, बाद में विरलीकरण करना होगा। तो विरलीकरण के लिए आप ये मान करके चलें कि 60x25 सेंटीमीटर की दूरी उसकी रहे, वह बेहतर स्थिति उत्पन्न करेगी। हाँ, इसी में उर्वरकों का प्रयोग भी करना होता है। जैविक खाद जो डालेंगे यानी गोबर की या कंपोस्ट की खाद डालेंगे वो तो आप डालें ही डालें, लेकिन बुआई के समय प्रति हेक्टेयर 37 किलोग्राम यूरिया, 130 किलोग्राम डीएपी और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश डालें, या फिर 87 किलोग्राम यूरिया, 375 किलोग्राम एसएसपी और 100 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश। टॉप ड्रेसिंग बाद में की जाती है, उसको तो अलग से करना ही होता है। जो मात्रा बचाई जाती है 87 किलोग्राम यूरिया पौधों के घुटने तक की ऊंचाई होने पर बुआई के 30 से 35 दिन बाद करनी होती है, और द्वितीय टॉप ड्रेसिंग जो होती है 87 किलोग्राम यूरिया की वो नरमंजरी निकलने के समय 50 से 55 दिनों पर होती है। तो ये तो स्थिति रही है कि उसकी इस तरह से हम करते हैं और समझते भी हैं कि इसी के आधार पर बेहतर उत्पादन की स्थिति बनेगी। समय समय पर सिंचाई का भी ध्यान रखना होगा जिसे आप करते

0: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे मक्का उत्पादन की उन्नत तकनीक के बारे में जानकारी। आज की कृषि चर्चा में जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नगेंद्र सिंह रघुवंशी। दूसरों को जानना ज्ञान है, लेकिन स्वयं को जानना ही वास्तविक बुद्धि है। स्वयं पर विजय पाना ही सच्ची शक्ति है। आत्म प्रेम और आत्म स्वीकृति की यात्रा ही आत्म परीक्षण से शुरू होती है। आइए सुनते हैं आज का सुविचार। विषय है आत्म परीक्षण, स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का।
1: यदि गहराई में उतरकर इस पर विचार करें तो हम पाएंगे कि यहाँ सब कुछ परिवर्तनशील है, स्थिर कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड बदल रहा है, दुनिया एक जैसी कभी नहीं रहती, समाज गतिशील है, वृक्ष वनस्पतियां भी समय के साथ साथ पनपते बढ़ते, फलते फूलते और आयु पूरी करके सूख जाते हैं। जीवधारियों की भी ऐसी ही गति है, स्वयं मनुष्य शरीर भी बदलता रहता है। बचपन, यौवन, वृद्धावस्था और मरण, ये अवस्थाएं यहाँ भी देखी जाती हैं। एक व्यक्तित्व की मूल सत्ता ही अपरिवर्तनशील भला क्यों है? जीवन से मृत्यु तक आखिर मनुष्य का स्वभाव क्यों नहीं बदलता? उसकी चिंतन शैली और क्रियाकलाप स्थिर क्यों बने रहते हैं? उसमें उदात्तता का समावेश क्यों नहीं हो पाता? प्रकृति के साथ ये विरोधाभास कैसा? आज से पूर्व कई क्रांतियां हुई, भगवान महावीर ने इसके लिए अहिंसा का दर्शन दिया, भगवान बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन जैसी महाक्रांति की, पर दोनों ही क्रांतियां समाज और संसार के कुछ हिस्से को प्रभावित कर सकी और सामयिक बनी रही। जब तक आदमी की मूल सत्ता में आमूल चूल परिवर्तन नहीं होता, तब तक बदलाव स्थायी नहीं होगा। मनुष्य के समग्र परिवर्तन के लिए मानवीय अंतराल का संपूर्ण बदलाव जरूरी है। चाहे जिस भी काल में ये पूर्ण बदलाव आए, वहां मानवीय अंतःकरण में क्रांति अवश्य घटित होगी। इससे कम में बदलाव एक खिलवाड़ बनकर रह जाएगा। अब प्रश्न ये है कि बदलाव आए कैसे? क्या ये स्वयमेव घटित होगा? कोई पराशक्ति इसे कर गुजरेगी या परमेश्वर की अनुकंपा से संपन्न हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है। परिवर्तन जहां कहीं जिस स्तर पर भी होता है, वहां उसके पीछे कोई ना कोई निमित्त कारण अवश्य होता है। इसलिए जब मानवीय अंतराल के परिवर्तन की बात आती है और उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़ाने का सवाल आता है, तो यहाँ भी प्रयास और पुरुषार्थ को सदैव स्मरण रखना होगा। निजी पराक्रम के बिना ये शक्य ना हो सकेगा। जो इसके लिए प्रकृति प्रभाव पर आश्रित रहना चाहते

0: हैं और अपने पूर्णत्व की कल्पना करते हैं, उनकी बात और है। वे कितने जन्मों में और कितने लंबे काल में इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, इस संबंध में सही सही कुछ भी कह पाना मुश्किल है। विवेकवान लोग इतने लंबे काल तक इंतजार नहीं कर सकते और ना ही ये खतरा मोल ले सकते हैं। तो विकल्प यही है कि हम अपने को बदलने के लिए स्वयं संघर्ष करें। आत्म परिष्कार की साधना किसी महाभारत से कम नहीं। उसमें क्षण प्रति क्षण में मनुभूमि में आने वाली बुराइयों और दुष्प्रवृत्तियों से लोहा लेना और उन्हें परास्त करना पड़ता है। इसके लिए स्वयं को एक सतर्क सैनिक की भूमिका निभानी पड़ती है और कुविचारों के दुर्भावनाओं के आते ही उन्हें धर दबोचना पड़ता है, ताकि उनकी मलिनता मानस पटल पर हावी न होने पाए। रामकृष्ण परमहंस कहा करते कि लोटे की चमक को बनाए रखने के लिए उसे बार बार मांझना पड़ता है, इससे कम में चमक बनी नहीं रह सकती। हाँ, यदि वे सोने का हो तो बात दूसरी है। मनुष्यों के साथ विडंबना ये है कि स्वर्ण मनोभूमि वाले देव पुरुष करोड़ों में इक्के दुक्के होते हैं। शेष सभी को जागरूक रहकर अंतकरण की धुलाई सफाई करनी पड़ती है, तभी ईश्वरीय आलोक की वास्तविक झांकी व्यक्ति में प्रकट होती है। इससे पूर्व उसकी आभा कल्मशों के कारण दृश्यमान नहीं हो पाती, क्योंकि मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के संस्कार उस पर छाए रहते हैं। मानवीय गरिमा इस दिव्यता को धारण करने में है। मानवीय चेतना का सहज स्वभाव अपनी मूल सत्ता से एकाकार होना है, पर इसके लिए प्रबल पराक्रम करना पड़ेगा और वे सारे उपाय उपचार बनाने पड़ेंगे जिससे हमारा उत्कर्ष की दिशा में कदम बढ़े। आदमी के लिए असंभव कुछ भी नहीं। वे जिस भी कार्य के लिए ठान ले, वहां सफलता अवश्यंभावी है। ईश्वर केवल उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी आप अपनी सहायता करने के लिए तत्पर हैं। इसीलिए उत्कृष्टता की दिशा में एक कदम बढ़ाएं, परमात्मा हमें अनेक कदम आगे बढ़ने में मदद करेंगे, यह सुनिश्चित है।
1: आत्म परीक्षण, अभी आप सुन रहे थे आज का सुविचार, वाचन स्वर डॉक्टर शिवा राकेश का था। नमस्ते लखनऊ, मॉर्निंग प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से वैशाली के साथ। और अब आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

सदियों से परंपरा रही है, हर मंगल कार्य की शुरुआत होती है विघ्नहर्ता गणपति बप्पा की आराधना से। तो आइए आराधना का शुभारंभ करें एक दंत गजवदन मंगल मूर्ति के पावन नाम

माँ की जय जयकार तो हर युगों में होती आई है। आइए माँ का नाम लेकर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं।

जिनकी भक्ति में शक्ति है और नाम में अनंत साहस, प्रभु हनुमान। आइए अपने जीवन में ऊर्जा, उत्साह और निर्भयता का संचार करें, हनुमान शक्ति का सभी भक्त आह्वान करें।

प्रभु से पूर्ण समर्पण तक की यात्रा ही आराधना है, यही है भक्ति की सच्ची परिभाषा, जहां भजन साधना बन जाते हैं और भजन के शब्द प्रार्थना।

मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ, आप सुन रहे हैं 747 किलो हर्ट्ज पर आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं वैशाली, आप सबके साथ। आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH पर भी। और अब आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। आज सुनेंगे भाग 188 में राजा दशरथ का दाह संस्कार और मुनिवर वशिष्ठ द्वारा भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देने का प्रसंग।

शोक संतप्त तथा पश्चाताप की आग में झुलस रहे भरत को माता कौशल्या हृदय से लगाकर धीरज बंधा रही हैं। ज्ञान के उदय होने पर भी चाहे मन का मोह न मिटे, किंतु वो जानती हैं कि किसी अवस्था में भी भरत श्री राम से विमुख नहीं हो सकते। पुरोहित तथा कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ भरत को समयानुकूल उपदेश और लोकाचार की शिक्षा देकर दिवंगत महाराज के पार्थिव शरीर की अंत्येष्टि के लिए प्रवृत्त करते हैं। सरयू तट पर चंदन की सुंदर चिता सजाकर दाह संस्कार होता है और एक दिन शुभ घड़ी और लग्न देखकर राजसभा में मुनिवर वशिष्ठ मंत्रियों तथा महाजनों की उपस्थिति में युवराज भरत को नीति तथा धर्म पालन का उपदेश देते हैं।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस से आज के प्रसंग की संगीतमय प्रस्तुति। गायक कलाकार थी कविता कृष्णन मूर्ति, आकाशवाणी की इस प्रस्तुति के संगीत संयोजक सतीश भाटिया। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया जा रहा था।

आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों का प्रसारण आप सुन सकते हैं 747 किलो हर्ट्ज पर, और साथ ही सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप और DTH के माध्यम से भी। NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में संस्कृत समाचार प्रसारित होंगे।

0: कारं सुदृढं कर्तुं म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतेः सकारात्मक भावस्य प्रशंसाम् अकरोत्। सः अवदत् यत् सः शान्तेः, प्रगतेः, समृद्धेः च सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं कर्तुं प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह श्रीह्लाइंग वर्यस्य मेलनस्य प्रतीक्षायाम् अस्ति। उभयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकानां सभ्यतानां च सम्बन्धान् दृढीकरणाय राष्ट्रपतिः श्वः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सह चर्चिष्यति। पूर्वं ह्यः म्यान्मार देशस्य राष्ट्रपतिः बिहारस्य गयायां गत्वा महाबोधि मन्दिरे प्रार्थनां कृतवान्। अवधेयं यत् राष्ट्रपतिः ह्लाइंगः पञ्चदिवसीय भारतयात्रायाम् अस्ति। दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेषप्रकोष्ठेन पाक आईएसआई मुंबई अंडरवर्ल्ड्स जालेत्यस्य आदेशेन कार्यं कुर्वन्तः अष्टौ अभियुक्ताः निगडिताः। वार्ताहरान् संबोधयन् दिल्ल्यारक्षिबलस्य विशेषप्रकोष्ठस्य विशेष सीपी अनिलशुक्लः अवदत् यत् अभियुक्ताः दिल्लीनगरस्य महत्वपूर्णस्थानेषु सुरक्षाकर्मचारिषु च आक्रमणं कर्तुं नियुक्ताः आसन्। सः अवदत् यत् तैः सह शस्त्राणि, विस्फोटकानि च प्राप्तानि सन्ति। श्रीशुक्लः सूचितवान् यत् अभियुक्ताः सीमापार निर्वाहकानां निर्देशानुसारं कार्यं कुर्वन्तः आसन्। ते दिल्ली, महाराष्ट्र, पुणे नगरेभ्यः निगडिताः। बैडमिंटन क्रीडायां सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट इति स्पर्धायां भारतस्य सात्विक साईराज रंकीरेड्डी चिराग शेट्टी इत्यनयोः युगलं निर्णायक चक्रे प्रविष्टम्। उपान्त्यचक्रे भारतीय दलेन दक्षिण कोरिया दलं पराजितम्। महिलानां अन्ताराष्ट्रिय विंशतिं प्रतिविंशतिः द्वितीया क्रिकेट क्रीडायां भारत इंग्लैंड दलयोः मध्ये गत सायं जातायां स्पर्धायां इंग्लैंड दलेन भारतं 26 धावनांकैः पराजितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गुजरात टाइटन्स दलम् अद्य अहमदाबादस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडांगणे निर्णायक स्पर्धायां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन सह स्पर्धिष्यति। स्पर्धायाः आरम्भः सायं 7:30 भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य रविवासरे मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ से। सुबह के 7 हैं और ये समय होता है स्वास्थ्य चर्चा सेगमेंट का। तो श्रोताओं, मौसम हमेशा एक सा नहीं रहता, जाड़ा, गर्मी, बरसात, समय समय पर मौसम में बदलाव होते ही हैं। और हमारा कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, मौसम के अनुकूल कैसे हम अपने स्वास्थ्य को बनाए रखें, इसके लिए तरह तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आता है और जानकारियां देती हैं हमारी एक्सपर्ट नीना सोनकर। तो आज की स्वास्थ्य चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारी क्या है, आइए सुन लेते हैं आज का कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा।
2: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं, आज हम एक ऐसे पारंपरिक पेय की बात करेंगे जो भारतीय खान पान का अहम हिस्सा रहा है और जिसकी सेहत के लिए अनगिनत खूबियां हैं। हम बात कर रहे हैं मट्ठा और छाछ की। गर्मियों की चिलचिलाती धूप हो या भोजन को पचाने में मदद करनी हो, शरीर को ठंडक पहुंचानी हो या इम्यूनिटी बढ़ानी हो, मट्ठा और छाछ हर तरह से फायदेमंद हैं। आज के इस आधुनिक समय में जहां लोग कोल्ड ड्रिंक्स और अन्य ठंडे पेय पदार्थों की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, वहीं ये पारंपरिक पेय अपने गुणों के कारण अब भी स्वास्थ्य के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। मट्ठा और छाछ को अक्सर एक ही समझ लिया जाता है, लेकिन इन दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है।

0: मट्ठा दही से घी निकालने के बाद बचा हुआ तरल पदार्थ होता है, जबकि छाछ दही को फेंटकर और उसमें पानी मिलाकर बनाई जाती है। दोनों ही अपने अपने गुणों के कारण लाभकारी माने जाते हैं और शरीर को ठंडक देने के लिए विशेष रूप से गर्मियों में इनका सेवन किया जाता है। छाछ पाचन के लिए अमृत के समान मानी जाती है। भोजन के बाद एक गिलास छाछ पीने से पाचन तंत्र मजबूत रहता है और पेट से जुड़ी समस्याएं नहीं होती हैं। इसमें मौजूद प्रोबायोटिक्स यानी अच्छे बैक्टीरिया आंतों की सेहत को सुधारते हैं और गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत दिलाते हैं। यही कारण है कि पारंपरिक भारतीय भोजन में छाछ को हमेशा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, विशेष रूप से गर्मियों में जब शरीर को हल्के और सुपाच्य आहार की जरूरत होती है, तब छाछ एक बेहतरीन विकल्प बनती है। मट्ठा और छाछ दोनों ही इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होते हैं, जो शरीर को डिहाइड्रेशन से बचाने में मदद करते हैं। जब गर्मी के कारण शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलता है तो जरूरी लवणों की कमी हो जाती है। मट्ठा और छाछ पीने से ये कमी पूरी हो जाती है और शरीर में ऊर्जा भी बनी रहती है। यही कारण है कि गर्मी के दिनों में ग्रामीण इलाकों में लोग अपने श्रम के बाद मट्ठा या छाछ पीकर खुद को तरोताजा महसूस करते हैं। छाछ और मट्ठा हड्डियों को मजबूत करने में भी सहायक होते हैं। इनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक हैं। खास तौर पर महिलाओं और बुजुर्गों के लिए ये बहुत लाभकारी माना जाता है, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व कम होता जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। दिल की सेहत के लिए भी मट्ठा और छाछ किसी वरदान से कम नहीं है। इनका नियमित सेवन कोलेस्ट्रॉल के स्तर को नियंत्रित रखता है, जिससे हृदय स्वस्थ रहता है और रक्तचाप संतुलित रहता है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर से परेशान रहते हैं, उनके लिए ये पेय बहुत फायदेमंद हो सकता है। ये शरीर में मौजूद अतिरिक्त वसा को भी नियंत्रित करने में मदद करता है और वजन को संतुलित बनाए रखने में सहायक होता है। इसके अलावा छाछ और मट्ठा लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। ये शरीर से हानिकारक विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालकर लीवर को साफ करने में सहायक होते हैं। आयुर्वेद में भी इसे एक शीतल पेय के रूप में वर्णित किया गया है, जो शरीर की गर्मी को कम करता है और पित्त को संतुलित रखता है। छाछ और मट्ठे का सेवन कई तरह से किया जा सकता है। इसमें भुना हुआ जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च और हींग मिलाने से इसका स्वाद और भी बढ़ जाता है और इसके पाचन संबंधी गुणों में भी इजाफा होता है। कई लोग इसमें करी पत्ता, पुदीना और अदरक भी मिलाते हैं, जिससे ये और अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट बन जाता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि छाछ और मट्ठे का सेवन हमेशा ताज़ा ही करना चाहिए। इसे बहुत देर तक रखने से इसके लाभकारी बैक्टीरिया नष्ट हो सकते हैं। साथ ही जिन्हें लैक्टोज इनटॉलरेंस की समस्या होती है, उन्हें इसका सेवन कम मात्रा में करना चाहिए और डॉक्टर से परामर्श लेकर ही इसे अपने आहार में शामिल करना चाहिए। श्रोताओं, मट्ठा और छाछ सिर्फ पारंपरिक पेय नहीं है, बल्कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हैं। ये पाचन को बेहतर बनाते हैं, शरीर को हाइड्रेट रखते हैं, हड्डियों को मजबूत करते हैं, दिल की सेहत का ध्यान रखते हैं और शरीर को ठंडक देते हैं। गर्मी के दिनों में कोल्ड ड्रिंक्स और कृत्रिम पेय पदार्थों की जगह छाछ और मट्ठा को अपनाएं और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाएं। श्रोताओं, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मट्ठा और छाछ, इस विषय पर अभी आप जानकारी प्राप्त कर रहे थे। आज की स्वास्थ्य चर्चा में जानकारी दे रही थी नीना सोनकर। और अब समय है आज प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों के बारे में जानकारी का। श्रोताओं, आज पूर्वाह्न 11 बजे से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी रेडियो पर साझा करेंगे मन की बात। मन की बात के समापन के बाद आप सुनेंगे इसका उर्दू अनुवाद। रविवार श्री अखिल भारतीय संगीत सभा का प्रसारण समय होगा आज रात 10 बजे और ये दोनों ही कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। सुबह 9:15 पर सामयिक चर्चा के अंतर्गत सुनिएगा केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सेवा और सुशासन के 12 वर्ष पूर्ण होने पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सिंह रावत से

आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी की बातचीत। उर्दू कार्यक्रम के तहत सुबह 9:30 पर समाअत फरमाइएगा। शायर बशीर बद्र को आकाशवाणी लखनऊ के जानिब से खिराज अकीदत आवाज रेखा मिश्रा की होगी। इसके अलावा खत के लिए शुक्रिया कार्यक्रम हमारे श्रोता सुनेंगे। आज इस कार्यक्रम में सदाकार होंगे सुरेंद्र राजेश्वरी और शाजिया खान। पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। पत्र के लिए धन्यवाद कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे आज शाम 7:31 पर। प्रस्तुति सुमोना एस पांडे और नीना सोनकर की है। रात 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में सुनना ना भूलें डॉक्टर श्रवण कुमार की वार्ता शब्दों के शिल्पी केदारनाथ सिंह। दिन में 3:15 पर संस्कृत कार्यक्रम में सुनिएगा डॉक्टर भुवनेश्वरी भारद्वाज, प्रोफेसर संस्कृत एवं प्राकृत भाषा विभागाध्यक्ष लखनऊ विश्वविद्यालय की वार्ता जिसका विषय होगा योगाः कर्मसु कौशलम्। दिन में 3:30 पर आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। आज इस कार्यक्रम में विषय है गर्मी का मौसम और स्वास्थ्य रक्षा के विभिन्न उपाय। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर अभयनाथ तिवारी, वरिष्ठ आयुर्वेदिक चिकित्सक। संचालन सुभाष खन्ना का होगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 7:31 पर आप सुनेंगे उस्ताद अली अकबर खान का सरोद वादन राग ललिता गौरी में। लोक रंग कार्यक्रम में सुबह 9:50 पर और लोक माधुरी में दिन में 2:45 पर आनंद लीजिएगा मगन मिश्रा के गाए अवधि लोकगीतों का। बाल मंच कार्यक्रम में हमारे नन्हे मुन्ने दोपहर 12 बजे सुनेंगे विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर माया मिश्रा की कहानी कोशिश। दर्जी की मर्जी सुनिए झलकी आज इतवार है में आज दिन में 1:15 पर। निर्देशन अतिश कुमार श्रीवास्तव का है। अक्षय वट कार्यक्रम में दिन में 1:30 पर सुनना ना भूलें डॉक्टर आर प्रधान, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष ओरल एंड मैक्सिलो फेशियल सर्जरी KGMU लखनऊ से की गई भेंट वार्ता। विषय होगा तंबाकू मुक्त बुढ़ापा गौरवशाली जीवन। इस विषय पर बातचीत करेंगी डॉक्टर अलका चौधरी। जायद फसलों में सामयिक प्रबंधन ये विषय है डॉक्टर अनिल प्रताप सिंह से की गई भेंट वार्ता का। विज्ञान और किसान कार्यक्रम में दिन में 2:30 पर भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। संकल्प कार्यक्रम में शाम 4 बजे आप सुनेंगे विकास मिश्रा से की गई भेंट वार्ता। दिव्यांगता प्रमाण पत्र भेंट करता होंगे सुरेंद्र राजेश्वरी। शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में सुनिएगा लोक भाषा कवि गोष्ठी। प्रतिभागी कवि होंगे शुकदेव प्रसाद छैल, राम दुलारे सिंह सुजान। संचालन रवि प्रकाश अवस्थी का है। खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर सफलता की कहानी क्रम के अंतर्गत हमारे किसान भाई सुनेंगे आम की सघन बागवानी विषय पर मोहम्मद फहद फारूकी से की गई भेंटवार्ता। भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। तो ये थे आज प्रसारित होने वाले हमारे मुख्य कार्यक्रम जिन्हें आप सुन सकेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। आप सुन रहे हैं मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ वैशाली के साथ। हाजिर होते हैं कुछ ही पलों में कार्यक्रम विविधा लेकर।

आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है आज की विविधा में। स्वीकार कीजिए वैशाली का प्यार भरा नमस्कार। अच्छा बताइए श्रोताओं, क्या आपने कभी किसी को पैसे देकर जहर खरीदते देखा है? क्या आपने किसी को अपनी जिंदगी के साल जलाते हुए देखा है? क्या आपने किसी को खांसते खांसते भी मुस्कुराते हुए देखा है? अगर हाँ, तो आपने एक तंबाकू सेवन करने वाले को देखा है। जरा सोचिए, एक छोटी सी पुड़िया, एक छोटी सी सिगरेट, एक छोटा सा गुटखा, लेकिन नुकसान इतना बड़ा कि इंसान की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दे। आज की विविधा में बात कहिए तंबाकू को ना की। हर साल दुनिया भर में लाखों की संख्या में लोग तंबाकू के सेवन करने से मरते हैं। हर मिनट में 15 जिंदगियां, और भारत में तो सिर्फ तंबाकू की वजह से मरने वालों की संख्या लाखों में है। ये कोई बीमारी नहीं है साथियों, ये एक चुनाव है, एक गलत चुनाव। हमारे देश में

आज करोड़ों की संख्या में लोग किसी न किसी रूप में तंबाकू का सेवन कर रहे हैं। कोई गुटके के रूप में खा रहा है, तो कोई खैनी के रूप में खाता है, कोई बीड़ी में इसे जलाता है, तो कोई सिगरेट में उड़ाता है, और कोई पान मसाले में छुपाकर इसका इस्तेमाल करता है। और गंभीर बात यह है कि इनमें से एक बड़ी संख्या है हमारे युवाओं की, वो युवा जो देश का भविष्य है, वो युवा जो अभी 15 से 18 साल में ही पहली बार तंबाकू का सेवन शुरू कर चुके हैं। सिर्फ इसलिए कि किसी दोस्त ने कहा था कि एक बार ट्राई करके देख। शुरुआत तो होती है शौक से और फिर ये आदत बन जाती है और फिर जिंदगी बन जाती है बोझ। याद रहे दोस्तों, तंबाकू मजा नहीं सजा है, आदत नहीं आफत है। युवाओं में ई सिगरेट और निकोटीन पाउच जैसे निकोटीन उत्पादों का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। कभी सोचा है एक छोटा सा पाउच कुछ मिनट का स्वाद और बदले में क्या? पीले काले दांत, काली खांसी, कमजोर फेफड़े, दिल की बीमारी और कभी कभी तो कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी। साथियों, तंबाकू की एक सिगरेट में 7,000 से ज्यादा रसायन होते हैं। आप जब सिगरेट में तंबाकू का सेवन करते हैं, उसी पल आपके फेफड़ों में कार्बन मोनोऑक्साइड जाती है, आपका दिल तेज धड़कने लगता है, रक्तवाहिका सिकुड़ने लगती हैं और आपका मस्तिष्क निकोटीन का गुलाम बनने लगता है। मुंह, गले, फेफड़ों का कैंसर, हृदय रोग, लकवा, यही तंबाकू का तोहफा है। मैंने एक बुजुर्ग को देखा था, एक समय बड़े मजबूत इंसान थे वो, लेकिन 30 साल तक तंबाकू का सेवन करने के बाद वो बोल नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, सिर्फ आंखों से देखते थे और शायद पछताते थे। कहने का मतलब, तंबाकू का सेवन धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर देता है और आप खुद उसे खरीद कर लाते हैं। ये परिवार भी बिगाड़ता है, जो पैसा पढ़ने लिखने में लगता था वो गुटके पर खर्च हो जाता है। दोस्तों, जो समय सपने बनाने में लगना था वो बीमारी संभालने में चला जाता है। जो मुस्कान चेहरे पर होनी थी वो अस्पतालों के चक्कर काटते काटते कहीं खो जाती है। दोस्तों, जीवन अनमोल है। तंबाकू के सेवन के विनाशकारी प्रभावों को देखते हुए साल 1987 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के सदस्य देशों ने दुनिया भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 31 मई का दिन विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। निकोटीन और तंबाकू की लत के आकर्षण को उजागर करना और उससे निपटना, ये थीम है साल 2026 की, जिसका उद्देश्य लोगों को इसके जोखिमों के बारे में याद दिलाना ही नहीं है, बल्कि ये समझना भी है कि इसके हानिकारक प्रभावों के बारे में व्यापक जानकारी उपलब्ध होने के बावजूद तंबाकू उपयोगकर्ताओं को आकर्षित क्यों करता रहता है। माना दोस्तों कि तंबाकू छोड़ना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी तो नहीं, और जो खुद पर जीत जाए ना, उससे बड़ा विजेता तो कोई नहीं है। तंबाकू को ना कहना सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है। कोटपा अधिनियम, विज्ञापन निषेध और व्यापार एवं वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति एवं वितरण विनियमन यानी सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, हमारे पास कानून है। सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान वर्जित है, चेतावनियां भी हैं। आवश्यकता है तो समाज की सोच बदलने की।

0: तो दोस्तों घर में किसी को धूम्रपान करते देखें, उसे समझाइए प्यार से। दुकानदार, स्कूल के पास तंबाकू बेचे, आवाज उठाइए, क्योंकि एक एक आवाज मिलकर आंदोलन बनती है। ना भूलें, तंबाकू कंपनियां आपसे पैसे लेती हैं और साथ में लेती हैं आपकी सांसें, आपके साल लेती हैं, आपके परिवार की हंसी छीन लेती हैं और बदले में देती हैं सिर्फ धुआं। तो एक बेहतर कल की शुरुआत होती है आज के एक फैसले से। तो अभी से इसी पल कहिए तंबाकू को ना, अपने लिए, अपने अपनों के लिए। तो आज की विविधा में बस इतना ही, मिलेंगे इसके अगले अंक में अन्य विषय के साथ। नमस्कार, हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, सुनेंगे प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।
1: संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
2: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
1: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
2: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
1: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है। और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है, और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
2: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
1: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैष्णवी त्रिपाठी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बन रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समस्त नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर यह कार्यक्रम सीधे प्रसारित होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित करेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल लखनऊ के CG सिटी में 9 करोड़ रुपए की लागत से 2 एकड़ से अधिक

0: क्षेत्र में निर्मित नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण किया। लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि लखनऊ राष्ट्रभक्ति और सैन्य गौरव का प्रतीक बन रहा है। श्री सिंह ने कहा कि नौसेना शौर्य वाटिका केवल बनावट का नमूना भर नहीं है, ये सबको सेनाओं के संघर्ष और योगदान को स्मरण कराएगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत का रक्षा क्षेत्र आत्मनिर्भर होने की ओर तेजी से बढ़ रहा है, इसमें उत्तर प्रदेश के डिफेंस कॉरिडोर की अहम भूमिका है।
1: हमने यहाँ पर लखनऊ में डीआरडीओ की प्रयोगशालाएं भी प्रारंभ की हैं। डिफेंस कॉरिडोर के माध्यम से उत्तर प्रदेश भारत के रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है और यहाँ लखनऊ में ब्रह्मोस का भी निर्माण हो रहा है और भी कई तरह से उत्तर प्रदेश डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कर रहा है।
0: इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारतीय सैनिकों की वजह से 140 करोड़ भारतवासी चैन की नींद सोते हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के बेहतर माहौल में ही जन कल्याण एवं विकास योजनाएं प्रभावी ढंग से आगे बढ़ सकती हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण के संकल्प से जुड़कर विकसित भारत की संकल्पना साकार हो सकती है।
2: देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों के सामने विकसित भारत की जिस संकल्पना को हमारे सामने रखा है, उसमें उन्होंने हर भारतवासी से कहा कि विकसित भारत के लिए हर नागरिक को पंच प्रण के साथ जुड़ना पड़ेगा। वे जो पंच प्रण हैं, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, अपनी सेना के प्रति और यूनिफॉर्म धारी फोर्स के प्रति सम्मान का भाव हमारे मन में हो।
0: भारतीय नौसेना और उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में विकसित ये परियोजना अत्याधुनिक ओपन एयर म्यूजियम और इंटरप्रिटेशन सेंटर के रूप में तैयार की गई है। नौसेना शौर्य वाटिका में भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त युद्धपोत आईएनएस गोमती को स्थापित किया गया है। उर्वरकों के संतुलित और उचित उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महीने का खेत बचाओ अभियान कल से शुरू होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि खेतों, किसानों और गांवों को जोड़ते हुए इस अभियान को राष्ट्रीय अभियान बनाया जाना चाहिए। नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य ध्यान उर्वरकों का संतुलित और उचित प्रयोग, मौसम की चुनौतियों के मद्देनजर किसानों को समय पर परामर्श, पंचायत स्तर पर किसानों की भागीदारी तथा गांवों को सीधे योजनाओं के लाभ पर केंद्रित होना चाहिए। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में सीपी ग्राम्स के लिए एआई सक्षम वॉइस चैटबॉट समाधान दीदी का शुभारंभ किया। ये चैटबॉट लोगों को संवादात्मक इंटरफेस के माध्यम से लोक शिकायतें दर्ज कराने में सक्षम बनाता है। डॉक्टर सिंह ने समाधान दीदी को सरकार की शिकायत निवारण प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR News गोरखपुर और X हैंडल AIR News _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर में स्टार्टअप लोहम का दौरा किया। श्री वैष्णव ने कहा कि लोहम लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा है।
3: एक यंग स्टार्टअप लोहम, इन्होंने कंप्लीट टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के बाद में वहाँ से प्रोडक्शन का लेवल लेके आए। इस प्लांट को देखने का मौका मिला। लिथियम कार्बोनेट बनाने की मशीनें जो कि आगे सीधा बैटरी बनाने में काम में आए और परमानेंट मैग्नेट बनाने की मशीनें जो कि बहुत ही एक अच्छे बहुत ही कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को अच्छे तरीके से डेवलप किया।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र की एनडीए सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश में 5 जून से 21 जून तक विकास, सेवा, सुशासन और जनकल्याण की उपलब्धियों को समर्पित व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल बैठक कर अभियान की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। एक रिपोर्ट।
4: अभियान के तहत 5 जून से 21 जून के बीच प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में लगभग 10 किलोमीटर की प्रगति पथ यात्रा आयोजित की जाएगी। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत वृक्षारोपण और 8 जून से 14 जून तक जनसंपर्क अभियान, संवाद कार्यक्रम और पैदल मार्च आयोजित किए जाएंगे। 11 से 14 जून तक मीडिया संवाद कार्यक्रम होंगे। 14 से 16 जून के बीच जन कल्याण मेलों का आयोजन होगा। वहीं 16 और 17 17 जून को जिला स्तर पर विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। 18 और 19 जून को केंद्र सरकार की 12 वर्षों की विकास यात्रा तथा विकसित भारत के संकल्प को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनियां लगाई जाएंगी। 21 जून को

0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
1: केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कहा है कि उसका पोस्ट रिजल्ट इक्विटी पोर्टल कल 1 जून से सक्रिय हो जाएगा। आवेदन करने के इच्छुक विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन की पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए यह पोर्टल शुरू किया जा रहा है। अयोध्या स्थित डोगरा रेजिमेंटल सेंटर में कल अग्निवीर योजना के तहत 7वें बैच के 835 अग्निवीर जवानों ने सफलतापूर्वक अपना सैन्य प्रशिक्षण पूरा कर लिया। डोगरा रेजिमेंटल सेंटर के कमांडेंट ब्रिगेडियर जितेंद्र शर्मा ने बताया कि सभी जवान सेना में विभिन्न मोर्चों पर तैनात कर दिए जाएंगे।
2: 835 अग्निवीर जो है वो पासिंग आउट होके अपनी अपनी यूनिटों में वो ज्वाइन करेंगे। जाते के साथ ही अग्निवीर इनको वो जो अपना कार्य है वो करना पड़ेगा और उसके लिए यहाँ पर हमने इन्हें ट्रेन करा है और मुझे विश्वास है कि अपना ये कार्य अच्छे ढंग से ये पूरा करेंगे।
1: उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जून महीने में बिजली बिल पर 10% का अतिरिक्त फ्यूल एवं पावर परचेस एडजस्टमेंट सरचार्ज लागू करने का निर्णय लिया है। अगले महीने उपभोक्ताओं को अपने बिजली बिल में 10% अधिक भुगतान करना होगा। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस परीक्षा में 72 जिलों में स्थापित 1011 परीक्षा केंद्रों पर कुल 4,44,958 अभ्यर्थी प्रतिभाग करेंगे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न होगी। निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया है। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं। परीक्षा केंद्रों की CCTV से निगरानी की जाएगी। प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा चलने और वर्षा होने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मुरादाबाद, फरुखाबाद और अमरोहा में कल रात आंधी के साथ गरज चमक के बीच बारिश होने की खबर है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ वर्षा का अनुमान जताया है, जबकि कई जगहों पर तेज हवा के साथ बिजली कड़कने की भी आशंका जताई गई है। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा करेंगे अपने विचार। आकाशवाणी और दूरदर्शन के संपूर्ण नेटवर्क पर प्रसारित होगा कार्यक्रम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में किया नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण। रक्षा मंत्री ने कहा, डिफेंस कॉरिडोर के जरिए रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बना रहा है प्रदेश। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ग्रेटर नोएडा में स्टार्टअप लोहम का किया दौरा। कहा, लिथियम आयन बैटरी और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों तथा उन्नत सामग्रियों का उत्पादन कर रहा लोहम। और प्रदेश भर में आज आयोजित होगी उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा। हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम के जरिए होगी परीक्षा केंद्रों की निगरानी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
4: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए, वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत, जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
3: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
5: स्वागत है आप सभी श्रोताओं का मॉर्निंग प्रोग्राम नमस्ते लखनऊ में, जिसे आपने ट्यून इन किया है अपने रेडियो सेट पर 747 किलो हर्ट्ज पर। नमस्ते लखनऊ कार्यक्रम में आज मैं हूं वैशाली आप सभी के साथ। और अब समय है शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम का। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं उस्ताद अली अकबर खान का राग ललिता गौरी में सरोद वादन।

0: 134वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी किया जाएगा। हिन्दी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में इसका प्रसारण किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी नौसेना को उसके बंदरगाहों तक सीमित रहने के लिए विवश कर दिया था। लखनऊ में नौसेना शौर्य वाटिका के उद्घाटन समारोह में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान पर दबाव बनाने में नौसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
1: हमारी सेनाओं ने सटीक हमले करके पाकिस्तान में स्थित आतंकी ढांचे को पूरी तरह से तबाह कर दिया। हमारी आर्मी और एयरफोर्स ने तो अपनी भूमिका निभाई ही, लेकिन जो भूमिका हमारी नेवी ने निभाई वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण थी। हमारी नेवी पूरी ताकत के साथ अरब सागर में उस समय मौजूद, जिसने दुश्मन के मन में लगातार भय बनाए रखा और इसी का नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तान की पूरी नौसेना डरकर अपने बंदरगाहों में दुबक कर बैठ गई थी।
0: शौर्य वाटिका खुले में बनाया गया नौसेना संग्रहालय है। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने युद्ध के लिए तत्परता, सैन्य संचालन तथा प्रतिरोधी क्षमताओं का प्रदर्शन किया। म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन 5 दिन की भारत यात्रा पर कल शाम नई दिल्ली पहुंचे। इससे पहले राष्ट्रपति ने बिहार में गया के महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ कई मंत्रियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उद्योग जगत का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। म्यांमार के राष्ट्रपति की ये भारत की पहली यात्रा है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल शाम श्री लाइन से मुलाकात की। डॉ जयशंकर ने दीर्घकालिक द्विपक्षीय सहयोग और प्रगाढ़ करने के लिए म्यांमार के राष्ट्रपति के सकारात्मक दृष्टिकोण की सराहना की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ दोनों देशों के ऐतिहासिक और सभ्यगत संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। वे व्यापारिक मंच में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति मंगलवार को मुंबई जाएंगे। कर्नाटक में वरिष्ठ कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को कल सर्वसम्मति से कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। इस संबंध में सिद्धरमैया और डॉ जी परमेश्वरन ने प्रस्ताव पेश किया था। डॉ डीके शिवकुमार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। निर्वाचन आयोग ने अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने के लिए कल नई दिल्ली में अपने वकीलों के साथ बैठक की। बैठक का उद्घाटन करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निष्पक्ष मतदाता सूचियों से ही निष्पक्ष चुनाव होते हैं। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में बूथ स्तर के अधिकारियों और एजेंटों तथा देश की अदालतों में निर्वाचन आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकीलों की सराहना की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने कल से शुरू हो रहे पखवाड़े के लिए पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। ये कदम पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच घरेलू स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। एक रिपोर्ट।
2: सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात शुल्क में संशोधन किया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पेट्रोल के निर्यात पर अब 1.50 रुपए प्रति लीटर और डीजल के निर्यात पर 13.50 रुपए प्रति लीटर का शुल्क लगाया जाएगा। वहीं विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क 9.50 रुपए प्रति लीटर निर्धारित किया गया है। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क तथा अवसंरचना उपकर सहित निर्यात शुल्क 27 मार्च से लागू किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और विमान ईंधन की औसत कीमतों के आधार पर प्रत्येक पखवाड़े इनकी समीक्षा की जाती है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा उत्पाद शुल्क दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। संशोधित निर्यात शुल्क कल से लागू होंगे और 15 जून तक लागू रहेंगे। विष्णु पीएस की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: केंद्रीय नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने नई दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्काईकास्ट सिस्टम के शुरू होने की प्रशंसा की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि स्काईकास्ट जैसी उन्नत मौसम निगरानी प्रणालियों से कोहरे और विक्षोभ जैसे अन्य व्यवधानों के दौरान उड़ानों के संचालन में महत्वपूर्ण सुधार हो सकता है। सरकार ने पहली जून से 31 अक्टूबर तक कपास आयात पर सीमा शुल्क में अस्थायी छूट देने का फैसला किया है।

0: वस्त्र मंत्रालय के अनुसार ये फैसला कपास किसानों और समूची कपास मूल्य श्रृंखला के हित में किया गया है। कपास के ऑफ सीजन के दौरान इस उपाय से वस्त्र उद्योग के लिए पर्याप्त मात्रा में कपास उपलब्ध होगा। इससे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता मिलेगी, लागत कम होगी और भारतीय वस्त्र बाजार की स्पर्धा मजबूत होगी। वस्त्र मंत्रालय ने कहा है कि इस उपाय से किसानों के हितों की सुरक्षा होगी और बाजार स्थिरता सुनिश्चित होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन एक दिवसीय दौरे पर आज केरलम पहुंचेंगे। वे कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह का उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने पाकिस्तान की आईएसआई और मुंबई अंडरवर्ल्ड नेटवर्क के लिए काम कर रहे 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। विशेष शाखा के विशेष पुलिस आयुक्त अनिल शुक्ल ने बताया कि इन आरोपियों को दिल्ली में महत्वपूर्ण ठिकानों और सुरक्षाकर्मियों पर हमले का काम सौंपा गया था।
1: कुछ जगहें थी मुंबई में, कुछ रेलवे स्टेशन की इन्होंने सर्वे किया था, रेकी की थी। कुछ मुंबई के पार्क्स थे, पब्लिक पार्क, उसके अलावा कुछ ब्रिजेस है जिसकी वीडियोस और फोटो इन्होंने ली हुई हैं, जो इन्होंने शेयर की हैं ऑन दी अदर साइड। उसके अलावा दिल्ली में कुछ सरकारी भवन, कुछ गैर सरकारी और कुछ पब्लिक प्लेसेस, हाई फुटफॉल एरियाज और सिक्योरिटी पर्सन को हिट करने के लिए, ऐसा उनका प्रिलिमिनरी इंटरोगेशन से पता चला।
0: कोलंबिया में आज राष्ट्रपति चुनाव के पहले चरण के लिए मतदान होना है। कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। उम्मीदवार को पहले ही चरण में जीतने के लिए 50% से अधिक वोट हासिल करने होंगे। यदि कोई उम्मीदवार ये आंकड़ा नहीं छू पाता है तो सबसे अधिक वोट पाने वाले दो उम्मीदवारों के बीच 21 जून को दूसरे चरण का चुनाव कराया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य युगांडा में इबोला के प्रकोप के कारण यात्रा प्रतिबंध लगाने तथा सीमाएं सील करने वाले देशों से अपने इन फैसलों पर दोबारा विचार करने का आग्रह किया है। उनका मानना है कि इस तरह के कदमों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों में रुकावट आ सकती है। आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जा रहा है। ये दिन तंबाकू के उपयोग को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा शुरू की गई महत्वपूर्ण वैश्विक पहल का हिस्सा है। इस वर्ष का विषय है अपील का अनावरण, निकोटीन और तंबाकू की लत से निपटना। महाराष्ट्र के पुणे में जहरीली शराब से मृतकों की संख्या 21 हो गई है। इनमें से 7 लोग पुणे और 14 लोग पिंपरी, चिंचवाड़ा तथा उरुली कांचर क्षेत्रों के थे। इस मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रशासन ने लापरवाही के आरोप में 22 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। इनमें 9 पुलिसकर्मी और राज्य आबकारी विभाग के 13 अधिकारी शामिल हैं। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं आनंद पाठक।
2: खेलों में आज की सबसे बड़ी खबर आईपीएल 2026 के फाइनल से जुड़ी है। अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु खिताबी मुकाबले में आमने सामने होंगे। ये मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। इस सीजन में गुजरात टाइटंस ने इसी मैदान पर आरसीबी को मात दी थी, लेकिन बेंगलुरु की टीम भी आत्मविश्वास से लबरेज है। पिछले वर्ष इसी मैदान पर अपना पहला आईपीएल खिताब जीतने वाली आरसीबी ने इस बार भी शानदार प्रदर्शन करते हुए फाइनल में जगह पक्की की है। विराट कोहली के नेतृत्व में टीम का बल्लेबाजी आक्रमण बेहद प्रभावशाली रहा है। भुवनेश्वर कुमार और जॉश हेजलवुड की तेज गेंदबाजी ने विपक्षी टीमों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं। दूसरी ओर शुभमन गिल की कप्तानी वाली गुजरात टाइटंस ने लीग चरण में शीर्ष दो में स्थान बनाया और पहले क्वालिफायर में मिली हार के बाद शानदार वापसी करते हुए फाइनल का टिकट हासिल किया। अब ये देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आईपीएल 2026 की ट्रॉफी आखिर किस टीम के हाथों में जाएगी। और अब बात महिला क्रिकेट की। ब्रिस्टल में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में इंग्लैंड ने भारत को 26 रन से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में बराबरी कर ली है। और अब बैडमिंटन से एक अच्छी खबर है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष डबल्स फाइनल में आज भारत की स्टार जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी का मुकाबला इंडोनेशिया के मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और फजर आल्फियान की जोड़ी से होगा।
0: केरलम माहे तमिलनाडु पुदुचेरी और कराईकाल में बुधवार तक तेज बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने ओडिशा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और देश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में भी कल तक तेज वर्षा की आशंका जताई है। पूर्वी राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और विदर्भ में कुछ स्थानों पर आज बारिश के साथ बिजली गिरने और ओलावृष्टि की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में कल तक कुछ स्थानों पर बिजली गिरने और आंधी चलने की आशंका है। कोंकण और गोवा में आज गर्म और उमस भरे मौसम का अनुमान है। अगले 2 दिन में राजस्थान में कुछ स्थानों पर आंधी आ सकती है। उधर केरलम में आज 6 जिलों में वर्षा का येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzone

0: aiar.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। डीके शिवकुमार को कर्नाटक में विधायक दल का नेता चुने जाने की खबरें सभी अखबारों में हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने उनके नाम का प्रस्ताव किया। पत्र लिखता है कि वे 3 जून को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ का ये कहना कि भारत शक्तिशाली, अपनी सेना का आधुनिकीकरण कर रहा है, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने उनके हवाले से लिखा है कि अमेरिका ने भारत की क्षमता को आगे बढ़ाने के लिए सह उत्पादन की प्रतिबद्धता जताई है। उत्तर भारत में आंधी बारिश, राजस्थान में बवंडर, अमर उजाला ने इसे सचित्र देते हुए लिखा है, राजस्थान में 70 से 80 किलोमीटर की रफ्तार से उठा रेतीला तूफान। दैनिक भास्कर ने भीषण गर्मी और सूखे की आशंका के बीच इस चिंता को दिया है कि जलाशयों में संकट उत्पन्न हो रहा है, 22 दिन में 12% घटा पानी। पत्र के अनुसार पानी की कमी की सबसे भयावह तस्वीर दक्षिण भारत के राज्यों में है। ईरान और अमरीका तथा इसराइल के बीच युद्ध विराम को लेकर किसी सहमति पर न पहुंचने को लेकर दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि ये गतिरोध विश्व अर्थव्यवस्था के लिए नासूर बन गया है। अब ये गतिरोध रुकना चाहिए क्योंकि पश्चिम एशिया संकट विश्व के करोड़ों लोगों को प्रभावित कर रहा है। लोगों के रोजी रोटी पर ही संकट नहीं है, वे गरीबी के दुष्चक्र में भी फंस रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा आयोजित CUET UG में तकनीकी गड़बड़ियों के कारण परीक्षा में हुई देरी की खबरें सभी अखबारों में हैं। राजस्थान पत्रिका ने इस संबंध में एजेंसी द्वारा माफी मांगने को प्रमुखता से दिया है। IPL के फाइनल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच होने वाले फाइनल पर नवभारत टाइम्स लिखता है, घर गुजरात का, दिलों पर RCB का कब्जा। बच्चों पर सोशल मीडिया के बढ़ते असर को हिंदुस्तान ने चिंताजनक बताते हुए लिखा है कि 9 से 17 वर्ष के 49% बच्चे 3 घंटे से ज्यादा समय सोशल मीडिया पर बिताते हैं, जो उन पर बुरा असर डालता है।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदरगाहों में डूब के रहने के लिए किया था मजबूर। म्यांमार के राष्ट्रपति ओमिन नाउलाइन 5 दिन के भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। कल बिहार के गया में महाबोधि मंदिर में की थी पूजा अर्चना। सरकार ने पेट्रोल डीजल विमान ईंधन पर निर्यात शुल्क संशोधित किया, नया शुल्क कल से लागू। और IPL क्रिकेट के फाइनल में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस का सामना मौजूदा चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है, 100.4 MHz पर। सुबह के 8:15 हो चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है बच्चों का हंसता खिलखिलाता कार्यक्रम अंकुर।

0: स्वागतम वेलकम खुशामदीद भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम अंकुर में। और मुस्कुराने की जो हम बात करने वाले हैं बच्चों, तो सामने हम देख रहे हैं नेमचंद भैया की, भाई उससे पहले भी खिलखिला रहे थे और अभी भी भीनी भीनी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर है। तो नमस्कार नेमचंद भैया।
1: नमस्कार नजमा दीदी। तो रामन दर्पण कहलाए
0: भाई, क्या बात।
1: कार्यक्रम पूरा सुनिएगा, आपको खूब आनंद आएगा। और हम देख रहे हैं जी, बड़ो सो तरबूज लेके आई हो
0: तरबूज। हाँ भाई,
1: सस्तो मिल गो हो।
0: हाँ हाँ, यही समझ लीजिए। चलिए, हमने
1: तो
0: सोचा
1: सस्ता ढूंढा होगा आपने चौवारी राम गंगा के इलाके में।
0: जी जी, हमने सोचा भाई सस्ता है तो सबके लिए ले चलो।
1: बिल्कुल, आपकी ये हमने देखा है कि ये भी एक खूबी कहें या आदत कहें, अगर चार विक्रेता बैठे हैं तो आप चारों से मोल भाव करती हैं।

0: बिल्कुल,
1: ये कितने का है, ये कितने का है, किसी ने बताया 20 रुपया का, काउंट कर दी 15 को, तो नाजमा दीदी के 5 तो बची है।
0: तो ये हमारी समझदारी का सबूत है।
1: साथियों, आज हमारी चर्चा का विषय है तोरा मन दर्पण कहलाए। मित्रों, ये मन ही है जो हमें आपको सबको घुमाता है। सही मायनों में देखा जाए तो मन बहुत चंचल होता है। मन पर तमाम कवियों, लेखकों और गीतकारों ने अलग अलग व्याख्या की है। काजल फिल्म का यह गीत है कि तोरा मन दर्पण कहलाए। जब आप इस गीत को सुनेंगे, अर्थ निकालेंगे, इस गीत को देखेंगे, सीख लेंगे, तो यही कहेंगे वाह रे वाह मन। दोस्तों, मन से कभी उदास मत होइए। याद रखिए, दुख भी अगर आया तो उसके बाद सुख निश्चित है। और कहा भी जाता है कि राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है।
0: वाह भाई, क्या बात है। और बिल्कुल भैया कहते हैं कि मुख है एक ठंडी छाया, आती है और जाती है, दुख तो अपना साथी है। और अभी भैया आपने कहा कि तोरा मन दर्पण कहलाए, वाकई में इसे समझने की आवश्यकता है ना निमचंद
1: जी? बिल्कुल
0: बच्चों, तोरा मन दर्पण कहलाए का अर्थ है कि हमारा मन एक शीशा यानी दर्पण की तरह, ऐसा ही है ना निमचंद?
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
0: जिस तरह से दर्पण में सब कुछ साफ दिखाई देता है, उसी तरह मन हमारे सभी अच्छे बुरे कर्मों और विचारों का सच्चा प्रतिबिंब है। बच्चों, हम दुनिया से तो अपनी चालाकी या गलतियां छिपा सकते हैं निमचंद भैया, है ना, लेकिन मन से कभी नहीं छिपा सकते।
1: बिल्कुल बच्चों, तोरा मन दर्पण कहलाए में यह भी कहा गया है कि तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल, मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गमाए।
0: वाह, हीरा जन्म गमाए कैसे?
1: कैसे ऐसे कि मतलब शरीर है, शरीर सुंदरता पैसा जवानी एक ढलती हुई छाया की तरह नश्वर है।
0: ठीक है,
1: मन और सुंदर विचारों का धन ही असली पूंजी है, ये समझने वाली बात है।
0: वाह, क्या बात।
1: और ये पूंजी ऐसी पूंजी है जो हमेशा हमारे आपके साथ रहती है। जो व्यक्ति मन की शुद्धि और उसके मूल्यों को नहीं समझता, उसका जीवन व्यर्थ है ना, है ना? इसको समझना पड़ेगा। दोस्तों, मन को कभी छोटा मत होने दीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। याद रखिए, मन एक सफेद कागज के समान है, उसे जिस रंग में डुबा दोगे वो वैसा ही हो जाएगा। आकाशवाणी बरेली के नन्हे साथियों, मन को सदैव साफ रखिए। यदि ईश्वर को पाना है, जीवन में सुख चैन पाना चाहते हो, तो मन को एकदम निर्मल रखिए,
0: मतलब साफ सुथरा। कुछ ऐसी बातें नहीं सोचना चाहिए, है ना? अच्छी
1: जी,
0: अच्छी
1: जी,
0: बातें सोचो।
1: बच्चों, हमारा आपका मन अच्छे बुरे कार्यों का गवाह होता है। जब आपने देखा होगा कि जब हम आप कुछ गलत करने की सोचते हैं, तो हमारा जो मन है वो हमें रोकता है, झकझोरता है कि नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये ठीक नहीं है। और मन कहता है कि जाई विधि राखै राम, ताई विधि रहिए।
0: निमचंद भैया, अभी आपने कहा कि मन हमें रोकता है, बिल्कुल सही बात है। जब हम कुछ, कभी कभी ऐसा होता है बच्चों, जब हम कुछ गलत करने जा रहे हैं या हो जाता है, तो हमें अंदर से एक सिग्नल मिलता है, एक इंडिकेट मिलता है कि नहीं, कुछ तो गलत हो रहा है ना निमचंद भैया? तो हमें अपने मन की बात को समझना चाहिए और मानना चाहिए कि नहीं, हमें अंदर से आवाज आ रही है तो शायद कहीं ना कहीं कुछ गलत है, है ना? तो बच्चों, मन को एक व्यापक यानी बड़ा माना गया है। इसके यानी मन की कई आंखें हैं जो हर परिस्थिति और भावना को गहराई से समझती हैं। हमें आपको भी समझना होगा।
1: बिल्कुल बच्चों, कहा गया है कि मन ही देवता, मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न कोई, इस उजले दर्पण पर प्राणी धूल न जमने पाए, तोरा मन दर्पण कहलाए। भारतीय दर्शन में मन को सबसे शक्तिशाली माना गया है। यदि मन पवित्र और सच्चा है तो ईश्वर का मंदिर है। आप हमारी बात को समझ रहे होंगे नाजमा दीदी
0: जी,
1: कि अगर हमारा जो मन है वो पवित्र है, स्वच्छ है, तो ईश्वर का जो मंदिर है वो हमारे आपके पास ही है, हमारे आपके अंदर ही है। याद रखिए, मन में ही सकारात्मक ऊर्जा होती है जो पूरे संसार को प्रकाशित करती है।
0: यानी कि पॉजिटिव हमें सोचना चाहिए, है ना बच्चों? बच्चों, मन पर धूल ना जमने दे। याद रखिए, मन जन्म से साफ होता है, लेकिन सांसारिक मोह और लोभ और क्रोध जैसी बुराइयां मन पर जब धूल की तरह जम जाती है ना, तो हमें ईश्वर का यानी भगवान का, अल्लाह का प्रतिबिंब साफ दिखाई नहीं देता। तो ऐसी क्या होता है बच्चों, जब ऐसे साफ हमें दिखाई नहीं देता, तो हमें से बहुत सारी परेशानियां भी आने लगती हैं निमचंद भैया, है ना?
1: बिल्कुल बच्चों, कहते हैं कि मन ही ईश्वर, मन ही देवता, मन से बड़ा ना कोई, ये कितने

0: अनमोल शब्द है, ठीक है। इन सब बातों का फायदा तभी है जब हम आप इन कीमती शब्दों को अपनी असल जिंदगी में उतारें। मन एक दर्पण है, जिस प्रकार दर्पण के सामने खड़े होकर झूठ नहीं बोल सकते, मन के साथ भी दगाबाजी नहीं कर सकते। बच्चों, समझने वाली बात यह है कि मान लीजिए जब हम आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो गाड़ी के पीछे साइड में क्या है? एक दर्पण है, शीशा है। ये दर्पण हमें पहचान करा रहा है और मन उसे समझा रहा है कि सही दिशा में ही चलिए। हमारा मन चेतना की तरह है, ये चेतना हमारे मन को बता रही है, जगा रही है कि अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए। अगर आप विद्यार्थी हैं तो मेहनत से पढ़िए। और मन की माया भैया अपरंपार है। अब ये अपरंपार कैसे है नाजमा दीदी, ये भी बताइए।
1: बिल्कुल, मतलब भैया ये समझिए कि मन में अगर कोई परेशानी है या अचानक कोई समस्या या गर्व, तो चेहरा एकदम बेचैन और लाल पीला सा हो जाता है,
0: बिल्कुल,
1: ना।
0: बिल्कुल।
1: भले ही आप अपनी कमजोरियां छिपा लें, लेकिन चेहरा तो सब कुछ बयां करता है ना बच्चों। और हर किसी को अपने मन को सदैव हरा भरा और खुशनुमा बनाना चाहिए। आप सदैव खुश रहने के तरीके ढूंढिए। अगर आप किसी से अच्छे से बात नहीं कर पा रहे हैं और कुछ गलत सोच रहे हैं, तो इससे ये अच्छी बात नहीं है बच्चों। और दूसरे को गलत समझने से पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए, तो आपका मन भी देखिए खुश हो जाएगा। और इसका असर जो है बच्चों, हमारे शरीर के तंत्रिका तंत्र पर भी पड़ता है। निमचंद भैया,
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात आपने कही। विज्ञान की ओर आप चली गई कि अगर हम आप गलत सोचते हैं, कोई भी गलत सोचता है या अपने मन की बात नहीं मानता है, अच्छी बात नहीं मानता है, तो इसका सीधा असर हमारे जो तंत्रिका तंत्र है यानी कि हमारी बॉडी पर पड़ता है। परेशान होते हैं कि यार ये होगा कैसे, बड़ी दिक्कत है। तो इन सब चीजों से बचने के लिए सबसे बढ़िया तरीका ये है कि खुश रहिए,
1: बिल्कुल,
0: है ना, बेकार की मत सोचिए। और बच्चों याद रखिए, मन के हारे हार है मन के जीते जीत। जिसने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया। हमारे वैज्ञानिकों और वीर सपूतों ने कभी हार नहीं मानी और वे यही सोचकर आगे बढ़ते रहे कि मर जाए तो मरे। आखिर में उन्होंने यही सोचा स्वतंत्रता की लड़ाई में कि जीवन नया मिलेगा अंतिम चिता पे जल के, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा और नेता तुम ही हो कल के, है ना नजमा दीदी। तो इधर उधर मन को भटकाने के बजाय अच्छे कर्मों में लगाइए। अगर आप मन के सुंदर और अच्छे विचार लाएंगे अपने मन में और मन से सब कुछ अच्छा ही अच्छा करेंगे, तभी ये कहने में आनंद आएगा कि भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, तोरा मन दर्पण कहलाए।

0: पैरामेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: और नाजमा दीदी
3: जी भैया,
2: तोरा मन दर्पण कहलाए। भाई दर्पण का मतलब हमारे नन्हे मुन्ने साथी समझ गए होंगे। और जीवन में कहते हैं कि भाई हंसना भी बहुत आवश्यक है, और हम तो यही कहेंगे बच्चों से कि पढ़ाई के साथ ही साथ भाई लाइफ में खुश रहना है, स्वस्थ रहना है, तो एकदम नपीतुली बात यह है कि हंसने के बहाने ढूंढो।
3: बिल्कुल ढूंढना चाहिए हंसने के बहाने। नेमचंद भैया, तो आपने कुछ हंसी का बहाना ढूंढा?
2: अरे खूब ढूंढे हैं नाजमा दीदी। बचपन में खूब हंसी आती थी पता है, अब भी आती है। आपने देखा होगा कि घर में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, तो करना क्या है कि उनको आप जो है घोड़ी की तरह बनिए और
3: चल मेरे घोड़े,
2: बिल्कुल, और उनको अपनी पीठ पर बैठाइए, ठीक, और गर्दन में एक अंगोछा डाल लीजिए। अब्बा जो अंगोछा है ना, बाको घोड़ी की जो लगाम होती है उसकी तरह खींचो और फिर कहो चल घोड़ी। चल घोड़ी बड़ा आनंद आता है। और इसके अलावा आपने देखा होगा बच्चे जब छोटे से बड़े होते हैं तो उन्हें खाना खिलाना सिखाया जाता है ना, कटोरी में जो भी, तो पता काका हो जा तू
3: क्या कहते हैं,
2: हप्पा। हप्पा खाए ले हप्पा। अब वो हप्पा हप्पा कहते कहते कभी कभी बच्चा कह देता है बप्पा। तो हप्पा और हप्पा से क्या आया, बप्पा मतलब पिता।
3: पिता, देखिए इसी तरीके से जब बच्चे बोलते हैं रेमचंद भैया, और हप्पा किसे कहा गया, चावल को, यानी चावल यहाँ जी वो दे रहे हैं, तो बच्चे कहते हैं हप्पा। और कभी कभी बच्चे क्योंकि बोलना सीख रहे होते हैं तो निकल गया भप्पा उनके मुंह से। तो बच्चे तो सिर्फ बच्चे ही है रेमचंद भैया।
2: और एक चिट्ठी आकाशवाणी में आई है, वो अगले कभी कार्यक्रम में शामिल करेंगे। पता है उसमें क्या लिखा हुआ है?
3: क्या
2: उसमें ये लिखा हुआ है कि बरेली आकाशवाणी से अंकुर कार्यक्रम में बताया गया था कि एक बाइक पर 5-6 बच्चे पीछे बैठे थे, और बाद में ये भी बताया गया कि ये तो कानूनन के खिलाफ, अभी 2 से अधिक नहीं बैठ सकते, ठीक है, लेकिन वो मोटरसाइकिल जो थी वो लेख के बीच में उसका चित्र छपा हुआ था।
3: अच्छा।
2: लेकिन जब वो गौर से पढ़ा देखा तो वो मोटरसाइकिल नहीं थी, खाली हैंडल था।
3: सुनिए
2: तो सही,
3: यानी कि वो हैंडल,
2: हाँ,
3: करके
2: वो हैंडल पकड़े हुए जी। और पता है तो उन्होंने ये लिखा है, भैया हमारी मोटरसाइकिल कबाड़ा हो गई, मतलब खराब हो गई, उसकी एक्सपायरी होने वाली थी, तो हम कबाड़ी को बेचने गए।
3: अच्छा।
2: ठीक है, तो हमने जाकर भैया बाकी सब सामान ले लो लेकिन हैंडल हमें वापस कर देना। तो उन्होंने कहा कि क्यों, तो बोले हम हैंडल ले आए हैं और घर पर कभी छत पर हम उसको ऐसे करते हैं, हुर मतलब ऊपर उछालते हैं। हाँ। बिल्कुल, तो बड़ा आनंद आता है।
3: बिल्कुल सही कहा। और क्योंकि देखिए ये भी बच्चों एक हंसने हंसाने का बहाना था, और अगर हंसने हंसाने के बहानों को अगर हम ढूंढे तो और घर में बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि परिवार एक साथ मिलकर बैठे तो अंताक्षरी खेलें, उसमें जो गाने होंगे तो विद स्टेप के साथ गाने गाइए, जब नाचेंगे गाएंगे नए नए तरीके से आप स्टेप करेंगे तो वो भी एक हंसी के बहाने होंगे।
2: सवारी के मेले में कहते हैं 3 फीट के जोकर को देखिएगा, कमाल देखिएगा।
3: हाँ।
2: तो आधा कमाल तो जोकर का ही होता है तमाशे में, है ना।
3: और देखिए इसके अलावा भी जो है आउटडोर गेम भी होते हैं, कुछ इंडोर गेम भी होते हैं, और अब छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, तो नेमचंद भैया तो हम तो ये कहेंगे अपनी फैमिली के साथ खूब इंजॉय करिए। उसमें गेम्स कुछ ऐसे होते हैं कि बहुत

0: सारे आउटडोर गेम है, इंडोर गेम है, लूडो है, उसमें भी कोई ना कोई बात ऐसी छोड़
1: बिल्कुल।
0: देते हैं कि हंसते
1: और
0: रहते
1: जी
0: हैं।
1: बिल्कुल, हंसने से फायदे बहुत हैं, है ना। हमारा जो शरीर है स्वस्थ रहता है, बाहर की जो हवा है वो अंदर पहुंचती है, तो हमारे शरीर के जो हिस्से पुर्जे हैं वो एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आप टहलिए, योगा करिए, और इसके साथ ही साथ हंसना बहुत आवश्यक है।
0: अरे निमचंद भैया, योगा की बात आपने कही तो एक लाफ्टिंग एक्सरसाइज है, जब खड़े हो जाते हैं ना, खड़े हो करके दोनों हाथ ऐसे ऊपर करके और फिर हंसते
1: आपने तो स्टूडियो में भी ऊपर हाथ कर दिए।
0: जी बिल्कुल। तो देखिए ये भी क्या है, जब हम ऐसे हंसेंगे ना तो हमारा जो हार्ट है, हमारा दिल है, वो पंपिंग अच्छे से करता है और ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहता है।
1: बिल्कुल सही बात आपने
0: और
1: कही।
0: इसके अलावा खो खो गेम है, देखिए वो खेलिएगा, बातों को कुछ कॉमेडियन तरीके से घर में कहिए, ताकि एक हंसने हंसाने का माहौल बना रहे। हंसने से हम स्वस्थ रहते हैं बच्चों, और हमारे शरीर और शरीर जो होता है, और मानसिक, शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य उससे बेहतर रहता
1: बिल्कुल।
0: है।
1: मगर एक बात है नाजमा दीदी,
0: जी क्या?
1: ये दार भात की बात आपने करी, ज्यादा
0: हाँ
1: मत खा लियो वरना हंसना मिले।
0: हाँ एक बात और याद आई निमचंद भैया।
1: अगर बहुत अधिक खा लिया ना
0: हाँ
1: तो फिर भाई फिर पेट पे अधिक जोर पड़ता
0: देखिए निमचंद भैया, ये इस बात से हमें एक बात याद और आ गई
1: है।
0: कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो देखिए ना, अधिक बात कीजिएगा और ना ज्यादा हंसिएगा,
1: बहुत पते की बात
0: है
1: आपने
0: ना
1: कही।
0: निमचंद भैया? क्योंकि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऐसा होता है, जब हम खाना खा रहे हैं, बच्चे और फैमिली के साथ बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं, और उसमें कोई हंसी आ गई, मान लीजिए निवाला हमारे मुंह में है, और जब हम हंसे तो वो निमाले का जो एक दाना होता है, या दाल या चावल का दाना, वो हमारी सांस की नली में भी जा सकता है और जो है वो गले में फंस सकता
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बहुत
0: तो
1: पते की
0: यहाँ पर
1: बात
0: भी
1: आपने
0: ध्यान
1: बताई।
0: रखना चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: और नेमचंद भैया,
1: जी
0: नन्हे मुन्ने बाल दोस्त हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं ना।
1: बिल्कुल। आप सुन रहे हैं बच्चों का प्यारा कार्यक्रम अंकुर, और अंकुर कार्यक्रम हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का है, और आकाशवाणी बरेली की ये महकती हुई बगिया फलती फूलती है हर रविवार को 8:15 पर। और बहुत सारे बच्चे हमसे बात करते हैं, और बच्चों की मीठी मीठी बातें जब आकाशवाणी बरेली के माध्यम से हमारे सुनने वालों तक पहुंचती हैं तो यकीनन बहुत अच्छा लगता है। और अंकुर प्रोग्राम खास तौर से हमारे नन्हे मुन्ने दोस्तों का है, और उन्हें इससे कुछ मदद मिलती है, कुछ फायदा होता है, कुछ लाभ होता है, तो आकाशवाणी बरेली के लिए बहुत गर्व की बात है। आज भी हम देख रहे हैं बहुत सारे बच्चे लाइन पर लगे हुए हैं और फोन की घंटी बज रही है, देखते हैं कि पहला नंबर आखिर किसका लग गया है। हेलो
2: नमस्ते।
1: नमस्ते, बड़ी प्यारी आवाज आकाशवाणी के बरेली केंद्र पर पहुंच रही है, और इतनी मीठी आवाज, आखिर किस जनपद से आ रही है, अपने जिले का नाम बताएं और पता बताएं।
2: बदायूं जनपद से बोल रही हूँ, मैं पूरा पता अपना बताना चाहूँ। ग्राम खरसाई, पोस्ट बेराराई, तहसील लातेगंज, जिला बदायूं से मैं बात कर रही हूँ, प्रतीक्षा यादव।
1: अरे वाह क्या बात
0: प्रतीक्षा
1: है।
0: यादव, देखिए आपकी प्रतीक्षा हम कर रहे थे, और देखिए ये प्रतीक्षा खत्म हुई और आपसे बातचीत हो रही है, तो बधाइयों के बारे में बताइए कुछ हमें।
2: हमारे बदायूं जनपद के अलापुर का पेड़ा बहुत ही मशहूर है, आप भी आइए और पूरे आकाशवाणी को लेके आइए और हमारे बधाइयों का पेड़ा खाकर जाइए।
1: अरे वाह
0: बेड़ा भाई,
1: क्या
0: क्या
1: बात
0: बात
1: है, क्या बात है भाई, बड़ा प्रतीक्षा करनी पड़ेगी भाई। इन्होंने कस्बे का नाम लिया अलापुर, ये अलापुर कहाँ पर है?
2: ये बदायूं के ही पास में है।
1: चलिए, अलापुर का पेड़ा
0: तो
1: यानी कि
0: निमचंद
1: बदायूं
0: भैया,
1: जनपद का पेड़ा।
0: फिर हमें चलना चाहिए और पेड़ा खाएंगे हम।
1: बिल्कुल चलना चाहिए नाजमा दीदी, तो अगले प्रोग्राम में आप तैयार होकर के आना।
0: बिल्कुल ठीक है, हम रेडी रहेंगे
1: चलिए।
0: और चलिए अलापुर चलेंगे। ठीक
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, बदायूं की बात ही निराली है, और बदायूं के बाद मथुरा भी आता है नाजमा दीदी, वहां का भी पेड़ा बहुत प्रसिद्ध है। तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, सबसे पहले किस क्लास में पढ़ती हैं?
2: मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ।
1: अरे वाह क्या बात है, तो हमारे लिए ये बताइएगा कि बालिका शिक्षा बहुत आवश्यक है, और वैसे तो काफी कुछ बदल चुका है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं देखने में आता है कि हमारी जो कुछ बालिकाएं हैं वो बीच में शिक्षा छोड़कर बैठ जाती हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बालिकाओं के विकास में बहुत जोर दिया जा रहा है, और करीब करीब हर क्षेत्र में बालिकाएं आगे हैं, महिलाएं आगे हैं, तो ऐसी बालिकाओं के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी कि पढ़ाई पूरी करें भैया, बीच में गैप ना करें?
2: मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों से, क्योंकि आज का दौर बहुत बदल चुका है पहले के दौर से, आज हर लड़की को पढ़ना चाहिए, तभी वो जान पाएगी कि आगे दुनिया देश खबर में क्या हो रहा है।

0: को छोड़कर आज हर अभिभावक को, हर पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि हमारी बेटी पूरी पढ़ाई करे, बीच में ना छोड़े। घर वालों को सपोर्ट करना चाहिए कि वो अपनी पूरी पढ़ाई कंप्लीट करे।
1: भाई वह क्या कहने हैं निमचंद भैया, उन्होंने बहुत अच्छी बात बता दी है। देखिए अंकुर कार्यक्रम के माध्यम से जो बालिकाएं सुन रही होंगी, जो माता पिता सुन रहे होंगे, तो आपकी बात उन तक पहुंच रही होगी। और हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम सुन करके जो बालिकाएं बैठ गई हैं वो भी अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगी।
2: बिल्कुल, शिक्षा सूचना और मनोरंजन की शानदार परंपरा है आकाशवाणी। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन के अलावा जो समाचार पत्र होते हैं, अखबार होते हैं, उनसे कुछ मदद मिलती है बच्चों को?
0: जी भैया, हमारे जो अखबार होते हैं हमें उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि अखबार अगर हम पढ़ेंगे तो हम उस 10 मिनट के अखबार में पूरी जानकारी पा सकते हैं कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। और साथ में हमारे बच्चों के लिए भी एक पार्ट आता है, उसमें एक पेज होता है जिसमें कच्ची धूप होता है, जिसमें सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, पहेलियां, बहुत सारे मनोरंजन तत्व दिए जाते हैं जो बच्चों को पढ़ने चाहिए। और साथ में उसमें एक पेंटिंग भी दी जाती है, पेंटिंग जो बच्चे अपनी पेंटिंग भेज सकते हैं, जिससे पूरे दुनिया में लोग उसको पेंटिंग को देख सकते हैं। और हमारे लिए अखबार पढ़ना चाहिए, जिससे हमें सारी न्यूज मिल सकती है।
1: बहुत अच्छी बात बताइए।

0: सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन, पहेलियां, बहुत सारे मनोरंजक तत्व दिए जाते हैं जो बच्चों को पढ़ने चाहिए। और साथ में उसमें एक पेंटिंग भी दी जाती है, पेंटिंग जो बच्चे अपनी पेंटिंग भेज सकते हैं जिससे पूरे दुनिया में लोग उसको पेंटिंग को देख सकते हैं। और हमारे लिए अखबार पढ़ना चाहिए जिससे हमें सारी न्यूज मिल सकती है।
1: बहुत अच्छी बात बताई रही हैं
2: छात्रा, आप लग रही हैं। अब पर्यावरण की अगर बात करें तो पर्यावरण भी हमारा साफ सुथरा होना चाहिए। हमने कुछ बच्चों को देखा है कि कोई चीज खाई तो उसका जो रैपर है गली में डाल दिया, सड़क पर डाल दिया, ऐसा ना करना चाहिए। तो ऐसे बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहती हैं?
0: हम ये कहना चाहते हैं क्योंकि अगर हम एक रैपर फैलाएंगे, अगर एक कूड़ा भी डालना है तो अगर हम ये सोचे कि हम ही तो डालना है इससे कुछ होगा नहीं, लेकिन अगर हर एक बच्चा यही काम करेगा तो ऐसे तो कूड़े का ढेर लग जाएगा। यानी हमें खुद से ही शुरुआत करनी चाहिए सफाई की। अगर हम खुद वो रैपर उठाकर डस्टबिन में डालते हैं तो हर बच्चा यही काम करेगा तो पूरा देश, हमें सफाई के लिए अभियान नहीं चलाने की जरूरत है। हम पूरा काम खुद कर रहे हैं तो हमारा देश स्वच्छ हो जाएगा।
2: बड़ा जागरूक छात्रा आप लग रही है। आकाशवाणी बरेली की ये जो पाठशाला है प्रोग्राम अंकुर, इससे बच्चों को कुछ मदद मिलती है?
0: जी सर, ये तो हमारे लिए चार चांद लग जाता है क्योंकि हम साथ में अखबार भी पढ़े, लेकिन फिर भी हमारे लिए जो अंकुर कार्यक्रम जो हर संडे को सिर्फ बच्चों के लिए रखा है, उनका छुट्टी वाला दिन है, उसमें जो मनोरंजन की बात करें, चाहे हम क्वेश्चन की बात करें, अगर हम वो क्वेश्चन नोट कर रहे हैं तो हमारे पास एक क्वेश्चन का भंडार मिल जाएगा। क्योंकि अगर हम पूरे डेली के क्वेश्चन नोट करते हैं यानी संडे वाइज संडे, तो हमारे पास अगर हम देखेंगे महीने के अंत में तब भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। चाहे हम उनकी प्रतिभा के अंतर्गत बच्चों की बात करें, वो भी अपने विचार साझा करते हैं तो उनसे हमें बहुत सारी प्रेरणा मिलती है आगे बढ़ने के लिए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, डायरी अगर बना लेंगे एक तो इसमें आपको जीके में मदद मिलेगी, आपका एक जीके तैयार हो जाएगा बड़े अच्छे तरीके से, आप अपनी एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हैं, है ना? तो कितना फायदा मिल रहा है हमको अंकुर कार्यक्रम सुनने से।
2: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि जीवन में कुछ करना है तो मन को मारे मत बैठो, और आगे आगे बढ़ना है तो
1: हिम्मत हारे मत बैठो।
2: आपके कहने का मतलब ये है कि अच्छा करने के लिए अच्छा और मजबूत मन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जो लोग शरीर से फिट हैं वही अपने अपने काम में हिट हैं। और इस बात को हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि भाई पढ़ाई के साथ ही साथ हमारा आपका जो स्वास्थ्य है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। तो खास तौर से स्वास्थ्य के बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि समय पर उठना चाहिए, टहलना चाहिए और पौष्टिक भोजन ही करना चाहिए? जी बताएं।
0: मैं कहना चाहूंगी कि सबसे बड़ी स्वास्थ्य ही हमारी संपत्ति, वो धन है। अगर ये हमारा स्वस्थ नहीं है तो हम किसी भी काम को मन लगाकर पूरा नहीं कर सकते, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर खेल कूद या फिर कहीं जाना हो। लेकिन अगर हम स्वस्थ नहीं है तो हम पढ़ाई नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन ही नहीं लगेगा। अगर हम साफ स्वच्छ रहते हैं, रोज स्नान करते हैं, उर्ज करते हैं, साथ में हम पौष्टिक भोजन करते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा और हमारा जो काम कर रहे हैं उसमें मन भी लगा रहेगा।
2: बिल्कुल, बातें आप बहुत बढ़िया कर लेती हैं। इतनी सुंदर सोच, इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कहाँ से लाती हैं?
0: अपने घर परिवार से, पापा से। जब हम अंकुर कार्यक्रम सुनते हैं तो इससे हमें बात करने का तरीका पता चलता है, साथ में बहुत सारी नॉलेज मिलती है।
2: चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। और मन तो यही कर रहा है कि अभी आपसे बातें करते ही रहे, बातचीत का सिलसिला खत्म ना हो। लेकिन और बच्चे भी फोन लाइन पर हैं। अब ये बताइएगा कि आखिर आज क्या मन बनाया है, मतलब कार्यक्रम में क्या सुनाएंगी?
0: मैं एक राधा रानी के ऊपर प्यारा सा गीत सुनाना चाहती हूँ।
2: वाह भाई वाह, सुनाइए।

0: आकाशवाणी बरेली को फोन किया और इतनी सुंदर सुंदर इतनी बढ़िया बढ़िया बातें कही आकाशवाणी बरेली से जुड़ने के लिए और प्रोग्राम में बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: तो नेमचंद भैया
3: जी,
2: अभी एक प्यारी सी बालिका थी और देखिए कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने बातें की।
3: बिल्कुल
2: है।
3: उन्होंने समाचार पत्र के बारे में भी जिक्र किया कि इसका भी लाभ लिया जा सकता है, दूरदर्शन की भी बात आई और आकाशवाणी की बहुत महत्वपूर्ण बात आई कि ये पाठशाला भी है जो अटेंड करने लायक है।
2: बिल्कुल, अंकुर के बारे में बताया कि अंकुर में हमें ये कुछ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो बच्चों अंकुर कार्यक्रम है ही इसीलिए कि आप इससे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करें। और नेमचंद भैया अभी कहानी सुन ली जाए तो
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: बच्चों आइए शुरू करते हैं आज की कहानी जिसका नाम है स्वाभिमानी बालक। 13-14 वर्ष का एक बालक जिसका नाम राजू था, शहर की गलियों में बांसुरी बेचता हुआ, बांसुरी ले लो बांसुरी ले लो। श्यामदास उस बालक को बांसुरी बेचते हुए अपने घर की खिड़की से देख रहे थे। बालक जैसे ही घर के पास आकर आवाज लगाने लगा,
5: बांसुरी ले लो बांसुरी ले लो,
4: श्यामदास भी बाहर आ गए। श्यामदास को देखकर राजू बोला, अंकल बांसुरी लेंगे? ये मोर पंख की डिजाइन की मैंने इसे खुद बनाया है और इसे मैंने ही सजाया है, देखिए अंकल कितनी सुंदर है। आश्चर्यचकित होकर श्यामदास बोले, तुमने खुद बनाई है? वाकई बहुत सुंदर है। श्यामदास ने कहा, अंकल देखिए ना और भी चीजें हैं, ये डलिया झूला ये कुर्सी ये सब मैंने बनाई है, बहुत सुंदर है सब, यकीन नहीं होता ये सब तुमने बनाई है। कहाँ से सीखा? श्यामदास बोले, मैंने अपने पिताजी से सीखा, पर वे अब इस दुनिया में नहीं हैं। घर में मेरी माँ है, वो मेरी इसे बनाने में मदद करती हैं। श्यामदास बोले, बेटा तुम्हारी पढ़ाई की उम्र है, तुम्हें इस उम्र में पढ़ना चाहिए। अंकल अगर मैं पढ़ाई में लग जाऊंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? श्यामदास एक-एक उस बच्चे की तरफ देखकर कुछ सोचने लगे और उन्होंने अंदर से जाकर एक लिफाफा लाकर उस बच्चे को दिया और कहा, बेटा इसमें कुछ रुपए हैं, वो रख लो और कल से स्कूल जाकर पढ़ाई करना। राजू बोला, नहीं नहीं अंकल मैं इसे नहीं ले सकता, मैं अपनी मेहनत से कमाए पैसों में खुश हूँ। श्यामदास तुरंत बोले, अच्छा इन पैसों से मैं तुम्हारा सारा सामान खरीद लेता हूँ, ठीक है ना? जी ये ठीक है अंकल, राजू खुशी खुशी बोला। वैसे अंकल आप क्या काम करते हैं? मैं एक शिक्षक हूँ बेटा, श्यामदास बोले। तो क्या आप मुझे पढ़ाएंगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, वैसे मैं रोजाना शाम को आप जैसे मेहनती बच्चों को पढ़ाता हूँ, तुम भी पढ़ने आ जाया करो। और तो और सरकार ने भी सरकारी स्कूलों में शिक्षा ड्रेस किताबें कॉपी सब फ्री कर रखी है, तो बेटा इन सब के साथ अपनी शिक्षा भी जारी रख सकते हो, क्योंकि शिक्षा हमारे अंधेरे जीवन को रोशनी में बदल देती है। शिक्षा पाकर बेटा आगे चलकर अपना सुंदर भविष्य बना सकते हो तुम। ठीक है अंकल। और जी अंकल मैं कल से ऐसा ही करूँगा। राजू अपने हाथ का बनाया हुआ सारा सामान देकर और उसके बदले में पैसे लेकर अपने घर की ओर चल देता है। तो बच्चों इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी स्वाभिमानी होना चाहिए और शिक्षा आपका अधिकार है, इसलिए पहले शिक्षा होनी चाहिए।
2: तो नेमचंद भैया शिक्षा देखिए बहुत जरूरी है और जब तक हम पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बच्चों आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना? तो इसी के साथ अब नेमचंद भैया एक गीत का आनंद लेते हैं।
6: मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
7: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।

納豆

0: हाँ भाई वाह, बहुत बढ़िया आपने भजन सुनाया। जो बच्चे कार्यक्रम सुन रहे हैं उनका मन खुश हुआ होगा। इसमें एक शब्द आया लाडले। नाजमा दीदी
1: जी
0: भाई, लाडले शब्द की क्या कहने, बड़ा प्यार बड़ा प्रेम झलकता है इस शब्द में।
1: बिल्कुल सही कहा नेमचंद जी आपने।
0: बहुत अच्छे आपने आकाश

0: पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता, बोलो।
1: पके पेड़ पर पका पपीता, पकड़ा पिंकी पपी का कपड़ा।
0: कपड़ा।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: तो निमचंद भैया, अभी हम एक गीत सुन रहे थे, चंदा चमके चमचम चीखे
3: चौकन्ना चोर,
2: चीखे चौकन्ना चोर,
3: चौकन्ना चोर से तो भैया डर लगता है।
2: बिल्कुल सही कहा,
3: लेकिन आनंद आ रहा था गाना।
2: बिल्कुल, हंसने हंसाने के जो बहाने हैं वो लगातार चल रहे हैं।
3: ये गाना जो था वो जंप में था। जंप का मतलब आप समझ रही हैं, इसको म्यूजिक पर चलाइए और उसके बाद उस पर डांस करिए, तब खूब आनंद आएगा।
2: बिल्कुल सही कहा। और बच्चों, अब हम जुड़ रहे हैं आपको कवियों के सीख देने वाले दोहे और उनका महत्व। प्यारे बाल साथियों, अब हम आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से आपको जोड़ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं भारतीय कवि और उनके दोहों के बारे में। बच्चों, वैसे भारतीय कवियों का जीवन भी बहुत ही प्रेरणादायक रहा है। उन्होंने कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी समाज को ज्ञान, प्रेम और प्रेरणा के साथ एक नई दिशा देने का भी काम किया है।
3: बिल्कुल, जगाते हैं दोहे भाई। नाजमा दीदी, आपने सुना होगा कि रहमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए।
2: बिल्कुल सही कहा। प्यारे बाल साथियों, हमें अपने सभी काम समय से करते रहना चाहिए। साथ ही बच्चे, हम आपको बता दें, क्योंकि समय बड़ा ही बलवान है और कबीरदास जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, जो काम कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो आज करना है उसे अभी करो। समय बहुत मूल्यवान है, इसलिए काम

0: को टालना नहीं चाहिए। और भक्ति काल के एक और कवि तुलसीदास जी ने भी दोहे के रूप में बड़ी खूबसूरत बात कही है। नेमचंद भैया ध्यान से सुनिएगा। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ना छोड़िए, जब लग घट में प्राण। इसका अर्थ है नेमचंद भैया, दया धर्म की जड़ है और अभिमान पाप की जड़ है। मनुष्य को हमेशा दयालु और विनम्र रहना चाहिए।
1: बिल्कुल रहना चाहिए। और इसी तरह बिहारी जी ने भी कहा है कि मनुष्य और पानी दोनों प्रकृति के समान है, जो व्यक्ति विनम्र होता है वही जीवन में महान बनता है और सफल होता है ना।
0: और देखिए इसी बात को दोहे के रूप में किस तरह कही है बिहारी जी ने। नर की अरु नल नीर की, गति एक एक करी जोए। जेते नीचो होई चले, तेते ऊंचो होए।
1: बिल्कुल
0: नीर
1: नीर की
0: की,
1: बात चली
0: जी बिल्कुल समझ
1: है।
0: गए हम क्या कहना चाहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल नीर की बात चली है। तो रहीम जी का एक दोहा हमें याद आ रहा है, उन्होंने बहुत बढ़िया कहा है कि रहमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, और पानी गए ना ऊब रहे, मोती मानुष छून। है ना नाजमा
0: जी
1: दीदी?
0: भैया,
1: तो
0: यहाँ
1: कहने का
0: पानी का
1: मतलब
0: अर्थ है नीमचंद भैया सम्मान और विनम्रता से है।
1: बिल्कुल
0: रहीम जी कहते हैं कि सम्मान और विनम्रता बनाए रखनी चाहिए, क्योंकि इनके बिना सब कुछ व्यर्थ ही है ना।
1: बिल्कुल
0: और आपकी जानकारी के लिए बताते चलें बच्चों, रहीम जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खाने खाना था, और ये अकबर के दरबार के नौ रत्नों में से एक थे। इनका बड़ा ही प्रसिद्ध दोहा एक और है बच्चों, रहीमन, जैसे कि अभी आप बताया
1: जी
0: था नेमचंद
1: बिल्कुल
0: भैया,
1: बिल्कुल
0: रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पड़ी जाए। उनका कहना था प्रेम से रिश्तों को संभाल कर रखना चाहिए, यदि एक बार रिश्ते टूट गए तो दोबारा जुड़ने पर भी
1: बिल्कुल।
0: वो बात नहीं
1: और
0: रहती
1: नाजमा दीदी एक और है कभी, पता है, मन चंगा तो कठौती में गंगा।
0: और इसी कड़ी में बच्चों हमारे अगले कवि हैं जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है नेमचंद भैया। इनका नाम है रविदास जी, जिन्हें
1: बिल्कुल
0: इनका दूसरा नाम पता है आपको क्या था?
1: संत रैदास जी, बच्चे समझ गए हो।
0: हाँ, और इनके पद भक्ति, सामाजिक समरसता और ईश्वर के प्रति अनन्य प्रेम का संदेश देते हैं। जैसे प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवन चंद चकोरा। और बच्चों यही नहीं, समता का आदर्श प्रस्तुत करते हुए रैदास जी ने दोहे में लिखा है, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। जिसका अर्थ है बच्चों, आदर्श समाज की कल्पना करते हुए लिखते हैं, जहां सभी को भरपेट अन्न मिले, कोई छोटा ना हो कोई बड़ा ना हो, सब लोग मिलजुल कर रहें, इसी में रैदास जी की सच्ची प्रसन्नता है।
1: बिल्कुल
0: बच्चों
1: बिल्कुल
0: भारतीय कवियों का जीवन केवल इतिहास नहीं बल्कि प्रेरणा और संस्कारों का खजाना है।
1: बिल्कुल खजाना है। और नाजमा दीदी
0: जी भैया
1: वो तरबूज काट ले, अब तो समय होनवार हो है।
0: बिल्कुल
1: चलिए
0: काट लेंगे
1: प्रश्न बताते
0: तरबूज।
1: हैं। पहले
0: जी
1: पिछले रविवार को हमने कौन कौन से सवाल बच्चों से किए थे। पहला सवाल में हमने आपको एक बड़ी प्यारी धार्मिक धुन सुनवाई थी और पूछा गया था कि ये धुन किसी फिल्मी गाने की है या कोई धार्मिक धुन है। तो ये धुन थी ओम जय जगदीश हरे, ठीक है। और अगले सवाल में हमने आपसे पूछा था कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में कौन बने हैं। तो भैया जी के अपना बढ़ाइए, श्री थलपति विजय, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी हाल ही में बने हैं और बड़े नाजमा दीदी भाग्यशाली हैं, अभिनेता से नेता बने और अब सीएम हैं,
0: वाह।
1: ठीक है। और अगला सवाल हमने आपसे पूछा था कि भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन की याद में मनाया जाता है। तो बच्चों समाज सुधारक स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। अगला सवाल हमने आपसे पूछा था कि दुख का विलोम शब्द क्या है। तो इसका सही उत्तर है सुख। और आखिरी जो प्रश्न था वो दिमाग पर बहुत अधिक जोर देने वाला था, ये मेल बेमेल शब्दों पर आधारित था। इस प्रश्न में तीन जोड़े एक मेल के थे और एक जोड़ा बेमेल था। जो बेमेल जोड़ा था उसका उत्तर आपको बताना था और ये शब्द थे, पहला था दही और जलेबी, दूसरा था पेंसिल और कटर, तीसरा था माता और पिता, और चौथा था थाली और सड़क।
0: मतलब
1: तो नाजमा
0: इसमें जो
1: दीदी
0: आपका ध्यान गया वो दही और जलेबी पे ज्यादा था।
1: नहीं, सही उत्तर इसका पता क्या था? इसका सही उत्तर था थाली और सड़क।
0: और नेमचंद भैया बारी आ गई है आज के 5 प्रश्नों की। तो बच्चों पहला सवाल है, मिजोरम राज्य

0: का प्रमुख नृत्य कौन सा है? और दूसरा प्रश्न है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तीसरा प्रश्न है, किस कीट के पंख रंगीन होते हैं? चौथा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? पांचवा और आखिरी प्रश्न है बच्चों, पृथ्वी के भूमध्य रेखा के उत्तर को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के भूमध्य रेखा को उत्तर को क्या कहा जाता है? आपको इन सवालों के जवाब बच्चों लिख भेजने हैं एक पोस्ट कार्ड पर।
1: और कुछ पत्र भी आए हुए हैं। ये पत्र हमें मिला है निकट काली देवी का मंदिर काली धाम कॉलोनी बरेली से, और इसे लिखा है श्री राम राठौर, शिवराम राठौर, धर्मवीर राठौर और मोनिका उर्फ मोहिनी राठौर। पांच में से पांचों प्रश्नों के उत्तर इन्होंने हल किए हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगला पत्र आपके हाथ में है नाजमा दीदी, बड़ा खूबसूरत है। कहाँ से आया?
0: ये आया है ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से, दातागंज से है। लिखने वाले हैं सुमेंद्र यादव और इनका पूरा परिवार। इनके पांच में से पांच प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल सही हैं।
1: तो बच्चों मन तो यही कर रहा है कि अभी आपसे मीठी मीठी और हंसने हंसाने वाली बातें करते ही रहें, लेकिन समय के आगे किसी की नहीं चली है और समय बहुत बलवान होता है। तो आज का ये हंसता मुस्कुराता हुआ सफर बस यहीं तक, आगे लेते हैं।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम अंकुर। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 MHz पर। सुबह के 9 बजने को हैं। आइए अब हम आपको जोड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से, जिन्हें हम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले कर रहे हैं।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। बचना ए हसीनों इस फिल्म का गाना के और शिल्पा राव की आवाजों में, अन्विता दत्त गुप्तन का लिखा हुआ गाना, विशाल शेखर का संगीत।

जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें सबसे पहले कुछ अल्पकालिक प्रभाव दिखने लगते हैं, जैसे कि हृदय गति बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, रक्त में ऑक्सीजन की जगह कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ने लगती है, और इन तात्कालिक प्रभावों से हृदय प्रणाली पर दबाव पड़ता है और शारीरिक क्षमता कम हो जाती है। कई धूम्रपान करने वाले लोगों में सहन शक्ति में कमी हो जाती है, लगातार खांसी और स्वाद और गंदगी अनुभूति में भी कमी होने लगती है। ये बात हम आज कर रहे हैं क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। चलिए चित्रलोक कार्यक्रम में अब अगला गाना आपको सुनवाते हैं। आयम कलाम फिल्म का गाना, के की आवाज में मानवेंद्र का लिखा हुआ गाना, अभिषेक राय का संगीत।

अब हम बात करते हैं तंबाकू सेवन के जो दीर्घकालिक परिणाम होते हैं उसके बारे में। फेफड़ों का कैंसर जो है वो तंबाकू से होने वाली सबसे मुख्य बीमारी है। इसके अलावा क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ये भी जो बीमारियां हैं फेफड़ों की कार्यक्षमता को धीरे धीरे कम करती चली जाती है और उसके बाद नष्ट कर देती है। इससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हृदय रोग या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। और तंबाकू जो लोग उपयोग करते हैं उनमें मुंह के कैंसर, मसूड़ों की बीमारी और दांतों की जो बीमारी है वो बहुत देखी जाती है। तो इन्हीं बातों के मद्देनजर प्रतिवर्ष 31 मई को ये दिन मनाया जाता है। और अगर हम चाहें तो ये जो तंबाकू है इसके सेवन से बच सकते हैं और लाखों लोगों की जो जान इस के सेवन से चली जाती है उसको रोका जा सकता है। तो इसके लिए आज नो टोबेको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर हम तंबाकू को यानी कि टोबेको को कहें नो और अपने स्वास्थ्य को बचाएं, अपने जीवन को बचाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बजरंगी भाईजान फिल्म का गाना के आवाज़ में कौसर मुनीर के बोल, संगीत है प्रीतम का।

आज के चित्रलोक कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना इकबाल फिल्म से के सलीम मर्चेंट, डोमिनिक क्लिंटन और साथियों की आवाजें, इरफान सिद्दीकी के बोल, संगीत है सलीम सुलेमान का।

इकबाल फिल्म के इस गाने के साथ ही आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न होता है। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: मिलो मिलो शाम सवरे,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
2: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था, एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 वर्ष की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहां वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी वानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

यही वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल बिस्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल विश्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल विश्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल विश्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल विश्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल विश्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता पैसा ही तेरा यारम तो प्यारे

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।

लता मंगेशकर ने अपने कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिपकर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल विश्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनकी करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल विश्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल विश्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में फिल्म छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा

0: ही था आज की फनकार कार्यक्रम, जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्व होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने।
3: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोता नमस्कार, मैं मीनाक्षी अस्थाना हूँ और आकाशवाणी की बचपन से फैन रही हूँ। आकाशवाणी ने अपना 90 वर्षों का ये सफर तमाम उतार चढ़ावों के साथ निश्चित रूप से पूरा किया होगा। मुझे याद है अपने बचपन में भी मैं हमेशा रेडियो की फैन रही हूँ, आकाशवाणी की फैन रही हूँ। इसके अनेकों कार्यक्रम जैसे विविध भारती की उर्दू सर्विस हुआ करती थी, अनेकों प्रकार के रंग महल में नाटक आया करते थे, हवा महल में नाटक आया करते थे, बिना का गीत माला, या यूं कहूं कि मैं आकाशवाणी सुनकर और उससे प्रेरित होकर उत्साहित होकर मुझे एंकरिंग का शौक लगा और एंकरिंग के लिए मुझे अनेकों तरह के मटेरियल सामग्री आकाशवाणी से सुगम रूप से मिल जाया करती थी। बरेली आकाशवाणी ने 1993 से जो अपना सफर शुरू किया है, मैं उस सफर में उनके साथ रही हूँ और आकाशवाणी बरेली के अनेकों ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें बच्चों का प्रोग्राम है, नन्हे मुन्ने बच्चे आकर अपनी कविताएं सुनाते थे, कहानियां सुनाते थे, घर आंगन, नारी संसार की तो मैं बहुत ही फैन हूँ क्योंकि यहाँ पर दी जाने वाली जानकारियां सूचनाएं न केवल शहरी स्त्रियों के लिए बल्कि ग्रामीण महिलाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होती हैं। नारी संसार में और घर आंगन में दिए हुए कार्यक्रमों से प्रेरित होकर मैंने अनेकों बार रेसिपी आदि भी ट्राई करी है और उसमें सफल भी रही हूँ। मेरा ये मानना है कि रेडियो एक ऐसा साधन है, आकाशवाणी एक ऐसा साधन है जो कि सबको सुलभ है और इसका लाभ समाज को निरंतर प्राप्त होता रहा है। आकाशवाणी के 90 वर्षों के इस सफर पर मैं उन तमाम श्रोताओं को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ जो इस सफर में हमेशा से उसके साथ रहे हैं और आगे भी रहेंगे। मेरा मानना है कि रेडियो जैसे आकाशवाणी जैसे साधन को हम घर घर तक पहुंचाएं और जब से ये इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आए हैं तब से तो आकाशवाणी हर व्यक्ति के हाथ में ही जैसे पहुंच गई है। 90 वर्षों के आकाश

0: आकाशवाणी के सफर पर मेरी तमाम श्रोताओं को और आकाशवाणी के को प्रसारित और प्रचारित करने में साथ देने वाले तमाम टेक्नीशियनों को, प्रस्तुतकर्ताओं को मेरी अनेकों अनेक बधाई तथा शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी पसंद।

हेलो हाय नमस्कार आदाब दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त एंड होस्ट मुनव्वर झा, आपके इस कार्यक्रम की हम सफर जिसका नाम है आपकी पसंद। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हम फेसबुक के माध्यम से एक पोस्ट डालते हैं, उस पोस्ट पर आप सबको कमेंट करना होते हैं, कमेंट में अपने नाम पते के साथ अपनी पसंद का गीत भी लिखना होता है और इसी तरह से ढेर सारे हमारे पास कमेंट बॉक्स में कमेंट इकट्ठे हो चुके हैं और अब शुरू करते हैं उन लोगों के कमेंट पढ़ने का सिलसिला जिन्होंने बहुत प्यार से भेज रहे हैं और लगातार कमेंट बॉक्स में हलचल मची हुई है। इस समय मैं देख रही हूँ और सोच रही हूँ अभी एक सेकंड रुककर शुरू करूँ क्योंकि ये हलचल मेरी आंखों को टिकने नहीं दे रही है फोन की स्क्रीन पर। जरा हलचल रुके तो मैं आगे बढ़ूं। श्रोताओं, ये हमारे पास जो फरमाइश भेजी है कस्बा उगहती से धीरज गुप्ता, पंकज बजाज, डॉक्टर देवेंद्र गुप्ता और डी के हिटलर, मोहम्मद अकरम अंसारी नगरिया कला बरेली से हैं। श्रोताओं, ये हमारे पास फरमाइश आई है, फेसबुक के माध्यम से ही कार्यक्रम चल रहा है तो जाहिर सी बात है फेसबुक के माध्यम से फरमाइश आई है। छत्रपति सांभाजी नगर से भेजने वाले हैं राजेश साबले पटेल, राजदीप राजेश और जोटिका राजेश, मिस्टर मिसेस शीतल राजेश। आगे हमारे पास ये आया है बहेड़ी से भेजने वाले हैं इश्तियाक अहमद इदरीसी, सुशील कुमार यादव हैं कर्नलगंज गोंडा उत्तर प्रदेश से। ये हमारे पास फरमाइश जो आई है, गाड़ी खाना चाईबासा झारखंड से जीवन विश्वकर्मा, मंजू विश्वकर्मा, नितिन विश्वकर्मा, सावन कुमार, सचिन और शक्ति। हजारीबाग झारखंड से वीरेंद्र भगत, मालती भगत, ऋषि और राहुल। दोस्तों, ये फरमाइश आई है भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा, गरिमा शर्मा, हर्ष और आहूजा। अगली फरमाइश है ग्राम हिंगड़ी अलॉट जिला रतलाम एमपी से जगदीश धाकड़, नायमा श्रीमती अंजू, रंजू भाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़ और शिवांगी धाकड़। सूर्यवांडी औरंगाबाद से प्रकाश बोरगांवकर, सुषमा बोरगांवकर, प्रांजलि सोहम बोरगांवकर, सदानंद विराज, अंशुमन ओवी, सुभाष सदानंद, नीरज और विराज। अगली फरमाइश कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से है, भेजने वाले हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशबद सिंह राहुल। ये फरमाइश हमारे पास है इंदिरा कॉटेज तलीताल नैनीताल से, भेजने वाले हैं मोहन सिंह रावत, ममता रावत और वान्या। बेड़ी मध्य प्रदेश से हैं हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर। गांव भांडीवाला फजिलका पंजाब से ओम बगड़िया, क्रियांश बगड़िया, योगेश, रजत और बेबी गरिमा बगड़िया। पाखुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुतासु अर्णव आनंद, सत्यम आनंद।

रांची पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत गुड्डी भगत, बाबा कुटी रायगढ़ से हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष चौहान और डुगू। गांव नाईवाला जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिढा और अलका मिढा। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से रितिका मिस्कीन, वानी आरव, चंद्रकला गणेश, काशीनाथ, संगीता मिस्कीन, आरोही, प्रियांशी और सोनी। ग्राम नगर कोहका जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जमुना देवी साहू, प्रेम पूजा, दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बेही, आराध्या और आराध्या साहू। अगली फरमाइश है हमारे पास बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। आर्यनगर कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजित कुमार, आयुष जंघेल और नंदनी जंघेल। धमदा ग्राम सुखरी कला से हैं अमित जंघेल, शगुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल। अगली फरमाइश आई है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। ये हमारे पास मैसेज आया है जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा मीना, अश्वनी और विपुल कामड़े ने भेजा है। पद्मा टॉकीज नेपा नगर मध्य प्रदेश से भेजने वाले हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति सुरभि, अश्वनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह। सहारनपुर से राधा नामदेव, अर्पणा नामदेव, अभिषेक नामदेव और हर्षित शर्मा। दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और बब्बू डब्बू। हलवाईयान मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से हैं मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कौसर। ग्राम शंकरपुर पोस्ट उसावा जिला बदायूं से हैं सुमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता और सूरत श्री। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी। चंदोसी रोड चमनपुरा उत्तर प्रदेश से है मुकेश गौतम, सुनील गौतम, अमन गौतम, बेटी शालू गौतम। ज्योति नगर नोखा राजस्थान से पुखराज बड़गुजर, कैलाश मिस्त्री, गोर्धन धरा, धनश्याम भार्गव, बाबू गौरी, हसन सिक्का। अगली फरमाइश हमारे पास आई है कृष्णा पार्क दिल्ली से सुरविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजिंदर सिंह ओबराय। अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है वारसी क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से जीशान वारसी, इमरान शेख और रेहान शेख। करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान। आइए आप लोगों की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म ज्वार भाटा से। आवाज लता मंगेशकर की, गीत राजेंद्र किशन का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

0: शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: सहायता टेलीलॉ के ऐप, वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद फेसबुक के माध्यम से, सिर्फ और सिर्फ 100.4 FM बरेली पर। अगली फरमाइश दोस्तों हमारे पास आई है नागपुर महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं कमल सोने, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, रामगढ़ कैंट झारखंड से है निपी सोने। अगली फरमाइश ये आई है पलारी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशान देवांगन। ये फरमाइश हमारी आई है घरौरी तेलीवाना उत्तराखंड से। निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू भेजने वाले हैं। ये गांव लाहौर डडा जिला बागपत से है जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी सी बेटी भुवनेश्वरी देवी, करावनल नगर दिल्ली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। अगली फरमाइश आई है गांव हांडीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा से राधेश्याम शर्मा, इंद्रा शर्मा और सार्थक शर्मा भेजने वाले हैं ये। और ये हमारे पास सेक्टर नंबर 2 आवाज विकास कासगंज उत्तर प्रदेश से पवन गौर, सुयश गौर, आशीष गौर, तन्मय और अपूर्वा। अगली फरमाइश जो है राजकमल रेडियो श्रोता आष्टी जिला जालना मराठवाड़ा से है सैयद यूनुस, सैयद नोमान, तनवीर मसरत, सैयद निजामुद्दीन, राम भाऊ तांदले, धोतर जोड़ा आष्टी से दशरथ सागुते, अनुष्का सागुते। बहेड़ी से है अंजुम भाई, खालिदा बेगम। और अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है गांव गढ़ी कोहाटा जिला पंचकूला हरियाणा से सराजुद्दीन अंसारी, नसीमन बेगम, शानिया अंसारी, मोहम्मद इलियास, मुशाहिद हुसैन, अक्सा अंसारी, आयशा अंसारी, उमर अंसारी और समीना अंसारी भेजने वाली हैं। अगली फरमाइश है जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश,

पाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। और ये अगला हमारे पास जो श्रोताओं ने नाम भेजा है, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से योगेश गुजराती, रेखा गुजराती और अभय गुजराती इनके साथ में है। जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा है। ये फरमाइश आई है पूजा रेडियो श्रोता संघ टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, राजेश कुमार अकेला, यशोदा यादव, राजीव यादव, संजीव यादव। हम राजेश कुमार अकेला से कहना चाहेंगे, इस समय फिलहाल आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि आपके साथ है ढेर सारे श्रोता जो इस समय ऑनलाइन हैं और हलचल मचाए हुए हैं फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर, और साथ में है आकाशवाणी का परिवार भी। अगली फरमाइश जो हमारे पास आई है, ये आई है जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। भेजने वाले मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून। आगे फरमाइश गंज डुंडवारा से है मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद आयान, मोहम्मद उस्मान अंसारी। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता डिम्पल देवांगन। ये फरमाइश है बेनीपट्टी मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भाविया कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। राजधानी रायपुर से नीलू मेघ नीलम, डॉक्टर वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। ये फरमाइश है हमारे पास रायपुर छत्तीसगढ़ से विनोद वंडलकर, वीड़ा वंडलकर, विविधा वंडलकर। कस्बा मीरगंज बिजली घर से आदर्श दिवाकर, लव दिवाकर, ओमेंद्रपुरी गोस्वामी, भाई कल्लू मिस्त्री। नाज रेडियो क्लब करेली से निसार अहमद अंसारी, में जबीन निसार, बेटी नुसरत फातिमा अब्रार अहमद अंसारी, इसरार अहमद अंसारी, इकबाल अहमद अंसारी, इस्लामुद्दीन उर्फ बन्ने भाई और पप्पू भाई अंसारी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। ये है कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट बजाज। अगली फरमाइश है रानीगंज मंगाल से रवि और इंदर भेजने वाले हैं। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा और दीपाली वर्मा। युवान और आर के राजा इनके साथ में हैं। ये हैं अगली फरमाइश हमारे पास आई है एवरग्रीन रेडियो ग्रुप गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से, तुलसी मस्कीन, वीणा मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन। नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बाल कृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा, राहुल शर्मा। आगे गोविंदपुरम, गोविंदपुरा सीकर राजस्थान से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत। और अगली फरमाइश हमारे पास आई है गणेशपुर गंज डुंडवारा एटा उत्तर प्रदेश से, एम फारूक शेख, शमा परवीन शेख, सैमा फारूक और सरफराज शेख, गुलफराज शेख, बेबी मुस्कान। आइए आप लोगों की सबकी फरमाइश पर, आप लोगों की पसंद पर सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है विपिन सचदेव ने और वंदना वाजपेयी ने। फिल्म का नाम वो सात दिन।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपकी चाय।
2: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
1: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
2: कैसे? अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
1: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
1: ना भाई ना।
3: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: वेलकम बैक दोस्तों, ओनली ऑन 100.4 FM बरेली पर कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद, सिर्फ और सिर्फ फेसबुक के माध्यम से। श्रोताओं, ये फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम लसूड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला रायगढ़ मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं गोविंद वैष्णव, दिव्या, सुमन, कोमल, परी। अगली फरमाइश गांव कलाना राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा कन्यादान।

आगे इन्होंने गीत का नाम लिखा है। अगली फरमाइश है हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैसल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा परवीन। ये फरमाइश आई है सोंगा धमतरी से। भेजने वाले हैं फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी चंदन, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र कुमार, हयांश कुमार। अगली फरमाइश गिरगांव महाराष्ट्र से गजानन नांद्रे, मारोत राव पांचाल। ये हमारे श्रोता हैं चरोदा बार नवापारा जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से, नंद कुमार ठाकुर, प्रमिला ठाकुर, प्रियंका, दीपक, खुशबू, ज्योति ठाकुर। ये फरमाइश आई है मणिनाथ बरेली सिटी से। भेजने वाले हैं डॉक्टर अद्भुत कुमार दीक्षित। अगली फरमाइश है ग्राम पजौनिया जिला जालौन से, सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक, आलोकिक चंसौलिया। अगली फरमाइश है टैगोर गार्डन नई दिल्ली से, रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। ये फरमाइश हमारी आई है शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से, संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। ये हमारे श्रोता हैं। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राम कुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से, लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप। उत्तम नगर दिल्ली से हैं भोगराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। ये फरमाइश है रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना हर्षित, खुशी गोस्वामी। अगली फरमाइश है अनारकली बाजार जगराओं से, सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। और आगे फरमाइश है गुजरात गांधी ग्राम से। भेजने वाले श्रोता हमारे दोस्त हैं प्रवीर सोनी, कलावती सोनी और जगदीश जौहरी। ये फरमाइश शेरवानी स्कूल गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से है आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी, आलिया अंसारी। ये फरमाइश है रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से, उदयभान पाल हैं ये। जय हिंद पाल, दीक्षा पाल, प्रतीक्षा पाल, विमलेश पाल और दिव्यांश बघेल और इनका पूरा परिवार। अगली फरमाइश है ये छवि राम सिंह राजपूत जिला फरुखाबाद यूपी से हैं और ये लिखते हैं आपके नियमित श्रोता हैं, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है सारे ही लोगों का। आगे ये फरमाइश आई है अटल रेडियो श्रोता संघ संकरा सोमनी जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से, नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू, रुद्राक्ष प्रताप साहू। अगली फरमाइश है जुनवानी स्मृति नगर जिला दुर्ग छत्तीसगढ़, सुरीत रमेश साहू, तारा विद्या साहू, जितेंद्र कुमार, कृष्ण कुमार, सुनीता देवी, रिसीवन लाल चंद्रहांस, हीरेंद्र कुमार, त्रिलोक कुमार, मास्टर रणजीत सिंह साहू। अगली फरमाइश गांव खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से हैं सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू, नव्या बिजारनिया। अगली फरमाइश हमारे पास आई है मजनू का टिल्ला से। भेजने वाले हैं कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर बलूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। एटा रोड गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से हैं बीपी गौतम, सरिता गौतम, एम कलीम जख्मी, डी एच बच्चन। ये फरमाइश हमारे पास आई है यादव थाने के सामने अल्हागंज जनपद शाहजहांपुर से। भेजने वाले हैं ये हमारे श्रोता हैं जिनका नाम है डॉक्टर आर वी सिंह, अरजीत यादव, प्रशांत यादव, उदित यादव, अभय यादव। और अगली फरमाइश है पदमपुर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से, मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति और भूमिका अरोड़ा। ये हमारे पास फरमाइश आई है गणेश वाणी कोल्हापुर से, सांभाजी तो सुतार, चेतन सुतार, सारिका सुतार, शाहनू शाहू नगर परिते से, बाजीराव ढेरे, संगीता ढेरे। और अगली

फरमाइश हमारे पास आई है खर सावा झारखंड से सुकरा नायक, मंजू नायक, जलेश्वर नायक और गौरव नायक। आइए आप लोगों की पसंद पर सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है किशोर कुमार ने, राजेंद्र किशन की रचना को संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने, फिल्म का नाम ब्लैक मेल।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आप बने हुए हैं 100.4 FM बरेली के साथ। कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। जी हाँ दोस्तों, आपकी फेसबुक के माध्यम से जो फरमाइश आ रही है लगातार उसको पूरा किया जा रहा है। दोस्तों, अगली

फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम खोकरान वाली जिला श्री गंगानगर से विनोद बरासा भेजने वाले हैं। विशाल बरासा, विकास बरासा, रोशनी बरासा और शगुन बरासा गोपालगढ़ राजस्थान से हैं। धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। अगली फरमाइश है मंसूरी रेडियो लिसनर क्लब बाजार रोड मुंगीसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरुनिसा, शबिस्ता।

से ईश्वर लाल मेहर, सुमित्रा मेहर, रिहांश मेहर, सृष्टि मेहर और पूरा परिवार है ये। अगली फरमाइश है लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से भेजने वाले हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, जिला किशनगढ़ बिहार से, किशनगंज बिहार से, रविंद्र मोहन दास, आशा देवी, वर्षा सुमन, सुहाना बिजनौर से हैं आसिफ चौधरी, अरफात अदीप और कदीर चौधरी, बटिंडा रोड मंडी डब्वाली से हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया, पटेल नगर मलौट से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी गगनदीप, आरजू और गुड्डू, बटिंडा खेड़ा पंजाब से हैं मिंटू थॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। अगली फरमाइश है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान, बेबी गर्वी, बेबी बॉय हिमांश। अगली फरमाइश है राम गोपाल मौर्य भेजने वाले हैं, सुनीता मौर्य, कृष्णा पायल, मानसी और परिवार के सभी सदस्य हैं, मौर्य बस्ती सुरखा बरेली से हैं ये, सिद्धार्थ नगर दरियापुर भवाली से हैं, गजानन यले, नवदीप यले, विश्वदीप यले। अगली फरमाइश आई है हमारे पास स्मिता रेडियो फैंस बुक लाइव शो भाटापारा छत्तीसगढ़ से, सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेटी वैदेही जोशी, बेटी हसीका जोशी, कुमारी अंकिता जोशी अनूपपुर मध्य प्रदेश से हैं, श्रीमती जयवंती केवट जी खंडवा मध्य प्रदेश से हैं, अब्दुल गफ्फार डाबर जी। अगली फरमाइश जिला नांदेड़ कुंडलवाड़ी से है गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। अगली फरमाइश है भेजने वाले हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन, गांव कुम्हार हेड़ा, सहारनपुर से, शेर कोट बिजनौर से हैं नदीम बाकी, कलीम बाकी, अलीम बाकी और अजीम बाकी, अदीम बाकी, अब्दुल गनी। अगली फरमाइश मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। आगे ही हमारे पास फरमाइश आई है अड़ाल नांदघाट छत्तीसगढ़ से माखन वर्मा, रांजनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, कस्बा मीरगंज के पास ग्राम हल्दी खुर्द से शकील अहमद, मिसबा उल सजर, समसुन होगा ये। आगे ये फरमाइश आई है कस्बा उगहती बदायूं से देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार गुप्ता, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार, प्रियांश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता, निर्भय गुप्ता। अगली फरमाइश हमारे पास आई है गंज डुंडवारा से शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अनु खान, अदनान खान, फैजान खान, ग्राम उदयपुर बन्नो जान, नाजिम अली, फरहान अली, वसीम अली, जीवा नौर, अदीबा फातिमा, मोहम्मद अली, अहमद अली और हाशिम अली, गुड्डू अली। गांव भोजपुर तला चिलकाना सहारनपुर से हैं मोहम्मद जावेद, मोहम्मद अदीब, अब्दुल हन्नान, जीनत जावेद, नाहिद रानी, आयत मोहम्मद इंतजार। अगली फरमाइश है मास्टर अकील अहमद, वरिष्ठ पत्रकार, शेरकोट बिजनौर और इन्होंने आगे हमारे पास एक और फरमाइश आई है आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, सौरभ शर्मा, शाइना शर्मा, मेंढे शर्मा। अगली फरमाइश मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से है दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार अहमद, कनीज, सकीना, हसीना, दिलशाद। ये फरमाइश आई है सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार वर्मा, सोनम वर्मा। सनावद से है शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बोड़ाना से है ये। अगली फरमाइश ग्राम पंचायत बाकरगंज तहसील फरीदपुर पानी की टंकी के पास से मास्टर सुनील बाबू, शिवम सिंह, अभयमीत, भगवान देई, स्वाति सिंह, तान्या और सभी मित्रगण और परिवार के सभी सदस्य। अगली फरमाइश है निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। अगली फरमाइश है उच्च भट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी गोस्वामी, शवन्या और अन्नू गोस्वामी ने ये फरमाइश भेजी है हमारे पास। कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा अमित हैप्पी, दुविया नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और प्रांजल राय। दोस्तों कई आप लोग कई बार

नाम को, एक ही फरमाइश को बार बार आप लोग भेजते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप लोग जब फरमाइश कमेंट बॉक्स में दे दिया करें, उसके बाद फिर बार बार ना किया करें। श्रोताओं, ये अगली फरमाइश हमारे पास आई है ग्राम देगांव तहसील पूर्णा महाराष्ट्र से। भेजने वाले हैं सदाशिव थोरात, कविता थोरात, श्रिया थोरात और बंटी थोरात। सोन वर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से, अनीश राजभर, मनीष राजभर, आशीष राजभर और आकर्ष। कवर कॉलोनी बड़वाह जिला खरगोन एमपी से प्रवीण श्रीमाली, मीना श्रीमाली, गुरमीत सिंह मीता साउथ दिल्ली से हैं ये। अजीत कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना कांठ रोड लदावली से हैं ये। नई बस्ती गंज डुंडवारा से है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ, मोहम्मद तैमूर, मोहम्मद कलीम। अगली फरमाइश हमारे पास आई है डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदूरकर, सदानंद मंदूरकर, रेडियो आगे गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से है। मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश शेख, अमन फरीदी। आगे फरमाइश आई है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा। आइए आप लोगों की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत, जिसे आवाज दी है लता मंगेशकर ने, गीत राजेश रोशन का, संगीत भी राजेश रोशन का है, फिल्म का नाम है दिल तुझको दिया।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी पसंद। आपकी पसंद कार्यक्रम में ये फरमाइश भेजी है, चक 15 PS जिला श्री गंगानगर राजस्थान से हैं। भेजने वाले हैं सरजीत सिंह जोसन, सरजीत कौर जोसन गुरमन, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से हैं आदर्श पाल सिंह जोसन, और वैंकूवर कनाडा से हैं रॉबिन सिंह जोसन। अगली फरमाइश आई है आकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम बेंडे, पवन जरिए, के संजीव डाबेराव। अगली फरमाइश हमारे पास आई है ओखला संगम बिहार दिल्ली से। भेजने वाले हैं रणधीर गुप्ता, बबीता रानी गुप्ता, सत्यम गुप्ता, सुंदरम गुप्ता। तेलंगाना निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श बेगम राबिया शेख। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं राजकुमार, बिट्टू कुमार, अर्चना कुमारी, कल्पना कुमारी, मुनि कुमारी, चांदनी कुमारी और नंदिनी। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अगली फरमाइश आई है संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। मजनू का टिल्ला से है कमल बलूजा, मधु बलूजा, सागर और सतना एमपी से हैं उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। होली चौक उत्तम नगर दिल्ली से है जयराम खोरवाल, सचिन, अमन, दीपांशु। अगली फरमाइश है मंजला दौलतपुर आंवला जिला बरेली से। भेजने वाले हैं भगवान सिंह यादव, अर्पित यादव और देव सिंह यादव। कस्बा अग्रवाल मंडी बागपत यूपी से हैं आसिफ अली खान, मुस्कान आसिफ, शाकिर अली खान। अगली फरमाइश गली सिकलापुर बरेली मौर्य मंदिर रतन माला मौर्य। भेजने वाले हैं मुकेश मौर्य, प्रिंस मौर्य, प्रियांशी मौर्य, पुष्पा मौर्य, गौरव मौर्य और चंद्र प्रकाश मौर्य। जिला बदायूं ग्राम यूसुफ नगर उत्तर प्रदेश से हैं मोहम्मद शफी, मोहम्मद उजैर, मोहम्मद राजा, मोहम्मद लाला, मोहम्मद सलीम। अगली फरमाइश है जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया, अनस और रेहान। नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से हैं अब्दुल गफ्फार डाबर खुशनसीब, अब्दुल हक डाबर, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डाबर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा छत्तीसगढ़ से हैं सोहन जोशी और पायल जोशी। आइए आप लोगों की फरमाइश पर सुनते हैं ये गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म नागिन से। आवाजें लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की हैं। गीत लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओ माफ कीजिए, ये गाना हम आपको सुचारू रूप से नहीं सुनवा पाए। श्रोताओ आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। श्रोताओं इसी के साथ एक खेद के साथ ये कार्यक्रम समाप्त करना पड़ रहा है कि आखिरी गाना हम आपको सुचारू रूप से नहीं सुनवा पाए, लेकिन हाँ अगली बार इंशाल्लाह फिर जब आपसे मुलाकात होगी तो आपकी पूरी फरमाइशों के साथ और पूरे नाम पतों के साथ फिर से हाजिर होगी आपकी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां। अब इस कार्यक्रम से अपने रेडियो दोस्त को दीजिए इजाजत।

0: दोस्तों आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। 10:55 होने को हैं। आइए अब सुनते हैं एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम मन की बात। इसमें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जनता से संबोधन आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली है, कृपया हमारे विशेष कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है।
2: श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध न हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
3: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
4: कोई बोले राम राम।
3: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
1: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी सीएससी सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हाल।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: बुलबुल की थक गया।
6: क्या हुआ?
5: नया किडबैग चाहिए।
6: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
5: करेक्ट।
6: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी ना मंजूर। चले ले आ गया नया किडबैग।
7: RBI कहता है
8: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
9: पर्सनल लोन ऑफर
10: फिर से ब्लॉक करता हूँ।
9: फ्री ट्रिप टू दुबई
10: ये भी ब्लॉक। कितना ब्लॉक करूं यार?
11: सिर्फ फोन पे ब्लॉक करने से स्पैम खत्म नहीं होता, हर बार नया नंबर आ जाता है।
10: तो क्या करूं?

0: कॉल उठाओ फिर ट्राई D&D ऐप पर रिपोर्ट करो कैटेगरी सेलेक्ट करो बैंकिंग ट्रैवल इंश्योरेंस और सबमिट बस कुछ सेकंड्स का काम
1: मतलब सबका स्पैम कम होगा
0: हाँ रिपोर्ट्स मिलते ही एक्शन होता है सिर्फ ब्लॉक नहीं रिपोर्ट जरूर करें ट्राई D&D ऐप डाउनलोड नाउ फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर एंड स्टार्ट रिपोर्टिंग
2: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात
3: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार मन की बात में एक बार फिर आपसे जुड़कर मुझे बेहद खुशी हो रही है देश के अलग अलग हिस्सों में हमारे देश के लोग देश हित में समाज हित में ऐसी अद्भुत चीजें कर रहे हैं और जब उनके विषय में सुनते हैं तो हमें एक नई प्रेरणा मिलती है आज कार्यक्रम की शुरुआत मैं एथलेटिक्स में देश की ऐसी ही उपलब्धि से करूंगा कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन कंपटीशन हुआ इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया देश भर से आए थे इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे गुरिंदर वीर सिंह विशाल टीके तेजस्विनी शंकर देव मीणा और कुलदीप कुमार इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए मैं सबसे पहले तो इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों एक इवेंट जिसकी देश भर में बहुत चर्चा हो रही है वह है 100 मीटर रेस 100 मीटर की दौड़ महज 2 दिनों के भीतर मेंस 100 मीटर रेस में नेशनल रिकॉर्ड 3 बार टूटा जिन 2 एथलीट्स ने यह कमाल दिखाया है वे हैं गुरिंदर वीर सिंह और अनिमेश कुजूर मैंने सोचा इस बार मन की बात में इन दोनों खिलाड़ियों से बात की जाए अनिमेश जी नमस्कार गुरिंदर वीर आपको भी नमस्कार सत श्री अकाल
4: नमस्कार सर नमस्कार
5: नमस्कार सर
3: अच्छा भैया आपने तो बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है आपकी जोड़ी ने भी बड़ा कमाल किया है हमने संगीत में तो जुगलबंदी देखी थी लेकिन चुनौती में जुगलबंदी होती है कि एक बार एक चुनौती दे फिर दूसरा उस चुनौती को उठा ले फिर तीसरी बार कर ले बड़ा इंटरेस्टिंग विषय रहा है आपका मैं चाहता हूं कि मन की बात के श्रोताओं को पता चले कि आप लोग के विषय में उनको जानकारी हो आपने जो पराक्रम किया है उसका पता चले
4: नमस्ते सर मेरा नाम अनिमेश कुजूर है मैं 200 मीटर और 4x100 मीटर का नेशनल रिकॉर्ड होल्डर हूं एंड मैं छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं सर एंड अभी मैं उड़ीसा से खेलता हूं मैं लास्ट ईयर एशियन मेडल और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स मेडल लेके आया एंड मैं एथलेटिक्स 2021 से चालू किया जब मैं स्कूल से पास आउट हुआ मैं सैनिक स्कूल अंबिकापुर से पास आउट हूँ एंड मैं पहले फुटबॉल खेला करता था एंड मेरे पेरेंट्स कोविड के समय मुझे थोड़ी बहुत छूट देते थे कि तू जाके बाहर दौड़ ले या खेल ले तो जब कोविड ख़त्म होने लगा तो मेरे फुटबॉल के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मुझे बोला कि स्टेट मीट होने वाला है जाके तू पार्टिसिपेट कर एंड मैं पार्टिसिपेट किया एंड मुझे पता नहीं था कि वहाँ से नेशनल का सिलेक्शन है एंड मैं वहाँ से नेशनल का सिलेक्ट हुआ एंड आज मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इंटरनेशनली
3: और गुरिंदर वीर जी का क्या है
4: नमस्ते सर मेरा नाम गुरिंदर वीर है और मैं इंडियन नेवी में पैटी ऑफिसर हूँ और मैं इंडिया का सबसे तेज स्प्रिंटर हूँ अभी मैंने 100 मीटर में 10.09 का नेशनल रिकॉर्ड बनाया है और मैं पहला इंडियन हूँ जो 10.1 के बैरियर के नीचे भागा है और मैं कोशिश कर रहा हूँ मैं ट्रैक और वर्दी में भी अपने देश की सेवा करूँ मेरे फादर और मेरे ग्रैंडफादर दोनों स्पोर्ट्स करते थे तो हमारे इंडिया का कल्चर है जब भी कोई त्यौहार होता है जैसे दिवाली जैसे नया साल तो हम अपने घर की सफाई करते हैं तो मैं अपने फादर की ट्रॉफीज और मेडल्स की सफाई करता था तो मेरे को वो बहुत अच्छा लगता था मैं बहुत खुश होता था जब मैं कोई ट्रॉफी साफ करता था तो मैं पूछता था अभी ये ट्रॉफी कहाँ जीती ये मेडल कहाँ जीता ये फोटो कब की है तो फिर मेरे को वो अपनी कहानी सुनाते थे भी मैं यहाँ खेलने गया मैंने ये नेशनल मेडल जीता ये मैंने अपनी टीम को इतना जिताया तो फिर मैं भी उनको बोलता था अभी मैं भी कोई स्पोर्ट्स करनी है वो रनिंग करने जाते थे मॉर्निंग में तो मैं उनको बोलने लगा अभी मेरे को भी लेके जाया करो अपने साथ तो मेरे को लेके जाने लगे जो उन्होंने अपनी गेम स्पोर्ट्स में सीखा था तो मेरे को सिखाने लगे

0: तो मेरा इंटरेस्ट बनने लगा। मैंने यूसेन बोल्ट का वर्ल्ड रिकॉर्ड टूटता हुआ देखा। तो एक स्टोरी ऐसे फनी, मैं अभी टीवी देख रहा था तो मम्मी ने मेरे लिए टीवी बंद कर दिया, अभी अभी बेटा पढ़ने का टाइम हो गया, आप पढ़ो। तो मैं कभी ठीक, आप मेरे को टीवी नहीं देखने देते, एक दिन ऐसा आएगा आप मेरे को टीवी में ढूंढोगे भी, देखो वो गुरिंदर दौड़ रहा है। तो मेरे को भी खुशी होती है जब मेरी माँ मेरे को टीवी पे दौड़ता हुआ देखती है।
1: वाह वाह वाह, बड़े शानदार बात है भी आपकी तो।
0: हाँ जी, मिडिल क्लास फैमिली है सर। फिर मेरे फादर वो भी वॉलीबॉल खेलते थे, घर की प्रॉब्लम्स की वजह से उन्होंने अपनी स्पोर्ट्स छोड़ दी। उनका जो सपना पूरा करने वाला रह गया, तो उन्होंने मेरे अंदर वो सपना देखा भी, मेरा बेटा वो सपना पूरा करेगा। तो मैं उनसे बातें करता था, फिर सुनता था मिल्खा सिंह इतनी मेहनत करते थे, मैं उनको बोलता था मैं भी एक दिन आपका सपना पूरा करूंगा। तो बोलते सपना पूरा ऐसे नहीं होता, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। मिल्खा सिंह जी खून की उल्टियाँ करते थे, धूप में भागते थे, सारा सारा दिन ट्रेनिंग करते थे। तो वो चीज़ें मेरे को इंस्पायर करती थी, मेरे फादर मेरे को इंस्पायर करते थे कि मैं भागूंगा अपने देश के लिए मेडल लाऊं, जीतूं। और ये भी था भी जब मैंने इवेंट चूज़ किया 100 मीटर, सभी मेरे को बोलते थे भी 100 मत करो, 100 इंडियंस का इवेंट नहीं है, इंडियंस की बॉडी 100 मीटर के लिए बनी ही नहीं है। तो मैं और मेरे फादर हमेशा बोलते थे भी गुरिंदर हमने ये चूज़ किया है, हम इससे पीछे नहीं हटेंगे, जो हमें बोलते हैं अभी हम नहीं कर सकते, हम उसको करके दिखाएंगे और तू करके दिखाएगा, मुझे तेरे पे भरोसा है। तो वो भरोसा जब मेरे को मेरे फादर ने मेरे पे किया, तो मैं उस भरोसे को अपनी हिम्मत बना के मैं चला, और मैं आज हर इंडियन बोलता है भी इंडियन स्प्रिंट कर।
1: देखिए, आप दोनों ने बहुत बड़ा कमाल किया है, और सिर्फ 2 दिनों के भीतर आप दोनों ने 3 बार नेशनल रिकॉर्ड तोड़ा है 100 मीटर रेस में दौड़ना। और जैसा गुरिंदर वीर जी ने कहा कि लोग कहते हैं कि भारत के लोगों का तो बदन इस काम के लिए है ही नहीं, इतना मुश्किल होते हुए भी आपने काम किया, तो ये दोनों से मैं जानना चाहूँगा और मन की बात के श्रोता भी सुनना चाहेंगे कि कौन सा जज्बा था, क्या जीत थी, क्या सोचा था और कैसे कर रहे थे, ये कितना मुश्किल होता है।
0: जी सर, मैं गोविंदर, मैं जब स्टार्टिंग में सर बहुत स्ट्रगल था, बहुत बार डाउट भी आया कि मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही चूज़ किया, क्योंकि हर बार आप नहीं जीते, कभी कभी आप सीखते हो। जब मैं हारता था, जब मैं सही परफॉर्मेंस नहीं आती थी, कोई इंजरी आ जाती थी, तो मेरे घर वाले मेरे को सपोर्ट करते थे भी कोई नहीं, एक दिन बुरा चला गया, एक साल बुरा चला गया, तो इससे ज़िंदगी ख़राब नहीं होती, सपने देखना नहीं छोड़ते। तो मेरे कोच ने भी मेरे को ये सिखाया, अगर तू नहीं करेगा तो कोई और नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जब हमारी कम्युनिटी, हमारे आसपास के लोग हमें उत्साहित करते हैं, तो हमारा कभी वो मोटिवेशन नहीं टूटता।
1: अनिमेश जी,
2: सर, मुझे तो सारे लोग बोलते थे कि जब मैं 2021 में चालू किया एथलेटिक्स, तो मुझे बोलते थे कि देख ये नया नया फील्ड है, तू कर पाएगा कि नहीं। तो मैं बोला कि अब मैं इस फील्ड में घुसा हूँ तो करूँगा ही। मेरे पापा भी हमेशा मुझे बोलते थे कि तू इस फील्ड में घुसा है तो कभी पीछे मुड़ के देखना मत, क्योंकि सोचते तो सभी हैं कि ये करना है वो करना है, बट करके बहुत कमी दिखाते हैं। तू बस इस फील्ड में घुसा है तो इस पे अमल रहना, इस पे आगे बढ़ना, एंड देखो सारी फैसिलिटीज सब चीज़ हम लोग सपोर्ट करेंगे, फैमिली सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट, सब चीज़ हम लोग करेंगे, बस तू मेहनत कर और इंडिया को दिखा कि इंडियंस भी भाग सकते हैं। क्योंकि ये मुझे भी लोग बोलते थे कि इंडियंस की जीन्स ऐसे नहीं है कि वो sub-10 या sub-10-1 के अंदर भाग सकते हैं या कोई कोई स्प्रिंट कर सकता है, बट अभी हम दोनों ने ऐसे प्रूफ किया कि इंडियंस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड नहीं है हमारे लिए, हम भी सब कुछ कर सकते हैं। तो सर ये सारी चीज़ें मुझे बहुत मोटिवेट करती है, एंड जैसे जैसे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं हम और टाइमिंग तोड़ रहे हैं अपना, एंड बाकी इंडियंस को भी ये चीज़ दिख रहा है कि इंडियंस भी कर सकते हैं, एंड हम और करेंगे सर अभी। एंड अभी हम दोनों का सिलेक्शन कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए भी हुआ है, तो वहाँ अपकमिंग कॉम्पिटिशन में हम और अच्छा परफॉर्म करेंगे।
1: अच्छा, देखिए मेरे मन में भी एक कुतूहल है और लोगों को भी होगा। मैंने सुना है कि आप दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। आप दोनों ने कुछ ठान रखा था क्या कि तुमने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा तो मैं तेरा रिकॉर्ड तोड़ दूंगा? पहले अनिमेश बता दे।
2: सर जी, पहले रिकॉर्ड 10.18 का था जो कि मेरा ही था, एंड देन उसको गुरिंदर ने सेमीफाइनल में तोड़ दिया 10.17 करके, एंड मैंने फिर से उसको सेमीफाइनल 2 में 10.15 करके तोड़ दिया। तो उस समय जब मेरा सेमीफाइनल हुआ तो हम दोनों ही खुश थे कि हाँ चलो ठीक है, तो आज रिकॉर्ड टूटा एंड चलो हम दोनों ने तोड़ा ऐसा। क्योंकि उस समय कॉम्पिटिशन में राइवलरी रहती है, बट हम दोनों ठान के रखे थे पहले से ही कि उससे पहले हम लोग सऊदी अरेबिया भी गए थे कंपटीशन करने के लिए, तो वहाँ भी हम दोनों रूममेट थे, तो हम दोनों वहाँ भी ऐसा बात करते थे कि इंडिया के स्प्रिंटिंग को आगे लेके जाना है, एंड हमारे हाथों में है वो चीज़, हम जो करेंगे वही

0: मोटिवेट करेगा।
1: गुरिंदर वीर क्या कहना चाहेंगे?
0: तो हम दोनों ने डिसाइड किया था भी हम दोनों अच्छा भागेंगे। तो कभी भी सर एक दूसरे को ज़रूरत होती है तो एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। जैसे अभी रिकॉर्ड करने से पहले जब मैंने रिकॉर्ड किया फिर अनिमेश ने किया, तो जब हम वार्म अप कर रहे थे तो मैं अनिमेश को बता रहा था अभी अनिमेश वो ब्लॉक सही है उस पर जाके बैठ, वहाँ पर स्ट्राइड कर ले, हम वार्म अप यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर वार्म अप सही होगा। तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे की हेल्प करते हैं जब, तो दूसरा भी इम्प्रूव करता है, हम भी इम्प्रूव करते हैं। तो दोस्ती भी चाहिए सर, बट जब हम ग्राउंड के बाहर हैं, कंपटीशन के बाहर हैं, तो हम दोस्त हैं, बट जब हम ग्राउंड में चले जाते हैं तो एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो जाते हैं। तो ये होता भी, मैं इससे फास्ट भागूंगा, मैं इससे फास्ट भागूंगा।
1: देखिए, आप लोगों ने जो स्पर्धा की है ना, वो देश का मान बढ़ाने के लिए की है, देश को भविष्य में इस जगह पे पहुंचाने के लिए की है, और एक पॉजिटिव स्पिरिट से की है। और मैं मानता हूं कि आपका ये जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेलना भी है, एक दूसरे को चुनौती भी देना है, और फिर आगे निकलने के लिए प्रयास करना है, और फिर आगे जाने के लिए एक दूसरे की मदद करना है। ये अद्भुत काम किया है आप लोगों ने। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आप देश का नाम भी रोशन करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। आप ऐसे ही मेहनत करते रहिए, बहुत प्रगति होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी।
0: थैंक यू,
1: थैंक
0: सर,
1: यू सो
0: शुक्रिया
1: मच
0: आपका
1: सर।
0: सर।
1: बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है, तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं। साथियों, हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका कई बार रसोई में भी मिलता है, आपने भी देखा होगा। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है, वैसे वैसे घर की रसोई का स्वाद बदल जाता है, रसोई का प्रकार बदल जाता है, कहीं मटके का पानी निकल आता है, कहीं दही जमने लगता है, तो कहीं कच्चे आम उबलने लगते हैं, और फिर शुरू होता है देसी पेय का दौर। देसी पेय से आप भी परिचित हैं, अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो काफी जगह आपको मिलेगा आम पन्ना, कच्चे आम का स्वाद और गर्मी से राहत भी। पंजाब हरियाणा जाइए तो लस्सी मिल जाएगी, बड़े गिलास वाली लस्सी, राजस्थान और गुजरात में छाछ, जैसे हर खाने की साथी बन जाती है। और बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में सत्तू का शरबत, उसकी तो बात ही क्या है, पेट भी भरे, ताकत भी दे। कोंकण और गोवा में कोकम शरबत, सोल कढ़ी, दक्षिण भारत में पानकम, नीरमोर, सम्बारम, और ओडिशा में बेलपना। वो सिर्फ पेय नहीं, भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है, और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है, हमारे खेत खलिहान से निकली है, कोई बड़ी ब्रांडिंग नहीं है, लेकिन पीढ़ियों का अनुभव उनमें समाया हुआ है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए। साथियों, गर्मी आते ही एक और चर्चा हर घर में शुरू हो जाती है, और वो है आम। आम आम चर्चा का विषय होता है। भारत में शायद ही कोई घर होगा जहां गर्मियों में आम की बात न होती हो। हर इलाके का अपना आम, अपना स्वाद, अपनी खुशबू। महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा। वैसे लंगड़ा आम की एक खास बात होती है, पकने के बाद भी उसका रंग कई बार हरा ही रहता है। बिहार का जरदालू, जिसकी खुशबू दूर से पहचान में आ जाए। चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई हैं। दक्षिण भारत जाइए तो बंगनपल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का

हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है। और साथियों, आम की ये यात्रा अब गांव से ग्लोबल मार्केट तक भी पहुंच रही है। आज मन की बात के माध्यम से मैं आम की पैदावार से जुड़े अपने किसान भाई बहनों की प्रशंसा करूंगा। आप देश की कृषि अर्थव्यवस्था के लिए आम किसान नहीं, बहुत विशेष हैं। ऐसे ही छाए रहिए। साथियों, गर्मी के इन दिनों में ऐसे तो स्कूलों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन मैं एक ऐसे क्लास की बात करूंगा जिसमें आपका एडमिशन करने का मन कर जाएगा। साथियों, एक स्थिति की कल्पना कीजिए, एक ऐसा स्कूल जहां बच्चे भी आते हो, युवा भी और बुजुर्ग भी, जहां कोई फीस ना हो, कोई बड़ी बिल्डिंग ना हो, कोई क्लासरूम भी ना हो, और सबसे रोचक बात, वहां क्लास नदी में लगती हो। साथियों, ये कोई कहानी नहीं है, ये एक सच्चा प्रयास है। केरलम के आलुवा में साजी वला शेरिल जी ऐसा ही एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। इस प्रयास के पीछे एक पीड़ा भी छिपी है। कुछ वर्ष पहले एक नौका हादसे में कई छात्रों की मृत्यु हो गई थी। उस घटना ने साजी जी को भीतर तक झकझोर दिया। उन्होंने सोचा, अगर बच्चों को तैरना आता होता तो शायद कई जानें बच जाती। बस यहीं से शुरू हुआ उनका ये अभियान। साथियों, साजी बलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है। मेरे प्यारे देशवासियों, बीते दिनों मुझे यूरोप के नीदरलैंड जाने का अवसर मिला। वहां मैं कई मीटिंग में शामिल हुआ। इसी दौरान एक ऐसा क्षण आया जिसने हर भारतीय को गर्व से भर दिया। नीदरलैंड्स में आयोजित एक विशेष समारोह में चोला काल की प्राचीन ताम्र पट्टिकाएं भारत को वापस सौंपी गई। उस कार्यक्रम में नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री भी मौजूद थे। इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर मुझे देश विदेश से लगातार संदेश मिल रहे हैं। लोग खुशी जता रहे हैं, गर्व व्यक्त कर रहे हैं। दुनिया भर के तमिल समुदाय में भी इसे लेकर विशेष उत्साह है। साथियों, इन ताम्र पट्टिकाओं को लेकर लोगों में काफी जिज्ञासा भी है, इसलिए आज मैं इससे जुड़ी कुछ बातें आपसे साझा करना चाहता हूं। इनमें 21 बड़ी और 3 छोटी ताम्र पट्टिकाएं हैं। ये मुख्य रूप से राजा राजेंद्र चोला प्रथम द्वारा अपने पिता राजा राजराजा चोला के एक वचन को पूरा करने से जुड़ी है। इनमें आनाई मंगलम गांव को एक बौद्ध विहार को दान देने का उल्लेख है। इन ताम्र पट्टिकाओं में चोला वंश की उपलब्धियों का भी वर्णन मिलता है। इनसे पता चलता है कि चोला साम्राज्य की समुद्री शक्ति कितनी मजबूत थी। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ उनके संबंधों की जानकारी भी इनमें मिलती है। चोला साम्राज्य के समृद्ध इतिहास और संस्कृति पर हम सभी को बहुत गर्व है। साथियों, हमारी सरकार भारत की ऐसी अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। इसी क्रम में ज्ञान भारतम अभियान के तहत छत्तीसगढ़ के मल्हार में भी एक महत्वपूर्ण खोज हुई है। यहां 3 दुर्लभ ताम्र पट्टिकाएं मिली हैं। ये पांडुवंशी राजवंश के महर्षि बालार्जुन के शासनकाल से जुड़ी मानी जा रही है।

विशेषज्ञ मानते हैं कि इंस्क्रिप्शंस 6वीं-7वीं सदी के हैं, यानी 1400-1500 साल पुराने। ये ताम्र पट्टिकाएं प्राचीन ब्राह्मी लिपि और पाली भाषा में लिखी गई हैं। इनसे उस समय की शासन व्यवस्था, धर्म और संस्कृति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथियों, हम भारतीयों में खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी को लेकर हमेशा विशेष आकर्षण रहा है। हमारे देश में आज भी सदियों पुरानी ऑब्जर्वेटरीज मौजूद है। यहाँ अद्भुत मैथमेटिकल डिस्कवरीज हुई हैं। नेविगेशन हो, पंचांग हो या हमारे पर्व त्योहार, इन सब का संबंध आकाश और तारों से रहा है। हमारे यहाँ एस्ट्रोनॉमी ने हर पीढ़ी में कौतूहल जगाया है, उसे एक्सप्लोरेशन के लिए प्रेरित किया है और आज के युवाओं में भी इसे लेकर काफी उत्साह दिखाई देता है। आजकल आप भी देखते होंगे, देश भर में एस्ट्रोनॉमी क्लब्स तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। बड़े शहरों से लेकर छोटे कस्बों तक, स्कूलों से लेकर पार्कों तक इनकी गतिविधियां दिखाई देती हैं। मुझे बेंगलोर एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी के बारे में जानकारी मिली। यहाँ ऑब्जर्वेशनल सेशंस आयोजित किए जाते हैं। इस संस्था ने ग्रामीण क्षेत्रों में एस्ट्रोनॉमी को लोकप्रिय बनाने का मिशन भी शुरू किया है। खगोल मंडल नाम की टीम ने 30 घंटे का एक बहुत इनोवेटिव कोर्स शुरू किया है। साथियों, रात में तारों को निहारना अपने आप में अद्भुत अनुभव होता है। एस्ट्रो केरला नाम की एक संस्था नाइट ऑब्जर्वेशन कैंप और वर्कशॉप आयोजित करती है। यहाँ युवा साथी टेलीस्कोप बनाना और स्टार मैप्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। राजकोट के बिग बैंग एस्ट्रोनॉमी क्लब ने गिर के जंगलों से लेकर कच्छ के रण तक अनेक एस्ट्रोनॉमी इवेंट्स आयोजित किए हैं। ज्योतिर्विद्या परिसंस्था भी एस्ट्रोनॉमी के सबसे पुराने संस्थानों में से एक है। यहाँ ऑब्जर्वेशनल फैसिलिटीज के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी और टेलीस्कोप लाइब्रेरी की सुविधा भी है। मैं आईसेक का भी जिक्र करना चाहूंगा। यह एक स्टूडेंट लेड नेशन वाइड नेटवर्क है जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोफिजिक्स क्लब को आपस में जोड़ता है। साथियों, अपनी हॉबी के लिए समय निकालना और लगातार कुछ नया सीखते रहना बहुत जरूरी है। मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि वे किसी एस्ट्रोनॉमी क्लब से जरूर जुड़े और इन छुट्टियों में किसी प्लेनेटेरियम को भी जरूर देखने जाए। साथियों, मन की बात कार्यक्रम को जो लोग टीवी पर देख रहे हैं, मैं उनसे कहूंगा एक वीडियो जरूर देखिएगा। ये वीडियो पिछले दिनों बहुत चर्चा में रहा। इसमें कुछ लोग बहुत धैर्य से, बहुत सावधानी से एक गंगा डॉल्फिन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, इस पूरे प्रयास में करीब 13 घंटे लगे और आखिरकार वो डॉल्फिन बच गई। साथियों, इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही भारत की पहली गंगा डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस की। ये घटना उत्तर प्रदेश की है। वहाँ एक गंगा डॉल्फिन नहर में फंस गई थी। ऐसे समय में नमामि गंगे अभियान के तहत बनी ये एम्बुलेंस उसके लिए उम्मीद बनकर पहुंची। फिर बहुत सावधानी से उसे बाहर निकाला गया, उसकी जांच की गई, उसका इलाज किया गया और उसके बाद उसे सुरक्षित राप्ती नदी में छोड़ दिया गया। एक तरह से कहें तो एक जीवन फिर अपने घर लौट गया। साथियों, ये डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस

बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था है, ऑक्सीजन की सुविधा है, विशेष स्ट्रेचर है, बचाव के उपकरण है। यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती है। साथियों, जब हम गंगा डॉल्फिन को बचाते हैं तो हम सिर्फ एक प्रजाति को नहीं बचाते, हम गंगा की जैव विविधता को बचाते हैं, नदी के पूरे जीवन तंत्र को बचाते हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रकृति की एक अमूल्य धरोहर भी बचाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आप में से बहुत लोगों की नदी, तालाब और कुएं के पानी से जुड़ी यादें जरूर होगी। किसी को तालाब में तैरना याद होगा, किसी को दोस्तों के साथ तालाब किनारे खेलना, किसी को उस मिट्टी की खुशबू याद होगी। बचपन की ऐसी यादें जीवन भर मन में बसी रहती है। साथियों, ऐसी ही यादों को बचाने की एक प्रेरक गाथा उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से सामने आई है। बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे, क्योंकि जिस नदी को उन्होंने बचपन में साफ और जीवन देखा था, समय के साथ उस नदी में प्लास्टिक जमा होने लगा था, गंदगी बढ़ती चली जा रही थी। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। शिकायत नहीं, शुरुआत मंत्र बन गया। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया, सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे, प्लास्टिक और कचरा बाहर लाते थे। कई बार एक दिन में 50-60 किलो तक कचरा नदी से निकाला गया। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया, लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी। साथियों, ऐसी ही एक प्रेरक कहानी गोवा से भी सामने आई है। गोवा के बाल कृष्ण अय्या जी रिटायर्ड टीचर है, लेकिन समाज के लिए काम करने का उनका उत्साह आज भी वैसा ही है। उन्हें मड्डी तोलाब इलाके में पानी की समस्या बहुत परेशान करती थी, उन्होंने भी समाधान के लिए काम शुरू किया। बालकृष्ण जी ने पाइपलाइन बिछाने के काम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इससे कई घरों तक पानी पहुंचा। जिन परिवारों को पानी के लिए रोज संघर्ष करना पड़ता था, उनके लिए यह बहुत बड़ी राहत बनी। साथियों, पिछले महीने मुझे एक बहुत अच्छा अनुभव हुआ, इसका संबंध मन की बात से भी जुड़ा है, इसलिए आज मैं इसकी चर्चा आपसे करना चाहता हूँ। तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। साथियों, गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है। उन्होंने मन की बात से प्रेरणा लेकर देश के अनेक सैनिकों के लिए योगदान का संकल्प लिया। इसके लिए उन्होंने अपने सभी स्कूलों के स्टूडेंट्स को प्रेरित किया। उन्होंने बच्चों से कहा कि वे वीर जवानों के लिए हर दिन 1 रुपया योगदान दे, यानी 1 साल में हर स्टूडेंट की ओर से 365 रुपये जमा हुए। इस छोटे छोटे योगदान से करीब 40 लाख रुपये इकट्ठा हुए। गिरिजा अम्मा जी ने इस पूरी राशि का चेक मुझे सौंपा। उनसे बातचीत के दौरान मैंने महसूस

0: कि माँ भारती के प्रति उनका समर्पण कितना गहरा है। पिछले वर्ष ही चेन्नई के पहले हिंदू विद्यालय ने अपने 50 वर्ष पूरे किए हैं। देश की शिक्षा और सांस्कृतिक गौरव को आगे बढ़ाने में स्कूल नेटवर्क की भूमिका बहुत प्रशंसनीय है। मैं इससे जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उन स्टूडेंट्स की भी विशेष सराहना करता हूँ जिन्होंने अपने वीर सैनिकों के लिए योगदान दिया। साथियों, भारत के हर गांव में, हर शहर में कुछ न कुछ ऐसा हो रहा है जो हमें प्रेरणा देता है। कई बार इन प्रयासों की ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जब हम इन्हें जानते हैं तो ये विश्वास और मजबूत होता है कि देश अपने लोगों की शक्ति से आगे बढ़ रहा है। मेरा आपसे आग्रह है, अपने आसपास के ऐसे प्रयासों को जरूर देखिए। जो लोग समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पहचानिए, उनकी सराहना कीजिए, उनसे सीखिए और हो सके तो खुद भी किसी अच्छे काम से जुड़िए। अगले महीने मन की बात में कुछ और प्रेरक गाथाओं के साथ मैं फिर आपसे जुड़ूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह संयुज्य अहम् अत्यन्तम् आनन्दितः अस्मि। देशस्य विभिन्नेषु भागेषु अस्माकं देशवासिनः देशहिते समाजहिते च एतादृशानि अद्भुतानि कार्याणि कुर्वन्तः सन्ति। वयं च यदा तद्विहितानां कार्याणां विषये शृणुमः तदा वयं नूतनां प्रेरणां प्राप्नुमः। अद्य कार्यक्रमस्य आरम्भम् अहम् एथलेटिक्स इत्येतस्मिन् क्रीडाक्षेत्रे देशस्य अनयैव उपलब्ध्या करिष्यामि। कतिपयेभ्यः दिनेभ्यः पूर्वमेव झारखण्ड राज्यस्य रांची नगरे नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन इत्याख्या प्रतियोगिता समायोजिता। एतस्यां प्रतियोगितायां देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः आगताः प्रायः 800 क्रीडकाः सहभागितां कृतवन्तः। एतस्मिन् नवधौ भिन्नासु चतुर्षु स्पर्धासु चत्वारि राष्ट्रिय मानाङ्कनानि भग्नानि जातानि। गुरिन्दर वीर सिंहः, विशाल टीके इत्यसौ, तेजस्विन शंकरः, देवमीना, कुलदीप कुमारश्च एतैः मित्रैः विभिन्नेषु वर्गेषु नूतनानि कीर्तिमानानि रचितानि। सर्वप्रथमम् अहम् एतान् सर्वानपि भूरिशः वर्धापयामि। सखायः, एकस्याः स्पर्धायाः अधिदेशं बहु चर्चा जायमान अस्ति। सा च अस्ति शत मीटर मित धावन स्पर्धा इत्येषा, अर्थात् शत मीटर मितः धावनक्रमः। केवलं दिनद्वये पुरुषवर्गीये शत मीटर मिते धावनक्रमे राष्ट्रिय मानाङ्कनं वारत्रयं भग्नं जातम्। याभ्यां क्रीडकाभ्यां एतत् भद्र प्रदर्शनं कृतं तौस्तः गुरिन्दर वीर सिंहः, अनिमेष कुजूरश्च। अहं चिन्तितवान् ऐषमः मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे एताभ्यां क्रीडकाभ्यां सह वार्तां कुर्याम्। प्रधानमन्त्री, अनिमेषवर्य नमस्कारः। गुरिन्दर वीरः भवतेपि नमस्कारः। सत् श्री अकाल च। अनिमेष गुरिन्दर वीरौ नमस्कारः श्रीमन्। नमस्कारः महोदय। प्रधानमन्त्री, साधु भ्रातः, भवता तु अतिविशिष्टा उपलब्धिः समधिगतास्ति। भवद् युगलमपि विशेष प्रदर्शनमकरोत्। वयं सङ्गीते तु युगल

0: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपका पत्र मिला। प्रस्तुति मिथिलेश श्रीवास्तव की, प्रस्तुति सहयोग गजेंद्र यादव का।
1: नमस्कार श्रोताओं, आपका पत्र मिला में आप सभी का स्वागत है और स्टूडियो में स्वागत है मिथिलेश श्रीवास्तव जी आपका। आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार गजेंद्र जी, सभी श्रोताओं को भी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। खैर मकदम, और कैसे हैं आपके मिजाज?
1: हमारे मिजाज तो जैसा कि आपके मिजाज भी दिखाई दे रहे हैं, अभी दो दिन पहले हल्की फुल्की ठंडक आई है ना बरेली के आसपास, तो सबके हाल बढ़िया होंगे।
2: और करीब 10 बजे रात में सबके स्मार्टफोन पे मोबाइल पे एक अलर्ट मैसेज आया,
1: इसे सेल्फ ब्रॉडकास्ट कहते हैं। और ये जो सेल्फ ब्रॉडकास्ट है, किसी भी इमरजेंसी स्थिति में, आपदा की स्थिति में, सरकार की ओर से जो दूर संचार है उसकी ओर से सबको मैसेज जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और तो हमारे जो जितने भी श्रोता सुन रहे हैं वो भी इस विषय पर जागरूक होंगे, और ये जो सूचना और जानकारी आप तक पहुंचती है, संदेश पहुंचता है, ये ऑथेंटिकेट होता है, मतलब कि पूरी तरह से प्रमाणित होता है।
2: मौसम विभाग अच्छी तरह से जांच करता है। और पहले तो कई बार मतलब ये फ्लोट करता था कि मौसम विभाग अगर कहे कि बारिश होनी है तो बारिश नहीं होगी, और कहता है नहीं होगी तो होगी। लेकिन पिछले कई सालों से बहुत कुछ एक्यूरेसी बेहतर हुई है हमारा, तो उसमें क्या है कि जो कहा जा रहा है वैसा होता है। हो सकता है थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ये अच्छा है ना कि हम पहले से अलर्ट हो जाए।
1: वेदर फोरकास्ट के जो नए उपकरण आए हैं और जिसमें

0: पूर्वानुमानों में सटीकता आई है
1: हाँ।
0: और मुझे लगता है कि
1: अरे
0: तीव्रता
1: ऊपर,
0: भी आई है।
1: अरे ऊपर जो है, अगर आप गूगल अर्थ जो होता है, गूगल अर्थ या फिर और भी कई सारे एप्स हैं, उनके जरिए अगर आप अंतरिक्ष से पृथ्वी की फोटो लें, आजकल
0: बिल्कुल
1: पहले तो फोटो थी पृथ्वी की
0: जी
1: साफ दिखता था, अभी सड़कों से ज्यादा ऊपर ट्रैफिक है,
0: बिल्कुल
1: इतने सैटेलाइट भरे पड़े हैं
0: जी,
1: पूरी धरती के चारों तरफ भरे पड़े सैटेलाइट,
0: बिल्कुल।
1: तो ये एक्यूरेसी तो होनी लाजमी सी बात है, बस ये है कि हम भारत के लोग ज्यादा एक्यूरेट हैं तो और अच्छा है।
0: मित्रेश जी, हमारी भारत सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है कि
1: हाँ।
0: अंतरिक्ष में मौसम का पूर्वानुमान और बहुत सारी GPS नेविगेशन जो है
1: हाँ।
0: वो हमारा अपना हो, और इसलिए हमारे कई सारे ऐसे उपग्रह, ऐसे सैटेलाइट हैं
1: हाँ।
0: जो काम कर रहे हैं।
1: काम कर रहे बिल्कुल। तो और अब उसमें बात यह है कि सारी चीजें, सारी सूचनाएं हाईटेक हो जाएं, अलर्ट हम लोग समय से कर दें,
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जो नागरिक हैं वही अरे सब फालतू है भैया, चलो घूमने आते हैं।
0: और फिर एक बात, इतनी तेज रात में 2 बजे पे पे पे पे कर
1: हाँ,
0: रहा था, सर में दर्द होने लगा।
1: सर
0: हालांकि
1: में
0: वो अपनी
1: पता चला कोई बाहर जो है खाट बिछा के आराम से सो रहा है, अरे क्या पियाने लग रहा तेरी, है ना। और हम लोग जो है आकाशवाणी या दूसरे माध्यमों पे जो भी जागरूकता के संदेश प्रसारित किए जाते हैं कि भाई इस तरह के मौसम में पेड़ से दूर रहिए,
0: जी
1: तो ये सब चीजें बहुत गंभीरता से फॉलो करने वाली हैं।
0: बिल्कुल।
1: खैर बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं,
0: हाँ,
1: तो
0: ये तो है।
1: उसकी बजाय हम लोग सीधे पत्र पे आते हैं।
0: एक बेहतरीन ईमेल से शुरुआत कर रहे हैं।
1: हाँ हाँ जरूर।
0: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
1: क्या बात है, क्या बात है। बशीर बद्र साहब, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ है, 28 मई को।
0: जी,
1: तो कौन है ये श्रोता, क्या लिख
0: हमारे
1: रहे
0: ये
1: हैं?
0: श्रोता, इनके नाम तो बाद में पढ़ेंगे, एक और
1: हाँ,
0: शेर है इनका,
1: हाँ, हाँ,
0: ये भी पढ़ लेते हैं
1: जरूर।
0: कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, और दिल से जो उतर जाए वो अपना नहीं होता।
1: क्या बात, बिल्कुल। कोई दिल से उतरा है क्या?
0: आगे बढ़ते हैं, इनका आगे का मजमून पढ़ते हैं।
1: अच्छा,
0: लिखते हैं कि आकाशवाणी बरेली केंद्र से सभी कार्यक्रम लाजवाब चल रहे हैं और हमें आपके केंद्र से कोई भी शिकायत नहीं है।
1: क्या बात है, 100% मार्क्स मिल गया हम लोगों को।
0: आप सभी श्रोताओं के लिए बहुत मेहनत और लगन से बेहतरीन कार्यक्रम प्रस्तुत कर रहे हैं, और जिसके लिए पूरी टीम को भाई बधाई तो बनती है।
1: शुक्रिया आपका।
0: 28 मई का इन्होंने किसान वाणी कार्यक्रम सुना, इन्हें बहुत अच्छा लगा। मोटे अनाज के ऊपर की गई बातचीत और एकराम भैया द्वारा दी गई जानकारी बहुत उपयोगी लगी। 27 मई का नारी संसार कार्यक्रम, साफ सफाई के विषय पर बहुत अच्छी चर्चा हुई, यह कार्यक्रम समाज को जागरूक करने वाला लगा। 26 मई का आपकी बात आकाशवाणी के साथ विशेष विषय पर आधारित कार्यक्रम लाजवाब रहा, प्रस्तुतिकरण भी शानदार था। 26 मई का हेलो किसान कार्यक्रम सुना, गर्मियों में दुधारू पशुओं की देखभाल कैसे करें, इस विषय पर बहुत अच्छे अंदाज में जानकारी दी गई। 24 का जरा याद करो कार्यक्रम सुना, जिसमें पूर्व कार्यक्रम अधिशासी श्री MR यदुवंशी जी से बातचीत की गई थी, मित्री श्रीवास्तव जी ने बातचीत की
1: जी, जी,
0: और ये कार्यक्रम बहुत अच्छा लगा, पुरानी यादें भी ताजा हो
1: तो
0: गई।
1: जो 15 मिनट का प्रोग्राम था YouTube पे पूरा 1 घंटे का डाला गया है, वो भी देखिएगा आप लोग। आप सभी श्रोताओं से मैं बता रहा हूँ कि 15 मिनट का वो प्रोग्राम था, लेकिन यदुवंशी सर आए थे तो मतलब यहाँ उन्होंने काम किया तो हर जगह से उनका कितना जुड़ाव था उसके बारे में भी उन्होंने बताया है, और दूसरे आकाशवाणी के केंद्रों पर भी जो उन्होंने काम किया है, अंडमान निकोबार में पहली पोस्टिंग थी उनकी, उसके बारे में भी बहुत कुछ बताया है। तो आप YouTube पे आप पूरी बातचीत भी आप सुन सकते हैं, देख भी सकते हैं।
0: बिल्कुल। आगे लिखते हैं कि 24 तारीख का आपका पत्र मिला, कार्यक्रम सुना इन्होंने, जिसमें हमारे ईमेल को शामिल किया गया था।
1: जी जी।
0: बड़े अच्छे अंदाज में हमारे ईमेल को पढ़ा गया और सुंदर जवाब भी दिए गए मिथिलेश सर के द्वारा, हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। 29 तारीख को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे कार्यक्रम सुना, इनको बहुत अच्छा लगा और दिन ब दिन बेहतर गुणवत्ता के साथ ये कार्यक्रम हम तक पहुंच रहा है, पूरी टीम को हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप सभी हमारे लिए बेहतर से बेहतरीन कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी शिकायत है गजेंद्र जी से।
1: क्या है बताइए।
0: ये जितनी तारीफ लिखता हूँ उस हिस्से को अक्सर पढ़ा नहीं जाता, जिसमें हमें थोड़ा बुरा लगता है। हमारी दिली इच्छा रहती है कि कार्यक्रम की तारीफ और श्रोताओं की भावनाओं को भी कार्यक्रम में स्थान मिले।
1: तो ये देखिए, तारीफ तो आदमी अपनी तारीफ खुद ही कैसे पढ़े, है ना,
0: ये संकोच लगता है,
1: ये मुश्किल रहती है। तो अच्छा, अगली बार हम ये करेंगे कि जब आपकी तारीफ लिखी हुई होगी
0: हाँ।
1: आप मुझे दे दीजिएगा, मैं पढ़ दूंगा, तब जो श्रोता हैं शायद थोड़ी उनको खुशी मिले।
0: हमारे श्रोता ही तारीफ के काबिल हैं, अगर श्रोताओं की तारीफ है तो हमारी तारीफ।
1: बिल्कुल सही बात है। हाँ। और ये भी बात है ना कि अब 30 मिनट का समय होता, 30 भी नहीं 29 ही मान लीजिए
0: हाँ।
1: तो हमको, हमारी कोशिश होती है कि ज्यादा से ज्यादा श्रोताओं की बात शामिल
0: की जाए।
1: हाँ, तो बस एक ही बात, रिपीटेशन, क्योंकि काम जो है बड़े

0: जो हो जाते
1: आत्ममुग्धता की जो है कानों में एकदम मिश्री घुली हुई है कि अरे भाई तारीफ तो बहुत मिल रही है। हाँ, लेकिन एक दो लोग होंगे शिकायत वो भी अभी
0: आएगा सामने, क्यों नहीं है? इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जिसको किसी से शिकायत ना हो और जिससे किसी को शिकायत ना हो, ऐसा कोई है क्या?
1: जी बिल्कुल कोई नहीं है, वो तो भगवान जी को भी लोग शिकायत बिल्कुल करते ही रहते हैं हर
0: तो चीज़। इससे पहले कि हम इनके नाम ना शामिल करेंगे तो ये भी शिकायत करेंगे।
1: हाँ,
0: तो नाम शामिल कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: एकता क्लब सिंधौली मीरगंज बरेली से इमरान शेख, जीशान वारसी, मोहम्मद सोहेल काशीपुर से हैं, अयूब खान साहब करोला मुरादाबाद से हैं।
1: अच्छा,
0: आगे बढ़े
1: जी जरूर।
0: अगला ईमेल पढ़ते हैं और आप हैं विनेश कुमार जी, कहाँ से हैं आप? निकट बैंक सेंटर चनेटी बरेली से हैं।
1: हाँ,
0: हाँ। आगे लिखते हैं कि प्रस्तुतकर्ताओं को सप्रेम नमस्कार।
1: नमस्कार
0: सप्रेम। इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है, इस नौतपा से राहत पाने के लिए हल्के और सफेद रंग के सूती कपड़े पहनना फायदेमंद है।
1: हाँ,
0: पानी ज्यादा पिए। हाँ। अगर बहुत जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले, वो भी सिर ढक कर। आपका पत्र मिला मई के प्रोग्राम में, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हुए, 24 मई की बात करते हैं, बहुत अच्छी एडिटिंग करते हुए मेरा मेल पढ़ा गया, इसके लिए शुक्रिया। फिल्मी फ्राइडे की शिकायत से जो उत्तर है उससे संतुष्टि नहीं मिली हमें।
1: अच्छा।
0: संतुष्टि इन्हें नहीं मिली। आप कहते हैं कि आप हैं तो हमें, वरना कहां में इतना दम है। बिल्कुल सही है, अगर एक श्रोता भी कम है फिर भी हम में बहुत दम है।
1: अरे नहीं ऐसा मत कहिए, एक श्रोता हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्या बात कर रहे हैं आप। और आप उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, हम आपसे माफी मांगते हैं।
0: बिल्कुल, क्षमा तो हम बहुत जल्दी मांगते हैं, क्योंकि देखिए क्षमा जैसा गहना जिसके पास है, मुझे लगता है कि उसे अपने जीवन में सुधारों का कई मौका मिलता है।
1: जी बिल्कुल,
0: है ना। हाँ। और इससे ज्यादा बड़ी बात क्या होगी, मुझे लग रहा है इन्होंने अभी तक क्षमा नहीं किया है।
1: अगर कोई गलती भी हुई है हमारी तरफ से तो उसके लिए माफी हमें दीजिए और दोबारा आप कोशिश करिए, हम गलती सुधारेंगे।
0: अच्छा, पिछले 2-3 कार्यक्रमों से लगातार इनकी उसी बात को लेकर जबकि अपनी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है।
1: कोई ऐसा, देखिए राग द्वेष इन सबसे परे है, हम क्या है इसमें। अब कोई भी श्रोता फिल्म फ्राइडे में उसमें इनबॉक्स में जाएंगे और जो भी आएगा आंसर उसमें करेंगे।
0: बिल्कुल।
1: और उसमें कोई मॉनेटरी भी लाभ नहीं मिलना है,
0: नहीं।
1: तो हम क्यों इस तरह का। तो अब उसमें क्या है कि अब जैसे आपने जो मैसेज किया था उसमें आपका रिप्लाई भी गया था।
0: बिल्कुल।
1: नहीं वो, हाँ हाँ हाँ, वो ऑटो है
0: जी,
1: जो आपने आंसर दिया था उसका ऑटोमेटिक वो रिप्लाई रिस्पांस चला जाता है, तो आपके पास चला गया। उसके बाद फिर आपने जो रिप्लाई किया था तो शायद उस चक्कर में।
0: अच्छा, एक चीज और भी है मित्र जी, जैसा कि पिछली बार हमने बताया था।
1: हाँ, हाँ,
0: इनका मैसेज रात में 10 बजे के आसपास मिला था।
1: हाँ, हाँ,
0: ऑटोमेटिक रिस्पांस चला गया। इसके बाद इनको कुछ भी टाइप नहीं करना था।
1: हाँ,
0: उसके बाद इन्होंने 2 बार टाइप किया मोहम्मद रफी, मोहम्मद रफी।
1: हाँ,
0: अब जब प्रीव्यू में हम देखेंगे
1: तो बाद वाला दिखेगा। बात दरअसल ये हो गई, अब आप ये ध्यान रखिएगा कि एक रिप्लाई जो, एक आंसर जो आप टाइप करें बस
0: वही लास्ट वाला माना जाता है।
1: हाँ, उस नहीं तो लास्ट वाले में फिर ये कह रहे हैं कि लास्ट में तो मैंने, हाँ लास्ट वाला फिर तो फिर वो रफी का कर दिया इन्होंने। तो वही बात है, जैसे हम लोग जो है एग्जाम में, जैसे मैं खुद एग्जाम देख पास करके यहाँ बैठा हूँ, तो एग्जाम में हम लोग आंसर शीट भरना होता है पेंसिल से, उसको रंगना होता है, 4 विकल्प होते हैं, तो शुरू में लगा हाँ ये वाला सही है, उसको भर दिया और फिर लगा नहीं यार ये नहीं सही हो, लगता है ये सही है, तो उसको भी हमने कर दिया काला और पुराना वाला मिटाना भूल गए। तब तो जो पूरा क्वेश्चन का नंबर ही गया, फिर तो एक नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर जो भी होगा गया वो नंबर।
0: जी बिल्कुल।
1: तो वैसे ही हमारी जिंदगी में भी है कि भाई आपका जो आंसर है, और इसमें तो है आप मिटा नहीं सकते हैं,
0: नहीं,
1: एक बार जो आपने भेज दिया वो मिटेगा ही नहीं।
0: बिल्कुल।
1: तो सोच समझ के आंसर दीजिए, और क्योंकि उसके बाद और लास्ट वाला ही आपका आंसर माना जाएगा, आपने यही दिया है।
0: अच्छा, कई बार मित्र जी
1: हमने मान ली, हाँ वही आंसर वाला बता रहा हूँ, हमने पुराना वाला मिटा के,
0: हाँ,
1: मिटा दिया, नया वाला हमने छोड़ दिया, तो मेरा जो आंसर जो मैंने मार्क किया वही माना जाएगा। अब हो सकता है गलत हो।
0: बिल्कुल।
1: ऐसा थोड़ी क्या, नहीं नहीं इसने तो सही दिया है ये।
0: अच्छा, दूसरा एक चीज और भी है कि कार्यक्रम ये तो आज के श्रोता नहीं है, जब से फिल्मी फ्राइडे शुरू हुआ है तब से कार्यक्रम में प्रतिभाग भी कर रहे हैं और बाकायदा कार्यक्रम सुनते हैं, और ऐसा नहीं है, हमारी हमेशा तारीफ ही की है, फिल्मी फ्राइडे की हमेशा तारीफ करते हैं ये। और तो इन्होंने ये सोच कैसे लिया,
1: कोई बात नहीं है, उन्होंने एक स्माइली भी भेजा है।
0: हाँ, ये भी सही है,
1: सिर्फ स्माइली ही जो भेजा है उन्होंने, उनके दिल की बहुत सारी भावनाओं को कह रही है।
0: बिल्कुल। तो आगे लिखते हुए कहते हैं, 28 मई को नीतू जी की प्रस्तुति में ढेर सारे कमेंट पड़े गए आपके प्रसन्न कार्यक्रम में, बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, नौतपा में झुमका गिरारे में लोगों से की गई जो बातचीत थी वो भी अच्छी थी, 27 मई को हरीश जी के साथ आपकी पसंद कार्यक्रम बहुत बहुत अच्छा रहा।
1: क्या बात है?
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, आपको गर्मी ज्यादा सताती है या महंगाई? ये तो टक से लगने वाला विषय था, क्योंकि दोनों ही मुश्किल बना देती हैं जिंदगी को।
1: हालांकि ज्यादातर

0: श्रोताओं के जो कमेंट्स थे
1: वो
0: वो यही थे, भाई गर्मी के मौसम में गर्मी नहीं लगेगी,
1: हाँ
0: महंगाई है
1: महंगाई है बिल्कुल।
0: जो ज्यादा परेशान कर
1: अच्छा
0: रही
1: एक चीज और भी है, वो ये कहते हैं कि गर्मी के मौसम को गर्मी का असर कम करने के लिए अगर महंगाई कम है तो कूलर खरीद लेंगे, पंखे खरीद लेंगे।
0: मेरा एक मित्र है,
1: जी
0: तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग बात है।
1: जी
0: उसने कहा कि मुझे एक बार चोट लग गई थी पैर में, ठीक है, बहुत दर्द कर रहा था, बहुत दर्द कर रहा था। तो किसी ने कहा कि, मैंने कहा कि अरे इसका क्या इलाज किया है, तो
1: जी
0: उसके एक दूसरे मित्र ने कहा ये उंगली लो और दरवाजा जो है उसमें दबा लो,
1: हाँ
0: तो जो तो दर्द है तुम्हारा कम हो जाएगा, तो
1: और
0: दर्द
1: ये
0: इस पे शिफ्ट हो जाएगा।
1: जी
0: तो वही चीज है, गर्मी से आदमी परेशान है उसमें महंगाई, तो जो पूरा ध्यान है महंगाई पे शिफ्ट हो जाएगा, या
1: बिल्कुल
0: महंगाई से परेशान है तो
1: तो
0: गर्मी
1: गर्मी
0: तो खैर नेचुरल है।
1: जी जी बिल्कुल।
0: हाँ
1: अच्छा इन्होंने अगला जो जिक्र किया है वो 26 मई का किया है,
0: हाँ हाँ
1: आपकी पसंद कार्यक्रम परवेज जी ने पेश किया था, इनको बहुत अच्छा लगा।
0: हाँ
1: ग्राम जगत में बैंक सखी किरण जी से पूनम जी की बातचीत ज्ञानवर्धक थी। 25 मई को आपकी बात आकाशवाणी के साथ में, पुराने जमाने की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा मिस करती है, ये विषय अच्छा था, लोगों की भावनाएं भी बहुत अच्छी थी, साथ ही परवेज जी की प्रस्तुति शानदार रही। 24 मई को युववाणी में पत्रकारिता पर बातचीत की और मुझे याद है जरा जरा में मिथिलेश जी की यदुवंशी जी से बातचीत काफी अच्छी थी, इंटरेस्टिंग
0: शुक्रिया।
1: थी, और अंकुर में एटीएम कार्ड के संबंध में जो जानकारी दी गई वो बहुत ही अच्छी लगी। बरेली जिले के ऐतिहासिक जगह के बारे में जानकारी दी गई, ये भी अच्छा था कार्यक्रम। शानदार प्रस्तुति देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई और शुभकामनाएं।
0: आपको भी धन्यवाद, बधाई और शुभकामनाएं, और माफी भी दे दीजिएगा।
1: बिल्कुल।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप।
1: अच्छा मिथिलेश जी अब आगे बढ़ते हैं, खुर्जा चलते हैं
0: हाँ हाँ जरूर।
1: और वहां से तिलक राज अरोड़ा जी कार्यक्रम के बारे में कह रहे हैं।
0: क्या कह रहे हैं?
1: सप्रेम नमस्ते जी,
0: नमस्ते।
1: रेडियो के दीवाने कार्यक्रम में श्रोता साथियों के शुभकामना संदेश बेहद पसंद आ रहे हैं।
0: क्या बात है।
1: इस तरह का कार्यक्रम आकाशवाणी बरेली से ही सुनने को मिल रहा है। 22 मई को कार्यक्रम आपकी बात में शिप्रा जी ने फाटक बंद होने पर बाइक निकाली है,
0: हाँ।
1: इस विषय पर श्रोता साथियों से बातचीत की सराहनीय योग्य थी,
0: क्या बात है,
1: कार्यक्रम का विषय पसंद आया।
0: बहुत शुक्रिया।
1: 22 मई को इन्होंने फिल्मी फ्राइडे सुना, कार्यक्रम इनको अच्छा लगा। 23 मई का सुबह की सभा में नमस्ते बरेली लोकगीत सब रंग आपकी पसंद और अनुरोध गीत कार्यक्रम देवेंद्र रावत जी ने पेश किए, सुनकर दिल खुशी से झूम उठा।
0: क्या बात।
1: और 24 मई का आपका पत्र मिला, मिथिलेश जी ने जो जवाब दिए वो बहुत प्यारे जवाब थे, सुंदर आवाजों के साथ कार्यक्रम सुना, पसंद आया।
0: थैंक यू।
1: और कार्यक्रम में श्रोता साथियों के जो ईमेल पढ़े गए बड़े प्यार से पढ़े गए, सम्मान सहित आप हमेशा उत्तर देते हैं। कार्यक्रम नमस्ते बरेली लोकगीत रस रंग भजन संध्या अंकुर आपकी पसंद अनुरोध गीत आपकी बात संजय जी हरीश जी और शिप्रा मिश्रा जी नाजमा जी नेमचंद भैया रोचना मिश्रा सुदेश कुमार सैनिक जी परवेश जी देवेंद्र रावत जी ब्रजेश तिवारी जी नीतू त्रिपाठी जी, इन सभी की जो प्रस्तुतियां रही बहुत अच्छी लगी और कार्यक्रम सभी पसंद आए।
0: क्या बात है।
1: आपकी बात की विषय के लिए एक विषय इन्होंने सुझाया है, जीवन में भलाई का काम किया है जिस पर आपको गर्व हो शामिल कीजिएगा।
0: आपने अपने जीवन
1: जीवन
0: में
1: में कोई
0: भलाई
1: भलाई का
0: का
1: काम किया
0: कोई
1: है
0: किसी की
1: जिस पर
0: भलाई
1: आपको गर्व
0: गर्व
1: हो।
0: बिल्कुल, इसको शामिल कर लेंगे, हम जल्द ही शामिल करेंगे इस विषय को।
1: बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि इन जो हमारे श्रोता हैं जिनका ये ईमेल हमें मिला था इनका जो विषय है ये अगले किसी कार्यक्रम में
0: हाँ,
1: मिलेगा।
0: आपकी बात आकाशवाणी के साथ में अब आज ही शाम में शामिल कर लेंगे,
1: जी बिल्कुल।
0: कोई दिक्कत नहीं।
1: तो अब आगे बढ़ेंगे,
0: हाँ जरूर।
1: अनोखे लाल जी अपना ईमेल भेजे हैं हमें और आपने ये कटरा चांद खा पुराना शहर बरेली से भेजा है।
0: क्या लिखते हैं।
1: आपका पत्र मिला, कार्यक्रम पेश करने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: शुक्रवार दोपहर 1 बजे इन्होंने अनुरोध गीत सुना, गाने बड़े अच्छे सुनवाए गए थे। इसी दिन शाम को लकी 3 कार्यक्रम सुना 5:30 पर और शिप्रा मिश्रा जी ने कार्यक्रम पेश किया था, बहुत अच्छा लगा, गाने बहुत अच्छे थे। शनिवार को 5:30 बजे शाम को हेलो बरेली कार्यक्रम इन्होंने सुना,
0: उस दिन लकी 3 नहीं लकी 2 था,
1: लकी 2 था।
0: ये इन्होंने नहीं लिखा है,
1: जी जी
0: दो ही श्रोताओं को शामिल किया गया क्योंकि एक रिले चल रहा था।
1: जी तो देवेंद्र रावत जी के साथ इन्होंने हेलो बरेली कार्यक्रम सुना। रविवार को 8:15 पर सुबह अंकुर कार्यक्रम सुनवा नेमचंद भैया नाजमा दीदी के साथ, बच्चों की जो बातें थी अच्छी लगी, हेलो अंकुर कार्यक्रम भी पेश किया गया और बच्चों की आवाजें सुनवाई गई, उनसे बातचीत सुनवाई गई, बेहद अच्छी लगी। सोमवार को इन्होंने सुबह 8:15 पर नमस्ते बरेली कार्यक्रम सुना जो इनको बहुत पसंद आया, बरेली शहर के बारे में गतिविधियों के बारे में जो बातचीत की गई थी वो अच्छी थी। और इसी दिन शाम को 4 बजे आपकी बात आकाशवाणी के साथ, इसमें जो जानकारी दी गई और जो गाने सुनवाए गए थे ये भी इनको बहुत अच्छे लगे। शाम को 7:41 31 मिनट पर अनुरोध गीत कार्यक्रम इसी दिन उन्होंने सुना जो परवेज जी ने पेश किया था, वो अच्छा लगा। और सुबह मंगलवार को 10 बजे आपकी पसंद

0: कार्यक्रम भी बहुत सारे दोस्तों के कमेंट के साथ पेश किया गया। इन सभी कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: आपका भी धन्यवाद। और अगले पत्र में थोड़ा डिटेल्स भी लिखिएगा, जैसे दूसरे श्रोता लिख रहे हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ आपको अच्छा लगा, तो कौन से दिन वाला और विषय क्या था उसका, वो विषय क्यों अच्छा लगा आपको,
0: जी,
1: ये बातें भी लिखिए। और बहुत शुक्रिया आपका।
0: अगला जो ईमेल है वो हमें गांव डंडी, तहसील भद्रवाह, जिला डोडा, जम्मू कश्मीर से मिला है।
1: क्या बात
0: और
1: है,
0: हमारे ये जो साथी हैं पुरुषोत्तम कुमार
1: नाम
0: चांडक
1: सुनते ही
0: जी,
1: थोड़ी सी गर्मी में राहत महसूस हो रही है।
0: हाँ लेकिन अभी तो कुछ हद
1: हाँ
0: तक हम लोग तो ठंडक के साए में हैं,
1: हाँ हाँ
0: है ना।
1: बिल्कुल, हाँ
0: ये अलग बात है कि दिन ब दिन ऊष्मा बढ़ती जाएगी
1: बढ़ती
0: और
1: जाएगी।
0: फिर उसी,
1: हाँ मौसम का पूर्वानुमान भी था कि हाँ
0: हाँ,
1: टेम्परेचर
0: बारिश
1: डाउन
0: होगी।
1: होगा।
0: तो ये लिखते हैं,
1: जी
0: कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता को नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: 24 तारीख को इस कार्यक्रम की महफिल सजाई मिथिलेश्वर जी ने और साथी ने बहुत खूबसूरत अंदाज में पत्र पढ़े, उनके जवाब दिए गए। 24 तारीख को कार्यक्रम के शुरू में एक श्रोता का मेल शामिल हुआ था, बहुत अच्छी जानकारियां लिखी थी। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, बहुत धीमे चलाएं वाहन और अनमोल जीवन बचाएं, तेज रफ्तार जिंदगी बर्बाद करती है, ये जानकारी पसंद आई। 21 तारीख को नमस्ते बरेली ब्रिजेश जी ने चाय दिवस पर बातचीत की गई थी, अच्छी थी, आपकी पसंद में आपने अच्छे कमेंट लिए। झुमका गिरा रे चाय की मिठास पर बातचीत का आनंद बहुत अच्छा लगा। अनुरोध गीत कार्यक्रम में प्रस्तुति अच्छी थी, ग्राम जगत में धारा सिंह जी ने लोक मंजरी में बहुत अच्छे लोकगीत सुनवाए। आपकी पसंद संजय जी की प्रस्तुति में अच्छी लगती है, आप सबका धन्यवाद। पुरुषोत्तम कुमार जी हैं ये।
1: पुरुषोत्तम जी आपका भी धन्यवाद। और कुछ अगली बार ये भी लिख के बताइएगा आपके यहाँ क्या चल रहा है, क्योंकि पहाड़ों में खास तौर पे कश्मीर में
0: जी
1: क्या चल रहा है, इस कार्यक्रम के माध्यम से और भी श्रोताओं को जानकारी मिलेगी।
0: बिल्कुल
1: जी
0: मित्री जी, अब एक और ईमेल है, हालांकि उन्होंने सिर्फ अपने नाम लिखे हैं, जगह का नाम लिखकर लिख दिया है कि आपका
1: हाँ
0: प्रोग्राम हम तक बिंदास पहुंच रहा है।
1: क्या बात है, क्या नाम है लिखा है उन्होंने।
0: ये हमारे छत्तीसगढ़ से हैं प्रभा जाटव, टॉली कबीर और देवशंकर जा और इनके साथी,
1: जी,
0: और
1: तो
0: बाकी
1: आपसे गुजारिश है कि अगली बार थोड़ा विस्तार से मेल करिएगा, पूरी डिटेल भेजिएगा कौन से प्रोग्राम अच्छे लगे आपने। अगर ये प्रोग्राम आप सुन रहे हो तो आप देख ही रहे हैं तमाम श्रोता किस तरह से पत्र लिख रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: तो आप भी लिखिए, विस्तार से लिखिएगा मेल। हाँ फिलहाल इतना भी मेल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: जी बिल्कुल मिथिलेश जी, तो यहाँ पर तो हमारे ईमेल्स का सिलसिला रुक रहा है
1: जी
0: क्योंकि अब
1: कुछ
0: कमेंट्स
1: कमेंट्स भी
0: के
1: हैं। हाँ जरूर,
0: तो पेज पर पहुंचे।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
0: श्रोताओं, आपने हमें ढेर सारे कमेंट किए हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पोस्ट में, और एक चीज तो है, हर
1: हाँ
0: बार की तरह इस बार भी फरमाइशों के कमेंट ज्यादा हैं।
1: बस वो हर पोस्ट को समझते हैं कहीं से तो फरमाइश पूरी हो जाए।
0: अच्छा एक चीज है याद आया, जैसे सब्जियों में सबसे सब्जियों का राजा आलू होता है,
1: आलू होता है
0: उसे जहां भी चाहे आप एडजस्ट कीजिए, ऐसे ही
1: वैसे ही हम लोगों का जो है सुपर डुपर हिट प्रोग्राम है फरमाइश वाला, वो
0: तो
1: आपकी पसंद अनुरोध
0: जी
1: गीत
0: जी तो वो फरमाइशें हर जगह मिलेंगी,
1: हर
0: कार्यक्रम
1: जगह मिलेंगी।
0: कोई भी हो
1: वो खैर यूएसपी है, मुझे लगता है कि जितने भी सुनने वाले हैं
0: जी
1: आकाशवाणी हो या रेडियो के दूसरे भी चैनल्स हो, वो उसी लिए आते हैं गाने सुनने के लिए
0: बिल्कुल
1: मैक्सिमम,
0: मैक्सिमम।
1: और गानों के साथ साथ हम लोग कुछ जानकारी भी ठेल देते
0: अच्छा उन्हें अपने नाम
1: हैं
0: सुनना भी अच्छा लगता है
1: नाम सुनना अच्छा लगता है, और कुछ अब वही है, कुछ प्रतिशतता उनकी ज्यादा है जो
0: बिल्कुल
1: सिर्फ गाने सुनने चाहते
0: जी
1: हैं, और जानकारी सुनने कम ही लोग आते हैं, वो बाकायदा ईमेल भी लिखते हैं
0: हाँ
1: क्यों और सुनते भी हैं,
0: जी।
1: तो अच्छा है। क्या कमेंट्स हैं फिर, बाकी जो कमेंट्स हैं वो देख लेते हैं।
0: कुछ कमेंट्स में हमारे श्रोताओं ने ढेर सारी बातें भी लिखी हैं, जैसे कि
1: हाँ
0: ग्राम पंचायत बाकरगंज, तहसील फरीदपुर, पानी की टंकी के पास से
1: हाँ
0: मास्टर सुनील बाबू जी हैं।
1: अच्छा
0: सर जी नमस्कार,
1: नमस्कार,
0: 1995 से बरेली एफएम के सभी कार्यक्रम सुनता हूँ।
1: क्या बात है।
0: अब ये आपके पेज के द्वारा आपकी पसंद शुरू हुई है, तब से और भी आनंद आने लगा है,
1: क्या बात है।
0: लेकिन इसमें कभी कभी उद्घोषकों के द्वारा हमारा नाम और पता सही से नहीं पढ़ा जाता तो हमें बहुत दुख होता है।
1: चलिए, तो हमारे तमाम जो साथी सुन रहे होंगे वो आपके इस दुख को
0: कम कर
1: दूर
0: देंगे
1: करने की कोशिश करेंगे,
0: जी,
1: कम ही नहीं दूर करने
0: दूर
1: की।
0: करने,
1: हाँ
0: ठीक है
1: बिल्कुल, इस तरह का दुख तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम पता नहीं पढ़ा गया।
0: जी, आगे बढ़े।
1: हाँ बिल्कुल।
0: अगला जो कमेंट है वो हमें भेजा है हमारे ये साथी हैं आर्यनगर कोका भिलाई से, उत्तम सिंह जंघेल, मोरस अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदिनी जंघेल, इनके साथ में धमदा ग्राम सुखरी कला के भी सभी साथी हैं,
1: अच्छा
0: जैसे कि आप हैं अमित जंघेल, शकुन, आरशी, ओशिका, आदित्य और अंजलि जंघेल। आकाशवाणी बरेली के कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं, फरमाइशी कार्यक्रम, किसान वाणी, ग्राम जगत, युववाणी और भी बहुत से कार्यक्रम है जो अच्छे लगते हैं। इन सभी अच्छे अच्छे कार्यक्रमों की प्रस्तुति के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज उन्होंने लिखी है
1: हाँ
0: कि देश की तरक्की केवल सरकार से नहीं, नागरिकों की जिम्मेदारी से भी होती है।
1: बिल्कुल, अगर हर नागरिक अपनी अपनी जिम्मेदारी समझ लें, सिविक सेंस डेवलप हो जाए।

0: जो भारत के माहौल में थोड़ा बहुत कम है,
1: जी
0: तो देश बहुत तरक्की करेगा निस्संदेह। बहुत अच्छी बात कही आपने। मतलब और जो अगर हम लोग ये छोटी छोटी बातें ध्यान रखें कि हाँ भाई अपने अपना जो कूड़ा है निर्धारित कूड़ेदान में फेंकें, जो फिर नगर निगम से आएंगे उनको दें, इधर उधर ना फेंकें, सड़क पर चल रहे हैं तो रॉन्ग साइड ना चलें
1: बिल्कुल
0: और हेलमेट लगा के चलें, तो बहुत सा इस छोटी छोटी बातें बस ध्यान देनी है। और उसे वो कहते हैं अपना कर्तव्य पूरा करें, सिविक सेंस
1: देखो,
0: डेवलप करें।
1: बड़े बड़े
0: तो
1: शहरों में, महानगरों में जहाँ नगर पालिका और महानगर की स्वच्छता संबंधी टीम रहती है,
0: हाँ
1: वैसे ही ग्राम पंचायतों में भी ग्राम
0: हाँ
1: पंचायत स्तर पर सफाई कर्मी होते हैं।
0: हाँ
1: ये अलग बात है कि हम इतने जागरूक नहीं है। अगर हमारे यहाँ सफाई नहीं हो रही तो हमें कोशिश करनी चाहिए, ग्राम प्रधान से कहा जाना चाहिए, वार्ड
0: हाँ
1: मेंबर से कहें।
0: हाँ
1: और जहां तक कूड़े की बात है, तो जिस तरह से सूखा कचरा एक तरफ, गीला एक तरफ,
0: हाँ
1: प्लास्टिक अलग और सब्जियां वगैरह जो कार्बनिक हैं वो अलग,
0: बिल्कुल
1: तो इनकी अगर जागरूकता हमारे अंदर है तो हमें लगता है कि ये भी हम अपने देश की तरक्की में साथ दे रहे हैं।
0: बिल्कुल, बहुत अच्छी बात इन्होंने लिखी है। और ये इस कार्यक्रम के माध्यम से या आकाशवाणी के सभी कार्यक्रमों के माध्यम से हम लोग यही कोशिश करते हैं कि अपने देश के अपने श्रोताओं को, जो भी हमारे रीच है वहां तक, जो भी हमने सुन रहे हैं, उनको जिम्मेदार बनाएं, जागरूक बनाएं।
1: जी
0: तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, ये कमेंट तो करने के लिए है ही, ये बात लिखने के लिए भी।
1: FM 100.4 MHz आकाशवाणी बरेली से प्रसारित होने वाले सभी कार्यक्रम ज्ञान, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेती और मनोरंजन से भरपूर हैं, जैसे किसान वाणी, ग्राम जगत, युवा वाणी, विविधा, नारी संसार और आपकी पसंद। आकाशवाणी बरेली केवल स्थानीय क्षेत्र या उत्तर प्रदेश में ही नहीं सुना जाता, बल्कि इसे पूरे भारत में मोबाइल के माध्यम से लाइव सुना जाता है। आपके पेज को 15,315 से भी ज्यादा श्रोता फॉलो करते हैं।
0: क्या बात
1: इस
0: है,
1: बात का यह प्रमाण है कि आपकी पसंद में काफी तादाद में आने वाले कमेंट्स हम आकाशवाणी बरेली से उम्मीद करते हैं कि वो अधिक से अधिक सुचारू कार्यक्रम श्रोताओं तक पहुंचाए और इसे एक विशेष स्थान प्राप्त होकर ये पूरे भारतवर्ष में लोकप्रिय हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतनी अच्छी बातें लिखी है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पे हम लोग खरा उतरें
1: जी,
0: और अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम लोग आपको पहुंचाएं। शुक्रिया आपका।
1: सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ जी कमेंट करते हैं,
0: जी,
1: आपका पत्र मिला कार्यक्रम पेशकर्ताओं को हमारी ओर से सादर प्रणाम,
0: प्रणाम
1: नमस्कार।
0: प्रणाम, सादर प्रणाम।
1: आकाशवाणी बरेली के किसी भी प्रोग्राम से हमें कोई शिकायत है ही नहीं, तो हमारे पत्र का जवाब हमें कैसे मिलेगा? अरे, आपने कहा है कि आप शिकायती पत्रों का जवाब देंगे। मिथिलेश जी, हमारी जब कोई शिकायत ही नहीं होगी तो इसका मतलब हमारे पत्र का आज कोई जवाब ही नहीं आएगा। खैर खैर, ये तो वही हंसी मजाक की बात है। आपसे छोटा सा निवेदन करते हैं
0: जी
1: कि आपकी पसंद का कार्यक्रम जो पोस्ट आप डालते हैं सोशल मीडिया पर, उसका समय निर्धारित कर दें ताकि हम समय पर उस पोस्ट को देखकर अपनी पसंद का गीत लिखने में सक्षम रहें, क्योंकि निर्धारित समय न होने की वजह से हम सही समय पर अपनी फरमाइश नहीं भेज पाते। उम्मीद करते हैं आप हमारी बात को समझ गए होंगे। जैसा कि आपकी पसंद का समय 10:05 है, इस पोस्ट का समय निर्धारित कर दीजिए तो हम श्रोताओं को बार बार पोस्ट ढूंढनी नहीं पड़ेगी। यानी 9:30 या 9:45 पर निर्धारित किया जाए समय, तो बड़ी मेहरबानी होगी। बाकी आकाशवाणी बरेली की जितने भी प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं श्रोताओं के पसंद अनुरूप
0: इसमें
1: ही रहते हैं।
0: यहाँ पे जरा सा जवाब देने दीजिए।
1: बिल्कुल,
0: देखिए, क्या केवल आपकी पसंद के लिए ही रेडियो सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली?
1: हाँ, ये तो बात है, और भी तो कार्यक्रम है।
0: और भी तो आप, हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे केंद्र के जो कार्यक्रम हैं वो लगातार सुने, और हो सकता है आने वाले दिनों में, हम तो सोच भी रहे हैं, कुछ ऐसे हम आपसे सवाल करेंगे जिनके जवाब हमारे कार्यक्रमों में ही छुपे होंगे।
1: जी
0: तो इसलिए एक फिक्स टाइम रखने पे क्या होगा, आप एकदम घड़ी देखेंगे 9:30 आ जाएंगे और अपना फरमाइश डालेंगे, फिर निकल लेंगे, है ना? इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि आप लगातार सुनिए हमारे प्रोग्राम।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए कभी 9:30 पे होता है, कभी 9:35 पे होता है ना? आगे क्या लिख रहे हैं?
1: आकाशवाणी बरेली की जितने भी कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं श्रोताओं के पसंद के अनुरूप ही पेश किए जाते हैं, और श्रोताओं की सहभागिता इस कार्यक्रम में बहुत खूबसूरत रहती है।
0: क्या बात
1: पूरी
0: है,
1: टीम को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, खास तौर पर आकाशवाणी के 90 साल का जो खूबसूरत समय हम सभी के साथ चल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आकाशवाणी बरेली में भी इस खुशी के मौके पर श्रोताओं को भी जोड़ने का, उनकी प्रतिक्रिया और उनके सुझावों के साथ उन्हें शामिल किया जा रहा है। इसके लिए आपको शुभकामनाएं।
0: आपको भी ढेरों शुभकामनाएं और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप आगे भी कार्यक्रम सुनेंगे और अच्छे सुनेंगे। हाँ, आपने जो कहा है, हम कोशिश करेंगे कि हाँ एक फिक्स टाइम पे, अक्सर वैसे पड़ती है 9:30 के आसपास ही पड़ती है
1: जी।
0: पोस्ट।
1: तो कुछ और दोस्तों के भी कमेंट्स हमें मिले हैं मित्रेश
0: हाँ
1: जी,
0: जी,
1: और हम ये सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी इन्हें पढ़ लिया जाए।
0: पढ़ लिया जाए, बिल्कुल, और क्या।
1: तो हमारे ये जो साथी हैं वो अमरजीत, शिवम, सुखलाल, अमरपाल, ऋषिपाल, सिद्धार्थ और यश हैं, रामपुर ग्राम खंडिया गेट कॉलोनी से। सभी कार्यक्रम सुनते हैं, अच्छे लगते हैं कार्यक्रम। आपका पत्र मिला हेलो बरेली।

0: आकाशवाणी के साथ आपकी बात अनुरोध गीत हेलो फ्रेंड्स, हमें कार्यक्रम में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है, आपको हमारा नमस्कार।
1: नमस्कार आपको भी।
0: आगे बढ़ते हुए अगला कमेंट पढ़ते हैं।
1: हाँ।
0: ग्राम सभा कोप जंगल छपिया टोला जनपद कुशीनगर उत्तर प्रदेश से सदानंद यादव जी हैं।
1: हाँ हाँ।
0: पहले आकाशवाणी बरेली परिवार को दिल से प्रणाम, आपका पत्र मिला प्रेजेंटर्स को हमारी ओर से दिल से आभार धन्यवाद प्रणाम। कार्यक्रम एक से बढ़कर एक है, सुझाव हमारा है अगर आप माने तो।
1: अरे सुझाव तो दीजिए।
0: संभव हो तो हफ्ते में एक भोजपुरी फिल्मों से गीत सुनवाएं।
1: भोजपुरी? देखिए मैं खुद भी एक भोजपुरिया नागरिक हूँ
0: जी,
1: लेकिन अब चूंकि हम लोग बरेली में रह रहे हैं और एलआरएस बरेली है, बरेली के आसपास के लोगों के लिए है, तो यहाँ पे भोजपुरी के लोग बड़े कम हैं
0: जी।
1: और इधर ज्यादातर रुहेलखंड का चलता है, ब्रज का चलता है।
0: लेकिन कभी,
1: तो,
0: कभी
1: और फिर भी वैसे भोजपुरी के तो गीत कभी कभी बजते तो हैं
0: सब रंग में।
1: हाँ सब रंग में बजते तो हैं, आप खुद बजाते हैं
0: जी,
1: है ना। और फिर भी हम कोशिश करेंगे, अगर और भी श्रोता कहेंगे कि हाँ भाई भोजपुरी फिल्मों के गीत सुनवाए जाए तो वो बढ़ाए जाएंगे।
0: आगे बढ़े।
1: हाँ जरूर।
0: अगला कमेंट पढ़ते हैं जो हमें चनौरा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से बनवारी लाल कुशवाहा जी ने भेजा है।
1: हाँ क्या कहते हैं,
0: कार्यक्रम इनको सब अच्छे लगते हैं, आपकी पसंद बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। आकाशवाणी के दीवाने का वीडियो भेजा था पिछली बार भी, आपको बताया अभी तक आपने नहीं लगाया। दूसरी बात यह है
1: आपका मुझे लगता है ऑडियो सारित हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो एक बार फिर से हम देखते हैं।
0: दूसरा यह है, कहते हैं कि पहले मेरा पता गंगानगर शिकोहाबाद था, तब हमारी फरमाइश बोली जाती थी, मगर जब से चनोरा जिला फिरोजाबाद कर दिया गया है हमारी फरमाइश कम से कम बोली जाती है।
1: नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आप शिकोहाबाद से फिरोजाबाद आ गए तो आपकी फरमाइश शामिल नहीं की जा रही है, वो कुछ इत्तेफाक होगा।
0: पता बदलने से हमारी मोहब्बत में कमी नहीं होगी दोस्त। तो मुझे लगता है कि कार्यक्रम सुनेंगे और पता चल जाएगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, लिखा है इन्होंने कि आज भी मेरा कमेंट शामिल नहीं किया गया, देखिए आज शामिल हो रहा है।
0: हो रहा है।
1: हाँ, और आपका वीडियो देखते हैं
0: जी,
1: और ऑडियो तो मुझे लगता है प्रसारित हुआ है,
0: चलिए
1: और वीडियो देखते हैं उसको पे डलवाते हैं।
0: और अब मिथिलेश जी वक्त नहीं है कि और भी ज्यादा बातें करें।
1: हाँ हाँ
0: तो चले।
1: हाँ बिल्कुल, और ये साथ साथ ही बताते चले, कई लोग टिप्पणी मिली कि भाई कमेंट तो सार्वजनिक है तो फिर क्यों शामिल करते हैं, लेकिन उनके लिए बता दें बहुत सारे हमारे श्रोता ऐसे हैं जो स्मार्टफोन नहीं इस्तेमाल करते हैं, छोटा वाला फोन इस्तेमाल करते हैं, वो सिर्फ प्रोग्राम सुनते हैं, रेडियो सुनते हैं, उनके लिए भी ये इंटरेस्टिंग होता है कि भाई दूसरे श्रोता क्या कह रहे हैं, क्या कमेंट कर रहे हैं, इसलिए हम शामिल कर लेते हैं।
0: क्योंकि जिस समय वो कार्यक्रम सुन रहे होंगे किसी भी माध्यम से तो उन्हें पता चल जाएगा। लेकिन पते से हमें पता बताने की बात याद आ गई।
1: हाँ बिल्कुल।
0: कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली पिन कोड 243001 पर आप पत्र लिख सकते हैं, ईमेल भी आप हमें भेज सकते हैं आपका पत्र मिला bareli@gmail.com पर
1: जी।
0: इसके अलावा आकाशवाणी बरेली की पेज पर भी आ सकते हैं, आपका पत्र मिला कार्यक्रम से संबंधित पिन पोस्ट में अपना कमेंट कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा कि आप क्या कहने वाले हैं, क्या कहना चाहते हैं।
1: और इस समय आकाशवाणी की दीवानगी का आलम फिजाओं में घुला हुआ है,
0: तो आप कितने दीवाने हैं हमें बताओ,
1: ये भी बताइए। ऑडियो या वीडियो किसी भी फॉर्मेट में आप हमें भेज दीजिए,
0: भेज सकते हैं बिल्कुल, हम स्वागत करेंगे।
1: बिल्कुल, ये आपका पत्र मिला bareli@gmail.com उस पे
0: मेल कर दीजिए,
1: मेल कर दीजिए।
0: तो आप चलें।
1: हाँ बिल्कुल,
0: हम अपने श्रोताओं के सुख की कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप सब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और स्वस्थ रहें। इसी के साथ आज के आपका पत्र मिला कार्यक्रम से गजेंद्र
1: और मिथिलेश को दीजिए अनुमति,
0: कीजिए स्वीकार हम दोनों की ओर से सब प्रेम,
1: नमस्कार।
2: श्रोताओं अभी आपने सुना कार्यक्रम आपका पत्र मिला, प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव की, प्रस्तुति सहयोग गजेंद्र यादव का। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 MHz पर। दोस्तों आइए अब हम आपको जोड़ते हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रमों से।

0: छोटा नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: स्पाइन पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-4444।
2: एक बार फिर से स्वागत है आपका FM रेनबो लखनऊ में, जहां पे प्रोग्राम चल रहा है हेल्थ एंड फिटनेस, और बात हो रही है तंबाकू के दुष्प्रभावों की, कि अगर आप सेवन करते हैं तो क्या कुछ शारीरिक दुष्प्रभाव आपको झेलने पड़ सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, और अगर आप जानना चाहते हैं आपकी जिंदगी में ऐसा कोई मसला है जिससे आप जूझ रहे हैं, आपका कोई दोस्त अहबाब या परिवार का कोई सदस्य इस समस्या से जूझ रहा है, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 0522223885 पर। और इसके अलावा आप हमें मेल भी भेज सकते हैं fmakashwani@gmail.com पर। डॉक्टर साहब, आपसे हमारे एक लिसनर ने ये सवाल पूछा है कि देहात में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि तंबाकू खाने से मेरा पेट साफ रहता है और मेरे दांतों में पायरिया भी नहीं होता, लेकिन वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब, आप बताइए कि क्या कुछ नुकसान होते हैं, क्या इस तरह के जो मिथ हैं हमारे जहन में, ये सही हैं या गलत हैं?
3: ये एक पूरी तरह से मिथ्या है, और तंबाकू खाने से बार बार इन्फेक्शन होते हैं, बार बार तंबाकू मुंह में रखे रहते हैं, उससे ना टार्टर या स्केल्स जमा हो जाते हैं
2: जी,
3: जिसके अंदर बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा ही रिप्रोडक्शन होता है, नंबर्स उसके बढ़ जाते हैं। नॉर्मली हमारे मुंह के अंदर अराउंड 100 करोड़ बैक्टीरिया होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, लेकिन जिन लोग के अंदर टार्टर जम जाता है तो उनके अंदर ऑलमोस्ट 1,00,000 करोड़ प्रति ग्राम टार्टर के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। तो इतने इन्फेक्शन की वजह से आपको पायरिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और जैसे आप तंबाकू खाते हैं, गुटखा खाते हैं, मसूड़े आपके दांतों को छोड़ देते हैं, दांत कमजोर होने लगते हैं, दांतों के बीच में जगह आने लगती है, सुराख हो जाता है बीच बीच में, तो वो नुकसान ही करता है
2: जी। तो सब, एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी, नाम बताइए और सवाल पूछिए, आपका क्या सवाल है?
4: ये जानना था कि तंबाकू से मेन क्या नुकसान होता है?
2: मेन क्या नुकसान होता है?
3: मेन नुकसान तो देखिए, सबसे पहले तो आपने मुंह में खाया, आपके मुंह में गंदगी आई, पेट खराब हुआ आपका, इन्फेक्शन हुआ, ज्यादा वक्त तक खाया तो मुंह खुलना कम हो जाता है, फाइब्रोसिस, ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस हो जाती है, आप ढंग से बड़े निवाले नहीं खा सकते, हमेशा छोटे छोटे निवाले खाने पड़ेंगे आपको, अंत में कभी ना कभी कैंसर भी हो सकता है।

0: डॉक्टर साहब, ये तो हुई कि तंबाकू से हमें क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके अलावा अगर हम तंबाकू छोड़ देते हैं तो हमारे शरीर को क्या क्या फायदे होते हैं, ये भी आप हमें बताइए, और कितने दिनों में ये फायदे दिखने शुरू हो जाते हैं?
1: मैंने आपको पहले ही बताया, जैसे ही आपने स्मोकिंग छोड़ी,
0: हाँ हाँ
1: मात्र 10 से 15 मिनट में अंदर आपका हार्ट रेट कम हो जाएगा,
0: हाँ हाँ
1: बीपी कम हो जाएगा,
0: हाँ
1: जो सीलिया होते हैं हमारी एलिमेंट्री कनाल के अंदर और रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, जो म्यूकस पैदा करते हैं और गंदगी को आगे बढ़ाते हैं, झाड़ू की तरह काम करते हैं,
0: जी,
1: वो 1 महीने से 2 महीने के अंदर वापस से पैदा होने लगते हैं, जो मर जाते हैं टोबैको की वजह से।
0: अच्छा।
1: तो आपकी जो गंदगी होती है जल्दी साफ होती है,
0: और
1: तो
0: ये मरते
1: इन्फेक्शन
0: कितने कितने दिनों में है डॉक्टर साहब? जैसे आपने कंज्यूम की टबाको, तो कितने दिनों में आपका
1: सर, ये जो
0: स्टमक?
1: सीलिया होते हैं मैम,
0: हाँ
1: बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत सेलुलर लेवल पे काम करते हैं ये,
0: अच्छा।
1: तो कुछ मिनटों में कुछ घंटों में खत्म हो जाते हैं ये।
0: ओ, और पूरी
1: लेकिन
0: तरह से रिवर्स हो सकता है, आपका फेफड़ा पूरा क्लीन हो जाए, अगर आप बहुत ज्यादा आपने स्मोकिंग की है तो अगर फेफड़ा पूरा क्लीन हो सकता है तो कितना वक्त लगता है?
1: मैम, कुछ चीज ऐसे होती हैं जो कभी भी क्लीन नहीं हो पाएंगी,
0: अच्छा।
1: कभी भी क्लीन, जो टार जम गया है, जो हैवी मेटल्स जम गए हैं, वो कभी भी साफ नहीं हो पाते हैं,
0: सर्जरी से भी नहीं?
1: इतने सूक्ष्म होते हैं, वो कभी सर्जरी भी नहीं हो सकती है,
0: हाँ
1: वो अंदर
0: हाँ
1: जाके बैठ जाते हैं। लेकिन काफी हद तक ये साफ हो सकता है, लेकिन उसमें लगता है कम से कम 10 साल,
0: 10 साल का
1: 10 से 15 साल
0: अर्सा लगता है।
1: लगेंगे, तब आप जाके उस रिस्क पे पहुंचेंगे जो एक नॉर्मल आदमी है जिसने कभी भी सिगरेट का सेवन नहीं किया है। तो ऑलमोस्ट 10 साल लग जाते हैं आपको नॉर्मलाइज होने में,
0: क्लीन
1: और वो
0: होने में।
1: नॉर्मलाइज का मतलब ये 100% नहीं होता है, 90-95% हम नॉर्मलाइज होते हैं, 100% आप कभी नहीं पहुंच पाएंगे।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ और कनेक्ट हुए हैं, और शायद उनकी कॉल ड्रॉप हो गई है। कोई बात नहीं, डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, मुंह के कैंसर ज्यादातर तंबाकू जो डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं स्मोक के अलावा, उनके मुंह के कैंसर के मामले जो हैं उनमें क्या सिम्टम्स हैं, कैसे पता चलता है कि अब आप उस घेरे में आ गए हैं जहां आपको नुकसान ज्यादा हो सकता है?
1: सबसे पहले तो आपका मुंह खुलना बंद हो जाता है,
0: अच्छा।
1: फिर एक सफेद तरह के चकत्ते मुंह में पैदा हो जाते हैं जो रगड़ने से भी निकलते नहीं, इसको हम लोग ल्यूकोप्लेकिया बोलते हैं। उसके बाद और खराब आता है एरिथ्रोप्लेकिया, जो लाल कलर के चकत्ते होते हैं वो भी निकलते नहीं है। अल्टीमेटली फिर आपके कभी दांत गिर रहे हैं, दांत ढीले पड़ जा रहे हैं, या एक अल्सर पैदा हो रहा है जो महीने भर तक भी हील नहीं कर रहा है दवाओं के बावजूद, तो
0: जी
1: ये सिम्टम्स होते हैं।
0: डॉक्टर साहब, एक महेंद्र दिपन करके हमारे पास मैसेज आया है राजस्थान से, पूछते हैं कि मैं कुछ वर्षों से गुटखे की लत से परेशान हूं, मैंने इसे छोड़ने की कई कोशिशें की लेकिन अब स्थिति यह है कि मैं 2 घंटे भी इसके बिना नहीं रह पा रहा हूं, मुझे कोई ऐसा व्यवहारिक उपाय बताएं जिससे मैं किसी तरह सिर्फ शुरुआती 72 घंटे यानी कि 3 दिन जो है वो निकाल सकूं। मेरा मानना है कि यदि मैं 72 घंटे पार कर लूंगा तो मैं अपनी इच्छा शक्ति को आगे की लड़ाई से जीत सकता हूं, इच्छा शक्ति से आगे की लड़ाई जीत सकते हैं।
1: सर, सबसे अच्छी बात तो आपने बताई कि आप इच्छा शक्ति रखना चाहते हैं, जब तक आप मन से नहीं छोड़ना चाहेंगे तब तक आप छोड़ नहीं पाएंगे।
0: जी।
1: लेकिन जैसी आप स्थिति आप मुझे बता रहे हैं, इसके लिए आपको किसी साइकेट्रिस्ट से मिलना पड़ेगा, वो आपको कुछ दवाएं देंगे, हो सकता है कुछ 1 आध दिन 2 दिन के लिए एडमिट भी करें, उसी से आप बेहतर हो पाएंगे। फोन पे बताना तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा आज।
0: डॉक्टर साहब, एक कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हुए हैं। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताइए, जगह का नाम बताइए, सवाल पूछिए। हाँ जी, आपका सवाल साफ तौर पर नहीं आया, एक बार फिर से पूछिए।
2: जी, हम ये कहना चाहते हैं, जैसे पहले हमारे भाई गुटखा और तम्बाकू सब चीज खा रहे थे, गुटखा तो छूट गया है, तम्बाकू नहीं छूट रही है, इसके लिए क्या किया जाए?
0: गुटखा तो छूट गया डॉक्टर साहब, तंबाकू नहीं छूट रही है, इसके लिए क्या
1: सर,
0: किया
1: दोनों
0: जाए?
1: ही भाई बहने हैं गुटखा और तंबाकू, ठीक है,
0: हुँ.
1: उसका भी आप छोड़ने का छुड़वाइए उनसे, बात करिए, मेडिटेशन करिए, अच्छे लोगों की संगति में जाइए, ठीक है, योगा करिए, डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए, बस यही बताऊंगा।
0: यही उपाय हैं जिसके जरिए आप इस तंबाकू के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। और सब, एक मेल हमारे पास आया है चंद्रमोहन मिश्रा का, लिखते हैं, मैं चंद्रमोहन मिश्रा नौरंगपुर लखीमपुर से, सबसे पहले आपको और डॉक्टर साहब को नमस्कार। डॉक्टर
1: नमस्कार।
0: साहब, आज आपसे हमें एक ऐसा सवाल पूछना है जो हर तंबाकू खाने वाले व्यक्ति से जुड़ा होता है, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या तंबाकू खाने से मुंह का छोटा होना संभव है या

0: सिर्फ गुटके से होता है, और अगर छोटा होता है तो उसका इलाज क्या है? छोड़ना ही इलाज है मेरे ख्याल से
1: जी,
0: डॉक्टर
1: अभी आप वो जो बता रहे हैं वो OSMF होता है, जिससे मुंह खुलना बंद हो जाता है। बार
0: अच्छा
1: बार जब इरिटेशन होता है तो हमारी जो मुंह की मसल्स होती हैं, टेंडन्स होती हैं, वो फाइब्रोस होने लगती हैं। तो जो उसकी
0: अच्छा
1: प्लास्टिसिटी होती है, जो लचीलापन होता है, वो खत्म हो जाता है, जिससे कि मुंह का खुलना बंद हो जाता है। और इसका इलाज या तो कुछ इंजेक्शन लगाते हैं हम लोग हर महीने महीने पे, 6 महीने तक लगाते हैं, उससे कुछ फायदा मिल जाता है। कुछ दवाइयां भी देते हैं, उससे फायदा नहीं मिलता है। अगर नहीं मिलता इन सारी उपायों से, उसके बाद एक छोटा ऑपरेशन किया जाता है, जिससे कि आपका मुंह खुलना दोबारा हो जाएगा। लेकिन अगर आपने दोबारा खाया तो वापस से बंद हो जाएगा।
0: ओहो, एक और कॉलर हमारे साथ कनेक्ट हो रहे हैं इस प्रोग्राम में. नाम बताइए अपना, जगह का नाम बताइए और सवाल पूछिए डॉक्टर साहब से.
2: मुनेश कुमार राज बोले, भानपुर हटोबा जिला लखीमपुर खीरी से. मैम
0: जी, सवाल क्या है आपका?
2: डॉक्टर साहब से सवाल हमारा ये है कि आज के दौर में गुणमंजन के काफी जो है महिलाएं भी बच्चे से लगाकर बूढ़े तक आज शिकार इसका होने लगे हैं, तो इसका आगे चल के दुष्प्रभाव भी हो सकता है. इसको छुड़ाने के लिए मतलब बचाव से कैसे इससे बचा जा सके, बताने की कृपा करें.
1: मुनेश जी, टोबैको किसी भी फॉर्म में खराब होता है, चाहे वो गुलमंजन हो, चाहे गुटखा हो, चाहे सादा पान मसाला हो, चाहे पास पास हो, चाहे चुटकी हो, हर तरह से ही खराब है। बस इसका सेवन को ही आप रोकथाम करें, और जितना अच्छा हो सके, जितनी जल्दी हो सके, उसे खत्म करें।
0: डॉक्टर साहब, महिलाओं और किशोरों पर तंबाकू का जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत क्या अधिक गंभीर हो सकता है?
1: गंभीर तो मैम हर चीज, हर उम्र के लिए ही है,
0: जी.
1: ठीक है। लेकिन यह है कि महिलाओं में, किशोरावस्था में, लोग दूसरे को दिखाने के लिए काफी बार ये सब चीज का सेवन करते हैं कि देखो मैं कितना कूल लग रहा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूं। तो अच्छी चीज तो नहीं। अब मैं यही चाहूंगा, खराब चीज है। बच्चे लोग, इससे आज तक किसी का कोई फायदा नहीं हुआ है, कोई एक आदमी नहीं है जिससे इसका कोई फायदा मिला हो।
0: कूल लगना है तो आप फिटनेस पर काम
1: फिटनेस पे
0: करें.
1: काम करें, पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें।
0: जी, बिल्कुल डॉक्टर साहब. एक लेंगे हम कॉमर्शियल ब्रेक, और उसके बाद तंबाकू के दुष्प्रभाव पर चर्चा जारी रहेगी.
3: डायबिटीज जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है, और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है.
4: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज. एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ.
3: चरक हॉस्पिटल, एट हरदोई रोड, दुबग्गा.

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए।

0: अपने बच्चे की सेहत से कोई समझौता नहीं, इसीलिए मैं भरोसा करता हूँ सिर्फ चरक हॉस्पिटल पर।
1: चरक हॉस्पिटल में है हाईली एडवांस्ड पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी सर्विसेज, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर्स और पर्सनलाइज्ड केयर।
0: पाई पीडियाट्रिक ब्रेन एंड स्पाइन सर्जरी, PICU, EEG, MRI, जेनेटिक टेस्ट, फिजियो और स्पीच थेरेपी जैसी सुविधाएं, ताकि आपके बच्चे के मानसिक विकास में कोई रुकावट न आए।
1: चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा हरदोई रोड, लखनऊ। कॉल 666-444-444।
2: 12:55 और 42 सेकंड। और जैसे कि हमने आज पूरे प्रोग्राम में चर्चा की कि तंबाकू के क्या दुष्प्रभाव हैं, जिसके जानकारी आपको डॉक्टर साहब ने दी, स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं

0: के बारे में बताया, उनके उपायों के बारे में बताया जाने इससे पहले डॉक्टर साहब आपसे कहना चाहेंगे, क्योंकि आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस है, इस अवसर पर आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं श्रोताओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि हर कष्ट आपकी सेहत का दुश्मन है।
0: जी,
1: आपका आज का संकल्प आपके परिवार का कल सुरक्षित कर सकता है।
0: वाह, बहुत सुंदर बात। और इसी के साथ प्रोग्राम हेल्थ एंड फिटनेस से मैं समरीन आपसे लेती हूँ इजाजत। आज का लिया गया एक सही निर्णय आपके आने वाले जीवन को अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। हेल्थ एंड फिटनेस के जरिए हमारी हमेशा यही कोशिश होती है कि आपकी सेहत को बेहतर बनाया जा सके। हमें दीजिए इस कार्यक्रम से इजाजत। अगले अंक में नए मेहमान के साथ, नए गेस्ट के साथ आपसे फिर रूबरू होंगे, लेंगे आपसे सेहत से जुड़ी जानकारी। धन्यवाद।
2: डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।
0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे 300 बेड वाले सुपर स्पेशलिटी चरक हॉस्पिटल, दुबग्गा, लखनऊ।
2: जेनेटिक डिसऑर्डर या खराब जीवन शैली से उपजने वाली एक समस्या है, जिसे अच्छी देखभाल और सटीक इलाज से कंट्रोल किया जा सकता है और इसे समय रहते रिवर्स भी किया जा सकता है।
3: चरक हॉस्पिटल में पाइए हर प्रकार के डायबिटीज का एक्सपर्ट इलाज। एक्सपर्ट और अनुभवी डॉक्टर से पाइए पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान्स और मॉडर्न डे ट्रीटमेंट्स का लाभ।
2: चरक हॉस्पिटल एट हरदोई रोड, दुबग्गा।

0: नमस्कार, अब सुनिए मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकार
1: ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। दोपहर का 1 बज चुका है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम अनुरोध गीत।

हैं सारे श्रोता जिन लोगों के पत्र मेरे पास आ चुके हैं और वो श्रोता जो अपने पत्र हम तक नहीं भेजे हैं, कोई फरमाइश नहीं भेजी है, लेकिन लेकिन लेकिन हमें उम्मीद और इंतजार आज भी है कि वो हमें खत लिखेंगे अपने नाम पते के साथ अपने अनुरोध का गीत भी। हम तक पता पत्र पहुंचाने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली। उम्मीद पर दुनिया कायम है, इसीलिए उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। यही उम्मीद आप लोगों से, आप सारे श्रोताओं से बनी हुई है कि आप लोग हमें खत जरूर लिखेंगे अपने गीत के लिए और हाँ समय समय पर अपनी याद दिलाने के लिए। और फिलहाल जिन लोगों के खत हम तक आ चुके हैं वो इस तरह से हैं। ये पत्र आया है ग्राम अमलेश्वर से, भेजने वाले हैं डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश, तारनी, सूरज, ज्योति, रियांश और गुड़िया। औरंगाबाद से हैं राजेश, साबले पाटिल, शीतल राजेश, राजदीप राजेश और राशि राजेश। ग्राम करेली पुरानी मस्जिद जिला बरेली से हैं लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, मोहम्मद तब्रेज, अबरार हुसैन अंसारी, बबलू कैप्टन निसार और मस्तान बाबा। श्रोताओं ये पत्र आया है मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर जिला पीलीभीत से, भेजने वाले हैं विमल वर्मा, विनय वर्मा और उनके परिवार के सभी सदस्य। आदर्श नगर मौलाहट पंजाब से हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश, मैंडी, सौरव, शाइना और निवान शर्मा। दीदार रेडियो श्रोता संघ बलराम गेट कासगंज से हैं एम असलम सैफी, जैबुन्निसा बेगम, अकरम सैफी और आबाद खान। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी, कपिल, वेदराम, कैलाश, सुनील, खुशबू, एरोही और स्वाति मौर्य। खमरिया बिलासपुर से हैं साबित खान, सवित्री देवी, धर्मेंद्र प्रजापति और प्रतीक कुमार। पुराना तालाब डुमराव से हैं वलीउल्लाह अंसारी, अस्मानाज अंसारी और इनकी प्यारी बेटी सोनम। सारीमपुर बक्सर से हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा नाज अंसारी और मोहम्मद समी अंसारी। इंदिरा बिहार दिल्ली से हैं डब्लू अंसारी, वसीम अकरम और बेबी अंसारी। छटिया पोखरा डुमराव से हैं लाल बाबू दीवाना और दिव्या भारती। बरेली जंक्शन से हैं गरीब भाई, विक्की भारद्वाज, वीरेश सिंह चौहान और सोनू मिश्रा। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं ये गीत जिसे हमने लिया है फिल्म सोनी महिवाल से, आवाज़ आशा भोसले और शब्बीर कुमार की।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 आकाशवाणी का बरेली केंद्र। कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है कस्बा शीशगढ़ से। भेजने वाले हैं गुड्डू इदरीसी, मोहम्मद फरहान इदरीसी। और अगला पत्र आया है सुंदर खेड़, राजमाता नगर, बुलडांडा, महाराष्ट्र से। भेजा

नरेंद्र नरवांडे, ज्योति नरवांडे, आकांक्षा नरवांडे और आकाश कुमार ने ग्राम बड़ बुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, प्रोनिका, प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम। उत्तर प्रदेश जिला जौनपुर पोस्ट लपरी ग्राम मोड़ेला से चंदा चांदनी, आकाश कुमार, इनके मम्मी पापा और रीता देवी, कन्हैया काकू। जसपुर उत्तराखंड से हैं रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज, रिफाकत रानी, तबसुम रुखसार और मोहम्मद आसिफ। कुंज निवास राधा कुंज इज्जत नगर बरेली से वीके जौहरी, विनोद, अरुण कुमार जौहरी, अर्चना जौहरी, विनीता जौहरी, अर्पित जौहरी और निमेश जौहरी। याकूत गंज फरुखाबाद से ये पत्र आया है, मिर्जा नसरीन बेगम भेजने वाली है, मुनव्वर हुसैन, अरबाज मिर्जा, शाहबाज मिर्जा, मोहम्मद अहमद खान, बेटी रूही मिर्जा, महजबीन नेहा कानपुरी और अजरा कुरैशी, जोहरा जमाल। मालवा रेडियो श्रोता संघ से परमिला गंज अलौर जिला रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश और ऋषि वर्मा। श्रोताओं ये पत्र आया है नखासा रोड उस हैत बदायूं से, भेजने वाले हैं डॉक्टर मसरूर खान, मोहम्मद सरफराज खान, अमन अब्बासी, अनस मंसूरी, मुमताज मंसूरी, मोनिका मोनिस अब्बासी, सुहेल अंसारी, मोहम्मद याकूब अब्बासी, आकाश और समस्त परिवार व दोस्त। महाराजा रेडियो श्रोता संघ जिला खंडवा ग्राम लोहारी से हैं राजेश कुमार धनजय, राहुल कुमार, विशाल कुमार, शीला धनजय, गायत्री धनजय। खुर्दी रोड मानपुर से विजय वैद, रानी वैद, महिमा वैद और नीतू वैद। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल की युगल आवाजों में ये गीत, रचना आनंद बख्शी की, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, फिल्म का नाम अमृत।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, वेलकम बैक ओनली ऑन 100.4 FM बरेली पर। कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत, आपके पत्रों पर आधारित। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया मोहल्ला तलैया उड़ला जागीर से। भेजने वाले हैं फजरुद्दीन भाई, अबरार भाई, अफजाल भाई, मल्लू शबीना, रामू प्रजापति धर्मपुर बरेली से, फहीम खान सिद्दीकी, अली अज्जू साबिया। शीतल रोड, शीतल रेडियो श्रोता संघ, ग्राम बहरामपुरा टेना, जिला खरगोन, मध्य प्रदेश से हैं। डॉक्टर तिलोक चंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन समर, राज आर्यन वर्मा, बेबी आरोही, इशिका वर्मा, अंजलि श्वेता वर्मा। करगेना बरेली उत्तर प्रदेश से हैं पन्नीलाल सागर, बेनी सिंह मासूम, धर्मवीर मनमौजी, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश उर्फ बंटी, रूबी भारती, एकता भारती, कुमारी दिव्या, ममता चौधरी, श्रीमती ओमवती भारती, बेटी खनक, नकुल, नैन्सी और सारांश। फूलबाग किला छावनी बरेली से हैं विशन दत्त भारद्वाज, शिव दत्त भारद्वाज, गंगा दत्त, विक्की, वर्षा, कविता, कल्पना, ईशु, भावना, आदित्य, देवी, देवकी देवी, मुन्नी देवी, शिप्रा, नीलम भारद्वाज और श्रीराम राठौर। शिवाजी नगर वडाली से देशमुख, राजेश खोबर खेड़े, शिव सागर खोबर खेड़े, इंद्राबाई सुनैना। खांडवी तहसील जलगांव जामोद से हैं राम थांडे, दीपाली थांडे और स्वराज थांडे। डोगर गांव जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हैं राष्ट्रपाल गजबिये, राधिका गजबिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजबिये। परिमहल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान। बरेली कैंट रेलवे केबिन के पास चनहटी बरेली उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं विनेश कुमार, रागनी श्रीवास्तव और मुस्कान। सहावर टाउन जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से हैं योगेंद्र नानक, योगेंद्र नायक, रमन साहू, पवन वर्मा, मुशीर, गीता नायक, अलका साहू, अंजलि वर्मा और शहाना शबनम। मलौट कैंप पंजाब से ये भेजने वाले हैं सतीश मिगलानी, सीमा अनमोल, धर्मपाल, वीर सिंह लाठी, लगविंदर संधू, महावीर संधू, गुरचरण ग्रोवर, रमेश मिगलानी। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया है संजय नगर ऐशबाग लखनऊ यूपी से। भेजने वाले हैं वारिस अली खान, सलीम अहमद, शहनाज खान, शकील अहमद, शाहबाज खान और बेबी नुसरा खान। अगला पत्र हमारे पास ये आया है बठिंडा रोड डब्वाली से। भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और मोहित नारंग। लेबई से गुलाबदास मणिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रंगनी से दिनेश वर्मा, दंतरंगी से भागवत वर्मा। आइए आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं दो कलियां फिल्म से ये गीत, जिसे युगल आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, गीत साहिर का, संगीत रवि का।

1:30 होने को है, हम आपको याद दिला दें अगर आप भी अनुरोध गीत कार्यक्रम के सुहाने सफर में शामिल होना चाहते हैं तो हमें अपने नाम पते के साथ अपनी पसंद का गीत लिखकर इस पते पर भेज दीजिएगा। हमारा पता है कार्यक्रम अनुरोध गीत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली, पिन कोड 243001। और जिन लोगों ने अपने पत्र हम तक पहुंचा दिए हैं उनके नाम इस तरह से हैं। दोस्तों ये पत्र हमारे पास आया है छावनी अशरफ खां होली चौक बरेली से। भेजने वाले हैं

राम प्रसाद शर्मा, भाई फजरुद्दीन, अजय मनोरमा देवी, वंदना शर्मा, खेम करण, लक्ष्मी देवी और रीता विनोद। मोहल्ला गड़ैया बरेली से मोहम्मद कैसर शमसी, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद नवीद, रजिया शमसी और बेबी। श्री गंगानगर राजस्थान रघुनाथपुरा से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित, खुशी गोस्वामी। कस्बा बिलसी मोहल्ला नंबर 5 से हैं ठेकेदार रहमान अलवी, अनोखी बेगम अलवी, फिरासत अलवी, गुलशन बेगम, जानवी अलवी, हानिया अलवी, नजाकत, शाइन बेगम, आहिल बाबू, आदिल अलवी। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से ये पत्र आया है हमारे पास। भेजने वाले हैं विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, त्रिपति साहू, सरोजनी, कुंती साहू। कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश बत्ता। सब्जी मंडी बुलढाणा से हैं शब्बीर हुसैन, शहजाद हुसैन, मुज्जू बाबा, आइज अनम। ये पत्र आया है बक्सर बिहार से। भेजने वाले हैं शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी, असलम अंसारी, अकरम अंसारी और अल्ताफ अंसारी। डुमराव बिहार से हैं डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। सारीमपुर बक्सर से हैं असमा खातून अंसारी, राज एस डी अंसारी, मेहताब अंसारी, आफ्ताब अंसारी और मेरा जहां। अगला पत्र हमारे पास आया है मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से। मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया और साजदा रानी, इनके साथ हैं हिना कौसर। श्रोताओं ये पत्र आया है करूला मुरादाबाद से। भेजने वाले हैं अयूब खान, इरम गुड़िया, शुएब खान, नवेद खान। सिंधौली मीरगंज बरेली से हैं जीशान वारसी। ये पत्र आया है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। भेजने वाले ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेराज जहां। आइए आप सबके अनुरोध पर सुनते हैं ये फिल्म का गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म हीरो से। आवाजें लता मंगेशकर मनहर उदास की, गीत आनंद बख्शी का, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है अनुरोध गीत। दोस्तों, ये पत्र हमारे पास आया है यादव मोहल्ला सनावत मध्य प्रदेश से। भेजने वाले हैं दिलीप मालाकार, योगेश मालाकार, सुनीता मालाकार और मुस्कान मालाकार। मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, जग्गी जगदीप, सुनीता शर्मा, जगमोहन प्रजापति। बहेड़ी से हैं अंजुम भाई, खालिदा बेगम, कहकशा, दानिश, आदिल, शफक। गनगोला से हैं आलिम खान, नेहा खान, शबाना खान, संजीदा खान, मुस्तफा खान, वली अहमद खान। मोहल्ला सड़क दाता गंज से हैं राकेश गुप्ता, सौरभ गुप्ता और गौरव गुप्ता। बक्सेना दाता गंज बदायूं से विमल ठाकुर। हिरण छप्पर यमुनानगर हरियाणा से हैं जयपाल श्रीमान, यशपाल श्रीमान और इनके साथी। क्रांतिकारी छात्र परिषद भूड़ बरेली से हैं रजत कुमार, ब्रह्मचार्य कुमार। निकट मोती मस्जिद कस्बा नवाबगंज जिला बरेली से नसीम अहमद अंसारी, मेरा जहां

खान भी, मोहम्मद रेहान, अलशिफा भी और मन्नत भी। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से हैं टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, नवनीत राय, अमनदीप, अनिल शर्मा कालका से, शुभचंद्र बजाज, बिट्टा बजाज और साहिल। खुर्जा उत्तर प्रदेश से हैं तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा। ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसावा

ग्राम शंकरपुर पोस्ट ओसावा जिला बदायूं तहसील दातागंज से हैं सोमेंद्र यादव, पुष्पेंद्र, आनंद, सनोज, अमन, सोनी, अंकिता, विनीता, अनीता, सुनीता, गुनगुन और सूरत श्री यादव। श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया है ग्राम आदर्श रोंधी पोस्ट आंवला चौबारी जिला बरेली से। भेजने वाले हैं प्रेमी भगवान दास, चंद्रपाल साहू, लाला जसपाल साहू, लीलाधर साहू उर्फ लेखराज, शिवम और इनके समस्त साहू परिवार के लोग और मित्रगण। दौलतबाग मुरादाबाद से हैं जाफर हुसैन, नईमा बेगम, कासिम अली और नदीम अली। लुधियाना पंजाब से ये पत्र हमारे पास आया है। भेजने वाले हैं अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, अधिभा कौर, बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वलीउल्ला फकीर, डब्लूउल्ला फकीर, परवीन आसमा फकीर, बुलंद शहर से बद्रू वली अंसारी, फर्जू वली अंसारी और फर्जी वली अंसारी। श्रोताओं, ये पत्र आया है पंडित नगला बाईपास मुरादाबाद से डॉक्टर अख्तर हुसैन सैफी, बहारुनिसा असलम हुसैन, डॉक्टर महमूद हसन और नाजिम अली। शिवाजी चौक राजीम छत्तीसगढ़ से हैं अनिल कुमार, अंजुलता, आदित्य कुमार और क्रिश श्रीवास्तव। अमरपुर पेंड्रा छत्तीसगढ़ से दीपक कुमार, रोशन कुमार, वंशीलाल, रेखा देवी, श्वेता देवी, सुरुचि देवी, दिशा और लबी श्रीवास्तव। श्रोताओं, ये पत्र आया है लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभानंद आर्य, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित। जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या और सरिता। सरिता के साथ में है अंतिमा। आइए, आप लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं बंजारन फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, आवाज है अलका याग्निक की।

श्रोताओं, ये पत्र हमारे पास आया है रिंगनी छत्तीसगढ़ से। भेजने वाले हैं दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। भिलाई छत्तीसगढ़ से है मुकेश शर्मा, सरिता शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा। पुराना होली चौक ग्राम करगेना करेली बरेली से हैं गणेश कुमार, शगुन शर्मा, कार्तिक शर्मा, इशिता शर्मा, युवराज जिज्ञास, संदीप शर्मा, चंचल शर्मा, सूरज चिंकी, अब्रार अंसारी, लाल मोहम्मद अंसारी। बड़ा बाम्बो गांव सुपाई साइन से देवेंद्र तांती, राकेश तांती, कुमारी निशा, प्रकाश और देवेश जी। बेड़ी से है हुकुम करमरकर, सुनीता करमरकर, हार्दिक करमरकर, प्राची और तनु करमरकर। मोहल्ला मलुकपुर गली जुग्गर निकट मस्जिद शेर खां बरेली से है बेबी बाजी अनम, इरम, परवीन, गुलफशा, तैबा नूर, तमन्ना आलम और हसान। पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से है मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंतशा, रमेश गौड़, मोहम्मद शादाब खत्री। मछली गोदाम कैदी मुंडा रायगढ़ से हैं भाई पुरुषोत्तम सिंह, श्रीमती उषा सिंह, ऋषभ सिंह, लिलू सिंह, रितु सिंह। धनबाद झारखंड से हैं अमित कुमार सिंह, प्रियंका सिंह, बेबी समृद्धि। झाझा बिहार से हैं संजीव कुमार सिंह, पूजा सिंह, रवि, आरती सिंह। अजीत नगर मलौट पंजाब से हैं छिंदर सिंह छिंदा, सतनाम कौर, दिलप्रीत सिंह, गगनदीप कौर। पटेल नगर मलौट पंजाब से हैं डॉक्टर रमेश कुमार जजौरिया, गीता रानी जजौरिया, गगनदीप बेबी आरजू।

सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम आशिया खान, हदिया खान, असमा सालिया शुएब खान, पोतरा मुश्तबा खान, सादिक भाई, शाहिद भाई, ग्राम बुटला दौलतपुर पोस्ट उजानी जिला बदायूं से हैं, टिंकू भाई, भास्कर भाई, शुभम कुमार, मोहित माथुर, योगेंद्र कुंवर पाल, रुपेंद्र, रितु शर्मा, केके शर्मा, चौबे सिंह, ओशी शाके, रमेश साहू, मोनिका माथुर, नन्नी सी परी, अनिष्का माथुर। श्रोताओं, ये पत्र आया है राजेंद्र नगर तालाब के पास पटेल नगर रेलापीर रोड जिला बरेली से। भेजने वाले हैं पप्पू भाई, आर्यन, शिवू, रेहान, मोहिन, वालू, तहसीन भाई, मन्नू, शुभ, प्रतिज्ञा और आरती। परौली जिला बदायूं से हैं राम रक्षपाल मिश्र। दिल्ली शहर मोरी गेट से हैं कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। ये पत्र आया है ग्राम करा पंजाब से। भेजने वाले हैं गुरदर्शन लाल, सुनीता, शम्मी, रजनी, आकाशदीप, अनहत, पोतरा, गुरशबर। कालीबाड़ी बरेली उत्तर प्रदेश से हैं राजीव शर्मा, एडवोकेट विनोद कुमार, राकेश राजपूत, हेमलता राजपूत, रूपा रानी, वैभव सुरभि, केशव राजपूत। प्रेम निकेतन वजीरगंज से सुबोध कुमार वाषणे, अंजू वाषणे, ईशा वाषणे, शिवम, रितेश ब्रिजपाल वाषणे, नेहा और प्रतीक। गांधी चौक रोपड़ पंजाब से है हरदेव मिका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक, मीका बिरक। अहमदपुर खैगांव खंडवा से हैं कैलाश फूलमाली, दीपक कृष्णा और समर फूलमाली। श्रोताओं, ये पत्र आया है मेन रोड बनोसा दरियापुर जिला अमरावती से है यश चौहान, अंश चौहान, संदीप चौहान और माधवी चौहान। वजीरगंज जिला बदायूं उत्तर प्रदेश से हैं प्रेम कमल वाषणे, सुशीला कमल वाषणे, प्रभात कमल, अमरीश सलोनी, सचिन कमल, नीरू कमल, देविका, कार्तिक, वेदरिचा और ऐश्वर्या। ड्राइवर कॉलोनी निजामाबाद से हैं शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, शेख वाहब, नूर जहां बानो। बदलापुर मुंबई से हैं ये बंटी गवाणकर, सुपाश पोतेवार। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गवाणकर, राही सरिता गवाणकर, सिद्धांत गवाणकर, प्रिंस एकांश गवाणकर। विश्वकर्मा नगर नागपुर से भेजने वाले हैं शैलेश वैशाली, श्वेता, सुमित गवाणकर, कुमारी धवनी गवाणकर, परी। वार्ड नंबर 6 आंवला बजरिया से हैं मोहम्मद तारिक अंसारी, महफूज अंसारी, आरिफ अंसारी और आसिफ अंसारी। राज पैलेस मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक वर्मा, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से हैं मुन्ना भाई सोनकार, पिंकी सोनकार, रितेश कृष्णा और पीहू सोनकार और समस्त परिवार और मित्रगण। आइए आप सब लोगों के अनुरोध पर सुनते हैं तहकीकात फिल्म का ये गीत, जिसे आवाज दी है विनोद राठौर ने, गीत फैज अनवर का, संगीत अनु मलिक का।

श्रोताओं, अनुरोध गीत कार्यक्रम यहीं पर अब समाप्त होता है। अपनी रेडियो दोस्त मुनव्वर जहां को दीजिए इजाजत। अगले कार्यक्रमों की कमान देवेंद्र रावत के हाथ।

अभी आप सुन रहे थे अनुरोध गीत मुनव्वर जहां के साथ। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। लीजिए प्रस्तुत है रसरंग। रसरंग में पहली प्रस्तुति है कव्वाली कैसर आजाद बदायूं के स्वर में।

0: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य।
1: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
2: आपकी चाय।
3: EMI किराया कैसे मैनेज करूं?
2: एक जुगाड़ है, अच्छा पैसा मिलेगा।
3: कैसे?
2: अपना बैंक डिटेल्स दो, कुछ लोग पैसे भेजेंगे, उनके बताए अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, कमीशन मिलेगा।
3: इतना इजी? काहे का इजी, ये तो मनी म्यूल है।
2: इल्लीगल पैसा घुमाते हैं दूसरे के अकाउंट से, अपराध है, जेल हो सकती है।
3: ना भाई ना।
4: अपने बैंक अकाउंट को सेफ रखें, किसी को यूज ना करने दें। RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: हमारी जनगणना हमारा विकास।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
8: कानूनी मदद और सलाह दिलाती, टेलीनो हमें सही राह दिखाती।
9: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
10: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSC सेंटर से संपर्क करें। न्याय विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
11: NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30
12: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
13: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
12: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।

0: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
0: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: रसरंग में अगली प्रस्तुति है अमीचंद शालिनी शर्मा के स्वर में ये लोकगीत।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार पूर्वाह्न 11:30।
4: FM 100.4 MHz यानी आकाशवाणी बरेली आपके सेवा में सदैव तत्पर है। आपके फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम, अनुरोध गीत, आपकी पसंद, आपकी बात आकाशवाणी के साथ को श्रोता न केवल सुनते हैं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेते हैं। हमारे केंद्र से हर वर्ग के लिए कोई न कोई कार्यक्रम प्रसारित होता है। युवा साथियों के लिए युववाणी, बहनों के लिए नारी संसार, किसान भाई बहनों के लिए ग्राम जगत, और अब आप जिस कार्यक्रम में चाहें उस कार्यक्रम में जब चाहें तब अपने प्रोडक्ट का विज्ञापन भी करा सकते हैं। जी हाँ, बहुत ही किफायती दरों में विज्ञापन बुक करें आकाशवाणी के बरेली केंद्र से। ज्यादा जानकारी के लिए हमें ईमेल करें। हमारी ईमेल आईडी है airbareli@gmail.com।
5: कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति है कैसर आजाद बदायूनी के स्वर में ये कव्वाली।

0: रस रंग, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम आकाशवाणी का। ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: पहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं महान संगीतकार अनिल बिस्वास को। आप सभी जानते हैं ना, आज अनिल बिस्वास की याद का दिन है।

अभी आपने फिल्म तराना का दो गाना सुना। आवाजें तलत महमूद और लता मंगेशकर की थी। गीतकार थे प्रेम धवन और संगीत दिया था अनिल बिस्वास ने। अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको प्रेम धवन का ही लिखा गीत सुनवा रहे हैं। स्वर लता मंगेशकर का और ये फिल्म है परदेसी।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
0: कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज, फिल्म का नाम है नाज। गीत को लिखा है प्रेम धवन ने और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

कार्यक्रम का अगला गीत हमने लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में फिल्म लाजवंती से लिया है। कृपया इसे दोबारा सुने, फिल्म का नाम है लाजवाब।

सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला गीत अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में प्रेम धवन का लिखा हुआ, स्वर लता मंगेशकर का और फिल्म का नाम है जीत।

0: लगाए मस्त पवन है चंचल धारा।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग। हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
4: कार्यक्रम का अगला गीत, फिल्म का नाम है अनोखा प्यार, आवाज लता मंगेशकर की, गीतकार हैं जिया सरहदी और संगीत अनिल विश्वास का।

आशा भोसले की आवाज में फिल्म जासूस का गीत सुनिए। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और धुन बनाई है अनिल विश्वास ने।

अनिल बिस्वास के संगीत निर्देशन में हम आपको मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत सुनवा रहे हैं। आवाज गीता दत्त की है, फिल्म का नाम है हीर।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हमने लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म जलती निशानी से लिया है। गीत को कमर जलालाबादी ने लिखा है और धुन है अनिल विश्वास की।

0: यह है राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आप सुनेंगे कार्यक्रम मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत
0: मनचाहे गीत
1: मनचाहे गीत।
0: मनचाहे गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मंदाकिनी जोशी का प्यार भरा नमस्कार।
2: कार्यक्रम शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातें।
3: एक व्यक्ति या परिवार की चिट्ठियां एक महीने में एक बार ही शामिल की जाएंगी।
2: एक चिट्ठी में केवल अपने परिवार के नाम लिखें, दूसरे शहर के, दूसरे व्यक्तियों के, अपने दोस्तों के नाम नहीं लिखें, इन्हें शामिल नहीं किया जाएगा।
3: हम अपने हर श्रोता की चिट्ठियों को शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे, पर इसमें समय लग सकता है, कृपया धैर्य बनाए रखें।
4: और हाँ, हस्तलिखित चिट्ठियों को प्राथमिकता दी जाएगी, कृपया सील ठप्पे वाले और छपे हुए पोस्टकार्ड ना भेजें। अंतरदेशीय नहीं, केवल पोस्ट

0: कार्ड भेजे। और ये चिट्ठियां आपको भेजने कहाँ है?
1: कार्यक्रम मन चाहे गीत,
2: विविध भारती राष्ट्रीय सेवा,
0: पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091।
2: तो शुरू करते हैं आज का मन चाहे गीत। कार्यक्रम का पहला गीत हमने आप सबकी ख्वाहिश पर चुना है। फिल्म का नाम है बॉबी, आवाजें लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की। गीत को आनंद बख्शी ने लिखा है और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं आपसे भी। डोंगरगढ़ गांव, जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। और ये खत आया है कृष्णबाग कॉलोनी इंदौर से नियाज मोहम्मद मंसूरी, सरताज बानू, उबैद, रजीह जुनैद, अलीना, आयत, मुआज और मंसूरी का। और इसी गीत को सुनना चाहते हैं लोक सिटी उदयपुर यानी लेक सिटी उदयपुर राजस्थान से नरोत्तम गौड़ और उनके परिवार वाले। आइए आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है,
3: मुझे कुछ कहना है,
4: मुझे भी कुछ कहना है।
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: पहले तुम,
3: पहले तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम,
3: तुम,
4: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप घर से निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
3: अच्छा मैं कैसी हूँ?

फिल्म बॉबी का दो गाना अभी आपने लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह का गाया हुआ सुना। अगला खत हमें मिला है उल्हास नगर से पुरुषोत्तम शामतकर, ज्योति शामतकर और चेतन शामतकर का। ये है डोंगरगांव जिला राजनांदगांव से, यानी बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से आप हैं रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता देवांगन, डिंपल देवांगन और इनके परिवार वाले। और ये खत हमें मिला है धमतरी से रामचंद्र माखीजा, काफिर आर्य, श्रीमती सविता बेबी, स्वाति माखीजा और पूरे माखीजा परिवार का। आप सभी सुनना चाहते हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर को फिल्म मन मंदिर में, गीतकार राजेंद्र कृष्ण, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

मनचाहे गीत कार्यक्रम का अगला गीत आवाज लता मंगेशकर की और फिल्म का नाम कच्चे धागे। गीत रचना आनंद बख्शी की और संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। सुनना चाहते हैं छत्तीसगढ़ सिमगा से रमेश कुमार यादव, श्रीमती माया यादव, रिंकू सन्नी, कोमल यादव। आप हैं गांव घिटोरनी नई दिल्ली से साबिर हुसैन मिराजी, मोहब्बत बेगम, जावेद, शनाया, तखान और इनके परिवार वाले। और जिला खंडवा मध्य प्रदेश से जगन्नाथ पटेल, कमला पटेल, अंतिम, ज्योति, शुभम, देवी किशन, भावना, मनमानस और कनिका पटेल। आप सभी सुनिए अपनी पसंद का ये गीत।

0: विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन चाहे गीत।
1: 2 जून सखी सहेली के आंगन में सजेगी खुशियों की रंगोली, हंसी की खनक, यादों की महक, बातों में घुलेगी आत्मीयता की रोली। दो जून विविध भारती के सजीव प्रसारण में आएंगी अपने अभिनय से हम सबको मोहित करने वाली मशहूर अभिनेत्री हिमानी शिवपुरी।
2: नमस्कार, मैं हूँ हिमानी शिवपुरी और मैं आपसे मुखातिब हो रही हूँ विविध भारती के सखी सहेली कार्यक्रम की वर्षगांठ पर 2 जून को।
1: जी हाँ, हिमानी शिवपुरी होंगी हमारी विशेष सखी। 2 जून सखी सहेली की वर्षगांठ पर हम जलाएंगे स्मृतियों के दीप।
3: बधाई हो बधाई जन्मदिन की तुम।
1: जश्न के गुब्बारे उड़ेंगे हिमानी जी के संग।
3: जन्मदिन तुम्हारा, मिलेंगे लड्डू हमको।
1: हिमानी जी साझा करेंगी अपने दिल की बात, तो जरूर सुनिएगा 2 जून विशेष सखी सहेली दिन में 3 बजे।
0: अमर गीतों के रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मिथुन प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
4: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 31 मई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: जो शहीद हुए
0: मन चाहे गीत कार्यक्रम में अगला गीत सुनना चाहते हैं भोपाल से सुधीर, श्रीमती मालती, चंचल, नवनीत, पुविन, ईशी, गौरिक और इनके अन्य साथी। दतरेंगी छत्तीसगढ़ से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा। हम अपने सभी श्रोताओं से ये करबद्ध अनुरोध करना चाहेंगे कि कृपया अपनी हैंड राइटिंग साफ लिखें ताकि हमें कोई भी नाम या जगह का नाम पढ़ने में किसी भी प्रकार की असुविधा न हो और सही नाम हम पढ़ सकें। हमें उम्मीद है कि अगली बार जब भी आप लिखेंगे

अपनी हैंड राइटिंग में सुधार करके अपना नाम और अपना पता लिखेंगे, गाने के बोल, कलाकारों के नाम, जो भी आप लिखते हैं साफ और सुंदर हैंड राइटिंग में लिखें। तो आइए सुनते हैं इनकी पसंद पर फिल्म भीगी पलके का गीत। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं, एम जी हशमत की गीत रचना है। सुनते हैं ये गीत। जुगल किशोर और तिलक राज का संगीत है।

इस कार्यक्रम के आखिर में सुनना चाहते हैं आप सभी लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में, गीत रचना राजा मेहदी अली खान की है और धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। सुनने की ख्वाहिशमंद आप सभी भाटापारा से मोतीलाल यादव, डॉक्टर बसंत, विनय ठाकुर और इनके परिवार वाले, वहीं से इनके मित्र सुब्रत चौधरी भी इस गाने को सुनना चाहते हैं। आप हैं राजावत कॉम्प्लेक्स नई सड़क एमपी शाजापुर से मनमोहन राजावत राज, मधु राजावत और राशि रक्षित। इसी गीत को सुनना चाहते हैं छत्री तालाब अमरावती से साधना रानी, किशोर गुप्ता, नेहा गुप्ता, कोमल गुप्ता और ये हैं सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सभी सुनिए लता मंगेशकर को फिल्म अनीता में।

0: इस गाने के साथ ही आज का मनचाही गीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मंदाकिनी जोशी को दें इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार।
1: मन चाहे गीत।
2: मन चाहे गीत।
1: मन चाहे गीत।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम नाट्य तरंग। नाट्य तरंग में आइए आप सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये है मलयालम नाटक अग्निवलयम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सी एल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक भारत रत्न भार्गव। तो चलिए सुनते हैं नाटक अग्निचक्र का दूसरा भाग।
1: क्यों डेजी, इस तरह उदास क्यों रहती हो?
2: नहीं तो मैं कुछ सोच रही थी।
1: देखो डेजी, बहुत सोच विचार के बाद ही मैं इस त्याग के लिए तैयार हुआ था। अब भी अगर तुम इस तरह उदास बनी रही तो मुझे लगेगा कि तुम्हें सुखी बनाने की मेरी कोशिश असफल रही है और इससे मुझे बहुत निराशा होगी। मुझे लगता है ये एक गिटार तुम्हें बड़ी वेदना पहुंचा।
2: नहीं, बल्कि ये तो मुझे मुझे बहुत सांत्वना देता है।
1: डेजी, बीती हुई बातों को भुला देना चाहिए। नए जीवन को सानंद स्वीकार करने पर ही जीवन का अर्थ मिलेगा। लो इधर देखो, देखो ना, हाँ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? ओ डेजी, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा कितना सुंदर लगता है। अरे हाँ,

0: मैं सोचता हूँ 2 हफ्ते की छुट्टी ले लूँ। हम दोनों के लिए चेंज थोड़ा जरूरी है। हम लोग कुछ दिन ऊटी में आराम करेंगे, क्या कहती हो?
1: ऑपरेशन से पहले बेनी ने भी ऊटी जाने का प्रोग्राम बनाया था।
0: ओह नो नो नो नो, तब ऊटी नहीं जाएंगे। वहां पहुंचकर तुम्हें तरह तरह की दुखद यादें तंग करेंगी। लेट्स गो समवेयर एल्स। हाँ, मैसूर या बेंगलोर का प्रोग्राम बनाए तो कैसा रहेगा?
1: मेरा मन कहीं नहीं लगता। आप कोई प्रोग्राम नहीं
0: और
1: बनाए।
0: डेजी, यही तो मौका है जब हम कुछ घूम फिर सकते हैं। अब बाद में जब बाल बच्चे हो जाएंगे तो गृहस्थी से निकलना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात कहूं, अगले साल तो हमारे एक बच्चा भी होना चाहिए, प्यारा प्यारा दुलारा सा नन्ना मुन्ना। हाँ
1: प्यारा प्यारा सा दुलारा सा
0: देसी।
1: छोड़ दीजिए ना।
0: अरे अरे सुनो तो।
1: नहीं सुनती।
0: ओफो, अरे बात तो सुनो।
1: बेनी देखो देखो, तुम्हारी शरारतें बहुत बढ़ रही हैं।
0: ओ डेजी डेजी माय लव। डेजी, हमारे बच्चा नहीं होगा क्या?
1: ईश्वर की कृपा हुई तो
0: सुनो, मुझे तो नन्ना सा प्यारा सा तुम्हारे जैसा।
1: क्यों, तुम्हारे जैसा क्यों नहीं?
0: अच्छा बाबा, हम दोनों जैसा।

0: डेजी, तुम इस तरह खामोश और परेशान से क्यों हो?
1: नहीं कुछ नहीं।
0: अब चलो सिनेमा चले।
1: नहीं, मेरी तबीयत ठीक नहीं, मन बहुत अशांत है।
0: अरे मन में शांति लाने के लिए तो कह रहा हूं। कम ऑन डेजी, दूसरी साड़ी पहन लो, सिनेमा चलेंगे, जल्दी करो। लो ये साड़ी पहन लो। डेजी, व्हाट इज दिस, क्या है?
1: बेनी की प्रेजेंट की।
0: ओह डेजी, माय गॉड।

0: सिनेमा गई। मैं लॉरेंस को निराश नहीं करना चाहती थी। मुझ निराश्रित विधवा को डॉक्टर लॉरेंस ने सहर्ष स्वीकार किया था। नए जीवन और नई परिस्थितियों में मैं घुल मिल गई और इस तरह एक साल आनंद पूर्वक बीत गया। मैंने एक बच्चे को जन्म दिया, लेकिन शिशु जन्म के बाद परिवार की शांति में विघ्न पड़ गया।
1: कैसे?
0: शायद वो एक आंधी का आरंभ था। सुनिए, बच्चे की बीमारी कम नहीं हो रही है।
2: कौन कहता है?
0: मुझे ऐसा लगता है।
2: मुझे तो ऐसा नहीं लगता,
0: लेकिन वो उसी तरह निढाल पड़ा
2: तो पड़ा रहे, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है।
0: इस तरह पड़े रहने से क्या बीमारी कम होगी?
2: भाई उसे दवा दी जा रही है,
0: लेकिन इस दवा से तो कोई आराम नहीं है।
2: इसका फैसला करने वाली तुम कौन होती हो? मैं डॉक्टर हूँ, मैं जानता हूँ मेरी दवा कितनी इफेक्टिव है।
0: आपकी तेजी आपकी बातों में दिखती है, दवा में
2: नहीं।
0: जोर से मत बोलिए। दो दिन से वो दवा दी जा रही है, लेकिन अभी तक बेबी को जरा सा भी आराम नहीं आया।
2: तो क्या करूँ मैं, आराम इंजेक्ट किया जाए?
0: क्यों इस तरह गर्म हो रहे हो? बच्चे को एक बार एग्जामिन तो कर लो।
2: तुम एग्जामिन कर लो खुद, इत्मीनान हो जाएगा तुम्हें। ये लो स्टेथोस्कोप।
0: अगर इच्छा नहीं है तो सिर्फ मना कर देना काफी।
2: इच्छा नहीं है
0: एग्जामिन करने की या बच्चे की?
2: कुछ भी मतलब निकाल लो।
0: अपने अबोध बच्चे से इतना निष्ठुर व्यवहार।
2: अपने बच्चे से? माय फुट, तुम्हारे बच्चे से कहो तो ज्यादा ठीक रहेगा।
0: क्या कहा? मेरा बच्चा तुम्हारा बच्चा नहीं है।
2: दूसरों की नजरों में कानून के अनुसार भी है, लेकिन आत्मीयता के दृष्टि से नहीं है। मैं इतने क्रूर बच्चे का पिता होने का भार नहीं ढो सकता।
0: दुनिया को एक सुंदर सा बच्चा दिखाना होगा, इस कंडीशन पर मैं मां नहीं बनी हूँ। ईश्वर ने जो हमें दिया है उसे हमें स्वीकार करना होगा।

0: प्यार करना होगा।
1: मैं ऐसे बच्चे को प्यार नहीं कर सकता।
0: लेकिन मैं माँ हूँ, मैं प्यार किए बिना नहीं रह सकती।
1: अच्छा छोड़ो, वो डॉक्टर रामदास आ रहे हैं, उनके सामने झगड़ा बंद करो। उन्हें कम से कम ऐसा लगना चाहिए जैसे हम बड़े प्रेम से रहते हैं। हेलो डॉक्टर, आइए आइए डॉक्टर रामदास।
2: भाई वाह वाह वाह, क्या रेडीमेड हंसी के साथ खड़े हैं आप।
1: रेडीमेड हंसी? अरे भाई हमने तो आपको गेट पे देख लिया था। क्योंड़े जी?
3: जी हाँ।
2: भाई बहुत दिनों से इधर आने की सोच रहा था मैं।
3: चलिए कम से कम आज तो आया। आप इतनी जल्दी मुझे भूल जाएंगे सोच भी नहीं सकती थी।
2: अरे ऐसे क्यों कह रही हो डेजी, प्लीज डोंट मिसअंडरस्टैंड मी। भाई जैसे ही फुर्सत मिली मैं चला आया। अरे हाँ ये लो बच्चे के लिए कुछ खिलौने।
1: अरे भाई वो तो अभी खेलने लायक भी नहीं हुआ है।
2: ओ डॉक्टर, वो खुद नहीं खेल पाएगा लेकिन दूसरों को तो खेलते हुए देख लेगा है? ये तो पालने पर लटकाए भी जा सकते हैं। अरे चाबी भरकर छोड़ दो, ये सब खिलौने लट्टू की तरह एक साथ घूमने लगेंगे।
3: एक साथ घूमने लगेंगे? आपने बहुत सोच समझ कर खिलौने छांटे होंगे।
2: अरे हाँ डेजी, बच्चा कहाँ है? सो रहा है?
3: वो तो बहुत बीमार है। दो तीन दिन हो गए बुखार चढ़ा हुआ है, हंसना खेलना सब बंद है।
1: अरे भाई बुखार चढ़ने पर तो हंसना खेलना बंद हो ही जाता है, क्यों डॉक्टर?
2: चलिए एक बार मैं भी देख लूँ। ओ लगता है सोया हुआ है। डॉक्टर लॉरेंस बुखार अभी भी है?
1: Well, but that doesn't matter, doctor. A slight fever only. मैंने दवा दे दी है वैसे।
2: अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे को जरूरी काम है। चलो डेजी।
1: ओके
3: अच्छा
1: बाय डॉक्टर, बाय।
3: ये अभिनय और कितने दिन चलेगा?
1: जब तक जरूरी होगा।
3: मुझसे अब और नहीं सहा जाता। कई दिनों से आप इस तरह का अभिनय करते आ रहे हैं, आखिर ये नाटक क्यों?
1: अपने लिए।
3: लेकिन अब मेरी बर्दाश्त से बाहर है ये।
1: होगा, ये मेरी इच्छा है और आज्ञा भी।
3: मेरी इच्छा को धूल में मिलाने वाले आप मुझे आज्ञा दे रहे हैं?
1: तुम्हारी कौन सी इच्छा मैंने पूरी नहीं की डेजी?
3: आपसे कहा था जरा बच्चे की जांच कर लो।
1: जांच करके अब कोई खास नतीजा नहीं निकलेगा।
3: ये क्यों नहीं कहते कि आप जांच करना ही नहीं चाहते? कैसी विडंबना है ये, अपने बच्चे को कुरूप देखकर एक डॉक्टर पिता उससे दूर खड़ा रहना चाहता है।
1: जैसे तुम मेरी निराशा नहीं समझ सकते।
3: डॉक्टर रामदास अभी आए थे, उन्होंने भी बच्चे को देखा था लेकिन उन्होंने उसकी कुरूपता के बारे में एक शब्द भी नहीं कहा।
1: हमारे सामने कुछ नहीं कहा, यही ना, समझदार आदमी है वो। लेकिन क्या ये बच्चे के सुंदर होने का सर्टिफिकेट है?
3: बंद भी करो ये सब। बाहरी चमक को सौंदर्य समझने वाले आप।
1: तुम शायद कुरूपता में सौंदर्य देख सकती हो डेजी, बेनी में भी तो तुमने सौंदर्य देखा था।
3: बेनी को यहाँ क्यों घसीट लाया?
1: मैं घसीट लाया? ये कहो बेनी को तुमने हर जगह बसा रखा है, अपने मन में, विचारों में, इस कमरे में, इस घर के कोने कोने में बेनी बसा हुआ है। और शादी के बाद भी तुमने बेनी के कब्र पर जाने की इच्छा की थी।
3: क्या मैंने कोई गलत बात की थी? इसमें बिगड़ने की क्या बात है?
1: तुम्हारा निकट का संबंध किससे ज्यादा है, मरे हुए बेनी साथ या जीवित डॉक्टर लॉरेंस के साथ?
3: क्या सवाल कर रहे हो तुम?
1: तुमने मन में कौन बसा रखा है, मैं या बेनी?
3: तुम्हें क्या हो गया है?
1: तुम उससे ज्यादा बेनी के फोटो से प्यार करती हो, तुम इसकी पूजा करती हो। लेकिन लेकिन अब ये सब नहीं होगा, ये फोटो अब यहां नहीं रहेगी।
3: मिल गया संतोष। मुझे क्षमा करना बेनी, मुझे दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए थी। जीने के लिए तुम्हारी मधुर यादें काफी थी बेनी। कौन कौन है?
2: डेजी एक चीज भूल गया था मैं, ये डायरी। अरे लॉरेंस कहाँ है?
3: अभी बाहर गए हैं डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेरी एक शंका दूर करनी है।
2: कैसी शंका?
3: मेरा

0: क्या कुरूप क्यों है? क्या क्या बेनी को सदा याद करते रहने से ऐसा हुआ है डॉक्टर?
1: ओह डेजी, तुम्हारा सवाल बड़ा विचित्र है।
0: लेकिन ऐसा हो सकता है क्या डॉक्टर?
1: नहीं।
0: हाँ, मुझे तो लगता है लॉरेंस को ऐसी कुछ शंका है।
1: लॉरेंस को? नो नो नेवर, वो ऐसी कोई शंका नहीं कर सकता।
0: तब ये हुआ कैसे डॉक्टर?
1: डेजी

0: हुआ कैसे डॉक्टर?
1: बिजी, इसके कई कारण हो सकते हैं। पति या पत्नी के परिवार में पहले किसी का रंग काला रहा हो या फिर कोई बहुत कुरूप रहा हो, तभी यह संभव हो सकता है कि उसकी संतान में या संतानों की संतान में इस तरह की एबनॉर्मेलिटी आ जाए।
0: आपकी ये बात लॉरेंस को समझा सकेंगे डॉक्टर?
1: लेकिन तुम्हारी आवाज क्यों कांप रही है? ये तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों हो रहा है डेजी? क्या हुआ? बोलो डेजी, बोलो क्या हुआ?
0: इस बच्चे के जन्म के बाद से ही लॉरेंस मुझसे और इस बच्चे से नफरत करने लगे।
1: क्या?
0: हाँ डॉक्टर, आजकल मैं एक अग्नि चक्र में से निकल रही हूँ। पहले जब आप आए तब हम केवल अभिनय कर रहे थे।
1: क्या?
0: लेकिन वास्तव में डॉक्टर, डॉक्टर आप मुझ पर एक कृपा कीजिए।
1: बोलो।
0: प्लीज डॉक्टर, मेरे बच्चे को एग्जामिन कर लीजिए।
1: मैं?
0: डॉक्टर, मेरे लिए, मेरे बच्चे के लिए डॉक्टर, उसकी हालत ठीक नहीं है। प्लीज डॉक्टर उसे देख लीजिए डॉक्टर।
1: नहीं नहीं डेजी, नहीं, ये ठीक नहीं है। बच्चा डॉक्टर लॉरेंस के ट्रीटमेंट में है। मैं ऐसा करना ठीक नहीं समझता। आई एम सॉरी।
0: प्लीज डॉक्टर, प्लीज मेरे बच्चे को बचाइए डॉक्टर। देखिए ये खिलौने आप इस बच्चे के लिए लाए हैं ना, उस बचा लीजिए डॉक्टर प्लीज।
1: नहीं डेजी, नहीं डेजी, ये ठीक नहीं है।
0: प्लीज डॉक्टर।
1: अच्छा चलो, मैं बच्चे को देख लेता हूँ।
0: डॉक्टर रामदास बच्चे को एग्जामिन कर ही रहे थे कि बीच में लॉरेंस लौट आए। उन्हें देखते ही वो आग बबूला हो गए। उन्होंने डॉक्टर रामदास का लिखा हुआ प्रिस्क्रिप्शन फाड़ डाला और रामदास को बड़ी निर्दयता पूर्वक घर से बाहर निकाल दिया। और तब मैं अपनी वेदना नहीं छिपा सकी। नतीजा ये हुआ, लॉरेंस ने कस के एक तमाचा मेरे गाल पर जड़ दिया। और कुछ बाद मेरा कुरूप बच्चा दुनिया से चल बसा। मेरे दुख की कोई सीमा न रही। बच्चे के खाली पालने को देखकर मैं रोती। एक दिन मैंने बेनी के गिटार को बच्चा मानकर पालने पर रख दिया और लोरी गाने लगी। तभी लॉरेंस आ धमकी और गिटार को निर्दयता से जमीन पर पटक कर तोड़ डाला। बोले ये बेनी का प्रेत है।
2: बेनी का प्रेत?
0: हाँ, मैं चीख उठी। थोड़ी देर बाद जब मैंने घर से बाहर निकल जाना चाहा तो देखा सामने से डॉक्टर रामदास आ रहे हैं। मैं खामोश एक तरफ खड़ी हो गई।
1: डॉक्टर लॉरेंस?
2: ओ, डॉक्टर रामदास।
1: उस दिन तुमने मुझे जिस तरह दुत्कार कर निकाल दिया था उसके बाद मेरा यहां आना अशिष्टता ही समझी जाएगी।
2: बैठ जाइए
1: लॉरेंस। आप जैसा चाहते थे बच्चा चल बसाना
2: जी,
1: शायद ये सोचकर कि मेरा ट्रीटमेंट कहीं बच्चे को बचा न ले, आपने मेरा प्रिस्क्रिप्शन फाड़ दिया था।
3: नहीं तो, लेकिन बिना बताए मेरी गैरहाजिरी में आप दोनों को उस खेल ने, उस अभिनय ने मुझे बहुत उत्तेजित कर दिया था और मैं
1: आपको अरे जिसने अभिनय ही अपना स्वभाव बना लिया है, अगर ऐसा लगा तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं।
3: समझा नहीं?
1: कोई कुछ समझ न सके, इसी में तो आपकी जीत है। बिना किसी स्टेज फाइट के तुमने जीवन मंच पर कितना बढ़िया अभिनय किया लॉरेंस।
3: What do you mean, डॉक्टर रामदास, आप क्या कह रहे हैं?
1: बेनी को आपने ही तो मारा था ना
3: डॉक्टर।
1: कांपो नहीं, मेरे सच बोलने पर चौंक क्यों पड़े तुम?
3: नहीं नहीं, पता नहीं आप कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं।
1: डॉक्टर लॉरेंस, काश इस समय तुम अपना चेहरा देख सकते। फैक्ट्स कलेक्ट करने के बाद ही मैं ये बात अधिकार पूर्वक कह रहा हूं।

0: रोंगटे खड़े कर देने वाली इस रहस्य की सूचना मुझे तुम्हारे असिस्टेंट डॉक्टर आशीष ने दी।
1: स्टॉप दिस नॉनसेंस आई सेड डॉक्टर।
0: नो, इट इज नॉट नॉनसेंस बट इट ट्रुथ, ए बर्निंग ट्रुथ।
1: डॉक्टर रामदास, आधार रहित आरोपों से लोगों को बदनाम मत कीजिए। क्या क्या क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मैंने उसे जहर देकर मार डाला?
0: नहीं, नहीं, तुम इतने बेवकूफ नहीं कि जहर देकर मार डालो। ऐसे ऑपरेशन के बाद तुमने रोगी को वो इंजेक्शन दिया जो उसे कभी नहीं देना चाहिए था। क्यों, ये सच है ना? दो घंटे के बाद ही पेशेंट की हालत बिगड़ने लगी। ड्यूटी नर्स दौड़कर बुलाने के लिए गई, लेकिन उस वक्त तक आप बाहर जा चुके थे। ये सब आपने जानबूझ कर ही किया। डॉक्टर आशीष दौड़े आए, लेकिन उस वक्त तक बेनी मर चुका था।
1: डॉक्टर, डॉक्टर, दैट वाज मेयर डेथ। एक बिल्कुल नेचुरल डेथ थी।
0: नो, इट वाज नॉट अ मेयर डेथ, इट वाज अ क्लियर मर्डर।
1: डॉक्टर, नो, नो डॉक्टर,
0: तुमने एक हत्या की है डॉक्टर लॉरेंस, तुमने एक हत्या की है। और सारी जानकारी हासिल करने के बाद ही मैं ये बात कह रहा हूं। डेजी के सौंदर्य पर मोहित होकर तुमने बेनी की हत्या की।
1: नो, नो, नो।
0: क्यों डॉक्टर, सच है ना? सच है ना? तुमने सबसे यही कहा कि अपने घनिष्ठ मित्र के स्नेह से उरण होने के लिए तुमने उसकी विधवा से विवाह कर लिया। क्यों बोलो? अरे तुम पसीने में डूब क्यों गए और इतना हाँप क्यों रहे हो? क्यों डॉक्टर लॉरेंस, ये सब अक्षर अक्षर सच है ना?
1: डॉक्टर, डॉक्टर
0: लॉरेंस, मैं कहता हूं साफ साफ कह दो, ये सच है ना? ये सच है ना?
1: सच है, सच है डॉक्टर। लेकिन उससे उससे गलती हो गई डॉक्टर, गलती हो गई।
0: बेचारा बेनी, मैं ये बातें करने इसलिए ऐसे वक्त पर आया हूं जब तुम्हारी तुम्हारी पत्नी घर पर नहीं है। खैर डॉक्टर लॉरेंस, जो कुछ हो गया सो हो गया। भविष्य में एक अच्छे पति होकर शराफत के साथ जीवन बिताओ, समझे? इस सेंसिटिव लड़की को और ज्यादा तकलीफ मत पहुंचाओ।
1: डॉक्टर, मुझसे गलती होगी डॉक्टर, लेकिन प्लीज डॉक्टर, प्लीज ये सब बातें आप किसी और से न कहिएगा।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू।
0: नहीं कहूंगा।
1: थैंक यू डॉक्टर।
0: क्योंकि ना कहने में ही तुम्हारा भला है। अच्छा डॉक्टर लॉरेंस, मैं अब चलता हूं।
1: मैंने क्या कर डाला है? मैं क्यों भूल गया कि इंसान जो भी करता है उसकी उसकी कीमत एक न एक दिन उसे चुकानी होती है। अरे अरे डेजी, अरे इतनी जल्दी कैसे लौट आई?
2: तुम्हारी आवाज ने मेरे पांव रोक दिए, इसलिए जा नहीं सकी।
1: डेजी, डेजी मुझे बहुत घबराहट हो रही है।
2: अरे इतनी सी देर में क्या हो गया?
1: वो तुम्हारे जाने के बाद मुझे अपने ऊपर ग्लानी होने लगी। देखो डेजी, मुझे तुमसे इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो डेजी।
2: लॉरेंस, तुम अचानक,
1: मैंने तुमसे कितनी कड़वी बातें कही, तुम्हें मैंने कितनी तकलीफ दी।
2: मैंने भी तो तुमसे झगड़ा किया।
1: हाँ, लेकिन लेकिन अब मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं करूंगा, कोई कोई कष्ट नहीं दूंगा डेजी।
2: मैं भी तुम्हें,
1: डेजी जो कुछ भी हुआ है सब भूल जाओ डेजी, सब भूल जाओ।
2: भुला दूंगी।
1: हाँ,
2: हाँ, हमेशा के लिए भुला दूंगी।
1: हाँ, वो डेजी, मैंने मैंने अभी तक कॉफी नहीं पी है।
2: हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ।
1: हाँ, मैंने सोचा तुम्हारे लौटने पर हम दोनों एक साथ पिएंगे। डेजी, वो जो बेनी का फोटो है ना, हाँ, उसको फ्रेम करवा के यहाँ रखेंगे। मुझे बहुत दुख है कि मैंने उसका किताब तोड़ दिया। मैं एक नया किताब ले आऊंगा डेजी। हाँ, उस गिटार को हम बहुत जतन से रखेंगे। और सुनो, वो तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी है, वही वाली। हाँ।

0: आज उसे ही पहने। हाँ वो दीदी, हम ऊटी का प्रोग्राम भी बनाएंगे, हम ऊटी भी जरूर चलेंगे, चलेंगे ना?
1: हाँ हाँ जरूर चलेंगे। लो कॉफी पियो। डॉक्टर साहब,
0: देसी
1: तुमने मेरे प्राण प्रिय बेनी को मार डाला ना?
0: ये क्या कर रही हो तुम देसी?
1: मेरे रूप और सौंदर्य ने तुम्हें ये घृणित काम करने की प्रेरणा दी थी ना?
0: देसी,
1: तुमने अपने सहपाठी और अपने पर की जान ली।
0: नहीं नहीं नहीं, देसी सुनो तो।
1: सुनो डॉक्टर, ये घृणित सत्य जान लेने के बाद अब हम साथ नहीं रह
0: सकते। देसी ये सच नहीं है, मैं कहता हूँ देसी।
1: झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। डॉक्टर रामदास का एक एक शब्द मैंने सुन लिया है।
0: ओह माय गॉड,
1: मैं जा रही थी लेकिन डॉक्टर रामदास को इधर आते देख एक कोने में खड़ी हो गई थी।
0: नो, ओ नो।
1: मेरे लिए अब सब कुछ खत्म हो गया है। मैं आपसे विदा ले रही हूँ।
0: विदा?
1: मैंने अभी जो कॉफी पी है ना, उसमें जहर खुला हुआ
0: नहीं, था। डेजी, डेजी।
1: मैं कुछ ही पल की मेहमान हूँ। मुझसे जो भी गलती हुई हो उनके लिए मुझे माफ कर देना। आपको क्या हुआ है? ये आप इस तरह क्यों कर रहे हैं?
0: देसी, ये मेरी नसें टूट रही है। देसी, देसी, तुमने मुझसे प्रतिशोध लिया है। देसी,
1: नहीं लॉरेंस, नहीं नहीं लॉरेंस, विश्वास करो मैंने प्रतिशोध नहीं लिया है। ये क्या हुआ? ये कॉफी की प्याले तो नहीं बदल दिए? ये क्या हो गया? ये पहली कॉफी तो मेरी थी, तुमने वो कप कैसे ले लिया? लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, लॉरेंस, ये कैसे हो गया? डरो, डरो डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर। मैं भागी भागी हॉस्पिटल गई। डॉक्टर आए लेकिन तब तक लॉरेंस खत्म हो चुके थे। मैं मूर्ति बनी खड़ी रही। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि ये गलती कैसे हो गई। मैंने तो दोनों प्याले अलग अलग और दूर रखे थे। फिर पुलिस, अदालत, मुकदमा, हत्या का आरोप, सजा और जेल की एक कोठरी। की लपटों का एक गोल घेरा जिसमें से मुझे बिना झूल से बाहर निकलना था। मुझे तो लगता है मेरा पूरा जीवन समाप्त हो जाएगा और मैं इस अग्नि चक्र से बाहर नहीं निकल पाऊंगी।

0: सोचने लगी।
1: एक छोटी सी बात।
0: क्या?
1: यही कि संसार में प्राय निर्दोष और निरपराध व्यक्ति ही यातना क्यों पाते हैं? संसार में

आप सुन रहे थे नाटक अग्निचक्र का दूसरा और अंतिम भाग। ये था मलयालम नाटक अग्निवल्यम का हिंदी नाट्य रूपांतरण। मूल लेखक सीएल जोस, रूपांतरकार पीजी वासुदेव, निर्देशक थे भारत रत्न भार्गव। ये थी केंद्रीय नाटक एकांश की प्रस्तुति।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में रेडियो श्रोता लखनऊ से वारिस अली खान जी को।
1: आकाशवाणी बरेली की समस्त टीम और सभी श्रोताओं को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। वारिस अली खान लखनऊ से हूँ। मुझे इस बात को कहने में बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं रेडियो का दीवाना हूँ। मैंने आकाशवाणी के लगभग सभी चैनल को सुना है और मैं उस वक्त से सुन रहा हूँ विविध भारती को या आकाशवाणी को जब मैं कक्षा 7 में पढ़ता था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पिताजी उस समय एक रेडियो लाए थे जिसका नाम था मर्फी, और मैं अपने पापा से लड़ता झगड़ता था। मेरे पिताजी जो थे वो न्यूज के शौकीन थे और एक प्रोग्राम आता था आकाशवाणी लखनऊ में मजदूर मंडल, उसके शौकीन था, लेकिन मैं उनसे रेडियो छीन लेता था और मैं गाना सुनता था और कमेंट्री सुनता था। तब से यह सिलसिला आज तक कायम है। मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि रेडियो के माध्यम से हम सभी लोगों से जुड़ जाते हैं। और इस वक्त जो मैं जो चैनल सुन रहा हूँ, करीब मुझे 2 साल हो गए हैं आकाशवाणी बरेली, आकाशवाणी बरेली के एंकर के बोलने का लहजा मुझे बहुत पसंद आता, उनका प्रोग्राम पेश करने का अंदाज बहुत उनको अच्छा लगता है। कार्यक्रम बहुत अच्छे हैं, जिसमें खास हमको प्रोग्राम जो अच्छे लगते हैं वो है आपकी बात आकाशवाणी के साथ, अनुरोध गीत, लकी चॉइस, मन भावन, और जो इस समय मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है वो 5:00

5 मिनट पर शाम को भजन संध्या, मैं इन प्रोग्राम को कभी भी मिस नहीं करता। और देखिए रेडियो को सुनने की से एक फायदा है कि हम अपना काम करते भी रहते हैं और प्रोग्राम सुनते भी रहते हैं। हालांकि जो मेरा चैम्बर है, लोग हंसते हैं कि आप तो चैम्बर में अपने रेडियो लगा के FM लगा के बैठे हैं, लोग TV लगाते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों पर ध्यान देता हूँ, बल्कि उनका ब्रेन वॉश करता हूँ कि हमारे साथ कभी ये बात सुनिए तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस जमाने में आज भी रेडियो की कितनी वैल्यू है, कितनी महत्व है। मैं आकाशवाणी बरेली के सभी पदाधिकारियों का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक हमको मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अवसर पर, जिससे मैं अपनी दिल की बात आप तक पहुंचा सकूं, कह सकूं। मैं इस बात के साथ अपनी बात को समेटता हूं और भविष्य में भी अगर हमको मौका मिला तो मैं फिर एक बार आपके सामने हाजिर होऊंगा। आदाब, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बरेली 100.4 एफएम पर, जहां पर आपको मिलता है गीत संगीत और ज्ञान का बम्पर एंटरटेनमेंट। अब आप सुनेंगे आपकी बात आकाशवाणी के साथ।

आज का विषय है, आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं। कार्यक्रम में शामिल होंगी कुछ कॉलें और कुछ प्यारे प्यारे चुनिंदा कमेंट्स।

0: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने पर आपने विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के दीवाने में सुना रेडियो श्रोता लखनऊ के वारिस अली खान जी को। आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय है, आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं। कार्यक्रम के सुरीले और कर्णप्रिय सफर को लेकर हाजिर है आपका रेडियो हम सफर देवेंद्र रावत। कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। तो देखते हैं हमारे पहले कॉलर कौन है। हेलो।
1: हेलो, आपकी बात आकाशवाणी के साथ।
0: हाँ, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं सना खान बोल रही हूँ बरेली से।
0: सना जी, कैसी हैं आप?
1: मैं ठीक हूँ, और सब आकाशवाणी में कैसे हैं?
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। और कैसे लग रहे हैं हमारे कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम तो बहुत अच्छे लग रहे हैं।
0: तो हमारा एक कार्यक्रम आता है आपका पत्र मेला, प्रत्येक रविवार को, है ना? उसमें आप मेल के माध्यम से या खतों के माध्यम से अपना सुझाव दे सकते हैं कि आपको कौन सा कार्यक्रम अच्छा लगा और जो नहीं लगा तो क्यों नहीं लगा, है ना? तो हम इंतजार करेंगे कि आप खत लिखें या मेल लिखें, है ना? जी। तो आज का हमारा जो विषय है वो है, आप आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे?
1: वैसे तो मेरे घर में कोई धूम्रपान नहीं करता और नहीं तो सिगरेट वगैरह पीते हैं कोई भी। और वैसे अगर कोई पीता है तो मेरे पास कोई खड़ा होता है तो मैं उससे दूर चली जाती हूँ, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा। और मैं उन्हें सलाह देती हूँ कि आप ये ना करें, इससे कोई भी अंदर प्रॉब्लम हो जाती है और ये सेहत के लिए जानलेवा भी है।
0: जी जी, आदमी जानबूझकर सब कुछ पता होते हुए भी इतना बड़ा उस पे स्टिकर लगा होता है ना?
1: जी,
0: उसके बावजूद भी उसमें जुड़ा रहता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि

0: धूम्रपान जो कर रहे हैं उनको क्या सलाह देना चाहेंगी?
1: मैं धूम्रपान जो कर रही हूँ लोगों को बस यही सलाह देना चाहूंगी कि उनसे बचे, क्योंकि अगर जिंदगी है तो सब कुछ है, और जिंदगी नहीं रहेंगे सब तो क्या होगा। इसीलिए धूम्रपान करना बिल्कुल सेहत के लिए नहीं अच्छा है, बस बस हानिकारक है।
0: बिल्कुल सही बात। खुदा की नेमत है हमारी जिंदगी, इंसान का जन्म है ना, तो
1: जी
0: उसको सही कर्मों में लगाया जाए तो अच्छा होगा, है ना?
1: जी उसकी जगह कोई फल खा सकते हैं, कोई फ्रूट खा सकते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं जैसे वो खा सकते हैं, उसकी जगह मार बस धूम्रपान नहीं करना चाहिए।
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके सना जी। तो आज आपकी कॉल लगी है, कौन सा गीत सुनेंगी?
1: मैं सनम तेरी कसम मूवी का टाटा टक सुनना चाहूंगी।
0: बहुत बेहतरीन गीत चुना है आपने, सुनते हैं आप और हम।

0: हेलो।
1: हेलो, आपके पास कार्यक्रम सुनने वाले सर सुन रहा हूँ। तो मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं मनकारा मंदिर बीडी कॉलोनी गरगना बने से पन्ना सागर बोल रहा हूँ। सर
0: पन्नीलाल सागर जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया हैं, आप लोग कैसे हैं, परिवार में कैसे हैं?
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। और कैसे लग रहे हैं हमारे यहाँ के कार्यक्रम आपको?
1: कार्यक्रम सभी अच्छे लग रहे हैं।
0: तो पन्नीलाल जी, आज का विषय है हमारे, आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप?
1: तम्बाकू के बारे में तो ये कहना चाहता हूँ कि तम्बाकू तो कभी न बीड़ी पीना चाहिए, न सिगरेट पीना चाहिए, और तम्बाकू जो हमारे फुटबॉल लोग खाते वो भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि
0: जी
1: इससे हमारे दांत और हमारे मसूड़े सब बेकार हो जाते हैं। यही बड़ी दिक्कत आती है बाद में, जब हम कभी कभार कैंसर का भी रोग उत्पन्न हो जाता है।
0: जी जी जी जी
1: और इसके लिए हम तो ये कहें कि आदमी जो खा रहा है तम्बाकू तो पहले छोड़ने की कोशिश करे, ज्यादातर अपनी हिम्मत से कर सकता है, सब कुछ अपने हाथ में है इंसान के। और
0: बिल्कुल
1: वो
0: सही बात।
1: अपने जैसे अपने गोला खा ले है, मिश्री खा ले है, सौंफ खा ले है, तो उससे थोड़ी बहुत उसी मदद मिलेगी, छूटने की इच्छा हो जाएगी।
0: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्योंकि आदमी अगर इच्छा शक्ति मजबूत कर ले तो सब कुछ कर सकता है
1: सब
0: ना।
1: कुछ अपने हाथ में है, हम लोग सब देखो वैसे तो हम भगवान के हाथ में है,
0: जी जी
1: हम तो वैसे परमात्मा के ऊपर रहते सभी लोग है।
0: जी जी
1: फिलहाल अपने कोशिश तो यह है कि हमें गंदी चीज नहीं खाना चाहिए।
0: बहुत अच्छे विचार हैं आपके पन्नीलाल जी। तो आज कौन सा गीत सुनेंगे?
1: फिल्म नगीना का है, तूने बेचैन की इतना किया।
0: मोहम्मद अजीज के स्वर में बहुत बेहतरीन गीत आपने चुना, तो सुनते हैं आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, बंटू भाई प्रजापति बोल रहे हैं, ग्राम कतरा कला से। बढ़िया
0: बंटू भाई प्रजापति जी, कैसे हैं आप?
1: है साहब, आप सुनाइए कैसे हो।
0: बस आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है। तो बंटू भाई, आज हमारा जो कार्यक्रम का विषय है वो ये है कि आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं, ये आप कैसा बर्ताव करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: जी ये हम तो सर इसके बारे में यही कहना ढंग, जैसे हमारे साथ वाले सर जो हैं तंबाकू खाते हैं तो उनसे मना करते हैं, प्रयास करते हैं, उन्हें समझाते हैं तंबाकू से, तंबाकू जानलेवा इस पे लिखा हुआ भी है, ये शरीर के लिए हानिकारक है, आप ये चीज ना खाएं।
0: जी, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो आज बंटू भाई कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी आप अपनी पसंद का कोई सा भी सॉन्ग सुनवा दीजिए।
0: ठीक है, सुनते हैं ये गीत, आप और हम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं साहब?
1: हम जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेजिया बोल रहे हैं सर।
0: मुन्ना सिंह जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत बढ़िया है सर, आपकी दुआओं का असर है, सब आनंद मंगल है।
0: आनंद मंगल ही रहना चाहिए और प्रभु का आशीर्वाद हमेशा बना रहना चाहिए, है ना? तो मुन्ना सिंह जी, आज का जो विषय है हमारा वो ये है कि आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप?
1: हम यही कहना चाहेंगे, उसके लिए समझाना चाहिए कि तंबाकू का सेवन करने से स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। हाँ,
0: बिल्कुल सही बात।
1: ये
0: तो
1: नशीले पदार्थ जो हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, इन्हें कभी नहीं सेवन करना चाहिए।
0: बहुत ही नेक विचार हैं आपके और बिल्कुल सही बात है, क्योंकि स्वास्थ्य पे विपरीत प्रभाव पड़ता है, आदमी की ग्रोथ रुक जाती है ना?
1: क्योंकि इससे कैंसर वगैरह की बीमारियां बनती हैं बहुत।
0: जी, तो बहुत बढ़िया आपने कहा है मुन्ना सिंह जी। तो आज गाना कौन सा सुनेंगे आप?
1: गाना सुनना चाहते हैं फिल्म विश्वास, गायक मुकेश, गाना है चांदी की दीवार में थोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया।
0: बहुत ही बेहतरीन गीत चुना है आपने, तो सुनते हैं आप और हम और सारे श्रोता।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार। कौन बोल रहे हैं आप? राजन
1: राजेंद्र गंगवार बोल रहे हैं सर जी।
0: जी, कैसे हैं आप?
1: हम ठीक हैं सर जी, और आप कैसे हो?
0: सब बढ़िया। अब
1: हाँ जी, अभी तो खैर बारिश का मौसम है, लेकिन बारिश तो हो चुकी है। पाप पड़ोस में यहाँ बूंदाबांदी हुई है खाली।
0: हाँ, मौसम विभाग बता तो रहा था कि बारिश होगी करके, क्योंकि पहाड़ों पे मौसम चेंज होता है तो अपने बरेली के आसपास के क्षेत्र में भी मौसम चेंज होता है ना।
1: हाँ जी, पहाड़ों पर तो बारिश हो रही है सर जी, तो
0: हाँ जी,
1: यहाँ
0: हाँ
1: भी
0: जी।
1: बारिश ही होना लाजमी है, बर्फबारी भी हो रही है।
0: तो
1: हाँ जी,
0: आज का हमारा विषय है, आपके आसपास कोई तंबाकू सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या क्या बर्ताव करते हैं?
1: हाँ जी, तम्बाकू खाने वालों को हम तो यही प्रयास करते हैं कि तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। तम्बाकू के अंदर निकोटीन जहर होता है
0: जी जी
1: जो
0: जी
1: हमको स्वास्थ्य बेकार करता है और लीवर भी कमजोर करता है सर जी।
0: जी। तो
1: हाँ जी,
0: आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि ये नुकसानदेह है तो इसको छोड़ना चाहिए ना?
1: हाँ जी, सलाह हम तो यही देते हैं, अगर आपको तलब लगती है तो लौंग के टुकड़े तो डाल सकते हो, लेकिन तम्बाकू खाना गलत है, ये सेहत के लिए हानिकारक है। लेकिन कभी कभार सर जी कहना तो नहीं चाहिए, हम भी खा लेते हैं, छुपाना नहीं चाहते।
0: तो चलिए, आप भी धीरे धीरे अपनी इस लत को छोड़िए, है ना?
1: हाँ जी, हम तो खैर लत को छोड़ ही चुके हैं, ना के बराबर ही खाते हैं
0: चलिए
1: कभी
0: चलिए
1: कभार।
0: चलिए।
1: वैसे तो छोड़ना ही चाह दिया, अगर बिल्कुल छोड़ देते।
0: जी। तो रायन जी, आज आपकी कॉल लगी, कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: हाँ जी, गीत हमें सुना दीजिएगा, जिगर मूवी का, प्यार के कागज में कलम से दिल लिखते।
0: बहुत प्यारा गीत है और
1: और हमारे जितने भी ये कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे लाइव, सभी को ये सॉन्ग डेडिकेट रहेगा सर जी, साथ में आपको भी।
0: चलिए सुनते हैं ये गीत, हम और आप।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नमस्कार जी। जी
0: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: मैं चंडीगढ़ से सतीश अनेजा बोल रहा हूँ।
0: सतीश जी, कैसे हैं आप?
1: आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक है जी।
0: तो सतीश जी, आपके उधर कैसा मौसम हो रहा है?
1: मौसम भाई 2 दिन से तो ऐसे लगता है जैसे सर्दी में यू टर्न ले लिया हो,
0: अच्छा।
1: क्योंकि ऊपर पहाड़ियों में ना बर्फ, अच्छी खासा बर्फ पड़ रही है लाहौल स्पीति साइड में,
0: जी जी जी
1: और इधर
0: जी
1: शिमला साइड में कुछ ओलावृष्टि भी हुई है, उसकी वजह से चंडीगढ़ का मौसम ऐसा भी एक नंबर पे, पंखा भी नहीं चला सकते, ठंड लगती है।
0: चलिए, अच्छी बात है। सतीश जी, आज का जो हमारा विषय है वो ये है कि आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं?
1: ऐसा मंजर भाई मेरे सामने कई बार हुआ है, 2-3 बार। तो
0: जी।
1: मैं तो क्या करता हूँ, जो भी तंबाकू का सेवन कर रहा है उसके पास जाके उसका पहले हाथ मिलाता हूँ, उसको मुस्कुराहट दे के उसके परिवार का हाल चाल पूछ के फिर उसको पूछता, भाई यार ये तो तंबाकू तो ये आप पी के जो अपना आपके जीवन के जो दिन वो कम कर रहे हो आप,
0: जी।
1: इससे समाज के अंदर भी इसको अच्छा नहीं माना जाता, तो आप क्यों पी रहे हैं यार, बच्चों के लिए संस्कार भी अच्छे नहीं अगर आप खुद पियेंगे तो। तो जब हम मुस्कुरा के या कुछ अच्छी बात करके जब कोई बात करते हैं ना, तो वो उसको जल्दी समझ भी जल्दी आ जाती है, और मेरे कहने से ऐसे लगा 2-4 बंदों ने तंबाकू छोड़ भी दिया, ये बड़ी खुशी की बात है।
0: चलिए, बहुत नेक विचार हैं आपके, और आपके विचार आज हमारे श्रोताओं ने भी सुने तो अच्छा लगा होगा उन्हें।
1: क्योंकि
0: तो
1: भाई ये तो सरेआम एक ऐसी चीज है जो हमारे फेफड़ों पर नुकसान करती है, हमारे शरीर पे नुकसान देती है, और फिर इसकी कोई खुशबू तो है नहीं जो किसी को इसका फायदा होता है, तो
0: जी जी
1: इसलिए तंबाकू का सेवन तो इसको कभी किसी को करना ही नहीं चाहिए। खाने पीने के लिए चीजें और बहुत है, अच्छी अच्छी चीजें खाओ पियो, ऐसी चीज को नहीं खाना चाहिए जिसको समाज भी स्वीकार ना करता हो।
0: तो बहुत अच्छा आपने बोला। तो कौन सा गीत सुनेंगे आज आप?
1: सर आज बरेली साइड में गुल्ली खिला दो, खेलते
0: तो
1: हैं गुल्ली, यहाँ किशोर कुमार की आवाज में गीत है और शर्मिली फिल्म का गीत है ये।
0: सुनते हैं ये गीत, आप और हम और सारे श्रोता।
1: ओके सर, थैंक यू।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई बात कर रहा हूँ आपसे। बस
0: गरीब भाई, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया
0: बस बढ़िया ही रहना चाहिए। हम परमात्मा
1: है
0: से
1: सब।
0: मांग करते हैं कि आप कुशल से रहें और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो गरीब भाई, आज हमारा जो विषय है वो ये है कि आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं?
1: भाई, मैं तो कोशिश यही करता हूँ कि हर व्यक्ति को समझाने की प्रयास करता हूँ कि भाई तंबाकू हानिकारक है, तंबाकू का सेवन ना करें। तंबाकू ही नहीं, कोई भी नशा है, नशा सिर्फ नाश करता है, चाहे वो शराब का हो, तंबाकू का, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू किसी भी रूप में है हानिकारक।
0: तो गरीब भाई, आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस भी है ना?
1: जी।
0: तो बड़े अच्छे विचार आपने कहे हैं। तो कौन सा गीत सुनेंगे आप?
1: आप अपनी पसंद का गीत सुनाइए, बढ़िया वाला, और नशे को ना कहिए, जिंदगी को हाँ कहिए।
0: बहुत अच्छा आपने बोला, और सुनते हैं ये गीत आप और हम।

आप हैं आरवी सिंह जी। आप कहते हैं नशा करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इसको नहीं करना चाहिए। दयानंद कॉलेज भवानीपेट सोलापुर महाराष्ट्र से विष्णु मिस्किन, ऋतिका मिस्किन, वाणी आरव, चंद्रकला, गणेश काशीनाथ, संगीता मिस्किन, आरोही और प्रियांशी सोनी लिखते हैं, तंबाकू सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, इससे कैंसर, हृदय रोग और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यदि आप इसे छोड़ने का प्रयास करें तो आपके स्वास्थ्य और परिवार दोनों के लिए अच्छा होगा। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। व्यवहार कैसा रखें, विनम्र और सम्मानजनक रहें, बार बार जबरदस्ती न करें। तंबाकू छोड़ने के फायदे बताएं, यदि वो व्यक्ति छोड़ना चाहता है तो उसका उत्साह बढ़ाएं, बच्चों और युवाओं के सामने तंबाकू सेवन न करने की सलाह दें। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, तंबाकू छोड़कर स्वस्थ जीवन अपनाना स्वयं और परिवार के प्रति हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसी विषय पर राम कुमार रेवाड़ जी लिखते हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे घर परिवार में तंबाकू का कोई सेवन नहीं करते, और उससे बड़ी बात यह है कि आज तक जितने भी आकाशवाणी के श्रोताओं से मिले हैं वो कोई भी तंबाकू का सेवन नहीं करते। ये रेडियो आकाशवाणी की करामात है कि लोग प्रोग्राम सुनकर बहुत कुछ सीख जाते हैं। निश्चित तौर पर तंबाकू हानिकारक ही नहीं बल्कि मौत है। तंबाकू चाहे किसी भी प्रकार का हो सेवन नहीं करना चाहिए। ये जीवन बहुत ही अनमोल और खूबसूरत है, इसे गंदी आदतों से दूर रखें। हमारे घर परिवार में जितने भी दोस्त रिश्तेदार हैं वो सब तंबाकू से कोसों दूर हैं। कई बार कुछ लोग तंबाकू वाले मिल जाते हैं तो मुझे बहुत स्मेल आती है और मैं उन्हें डांटता हूँ, बहुत मना करता हूँ। एक बार कोई निजी रिश्तेदार घर पर आकर स्मोकिंग करने लगा, मैंने उन्हें डांट लगाई और वो नाराज होकर चला गया। दूसरी बार जब भी वो मिला उसने कहा, आपकी डांट की वजह से मैं स्मोकिंग करना छोड़ दिया है। एक बार फिर सभी आकाशवाणी सुनने वालों से निवेदन है, करता हूं कि इस शहर से ये तंबाकू हमेशा दूर रहे। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है बल्कि सीधी मौत है, इस मौत से ना खेलें। जीवन बहुत अनमोल है, बार बार नहीं मिलता। अपना जीवन, अपना स्वास्थ्य और अपना शरीर स्वस्थ रखें, इसमें परमात्मा बसते हैं।

इसी विषय पर रामपुर रोड हल्द्वानी से गंगा सिंह रावत जी लिखते हैं, मैं जिस कॉलोनी में रहता हूं उस कॉलोनी में तीन छोटी छोटी जनरल स्टोर की दुकानें हैं जहां पर तंबाकू उत्पाद की बिक्री होती है। जब मेरे सामने कोई तंबाकू का सेवन करता है तो मेरी कोशिश होती है कि उसे जाकर समझाऊं कि तंबाकू सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, लेकिन हर व्यक्ति को समझना पॉसिबल नहीं। दुकानदार भी इन उत्पादों को बेचकर कमाई धंधा करते हैं, जबकि इन उत्पादों पर साफ साफ लिखा है कि इनके सेवन से नुकसान होता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी हो सकती है। रामपुर रोड किला छावनी बरेली से प्रदीप पाल नमन उषा रानी लिखते हैं, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारे घर परिवार में तंबाकू कोई सेवन नहीं करता। उससे बड़ी बात, आज तक जितने भी श्रोताओं से मिले हैं वो कोई तंबाकू सेवन नहीं करते। और आपने पूरी कॉपी कर दी है उनके कमेंट की। अगला कमेंट पे भेजा है ग्राम करेली पुरानी मस्जिद बरेली से लाल मोहम्मद अंसारी, लालू मिस्त्री अंसारी, अमर आप कहते हैं कि आपकी बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम में अच्छा लगता है। आज का विषय है कि अगर कोई व्यक्ति तंबाकू सेवन करता है तो आप उसे कैसे छुड़ाएंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी भी तरह का धूम्रपान करता है तो हमें वो व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। अगर कोई व्यक्ति हमारे पास बैठकर बीड़ी या सिगरेट पीने का प्रयास करता है तो हम उसे फौरन टोक देते हैं, धूम्रपान करने से मना करते हैं। हमें धूम्रपान करने वाले लोग पसंद नहीं हैं। संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से एडवोकेट वारिस अली खान जी लिखते हैं कि अगर कोई आसपास तंबाकू का सेवन करता है तो मैं तंबाकू से होने वाली बीमारी से उसे अवगत कराता हूं। उसे यह भी बताता हूं कि तुम्हारे तंबाकू सेवन से तुम तो बीमार पड़ोगे ही, साथ ही तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भी बीमार हो जाएंगे। तंबाकू सेवन से सेहत तो खराब होती है, साथ ही पैसे की भी बर्बादी होती है। प्रवीण चौहान जी कहते हैं, मेरे घर के आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जो तंबाकू वाले गुटखे का सेवन करते हैं। हम उन्हें समझाते हैं और उन्हें पता भी है कि हानिकारक है, लेकिन वे इसके आदि हो चुके हैं। बर्ताव तो उनके साथ भी सही होता है, लेकिन उनके दांत खराब हो जाते हैं।

0: कर दूंगे पर्दा, पर्दा ना शीतों बे पर्दा ना कर दूं तो।
1: इसी गीत के साथ आज का आपकी बात आकाशवाणी के साथ संपन्न होता है। आशा है आपको हमारे श्रोताओं के विचार पसंद आए होंगे। अपने रेडियो दोस्त देवेंद्र रावत को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे आपकी बात आकाशवाणी के साथ। आज का विषय था, आपके आसपास कोई तंबाकू का सेवन करता है तो उसे कैसे रोकते हैं या कैसा बर्ताव करते हैं। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। संध्या के 5 बजे हैं, अब समय हो चला है हमारे आज के शेष और कल की सभा में प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करने का। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 9 बजे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। रात्रि 8:15 और 10 बजे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम अनुप्रसारित किए जाएंगे। भजन संध्या आप सुनिएगा अब से थोड़ी देर में शाम 5:05 पर। साप्ताहिक कार्यक्रम वन भवन का समय रहेगा शाम 5:30। श्रोता मंच में आज के मेहमान होंगे इमरान शेख जी और आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव जी। समय रहेगा 5:45। युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युवाणी आप सुनेंगे वैभव मिश्रा के साथ शाम 6 बजे। इसमें कुछ खास है, आज में विश्व तंबाकू निषेध दिवस पे जानकारी दी जाएगी, साथ ही होगा हेलो फ्रेंड्स, प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। ग्राम जगत में आपके साथ होंगे धारा सिंह भैया जी 6:30 पर। इसमें चर्चा सुनेंगे कल करे सो आज कर विषय पर। क्षेत्र संकलित कार्यक्रम होगा तंबाकू निषेध पे, साथ ही होगा लोक मंजरी, प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। सेहतनामा का समय रहेगा शाम 7 बजे और आज विशेषज्ञ रहेंगे डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जी और आपसे जानकारी प्राप्त करेंगे मिथिलेश श्रीवास्तव जी। जनमंच में विषय रहेगा तंबाकू मुक्त समाज आज की आवश्यकता। इसमें अमन गुप्ता जी और संदीप यादव जी से जानकारी प्राप्त करेंगे ब्रजेश तिवारी जी। समय रहेगा 7:31। मुझे याद है जरा जरा में माया देवी से यादों के झरोके से यादें पूछेंगे

ब्रजेश तिवारी जी। हमारी कल की सभा आरंभ होगी सुबह 5:50 पे। आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम सुनेगा प्रातः 5:50 पे, दोपहर 12 बजे, रात 8 बजे और 10 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम आप सुनेंगे मुंबई केंद्र से सुबह 9 बजे, दोपहर 2:30 पे और रात्रि 9 बजे। नमस्ते बरेली आप सुनेगा सुदेश कुमार सैनिक जी के साथ सुबह 8:15 पे। आकाशवाणी के दीवाने 10 बजे, आपकी पसंद 10:05 पे, सब रंग 11 बजे और अनुरोध गीत 1 बजे। प्रायोजित कार्यक्रम जान है तो जहान में विशेषज्ञ रहेंगी डॉक्टर कनुप्रिया अग्रवाल। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग आप सुनेंगे 11:30 पे। रसरंग आप सुनेगा शिप्रा मिश्रा जी के साथ दोपहर 2:30 पे। आकाशवाणी के दीवाने शाम 4 बजे, आपकी बात आकाशवाणी के साथ 4:05 पे। भजन संध्या शाम 5 बजे, अनुरोध गीत 7:31 पे। नारी संसार सुनेंगे शिल्पी जी के साथ शाम 5:30 पे, प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। युवाणी सुनेगा प्रज्ञा पाठक के साथ शाम 6 बजे, प्रस्तुति रहेगी गौरव सक्सेना जी की। ग्राम जगत पर आप सुनेंगे सुरेंद्र भैया जी के साथ शाम 6:30 पर, प्रस्तुति रहेगी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। अक्षय वट का समय रहेगा शाम 7 बजे। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

आपने ट्यून किया है 100.4 एफएम पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। लीजिए प्रस्तुत है भजन संध्या। कार्यक्रम में पहला भजन है नंदनी शरण के स्वर में।

भजन संध्या में अभी आपने सुने कुछ भजन। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं श्रोताओं का मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम मन भावन। मन भावन में जो पहले श्रोता हैं आप हैं मोहल्ला दुर्गा प्रसाद बीसलपुर जिला पीलीभीत से विमल वर्मा। आप कहते हैं कि तुम्हारी पसंद हमारी चाहत बन जाए, तुम्हारी मुस्कुराहट दिल की राहत बन जाए, खुदा खुशियों से इतना खुश कर दे आपको कि आपकी खुशी देखना हमारी आदत बन जाए। एक और शेर उन्होंने भेजा है कि मुस्कुराहट का कोई मोल नहीं होता, रिश्तों का कोई तोल नहीं होता है, इंसान तो मिल जाते हैं हमें हर मोड़ पर, लेकिन हर कोई आपकी तरह अनमोल नहीं होता है। गीत सुनना चाहा है

अगला जो खत हमें भेजा है, आप हैं बरेली जंक्शन से गरीब भाई विक्की भारद्वाज। आप कहते हैं कि माँ हर पल तुम साथ हो मेरे, मुझको ये एहसास है। आज तू बहुत दूर है मुझसे, पर दिल के बहुत पास है। तुम्हारे यादों की वो अमूल्य धरोहर आज भी मेरे साथ है। जिंदगी की हर जंग जीतने के लिए अपने सर पर मुझे महसूस होता है आज भी तेरा हाथ है। न जहां की तिजारत काम आई, ना किसी की नजाकत काम आई, जिंदगी की हर मोड़ पर हर कदम पर मुझे अपनी मां की इबादत काम आई। जय माता दी।

कार्यक्रम में जो अंतिम पत्र हमने लिया है वो है छावनी अशरफ खां पानी की टंकी के पास होली चौक बरेली से रामप्रसाद शर्मा जयश्री देवी का। रामप्रसाद शर्मा जी हारमोनियम रिपेयर भी करते हैं। आप कहते हैं, दोस्तों मेहनत से कमाओगे तो आराम से खाओगे, और अगर बेईमानी से कमाओगे तो डॉक्टर को पहुंचाओगे। इसलिए दोस्त ईमानदारी बेईमानी ईमानदारी से रहना चाहिए और बेईमानी नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात कही है आपने। सत्य की हमेशा जीत होती है और झूठे आदमी का मुंह काला होता है।

0: मन भावन। अभी आप सुन रहे थे ये साप्ताहिक कार्यक्रम। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे श्रोता मंच में श्रोता इमरान शेख जी को। आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी।
1: श्रोताओं नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कार्यक्रम का नाम है श्रोता मंच, जैसा कि नाम है वैसा ही ये कार्यक्रम है। जी हाँ, आप सभी श्रोताओं के लिए ये एक मंच है जहाँ पे आप में से कोई ना कोई श्रोता आते हैं और अपने विचार व्यक्त करते हैं कि हमारे कार्यक्रम उन्हें कैसे लग रहे हैं और भी क्या सुधार हो सकता है। उनसे हम लोग रूबरू होते हैं, उनके बारे में भी कुछ बातचीत करते हैं। तो आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है अपने बहुत पुराने श्रोता को। उनका नाम है इमरान अली। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका और आकाशवाणी पूरी टीम का जो मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया।
1: जी तो आपने एक क्लब भी बना रखा है, उसके बारे में कुछ बताइए जरा।
2: बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा। मेरे क्लब का नाम था एकता क्लब सिंधौली मीरगंज डिस्ट्रिक्ट बरेली।
1: अच्छा, तो कब से ये क्लब चल रहा है?
2: सर ये 2007 से आकाशवाणी केंद्र से जुड़ा और तभी से हमने एक चार मेंबर हुआ करते थे क्लब में।
1: अच्छा,
2: तो हम चारों ने एक मीटिंग रखी और उस मीटिंग में ये हुआ कि हमें आकाशवाणी केंद्र से जुड़ना चाहिए और अपने पत्र भेजना चाहिए हर एक प्रोग्राम में।
1: कौन कौन मेंबर थे आपके अलावा?
2: सर मेरा नाम था इमरान शेख और मेरे साथ में एक जाहिद इदरीसी।
1: अच्छा,
2: और एक आदिल इदरीसी और मुन्ने खान फतेहगंज से।
1: अच्छा अच्छा, आप सभी लोग क्लब में। तो अभी क्या स्थिति है?
2: अभी सर उन लोगों के सबके काम अलग अलग हो गए हैं और वो सारे लोग अलग हो गए, तो इसलिए
1: थोड़ा मशरूफ हो गए
2: जी। अच्छा, वो अपने काम में व्यस्त हैं, तो मैं सिर्फ आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूं और मैं हमेशा जुड़ा रहूंगा।
1: जुड़ा रहेंगे। तो इस बीच आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन रहे हैं, या उससे पहले तो आपके बारे में और जाना जाए, है ना? इस समय आप क्या करते हैं?
2: सर मैं मेरा जो BSc एग्रीकल्चर किया है।
1: अच्छा,
2: उसके बाद मैंने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन की है।
1: अच्छा अच्छा,
2: और मैं भी प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में वहाँ काम करता हूँ।
1: प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट में? अच्छा, तो किस चीज का प्रोक्योरमेंट करना होता है?
2: सर इसमें हम फलों का प्रोक्योर करते हैं और अच्छा, सब्जियों का प्रोक्योर करते हैं।
1: सारे फलों और सब्जियों का?
2: यस सर।
1: अच्छा, तो हमारे बहुत सारे श्रोता तो इसमें भी उत्सुक होंगे कि भाई ये काम कैसे किया जाता है।
2: जी,
1: तो कैसे करते हैं ये प्रोक्योरमेंट?
2: सर क्या होता है कि कोई भी कंपनी के टारगेट रहते हैं।
1: हाँ हाँ।
2: मान लीजिए कोई किसी कंपनी ने हमें कोई ऑर्डर दिया बड़े लेवल पे। मान लीजिए एक गाड़ी हमें आम खरीदना है।
1: अच्छा,
2: तो हम वो किसान से बात करेंगे और कंपनी के लिए पूरा उसको जो हमारे प्राइस है उस पर हम उसको खरीद के और अपनी कंपनी के लिए दे देंगे।
1: अच्छा,
2: फिर कंपनी की बहुत सारी प्रोसेस रहेंगी, वो अपनी प्रोसेस करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं विदेश।
1: अच्छा अच्छा अच्छा, किसानों से खरीद के उसको एक्सपोर्ट करना
2: जी,
1: ये चीज है। और बाकी बीच में जो रखरखाव है वो काम आप लोगों का है।
2: बाकी जो क्वालिटी रहती है उसकी, जो ग्रेडिंग रहती है, वो सारी चीजें हम लोगों का है।
1: क्या बात है। तो ये जॉब पाने के लिए आपने फिर क्या किया? क्वालिफिकेशन BSc एग्रीकल्चर मांगा जाता है
2: जी।
1: अच्छा अच्छा, हाँ। तो बहुत सारे हमारे श्रोता होंगे जो हो सकता है अभी ग्रेजुएशन ना किए हों, 10+2 के बाद कुछ करना चाहते हों, या फिर ग्रेजुएशन कर भी लिए हों, तो उनके लिए एक ऑप्शन है अच्छा खासा BSc एग्रीकल्चर करके आप इस फील्ड में भी हाथ आजमा सकते हैं।
2: बिल्कुल,
1: है ना, और करियर बना सकते हैं। उसके बाद आते हैं कि आपकी जो रेडियो लिसनरशिप है
2: जी,
1: श्रोता के रूप में आपने कब से शुरुआत की, ये चस्का कैसा लगा?
2: सर ये मेरे बड़े भाई जीशान,
1: अच्छा,
2: बारसी करके उनका नाम आता है आकाशवाणी से।
1: हाँ हाँ बिल्कुल,
2: वो रेडियो को सुनते थे तो मुझे भी लगता था कि मुझे भी आकाशवाणी से जुड़ना चाहिए। फोन इन प्रोग्राम आता था हेलो जिंदगी करके, तो उसमें हम कॉल लगाते थे, हमारी फोन नहीं लगते थे पर उनका फोन लग जाता था।
1: अच्छा,
2: तो एक बार में एक ही श्रोता बात कर सकता था, उसमें दो के लिए इतना टाइम नहीं होता है उसमें।
1: नहीं होता था, हाँ।
2: तो मुझे भी लगा कि मुझे भी प्रोग्राम से जुड़ना चाहिए, तो फिर मेरी पहली कॉल लगी थी। उस टाइम जॉली शर्मा यहाँ पे
1: अच्छा
2: अनाउंसर थी।
1: अच्छा,

0: तब से मैं आकाशवाणी से जुड़ गया।
1: क्या बात है, ये कब की बात है करीब?
0: सर ये करीब सन 2012 की बात है, ये 12 में ये चलता था जी।
1: तो लेकिन आपने 2007 में ही क्लब बना लिया था
0: जी,
1: तब से सुन रहे थे,
0: लेकिन
1: और 5 साल बाद आपकी कॉल लगी
0: जी बिल्कुल। लेकिन सर उस समय जो पुराने प्रोग्राम थे वो अनुरोध गीत प्रोग्राम आता था रात में, तो उसमें हम पहले पेन से हम लिखते थे, फिर उसके बाद हमने मोहर वगैरह सारी बनवाई आकाशवाणी के लिए,
1: तो पोस्ट कार्ड पे
0: पोस्ट कार्ड, ताकि हमारा पोस्ट कार्ड और अच्छा लगे आकाशवाणी पे भेजें। तो सर यही सब चला और फिर हम आकाशवाणी से जुड़ गए। और
1: जुड़ गए तो इस सफर में जैसे 2007 में कौन कौन से प्रोग्राम आप सुनते थे, या फिर 2012 में आपने बताया हेलो जिंदगी से जुड़े
0: जी,
1: कौन कौन से प्रोग्राम आपको अच्छे लगते थे?
0: सर युवाणी का जो प्रोग्राम रहते थे, जो किसानवाणी प्रोग्राम था, वो तो सर आता ही था, वो तो हम सुनते ही थे। बाकी का जो फोन इन प्रोग्राम रहता था हेलो फरमाइश करके, वो विविध भारती से रिले होता था उस समय,
1: बिल्कुल
0: तो सर वो सुनते थे। और अच्छा। बाकी का जो अनुरोध गीत से हम रात में 10 बजे आता था 11 बजे तक, एक वो प्रोग्राम सुनते थे। फिर जब 12 में चीजें बदली तो फिर प्रोग्राम भी चेंज हो गए, फिर नए प्रोग्राम्स आए सामने, तो फिर उनसे हम जुड़े। चिट्ठी आई है प्रोग्राम है, और आपका झुमका के रे तो अभी भी चल रहा है, ये पहले भी आता था सर।
1: फॉर्मेट थोड़ा सा पहले कुछ और हुआ करता था
0: सर, तो
1: सीमित हो गया है।
0: जी, जी
1: जी जी जी
0: तो सर यही सारे प्रोग्राम हमने सुने। युवाणी के प्रोग्राम सुनते थे, युवाणी में चिट्ठी आई है प्रोग्राम आता था, जिसमें बहुत सारे लोगों की चिट्ठियां आती थी, और एक चिट्ठी को सुपर स्टार बनाया जाता था, जिसकी सबसे खूबसूरत चिट्ठी होती थी।
1: क्रिएटिविटी को सबसे सर्वोपरि दर्जा दिया जाता था।
0: यस सर।
1: तो क्या लगता है आज भी ऐसा है, क्रिएटिविटी को स्थान मिल रहा है?
0: सर अभी क्या है कि थोड़ा सोशल मीडिया का जमाना है, तो लोग सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़ गए हैं। अभी जो है चिट्ठियों का थोड़ा मुझे लगता है कि दौर थोड़ा खत्म हो रहा है, लेकिन हम जो पुराने श्रोता हैं, हम सबको चाहिए कि हम उस दौर को खत्म ना होने दें, क्योंकि ये आकाशवाणी की जो सबसे पुरानी धरोहर है,
1: खाती है, विरासत है, बिल्कुल,
0: तो उसको हम बरकरार
1: और
0: रखें।
1: और जो तमाम आपके भी पत्र होंगे और तमाम और भी श्रोता हैं, उनके पत्र हमने सहेज के रखे हैं। ड्यूटी रूम जो जहाँ से सब कुछ कंट्रोल होता है, प्रसारण का मॉनिटरिंग होती है
0: जी,
1: वहाँ पे सारे पत्र रखे हुए हैं। आज भी अनुरोध गीत के बहुत सारे पत्र आते हैं, हालांकि पत्रों की संख्या उतनी नहीं रह गई है, और जो आपका पत्र मिला प्रोग्राम आता है उसमें भी पत्रों की संख्या कम हुई है, क्योंकि ईमेल है, सोशल मीडिया, इससे लोग जुड़ गए हैं, आसान हो गया है ना?
0: जी, लेकिन सर आसान है, लेकिन जो चिट्ठी जब आकाशवाणी से कोई भी प्रोग्राम में शामिल होती थी, उसका जो सर सुनने का मजा था वो एक अलग था। अभी आकाशवाणी के बहुत सारे केंद्र हैं जिनसे हम फेसबुक से जुड़ सकते हैं आसानी से, लेकिन जो चिट्ठी का मजा है सर, वो एक अपने आप में अलग है।
1: अलग ही मजा है, बिल्कुल है। और जो श्रोता सुन रहे होंगे वो भी इस बात को ध्यान दें, और इमरान अली साहब की भी बात पे थोड़ा गौर करें, लेटर लिखना फिर से शुरू करें।
0: बिल्कुल सर, मैं आज इस प्रोग्राम में शामिल हुआ हूं, और मैं खुद पहले मैं स्वयं ये काम करूंगा अभी दोबारा से। मैं सभी दोस्तों से भी कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा चिट्ठियां भेजें, जिससे कि प्रोग्राम और खूबसूरत हो जाए, क्योंकि यहां मैं देख रहा हूं कि सोशल मीडिया का जमाना है, फेसबुक खोलकर नाम शामिल हो जाते हैं, लेकिन जब एक टेबल पे हमारी चिट्ठियां रखी रहती हैं तो उसकी खूबसूरती एक अलग होती है,
1: थोड़ा एक इत्मीनान होता है। और फेसबुक इत्यादि पे है क्या, कमेंट आया डिलीट भी किया जा सकता है
0: जी,
1: है ना, गया खत्म। और यहाँ पोस्ट कार्ड आ गया तो अब यहीं स्थिर है, रखा हुआ है, सहेज के रखा हुआ है, ये भी चीज है। अच्छा, इस बीच कौन कौन से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आजकल में, अब क्योंकि 2007 से सुन रहे हैं, 2012 में आपने हेलो जिंदगी में कॉल लगाई पहली बार, अब आज 2026 है, 14 साल बाद आज क्या देखते हैं?
0: बिल्कुल, मैं जरूर बताना चाहूंगा सर, आपके यहाँ से ग्राम जगत कार्यक्रम मैंने 3 मई का सुना, भी पिछले हफ्ते का बता रहा हूँ सर मैं। तो इसमें कुटीर उद्योग के विषय पर बातचीत हुई, जो कि बहुत अच्छी लगी सर। और सर 4 मई का भी मैंने ग्राम जगत कार्यक्रम सुना, इसमें ग्रामीण शिक्षा की गुणवत्ता और मछली पालन पर विशेष जानकारी मिली, जिससे बहुत सारे किसान भाई इस चीज को सुनकर लाभान्वित होंगे, वो कैसे मछली पालन कर सकते हैं और कौन सी वैरायटी ला सकते हैं जिससे उनको फायदा मिल सकता है।
1: जी जी।
0: एक प्रोग्राम आपके यहाँ से आता है महिलाओं के लिए नारी संसार, इस प्रोग्राम में भी बहुत अच्छी बातें आती हैं, जो कि जो घरेलू महिलाएं हैं, जो मतलब कम पढ़ी लिखी हैं, उनको बहुत आसानी से बहुत सही जानकारी मिल जाती है रेडियो के माध्यम से। और जो किसान वाड़ी कार्यक्रम आता है, ये मेरा एक फेवरेट कार्यक्रम है, जो कि मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ, और हमारा भारत कृषि प्रधान देश है,
1: बिल्कुल,
0: तो ऐसे प्रोग्रामों की हमें जरूरत है, जो कि हमारे किसान भाई हैं उनको अच्छी जानकारी मिले।

0: वैज्ञानिक तरीके से खेती कैसे करें, कैसे उनको ज्यादा मुनाफा मिले, तो ये सभी जानकारी आपके यहाँ से आती रहती हैं, तो ये बहुत पसंद आती है सर
1: जी। और इनके अलावा कौन से प्रोग्राम आप सुनते हैं? इसे रेडियो कब आपका ऑन हो जाता है?
0: रेडियो तो सर जब मेरा कोई मनपसंद प्रोग्राम आता है तो मैं मोबाइल फोन पर अभी सुन पाता हूँ, क्योंकि अच्छा। मैं अपने जिले से दूसरे जिले में रहता हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: तो अभी मैं मोबाइल एप्लीकेशन है
1: न्यूज ऑन एयर पे सुनते
0: हैं। यस सर, यस सर।
1: अच्छा अच्छा। तो जैसे सुबह सुनते हैं या शाम में?
0: सर अभी आपके यहाँ से एक मैसेज पर आधारित प्रोग्राम आता है सुबह में, 10 बजे से 11 बजे तक,
1: आपकी पसंद।
0: हाँ, तो उसमें सर एक कमेंट्स करना होता है और नाम आ जाता है।
1: हाँ, हाँ, बिल्कुल।
0: तो एक वो है और आपका पत्र मिला प्रोग्राम है।
1: हाँ,
0: जो कि वीकली आता है, मैं उससे जुड़ता हूँ। और जो अभी आपने फोन इन प्रोग्राम एक शुरू किया है जिस पर एक टॉपिक पर चर्चा हो रही है, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम है।
1: अभी आपकी बात आकाशवाणी के साथ
0: उसमें क्या रहता है कि सर आप अपनी कोई भी एक टॉपिक होता है उस पर हमसे बात की जाती है, तो बहुत सारे लोगों को उससे जानकारी मिलती है। हर व्यक्ति की जो अंदर की चीजें हैं वो सभी को पता लग जाती हैं।
1: जी जी बिल्कुल। और इसमें कौन से टॉपिक्स अच्छे लगे आपको इस बीच मई महीने में?
0: सर अभी एक टॉपिक था कि सड़क पर दुर्घटना से कैसे बचें। ये टॉपिक बहुत अच्छा था और जी, लोगों ने बहुत सारे फोन किए और मेरी भी कॉल उस दिन शामिल हुई।
1: अच्छा।
0: तो मुझे बहुत अच्छा लगा सर।
1: जी जी, रोड सेफ्टी वीक जो है वो चल रहा था, तो उसमें बिल्कुल हमारी ये कोशिश होती है। और इसमें एक खास बात ये भी है कि आप सभी श्रोता भी उससे जुड़ सकते हैं।
0: बिल्कुल सर,
1: उसमें आप लोग भी टॉपिक बता सकते हैं। वो अगर टॉपिक जो भी हमारे पैरामीटर्स हैं उस पर ठीक बैठेंगे तो उनको भी शामिल कर लिया जाएगा। कुछ टॉपिक ऐसे हमने शामिल भी किए हैं
0: जी,
1: कुछ श्रोताओं के सुझाए गए टॉपिक्स हैं, और नहीं तो ज़्यादातर तो हम ही देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए दूसरे कार्यक्रमों की, भजन संध्या
0: जी,
1: या फिर बात करें जो प्रोग्राम आते हैं, रेडियो हेल्पलाइन आता है,
0: बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर। रेडियो हेल्पलाइन बहुत अच्छा प्रोग्राम है। ये पहले सर पहले के टाइम में 9 बजे आता था रात्रि में, लेकिन सर अभी आपने काफी
1: 7:30 बजे
0: किया है, काफी बदलाव किया है। पहले क्या था कि लोग
1: सो जाते,
0: गाँव के लोग सो जाते हैं सर इस टाइम तक, और अभी आपने 7:30 बजे किया है तो उनको शामिल भी होते हैं बहुत सारे लोग फोन के माध्यम से। तो ये सर बहुत अच्छा प्रोग्राम है। अपनी समस्या है कोई, यहाँ डॉक्टर उपस्थित रहते हैं तो आप अपना सवाल भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम है सर।
1: बिल्कुल। और जैसे आपकी बात आकाशवाणी के साथ का समय पहले 5 बजे हुआ करता था
0: जी
1: शाम के, अब 4 बजे हो गया और 1 घंटे का हो गया, ये कैसा लगता है आपको?
0: अच्छा प्रोग्राम,
1: 4 बजे का समय अच्छा है,
0: अच्छा प्रोग्राम है 4 बजे का। अभी हम विविध भारती से भी एक हेलो फरमाई सुनते थे, उस बीच में हम अपने केंद्र की सुनेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर।
1: जी जी। और विविध भारती तो आप 3 से 4 सुनते ही हैं।
0: बिल्कुल सर।
1: महिलाओं का प्रोग्राम जो आता है सखी सहेली, और इसके अलावा हमने इस बीच क्या किया पिछले कई महीनों से, हालांकि FM रेनबो भी हम सुना देते हैं, जोड़ देते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था
0: जी।
1: तो इसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है?
0: सर ये बहुत अच्छा है कि अगर आकाशवाणी रेनबो की तक हमें आकाशवाणी बरेली से जो प्रोग्राम है उनके हमें सुनने को मिल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी बात है सर। ये हम एक ही रेडियो पर 3 स्टेशन हम सुन सकते हैं आसानी से, तो ये बहुत बड़ी बात है सर।
1: हाँ, विविध भारती भी सुन सकते हैं सुबह सुबह आकाशवाणी लखनऊ।
0: बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो आज भी रेडियो पर प्रोग्राम सुनते हैं। तो जो जिनके पास स्मार्टफोन है वो तो एक एप्लीकेशन के माध्यम से अन्य केंद्र से जुड़ सकते हैं, लेकिन जो रेडियो पर ही सुनते हैं उनको अगर एक ही स्टेशन पे 3 रेडियो स्टेशनों की आवाज आएगी तो सर ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
1: क्या बात है। तो हमें लगता है कि काफी हमारे प्रोग्राम अच्छे चल रहे हैं, फिर भी अगर कुछ कमी लग रही हो, कुछ और सुधार की गुंजाइश आपको लग रही हो तो वो भी बताएं।
0: बिल्कुल सर, अभी तक तो सारे प्रोग्राम, आपकी जो मेहनत है वो बहुत अच्छी है, आपकी पूरी टीम सर बहुत मेहनत कर रही है जो हमको अच्छी क्वालिटी में सारे प्रोग्राम पहुंचा रहे हैं, और आप भी सर बहुत अच्छे से हर एक प्रोग्राम को सजाते हैं, हम तक पहुंचाते हैं। तो मैं आपकी और आपकी पूरी टीम की बहुत तारीफ करना चाहूंगा, और सभी दोस्तों की तरफ से भी मैं ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी यूं ही आवाज रहे और ऐसे ही चलते रहें, प्रोग्राम और अच्छी क्वालिटी में हम तक पहुंचते रहें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और जैसा कि आपने बताया, हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी हम ऐसे ही बेहतरीन प्रोग्राम करते रहें, उनकी क्वालिटी ऐसे ही बल्कि और बेहतर करते जाएं
0: जी,
1: यही कोशिश रहेगी। और अगर प्रोग्राम के आखिर में कुछ आप तमाम श्रोताओं को कुछ संदेश देना चाहें।
0: बिल्कुल, मैं सबसे पहले एक कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी ने अभी 90 वर्ष पूरे किए हैं, तो सभी को सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी टीम को और तमाम सुनने वालों को। और हमारा मुल्क एकता का प्रतीक है, हम सबको भाईचारे से रहना चाहिए, और अगर हम भाईचारे से रहेंगे तो हम, यकीन मानिए कि हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल।

0: और हम उम्मीद करते हैं कि आप सबकी बातें इमरान अली साहब तमाम श्रोताओं को पसंद आई होंगी, और आपने जो बताया हमारे कार्यक्रमों के बारे में उससे भी काफ़ी इत्तेफाक रखते होंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी अच्छी बातें की हमारे कार्यक्रमों के बारे में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
2: अभी आप सुन रहे थे श्रोता मंच में इमरान शेख जी को। आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव जी। आपने ट्यून किया है 100.4 FM पे आकाशवाणी का बरेली केंद्र। आप हमारे कार्यक्रम न्यूज ऑन AIR ऐप के माध्यम से भी सुन सकते हैं। संध्या के 6 बजे हैं। आइए सुनते हैं युवा साथियों का पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, वैभव मिश्रा के साथ। प्रस्तुति है गौरव सक्सेना जी की।

0: कहते हैं हौसलों की धूप हो, सपनों की उड़ान हो, हर सुबह नई उम्मीद का एक नया आसमान हो। हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है 100.4 एफएम के कार्यक्रम युवाणी में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वैभव, लेकर हाजिर हूं आज का ये खास कार्यक्रम। श्रोताओ, बरेली की इस तपती गर्मी में जहां सूरज अपनी पूरी गर्मी के साथ आसमान चमक रहा है, वहीं हमारे शहर की रौनक और लोगों का उत्साह भी कम नहीं हुआ है। सड़कों पर चहल पहल है, बाजारों में रौनक है और कोई अपने काम में व्यस्त है। तो देखो, शाम के 6 बज चुके हैं। इस समय खास तौर से हम देख सकते हैं जो जितने भी मार्केट हैं बरेली में, भीड़ थोड़ी दिखनी शुरू हो जाती है। और खास तौर से आज तो श्रोताओं रविवार है, तो सभी लोग निकलते हैं, घूमने निकलते हैं, शॉपिंग करने निकलते हैं, परिवार के साथ समय बिताने के लिए निकलते हैं। तो इस बीच श्रोताओं याद रखिए कि मौसम में सबसे जरूरी है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। दोस्तों, अब हम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो आज एक खास दिन भी है। आज 31 मई है। हाँ जी, 31 मई तो है। इसमें क्या खास है श्रोताओ? खास है आज की आज मनाया जाता है तंबाकू निषेध दिवस, यानी कि वर्ल्ड नो टबैको डे। ये दिन हमें याद दिलाता है कि तंबाकू केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक ऐसी लत है जो धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य, परिवार और समाज को प्रभावित करती है। श्रोताओ, हर वर्ष लाखों लोग तंबाकू से होने वाली बीमारियों के कारण अपनी जान गंवा देते हैं। कहते ना, जिंदगी अनमोल है, इसे धुएं में मत उड़ाइए। अपने सपने और अपनों के लिए तंबाकू से दूरी बनाइए। श्रोताओ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस का उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है कि वे तंबाकू और उससे बने उत्पादों से दूर रहें और दूसरों को भी इसके दुष्प्रभावों के बारे में बताएं। एक छोटा सा निर्णय श्रोताओ न केवल आपकी जिंदगी बदल सकता है, बल्कि आपके परिवार को भी खुशहाल और सुरक्षित बना सकता है। तो आइए आज हम सब मिलकर एक संकल्प ले कि स्वस्थ जीवन को अपनाएंगे, तंबाकू को ना कहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी इसके प्रति जागरूक करेंगे। श्रोताओ, तो कार्यक्रम की ओर बढ़ते हैं, लेकिन आइए पहले ले लेते हैं छोटा सा कॉमर्शियल ब्रेक।
1: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपर फास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों
2: को दीप, तुम्हें नहीं इसे मोबाइल चार्ज करना,
3: दिमाग चार्ज कर अपना।
4: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
3: देखा
2: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल,
4: अब क्या करोगे?
2: तेरी वाईफाई है ना,
3: बुद्धू सुधर जा।
4: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
2: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओ, ये है 100.4 FM आकाशवाणी बरेली और इस समय आप कार्यक्रम सुन रहे हैं युवाओं का युवाणी। और श्रोताओ, युवाणी कार्यक्रम में देखिए हमारा प्रयास यही रहता है कि हम खास तौर से युवाओं के लिए खास जानकारी लेकर आ पाए। और हमारे साथ आज कार्यक्रम में एक ऐसी ही युवा जुड़ी हुई हैं और आप सभी उन्हें जानते हैं, अक्सर बरेली में उनको आप देखते भी रहते हैं और जानते भी हैं। तो हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, जी हाँ, अंशिका वर्मा जी, जो कि आपको बता दें वर्तमान में

0: ग्रामीण क्षेत्र में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और साइबर अपराध रोकथाम के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। आप सभी जानते हैं आप आईपीएस हैं और इस समय एसपी हैं ग्रामीण, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम कार्यक्रम में। सबसे पहले बताइए कैसे हैं आप, और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे हम श्रोताओं की तरफ से भी कि आपने इतने व्यस्त समय में हमारे लिए समय निकाला।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे इन्वाइट किया इस प्लेटफॉर्म पे बताने के लिए, लोग अवेयर करने के लिए महिला संबंधी अपराध और साइबर अपराध के संबंध में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप भी ठीक होंगे।
0: तो मैम सबसे पहले हम आपके से यही जानना चाहेंगे, देखिए वैसे तो हम ये जो साइबर अपराध हो गए और इस तरह की चीजें थी वो अक्सर हम आज से बहुत पहले शहर में देखते थे, मतलब बड़े बड़े शहरों में जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गए, लेकिन अब जो हमारे गांव हैं खासतौर से बरेली के, और बरेली में भी इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, हम देख रहे हैं निरंतर पुलिस कार्य कर रही है इस पे, अखबार में पढ़ते रहते हैं कि फोन बरामद हुए या इस तरह की घटनाओं का पता चला, तो थोड़ा सा बताइए मैम इस बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है और लोग कैसे जागरूक रखें अपने आप को और खासतौर से युवा।
1: बिल्कुल, अगर मैं साइबर क्राइम के डेटा की बात करूं तो काफी चौंकाने वाला है। वर्ष 2025 की यदि बात करें तो लगभग 23,000 करोड़ रुपए,
0: जी
1: 28 लाख साइबर क्राइम केसेस में करीब 23,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है टोटल, और ये बहुत बड़ा चैलेंज बन गया पुलिस के लिए भी। और इसको तभी सॉल्व किया जा सकता है जब जनमानस से हमें सहयोग मिले और इसमें एक अवेयरनेस हो, एक लेवल ऑफ अवेयरनेस हो लोगों में कि किस प्रकार की चीजों पर विश्वास नहीं करना है, किस प्रकार के स्कैम से बचकर रहना है। तो इसमें एक कोलैबोरेटिव एक्शन यदि होगा पुलिस के साथ पूरी जनता का, तो हम लोग डेफिनेटली इस चैलेंज को बीट कर सकते।
0: आपने बहुत अच्छा कहा मैम कि इसमें जनता का भी थोड़ा सहयोग रहे, तो खासतौर से वैसे तो देखो हमारे चाहे जेंजी हो गए चाहे हमारे युवा हो गए वो सोशल मीडिया को लेकर थोड़ा सा तेज रहते हैं, अगर हम आम देखें कि और लोगों से ज्यादा, क्योंकि उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत करीब से देखा है, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है कि ऐसी क्या गलती कर देता है एक युवा या खासतौर से महिलाएं भी जो अपराध हो जाता है उनके साथ, क्या आप बताना चाहेंगे इसमें?
1: मैं साइबर क्राइम के संबंध में तो यही बताना चाहूंगी कि जो लोग बहुत इजीली ट्रस्ट कर ले रहे हैं किसी भी प्रकार की वेबसाइट को, किसी भी प्रकार के ऑफर को और किसी भी प्रकार के प्रलोभन को, जिसे कहते हैं कि कई लोग गेमिंग एप्स में लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, अल्टीमेटली वो पैसा फ्रॉड में चला जाता है और किसी भी प्रकार का कोई उनको रिटर्न इसमें नहीं मिलता है। तो क्विकली जो ट्रस्ट करने वाला एक हमारे में टेंडेंसी है उससे दूर रहने की आवश्यकता है। कोई भी ऐसी वेबसाइट, कोई भी ऐसा स्कीम नहीं आई है जिसमें कुछ ही दिनों में पैसे डबल हो जाए, एक तो ये चीज ध्यान रखने की जरूरत है। दूसरी ये चीज है किसी भी वेबसाइट को आप सर्च कर रहे हो इंटरनेट पे, तो उस वेबसाइट के क्रेडेंशियल को जरूर वेरीफाई करें, अगर वो कुछ क्लेम कर रही है वेबसाइट तो जरूर उसके बारे में रिसर्च कर लें, पूरा सर्च कर लें, होमवर्क पूरा करें कि वो जेन्युइन वेबसाइट है या नहीं, किसी को अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें, सबसे बड़ी बात ये है। ओटीपी तो एक चीज हो गई, ओटीपी फ्रॉड के बारे में लगभग अब काफी लोग अवेयर है, बट फिर भी ओटीपी फ्रॉड हो रहे हैं और स्पेशली देहात के लोग को टारगेट बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिनको थोड़ी सी जानकारी कम होगी इस विषय पे।
0: बिल्कुल,
1: तो ये बेसिकली इजी टारगेट्स ढूंढते हैं और उस एज ग्रुप के ढूंढते हैं जो थोड़े एल्डरली भी होते हैं, उनको भी जरूर टारगेट बनाते हैं। हमारा यही काम है, हम खुद तो अवेयर हो, अपने घर में जो माता पिता है या कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उनको भी अवेयर करें कि किसी भी प्रकार की पर्सनल इन्फॉर्मेशन साझा ना करें।
0: अच्छा मैम ये तो बहुत अच्छे से आपने बताया, अब हम इसमें बात करते हैं कि देखिए मैम बहुत सारे लोग, आप ये भी जानते होंगे साइबर अपराध में क्या होता है कि हम ये जानते हैं बहुत तेजी से इसमें पहुंचने की जरूरत है पुलिस के पास अगर कुछ हो भी जाए, लेकिन आपको भी ये लगता होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो जल्दी नहीं पहुंचते हैं, या तो वो डर के वजह से नहीं पहुंचते हैं वो, या फिर उन्हें लगता है कि हमारी शायद हम ऐसी चीजें बताएंगे तो समाज में हो सकता है हमारा गलत इम्पैक्ट पड़े, तो उन लोगों के लिए खासतौर से आप क्या बताना चाहेंगे कि वो पुलिस के पास पहुंचे जल्दी से अगर कभी भी कुछ हो, चाहे साइबर, क्योंकि आपको पता है साइबर थाने भी होते हैं वहां भी पहुंचे वो, तो उनके लिए आप थोड़ा सा क्या बताना चाहेंगे, और खासतौर से महिलाओं के लिए वो इस चीज को ध्यान नहीं देती हैं और डरती हैं कहीं ना कहीं कि हम पुलिस के पास जाएंगे तो कोई और बात हो जाएगी, घर में कोई कुछ बोलेगा, तो उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं?
1: मैं यही कहना चाहूंगी जितनी भी महिलाएं हैं या जो भी व्यक्ति है जो रिपोर्ट करने से क्राइम डर रहे हैं, हमारे पास रिपोर्टिंग हेल्पलाइन नंबर है, साइबर क्राइम के लिए स्पेसिफिकली 1930 नंबर है और महिलाओं के लिए 1090 है, 1090। तो अगर किसी भी प्रकार से उनको कोई असुविधा हो रही है थाने तक पहुंचने में तो बिल्कुल हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, यदि संभव हो तो थाने पर जाके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। साइबर क्राइम

0: कैसे हैं आप और बताइए मीरगंज में अभी सब मौसम कैसा हो रहा है?
1: कैसे सब लोग बढ़िया हैं?
0: सब बढ़िया है। देखिए मीरगंज में कल आंधी के साथ थोड़ी बारिश आई या नहीं आई?
1: अरे सर बहुत विकट आंधी आई थी, रात भी बहुत विकट आंधी आई थी और पानी के साथ वर्षा भी हुई। मौसम बड़ा सुहाना है सर यहाँ का।
0: तो बढ़िया बात है, तो थोड़ी गर्मी से राहत मिल गई है ना। तो बताइए आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बताइए अपने बारे में।
1: सर मैं एक छोटा सा काम है मेरा, साइकिल की रिपेयर करता हूँ यही निकट बिजली।

श्रोताओं, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। और अब आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको बता दें कि हमारे इस कार्यक्रम यानी कि हेलो फ्रेंड्स की जो रिकॉर्डिंग है वो प्रत्येक रविवार को दोपहर ठीक 1 बजे होती है। श्रोताओं, हमारा नंबर है 0581251700। नंबर एक बार पता सुनिए, 0581251700। अब मुझे यानी कि वैभव को अगले कार्यक्रम में कुछ नया और नयाव लाने के साथ दीजिए अनुमति। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे युववाणी वैभव मिश्रा के साथ, प्रस्तुति थी गौरव सक्सेना जी की। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं किसान भाइयों का मनपसंद कार्यक्रम भैया धारा सिंह के साथ, प्रस्तुति है मिथिलेश श्रीवास्तव जी की।

0: कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे सभी ग्रामीण भैया और बहनों, आप सभी के लिए आपके भैया धारा की राम राम। स्वागत करते हैं हम आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम ग्राम जगत में। भैया बहनों, आज दिन है इतवार को और आज के दिन आप लोग इंतजार करते हो कि आपके द्वारा भेजे गए जो फरमाइशी लोकगीतों को सुनने के लिए पत्र भेजे हैं आपने, वो कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। और सोशल मीडिया पर जो कमेंट्स आप लोग भेजते हैं उनके आधार पर भी हम आपकी फरमाइशों को पूरा करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपकी पसंद के लोकगीत आप लोगों को अवश्य ही सुनवाएंगे। फिलहाल तो महत्वपूर्ण बात ये करनी है कि देखिए, मौसम करवट बदलता है, आंधी और पानी ने तापमान को कुछ कम किया और अब फिर वही हाल होने वाला है। गर्मी अपनी चरम सीमा पर जब पहुंचेगी तो हमें अपने पशुओं का, अपने बच्चों का, अपने बुजुर्गों का बहुत अधिक ध्यान रखना है। खास बात तो ये कि वे जवान पशु जो कुछ कह नहीं सकते, हमें सिर्फ उनके हाव भाव से पता लगाना पड़ता है कि हमारे पशु को अब किस चीज की आवश्यकता है। कोई भी हारी बीमारी हमारे पशु में होती है वो हमें बता नहीं सकते, हमें सिर्फ उनके हाव भाव से उनके शरीर को छूकर पता लगाना पड़ता है। वैसे ही इस समय बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि अपने पशुओं के लिए स्वच्छ पीने के पानी की व्यवस्था करके रखें। एक महत्वपूर्ण बात यह कि जो भी पानी हम अपने पशुओं को पिला रहे हैं वो इस समय ताजा होना चाहिए या ठंडा होना चाहिए। बहते नदी या नाले का पानी अगर आप पिला रहे हैं तो वो भी स्वच्छ होना चाहिए। कुछ किसान भाई पानी भरकर रख लेते हैं और नियमित तौर पर उसी भरे हुए पानी को पिलाते रहते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि जिस बर्तन में हम पानी भर रहे हैं वो बर्तन भी साफ होना चाहिए। लगातार अगर हम पानी भरते रहते हैं तो उसमें काई जम जाती है, कीड़े या गंदगी भी जमा हो जाती है जो हमारे पशुओं के लिए नुकसान पहुंचाती है। साफ पानी से उन्हें नहलाएं भी। तो बहुत अधिक बात इस संबंध में नहीं करनी है, बस इतना ही कि हम अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें। और आइए अब आपको सुनवा देते हैं क्षेत्र संकलित कार्यक्रम में हमारी बातचीत को।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ।

0: छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
1: आज विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर हम हैं शिक्षक श्री भूप सिंह जी के साथ, और आज हमारा आपसे बातचीत का विषय है तंबाकू निषेध के संबंध में। तो भूप सिंह जी, आज आपका हमारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है।
2: जी धन्यवाद।
1: जैसा कि समय बदल रहा है, युवाओं में ललक बढ़ रही है, और वहीं वो शिक्षा के साथ साथ कुछ ऐसी नीतियों में पड़ जाते हैं, ऐसे रास्ते पर निकल जाते हैं जो उनके स्वास्थ्य के लिए, उनके भविष्य के लिए हानिकारक होता है। ऐसे ही अगर हम किसी तंबाकू सेवन की बात करें या तंबाकू उत्पाद से जुड़े उत्पादों की बात करें तो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस संबंध में हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये तंबाकू निषेध दिवस क्या है।
2: देखिए, तंबाकू के हानिकारक प्रभावों से बचाने के लिए विश्व स्तर पर 31 मई के लिए प्रत्येक वर्ष तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जिससे कि पूरे समाज में, युवा वर्ग में और जो लोग भी तंबाकू का सेवन करते हैं उन सब में तंबाकू की क्या क्या हानियां हैं, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, इस चीज की जानकारी लोगों के लिए हो सके और वह इससे अवगत हो सके।
1: जी, बहुत ही अच्छी बात है कि जो 31 मई के लिए विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, विशेषकर लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से ही मनाया जाता है, और इसी विषय पर हमारी आपकी बातचीत हो रही है। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपसे यह जानना चाहूंगा कि कोई भी शुरू से धूम्रपान नहीं करता, न ही तंबाकू का सेवन करता है, धीरे धीरे ही उसको उसकी आदत पड़ती है, इस विषय में आपका क्या कहना है?
2: देखिए, इस विषय में मैं ये कहना चाहता हूँ कि तंबाकू के जितने भी उत्पाद है, वो चाहे बीड़ी हो या सिगरेट हो या गुटखा हो या खैनी हो जिसको लोग चबा के खाते हैं, ये ऐसे पदार्थ तो नहीं है जिनके बिना हमारा जीवन नहीं चल सकता। तंबाकू की या किसी भी धूम्रपान की लत पड़ने के प्रमुख क्या दो कारण होते हैं, एक तो बच्चा जब अपने घर में बड़ों के लिए इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं तो उनके मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा पैदा होती है, और बच्चे जब घर से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं तो उस समय उनका जो फ्रेंड सर्किल होता है, और अगर फ्रेंड सर्किल में कोई तंबाकू के किसी भी प्रकार से सेवन करता है तो वह उनके लिए आकर्षित करता है। तो प्रमुख दो कारण है, एक घरेलू माहौल और फ्रेंड सर्किल।
1: जी, अक्सर ये होता है कि जिस प्रकार का माहौल कोई भी छात्र है या फिर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति है वो देखता है, और देख करके जो उसके मन में ललक आती है उसका दुष्प्रभाव उस पर पड़ता है।
2: जी,
1: चाहे वो फायदे के रूप में कह लीजिए या फिर किसी नुकसान के रूप में कह लीजिए। आज हम तंबाकू निषेध के संबंध में ही बात करना चाहते हैं कि कुछ ऐसे छात्र हैं जो छिपकर, या छात्रों के अलावा कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो किसी व्यक्ति के सामने धूम्रपान नहीं करना चाहता, तंबाकू को चबाना नहीं चाहता है, लेकिन छिप छिप कर जो काम करते हैं वो धीरे धीरे उनकी जो है वो लत लग जाती है और वो उसका स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ने लगता है। तो ये ललक ना लगे, इस संबंध में आपका क्या कहना है?
2: देखिए, ये किसी भी नशीले पदार्थ की लत ना लगे उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज है कि हम उस वातावरण से दूर रहें। अगर हमारे घर में कोई तंबाकू का सेवन कर रहा है या धूम्रपान कर रहा है तो हम धीरे धीरे उसको समझाएं कि भाई इससे क्या क्या हानियां हो रही हैं, और इससे आप ही प्रभावित नहीं हो रहे हैं। कई बार जो स्मोकर होता है वही प्रभावित नहीं होता है, बल्कि पैसिव स्मोकर होते हैं, धूम्रपान का धुआं जो दूसरों के द्वारा अंदर सांस के द्वारा लिया जाता है उनको भी असर डालता है, तो उनको हम समझाने की कोशिश करें। और अगर फ्रेंड सर्किल में कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपका जो तंबाकू का सेवन करता है तो निश्चित ही आप उससे दोस्ती अपनी खत्म कर लें। माहौल से बचेंगे तो निश्चित ही जो है मन आपका नहीं भागेगा।
1: जी, तंबाकू से संबंधित कोई भी उत्पाद हो और उस उत्पाद पर सीधे सीधे चेतावनी लिखी भी रहती है और उस चेतावनी से संबंधित एक चित्र भी छपा रहता है कि तंबाकू से कैंसर होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है, उस चेतावनी को देखने के बावजूद भी, जैसा कि इस पैकेट पर स्पष्ट अंकित है कि तंबाकू चबाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और ये जानते हो कि उसका स्वास्थ्य पर कितना बुरा असर पड़ेगा, खाने में लगे रहते हैं, लोगों को इसमें जागरूक करने के लिए

0: आप किस प्रकार से समझाते हैं?
1: देखिए, इस स्थिति में मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, बचाव इलाज से ज्यादा बेहतर है। तंबाकू के हर उत्पाद पर लिखा रहता है कि तंबाकू खाने से दर्दनाक मौत होती है या तंबाकू खाने से कैंसर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी तंबाकू का खुलेआम लोग सेवन करते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि हमारे यहाँ जितने भी ये तंबाकू से संबंधित पदार्थ हैं उनकी बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है। सरकारें इनको प्रतिबंधित नहीं करना चाहती क्योंकि उनके लिए इन पर एक बहुत बड़ा टैक्स के रूप में, सेल टैक्स के रूप में एक बहुत बड़ा रेवेन्यू सरकार को मिलता है
0: जी।
1: तो सरकार ने तो खुली छूट इन सारे उत्पादों की बिक्री के लिए दे रखी है। एक वाक्य मुझे याद आता है, एक परिचित थे वो तंबाकू का सेवन करते थे और वो एक बार दुबई घूमने गए, मेरे परिचित ही हैं। 10-15 दिन के बाद जब वो घूम के लौट के आए, मेरी उनसे मुलाकात हुई कि दुबई की ट्रिप आपकी कैसी रही? बोले बहुत अच्छी रही। तो मैं उनसे ऐसी चर्चा करने लगा कि क्या क्या अच्छा रहा, तो उन्होंने बताया कि एक सबसे अच्छी बात ये रही कि मेरी गुटखा खाने की आदत छूट गई।
0: वाह।
1: मैंने कहा भाई ऐसा कैसे हुआ? बोले गुटखा वहां बिकता ही नहीं। मैं जो यहाँ से लेकर के गया था उसके लिए एयरपोर्ट पे चेकिंग में निकाल के उन्होंने बाहर फेंक दिया, जब्त कर लिया
0: जी।
1: तो जब मेरे पास था ही नहीं तो मैं 15 दिन तो बिना गुटके के रहा और मेरी बड़ी आसानी से आदत छूट गई
0: जी जी जी।
1: तो मैं लोगों से यही कहना चाहूंगा कि आप इससे बचिए, इसकी तरफ आकर्षित ही मत होइए, दिमाग लगाइए ही मत, तभी आप इससे बच सकते हैं, अन्यथा जो है आप बचने का कोई उपाय नहीं
0: जी। कहने का तात्पर्य यही है कि ये जो तंबाकू से संबंधित उत्पाद हैं, अगर सरकार सोचे कि हमें रेवेन्यू सिर्फ इससे ही नहीं मिलेगा, रेवेन्यू प्राप्त करने के और भी बहुत से साधन है और जनता रेवेन्यू दे भी रही है। अगर तंबाकू से संबंधित कोई भी उत्पाद है अगर उस पर रेवेन्यू नहीं लिया जाएगा तो इसे बंद भी किया जा सकता है। खैर, ये तो सरकार की मंशा है कि वो क्या करना चाहती है। हम आपसे यहाँ एक बात और जानना चाहेंगे कि जो छात्र आपके विद्यालय में है या किसी दूसरे संस्थान में वो अध्ययनरत हैं और किसी प्रकार से उनके अंदर तंबाकू सेवन से संबंधित कोई लत लगी हुई है, चाहे वो तंबाकू चबाने की हो या फिर धूम्रपान करने की हो, ऐसी बात अगर किसी छात्र में आपको नजर आती है तो ऐसे छात्र को किस प्रकार से आप समझाते हैं?
1: देखिए, क्योंकि मेरे विद्यालय में बहुत बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं और सभी छात्र ग्रामीण परिवेश के
0: जी,
1: और ग्रामीण परिवेश में भी बहुत ही गरीब तबके के बच्चे हमारे विद्यालय में आते हैं, तो तंबाकू या किसी भी प्रकार के नशे के लत से छात्र दूर रहे इसका पूरा ख्याल हमारा पूरा स्टाफ और प्रधानाचार्य जी रखते हैं
0: जी।
1: कि क्या उनके जेब में कोई पुड़िया, कोई सुईटी सुपारी या तंबाकू संबंधित उत्पाद तो नहीं है। उनके दांत चेक करते हैं रेगुलर कि क्या इनके दांतों से ऐसे सिम्टम तो नहीं दिख रहे हैं कि बच्चे तंबाकू का सेवन करते हैं। और यदि अगर हमें किसी छात्र की जेब से कोई तंबाकू या पुड़िया मिलती है, सबसे पहले निकाल के उसको फेंका जाता है। उस छात्र की काउंसलिंग करते हैं, उससे होने वाले नुकसान उसको बताते हैं, साथ ही उसके माता पिता को बुलाकर तो उनको भी बताते हैं कि आपके छात्र की जेब से ये पुड़िया मिली है, ये तंबाकू मिली है, आप इस पर नजर रखें। क्योंकि हमारे पास बच्चा केवल 5.5 से 6 घंटे रहता है, उस दौरान तो हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं, उसके बाद जो है बच्चा अपने घर चला जाता है, उसी माहौल में वापस जाता है। यहाँ पर पेरेंट्स की सबसे बड़ी जिम्मेवारी बन जाती है कि छात्र की जेब में क्या रखा हुआ है, उसकी जेब में कितने पैसे हैं, पैसों की आवश्यकता कब कब उसको हो रही है, इन सब चीजों पर अगर नजर रखी जाए और बच्चों को समझाया जाए तो आसानी से बच्चे मान जाते
0: हैं जी। भूषण जी, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि अगर मैं किसी रास्ते से निकल रहा हूँ और कोई ऐसी दुकान जहां पर धूम्रपान से संबंधित उत्पादों की बिक्री होती है, वहां मैंने छात्रों को, नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनको इसका इस्तेमाल करते हुए देखा है, तो मैंने भी उनको टोकने का, रोकने का प्रयास किया है। आपकी नजर में अगर कोई बच्चा किसी दुकान पर खड़ा है या किसी चौराहे पर खड़ा है और वो चाहे आपके विद्यालय का है या नहीं है या किसी दूसरे विद्यालय का है और आपने अगर उसे देख लिया है तो उसको किस प्रकार से आपने समझाया?
1: देखिए, इसमें सरकार ने एक बहुत अच्छी पहल कर रखी है। सरकार ने ये आदेश जारी कर रखा है कि जो भी शिक्षण संस्थान है उसके 500 मीटर के दायरे में जो भी दुकानें होंगी उन पर कोई भी नशीला पदार्थ की बिक्री नहीं होगी
0: जी।
1: उसके बावजूद भी अगर दूर दराज दुकानों पर बच्चे खड़े हुए मिल जाते हैं तो हमारी कोशिश रहती है कि हम उनको टोके, रास्ते में अगर हम टोकते हैं तो बच्चा एकदम से घबरा जाता है और वो डर भी जाता है। तो ऐसी स्थिति में उसे ये भी डर रहता है कि कल को मैं विद्यालय जाऊंगा सर मुझे फिर टोकेंगे, तो हम उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि बेटा अभी ये सब चीजें खाने की आपकी उम्र नहीं है, वैसे तो कोई भी नशा करने की कोई भी उम्र नहीं होती है, कभी भी नहीं करना चाहिए जो है, लेकिन बच्चे इससे प्रभावित भी होते हैं और मानते भी
0: जी। आज आपसे तंबाकू निषेध

0: दिवस पर धूम्रपान से संबंधित बातें हो रही हैं। अंत में समाज के लोगों से जो आकाशवाणी से जुड़े हुए हैं या हमारे जो भी श्रोता हैं हमको सुन रहे हैं, संदेश के रूप में छात्रों से और उनके अभिभावकों से क्या कहना चाहेंगे?
1: समाज के सभी लोगों से, छात्रों से और अभिभावकों से मैं यही कहना चाहता हूं कि नशा एक बहुत बुरी लत है, वो चाहे तंबाकू का हो, चाहे बीड़ी का हो, चाहे सिगरेट का हो, ये जानलेवा बीमारी आपको दे करके जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है जो हल्का सा शौकिया तौर पर तंबाकू का इस्तेमाल करते थे, पता लगा उनको जबड़े का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया। तो इससे आप पूरी तरह से बचे। नशा छोड़ने के लिए आपको केवल एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तंबाकू अगर खाने की लत लग गई है, आप मन में संकल्प कीजिए कि मैं आज से तंबाकू नहीं खाऊंगा।

0: पता लगा उनको जबड़े का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, गले का कैंसर हो गया, तो इससे आप पूरी तरह से बचे। नशा छोड़ने के लिए आपको केवल एक दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। तंबाकू अगर खाने की लत लग गई है, आप मन में संकल्प कीजिए कि मैं आज से तंबाकू नहीं खाऊंगा। आपके मन में बार बार तलब लगेगी, जिसे कहते हैं कि भाई 2-1 घंटे के बाद जब भी आपको तलब लगे, आप अपनी जेब में सौंफ, सफेद इलायची और लौंग
1: जी
0: ये जेब में आप रखिए, एक पुड़िया बना करके, जब भी आपको तंबाकू खाने की तलब लगे, आप इनको निसंकोच मुंह में डाल करके चबाइए और थोड़ा सा पानी पी लीजिए, तो आपकी वो जो तलब बहुत तीव्र उठी थी वो एकदम से शांत हो जाएगी और धीरे धीरे देखेंगे कि आप जो है इससे दूर होते चले जाएंगे और एक दिन आदत छूट जाएगी।
1: जी
0: तंबाकू इतना हानिकारक पदार्थ है, ये आपको मुंह का कैंसर, जबड़े का कैंसर, गले का कैंसर दे करके जाता ही जाता है। साथ ही जो लोग लंबे समय तक तंबाकू का सेवन करते हैं, उनकी आईसाइट भी हो जाती है, ब्रेन स्ट्रोक का भी डर रहता है और यहाँ तक कि हार्ट अटैक का भी डर खतरा बना रहता है।
1: जी रूप सिंह जी, आज आपने तंबाकू निषेध दिवस पर धूम्रपान से बचें, तंबाकू से बचें और उससे होने वाले तमाम प्रकार के खतरनाक रोगों के विषय में भी आपने बताया है कि इसको चबाने से, इसके धूम्रपान करने से किस किस प्रकार के जानलेवा रोग हो जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मधुर लोकगीत

0: कोई मत करियो जहर नशाधारी, कोई मत करियो जहर नशाधारी,
1: अरे कोई मत करियो जहर नशाधारी, कोई मत करियो,
0: अरे कोई मत करियो, हाँ कोई मत करियो, कोई मत करियो, हाँ कोई मत करियो जहर

जाबे अंत समय भू खा मर जाबे रोए बच्चा नारी कोई मत करियो रोए बच्चा नारी कोई मत करियो।

0: का पुड़िया पान मसाला, गुटका पुड़िया भैया पान मसाला, बंद हुआ मुँह लटका ताला, बंद हुआ मुँह लग गया ताला, अकल गई मारी, अरे कोई मत करियो जहर नशा धारी, अरे कोई मत करियो जहर नशा धारी,
1: कोई मत करियो जहर नशा धारी, अरे कोई मत करियो,
0: अरे कोई मत करियो भैया कोई मत करियो, अरे कोई मत करियो भैया कोई मत करियो जय।

0: जन्म मरण पिक निक जब जाते, जन्म मरण पिक निक जब जाते, नर नारी रा ही अपनाते, नर नारी रा ही अपनाते, होए खते ख्वारी अरे कोई मत करियो जहर नशा धारी, अरे कोई मत करियो।
1: क्या आप मेडिकल फील्ड ज्वाइन करना चाहते हैं? तो ज्वाइन करिए साई पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट, स्टेडियम रोड, बरेली। सरकारी कोर्स सरकारी नौकरियों के लिए मान्य,
2: नौकरी की 100% गारंटी के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए हमारे नंबर 6399449913 पर संपर्क करें।
3: भैया बहनों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम लोकमंजरी, जिसमें हम आपकी फरमाइश के आधार पर लोकगीत सुनवा रहे हैं। हमें कमेंट किया है सपना शर्मा के मधुर स्वर में एक प्यारा सा लोकगीत जिसके बोल हैं छोटे से हल्के से। इस लोकगीत को सुनना चाहा है नरगौड़ा छत्तीसगढ़ से महाराजा कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी गोस्वामी ने। कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 प्राण शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वीरेंद्र मौर्य, बेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, आरोही मौर्य और स्वाति मौर्य ने हमें सोशल मीडिया पर कमेंट किया है और इसी लोकगीत को सुनने के लिए हमें फरमाइश की है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, महराज जहां, आजाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से हमें पत्र लिखा है। गांव मझगवां जिला बरेली से अनवार हुसैन, जीनत बी, जैना बी, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, पूजा परिहार और अंजुम खान हमें कमेंट कर रहे हैं। इसी लोकगीत को सुनना चाहा है जिला बदायूं ग्राम दूने नगर से ठाकुर मुन्ना सिंह कठेरिया, मनोज कुमार कठेरिया, सत्येंद्र कुमार कठेरिया, गुड्डू विशाल, संगम, वैभव, आदर्श, आदित्य, अमित, रेणु, कुमकुम, निव्या, सरिता और अंतिमा ने। तो आइए आप सभी की पसंद पर आपको सुनवा देते हैं सपना शर्मा के मधुर स्वर में ये प्यारा सा लोकगीत।

इसी मधुर लोकगीत के साथ आज का कार्यक्रम ग्राम जगत यहीं संपन्न होता है। अपनी पसंद के लोकगीतों को सुनने के लिए हमें पत्र लिखिए और सोशल मीडिया पर कमेंट भी करिए। पत्र लिखने के लिए हमारा पता है, कार्यक्रम ग्राम जगत लोकमंजरी द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी बरेली और पिन कोड है 243001। और अब अपने भैया धारा को दीजिए मति। भैया बनो राम राम।

0: ग्राम जगत, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम भैया धारा सिंह के साथ। प्रस्तुति थी मिथिलेश श्रीवास्तव जी की। आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर। अब आप सुनिएगा सेहतनामा। विशेषज्ञ हैं डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जी और आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं मिथिलेश श्रीवास्तव जी।
1: दोस्तों नमस्कार, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका और इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जी को, जो मेंटल हॉस्पिटल बरेली में टेलीमानस हेल्पलाइन के काउंसलर हैं और साइकोलॉजिस्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि मेंटल हेल्थ है क्या, किस तरह से हम जानेंगे कि हाँ कोई भी मानसिक रूप से दिमागी रूप से स्वस्थ है।
2: सर जैसे जब हम अपना काम करते हैं, लाइक एक अगर स्टूडेंट है तो वो कॉलेज जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या एक पर्सन है, वर्किंग पर्सन है, वो अपने डेली रूटीन के काम कर रहा है, ऑफिस जा रहा है और ऑफिस जाकर अपने काम कर रहा है, तो अगर वो सारे काम अच्छे से कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि वो मेंटली फिट है। लेकिन कई बार होता क्या है कि वो वर्क तो कर रहे हैं, ऑफिस जा भी रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, लेकिन उस काम में उनका अपना 100% दे ही नहीं पाते हैं, चीजें कुछ ना कुछ कमी महसूस होती है। या एक स्टूडेंट है वो पढ़ाई तो करता है लेकिन कंसंट्रेट ही नहीं हो पा रहा है, जो चीजें पढ़ रहा है उसको याद ही नहीं हो रही है। तो ये एक सिम्टम्स है, ये एक निशानी है जिसे हम इस तरीके से ले सकते हैं कि यहाँ पर हमें एक मेंटल न्यूट्रिशियंस की कमी हो रही है। ये लैक ऑफ न्यूट्रिशियंस है, मेंटल न्यूट्रिशियंस है कि कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है हमारे साथ जो या तो हमें स्ट्रेस दे रहा है जिसकी वजह से हम अपना जो वर्क है वो अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं।
1: जी जी, तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी कमी से मेंटल हेल्थ प्रभावित होता है या न्यूट्रिशन कम हो जाता है उसका?
2: ये दोनों तरीके से जुड़ा होता है। कई बार अगर हम शारीरिक रूप से अपना ध्यान नहीं रखते हैं तो जो शरीर की प्रॉब्लम्स होती है वो फिर दिमाग के रूप में दिखाई देती है, हमारे मेंटल पर भी असर पड़ता है। लाइक जैसे हम कहते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो जब हम अपने शरीर का ध्यान रखते हैं अच्छे से, अच्छा खान पान करते हैं, तो उससे क्या होता है कि जो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो हमारा माइंड भी अपने आप स्वस्थ रहता है, जिससे कुछ हैप्पी हार्मोन्स होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक सेरोटोनिन हो गया, डोपामाइन हो गया, ऑक्सीटोसिन हो गया। तो कई सारे ऐसे हमारे पास में फ्रूट्स हैं और ड्राई फ्रूट्स हैं जिनको अगर हम खाते हैं तो ये हमारे ब्रेन में हमारे हैप्पी हार्मोन्स को रिलीज करते हैं जिनसे हमारा वर्क परफॉर्मेंस भी बढ़ता है। लाइक जैसे अखरोट हो गया या बादाम हो गया या केला हो गया, ये सारी चीजें ये
1: इंस्पिरेशन मिलता है माइंड को
2: और माइंड इससे हेल्थी रहता है। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, जब योगा एक्सरसाइज, लेकिन हेक्टिक लाइफ की वजह से स्टूडेंट कहता है कि सर मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, और वर्कर कहते हैं, जो वर्कर है ऑफिस वर्कर, वो कहते हैं कि सर इतना टाइम ही नहीं, बॉस इतना काम देता है कि हम अपने लिए टाइम कहाँ से निकालें। तो वो जो एक टाइम की कमी है और वो हेल्थ पे नहीं ध्यान दे पा रहे हैं इन सब चीजों पे, वो फिर उनके वर्क में दिखती है।
1: जी जी, जैसे

0: आपने स्टूडेंट्स की बात की है तो आमतौर पे आजकल देखा जाता है स्टूडेंट्स रात को जग के पढ़ते हैं और सुबह सोते हैं, तो ये कितना प्रभावित करता है मेंटल हेल्थ को?
1: ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, क्योंकि एक जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है हमारी, हमें इस तरीके से बनाया गया है कि रात के टाइम पे हमारी बॉडी से एक हार्मोन्स रिलीज होता है, मेलाटोनिन, वो अंधेरे के टाइम पे रिलीज होता है। तो हम रात में अंधेरा होता है तो वहां पे आसानी से हमें नींद आ जाती है, हम
0: जी
1: सो लेते हैं। लेकिन दिन के टाइम में फिर वो हार्मोन्स में कमी आती है, तो वहां पे जब हम दिन के टाइम में सोते हैं तो वो जो नींद है, जो एक डीप स्लीप होता है, डीप स्लीप हमें नहीं मिलती है। और जब डीप स्लीप नहीं मिलेगी, एक डीप स्लीप एक मेडिटेशन के बराबर होता है। अगर एक इंसान डीप स्लीप लेता है तो वो मेडिटेशन करने के बराबर ही उसका इफेक्ट पड़ता है। तो डीप स्लीप बहुत जरूरी है, खासकर रात में। अगर हम देखें तो 10 से 11 के बीच में एक ऐसा टाइम फेज आता है जहां पे हम सभी को एक बार नींद आती है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर इग्नोर करके हम आगे बढ़ जाते हैं। उस वजह से क्या होता है कि आगे चल के फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगती है। लाइक स्टूडेंट्स में भी कई केसेस ऐसे आए कि सर हम तो रात में जग के पढ़ते हैं और सर अब हमें बहुत स्ट्रेस हो रहा है, हमें बहुत दिक्कत हो रही है। तो हम उनको यही कहते हैं कि थोड़ा सा आप रात का टाइम कम करिए पढ़ाई का, और कोशिश ये करिए कि दिन के टाइम में थोड़ा सा ज्यादा पढ़ें।
0: ज्यादा पढ़ें, लेकिन इसमें लॉजिक देते हैं कि दिन में डिस्टरबेंसेस ज्यादा होती है, रात में सुकून रहता है, शांति रहती है, या कहें सन्नाटा रहता है, तो अच्छे से कंसंट्रेशन हो पाता है।
1: वो उनकी बातें सही है, लेकिन बाद में उन्हीं को प्रॉब्लम आती है कि सर जैसे एक हमारा रूटीन बन जाता है कि आप रात में पढ़ रहे हैं, रात में पढ़ रहे हैं और दिन में आप सो रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एग्जाम की,
0: एग्जाम की।
1: एग्जाम तो दिन में होंगे, तो जब एग्जाम दिन में होंगे तो उनकी एक जो क्लॉक सेट हो गई, बायोलॉजिकल क्लॉक के अकॉर्डिंग वो काम नहीं कर रहे हैं, और उनका रूटीन फिक्स हो गया है। रूटीन माइंड, क्योंकि माइंड हमारा अडॉप्ट कर लेता है चीजों को, जैसा हम उसको देते हैं कमांड वैसे वो अडॉप्ट कर लेता है। फिर वो अडॉप्ट कर लेता है कि मैं रात में जगना है, दिन में सोना है। फिर जब वो दिन में एग्जाम में बैठते हैं तो
0: तो
1: उनको आती
0: उनको
1: है नींद,
0: नींद आती
1: और
0: है।
1: फिर उनका जो परफॉर्मेंस है वो क्या होता है, वो बहुत कम हो जाता है। जहाँ पे वो 80% ला सकता है वहां पे वो जाके 65-60 पे अटक जाते हैं। वो कहते हैं कि हमने सब कुछ पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, हर चीज याद थी, एग्जाम में हम आउटपुट ही नहीं दे पाए। तो यहाँ पे एक
0: आता
1: ड्रॉबैक,
0: हुआ सवाल गलत
1: हाँ,
0: करके आ गए।
1: ये बहुत सारा हम लोग के पास केस आते हैं, कई सारे केसेस ऐसे आए हैं जिसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिली है।
0: अच्छा, रात में जगने के लिए, क्योंकि लॉजिक से वो अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं कि भाई रात में पढ़ेंगे, है ना, दिन में दूसरे काम करेंगे या फिर इतना कंसंट्रेशन नहीं बढ़ पाता है, तो उसके लिए चाय पीते हैं, कॉफी पीते
1: हाँ,
0: हैं,
1: चाय,
0: रात रात भर में चार चार कप पी जाएंगे, ये कहाँ पे सही
1: उसका
0: है?
1: एक अलग ही साइड इफेक्ट है। वो केवल उनको, क्योंकि उसमें कैफीन होता है, कैफीन से क्या होता है फिर वो उनको जगने में तो मदद करती है, लेकिन उसका बाद का जो साइड इफेक्ट रहता है ना वो काफी हार्मफुल होता है उनके लिए। तो पहली बात तो ये चीजें सेवन करना ही नहीं चाहिए, बहुत कम करना चाहिए। लेकिन अगर बहुत ज्यादा आप बिजी हो और काम टाइम नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कभी कभार ये चीजें कर सकते हो। कोशिश यही करनी चाहिए कि मॉर्निंग टाइम में आप अगर पढ़ाई करेंगे तो वो ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में हमारा ब्रेन काफी एक्टिव रहता है।
0: अब इसमें बात यह आएगी कि हमारी जो समस्याएं आ रही हैं मेंटल हेल्थ में, चीज़ें भूल रहे हैं या फिर कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, कौन सी वो स्टेज है जो आने के बाद, कौन से ऐसे लक्षण हैं, सिम्टम हैं, जिसको आने के बाद हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए? आमतौर पे क्या होता है कि जैसे हम लोगों को नॉर्मल फीवर हो गया, जुकाम हो गया, तो हम लोग फार्मेसी से अपने हिसाब से दवा ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाना अवॉइड करते हैं। क्या इसमें भी ऐसा है, अपने हिसाब से जो वीडियो देख के, हम मोबाइल पे कुछ देख के उसको अप्लाई कर लिया, क्या उससे फायदा होगा?
1: ये, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत कई सारे केसेस इसमें आए हैं कि आजकल क्या हो रहा है कि लोग इंस्टाग्राम देखा और वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे तो डिप्रेशन है, डिसाइड कर लिया कि मुझे तो एंजाइटी हो रही है। तो जैसे हम जब कोई बीमारी होती है और मेडिकल शॉप से दवा लेके खा लेते हैं तो जरूरी नहीं कि वो फायदा ही करे, ज्यादातर टाइम वो नुकसान ही कर जाता है।
0: जी
1: अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे लोग आजकल चैट जीपीटी आ गया है और इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, वहां से देख के वो क्या कर रहे हैं कि गुस्सा कम करने की कोशिश कर रहे हैं, या बोलते हैं मैं निगेटिव थॉट्स को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक केस आया, एक फीमेल के केस था, एक लड़की थी 26 ईयर की, वो बोल रही है कि सर मेरा ब्रेकअप हो गया है और मैं इन चीजों से बाहर निकलना चाहती हूँ, मैं पढ़ाई में कंसंट्रेट करना चाहती हूँ, बट फिर भी मेरे दिमाग में उसी के थॉट्स आते हैं, बार बार उसी के थॉट्स आते हैं। तो मैंने कहा इसके लिए आप क्या करते हो? तो सर बोली मैंने यूट्यूब पे देखा, मैंने यहाँ देखा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको ना याद करूँ। मैंने कहा अच्छा क्या करते हो आप? बोली मैं कोशिश करती हूँ उसको ना याद करूँ। अब उसके लिए क्या करते हो? तो बोली

0: ये कहते हो कि मैं नहीं याद करूंगी, मैं नहीं याद करूंगी, मैं नहीं याद करूंगी। मैंने उससे बोला कि अच्छा एक मिनट के लिए आप आइस क्लोज करिए। उसने आइस क्लोज किया। मैंने कहा कि अब आपको अपनी मदर का नाम अपने दिमाग में नहीं सोचना है। मैंने कहा दिमाग में बिल्कुल आना नहीं चाहिए नाम। तो उसने बोला कि, मैंने कहा अच्छा आया कि नहीं आया? उसने कहा कि हाँ सर आ गया। मैंने कहा जबकि मैंने आपको क्या किया था, मना किया था कि आपको अपनी मदर का नाम नहीं सोचना है, ठीक? अब आप क्या करते हो कि मैं बॉयफ्रेंड के बारे में नहीं सोचूंगी, और मैंने क्या कहा था कि मदर का नाम नहीं सोचना है। तो जैसे मदर का नाम दिमाग में आ गया, वैसे बॉयफ्रेंड का नाम दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा, उसकी यादें दिमाग में आएगी कि नहीं आएगी? तो कहते अच्छा सर, तो कहते 2 साल से हम यही सोच रहे हैं। तो कहते 2 साल से आप उससे दूर नहीं जा रहे हो, ये चीज सोच सोच के कि उसके बारे में नहीं सोचूंगी, आप उसको और ज्यादा अपने पास बुला रहे हो और
1: जी
0: उसकी यादों में आप
1: खो जा रहे
0: खोए
1: हैं।
0: जा रहे हो। फिर वो कहते हैं कि सर फिर इसका इलाज क्या है, कैसे बचे? तो हम कहते हैं कि फिर आपने यहाँ पे कॉल किया है, उसी के लिए किया है, हम बैठे हैं ना। तो फिर हम उनको एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि लाइक आप क्या करिए, ऐसा समझिए कि एक अंधेरा कमरा है। अब उस अंधेरे कमरे में आपने ये डिसाइड कर लिया है कि जब इसका अंधेरा दूर होगा तब मैं यहाँ पे दिया जलाऊंगी, तो क्या कभी आप जला पाओगे? तो कहते नहीं सर नहीं जलेगा। हम कहते और अगर आपने अगर एक छोटा सा दिया जला दिया तो क्या अंधेरा बचेगा? कहते नहीं सर नहीं बचेगा। हम कहते अगर मान लो 100 साल पुराना हो तो बचेगा? कहते नहीं बचेगा। तो हम उनको समझाते हैं कि जो आपका माइंड है वो वही कमरा है, और आपने क्या सोच रखा है कि इस कमरे का जब अंधेरा दूर हो जाएगा, यानी जब ये निगेटिव थॉट्स दूर हो जाएंगे, जब बॉयफ्रेंड की यादें दूर हो जाएंगी, तब मैं क्या करूंगी, पढ़ाई करूंगी। तो आप क्या कभी पढ़ाई कर पाओगे? तो कहते नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपने क्या किया, छोटा सा एक कैंडल जला दिया। तो जो कैंडल है वो पॉजिटिव थॉट्स है। पॉजिटिव थॉट्स मतलब जो आपको लाइफ में चाहिए, आपको निगेटिविटी से दूर नहीं जाना है। आपको क्या करना है, आपको अपने अंदर पॉजिटिविटी को लाना है। जैसे एक पाइपलाइन है, एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं कि एक पाइपलाइन है। अब पाइपलाइन में एक चीज फंसी हुई बीचों बीच में, जहां तक आपका हाथ नहीं जा रहा है, और आप सोच रहे हो कि इस पाइपलाइन से ये चीज बाहर हो जाए तब मैं दूसरी चीज में डालू, तो क्या कभी डाल पाएंगे? लेकिन हम उस चीज में कोई दूसरी चीज एंटर करते हैं, एंटर किए जा रहे हैं दूसरी चीज लगातार, तो जो पहली चीज है वो दूसरे साइड से अपने आप बाहर निकल जाएगी। तो जब आप क्या करोगे, जब जो आपको चाहिए, जैसे वो एस्पिरेंट थी आईएएस की तैयारी कर रही, तो मैंने कहा आपको चाहिए आईएएस, तो आप क्या कर सकते हो कि आप आईएएस के बारे में सोच सकते हो। आप अपने आप को विजुलाइज कर सकते हो कि आप अपने ऑफिस में बैठे हो, आप लोगों से डील कर रहे हो, आप इस तरीके के थॉट्स सोच रहे हो, या उससे भी पहले आप ये सोच सकते हो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, पूरे बल लगा के पढ़ाई करो, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो जब ये थॉट्स आप ब्रेन में डालोगे, माइंड में अपने डालोगे, तो जो बॉयफ्रेंड वाले थॉट्स हैं वो अपने आप वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि हम अपने जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड है वो बहुत पावरफुल है। जो भी चीजें हम वहां पे डालते हैं वो वापस बाउंस बैक करता है और हमारे थॉट्स हमारे बिहेवियर को ही चेंज कर देता है।
1: जी। अब हम जानना चाहेंगे कि एक कहें या तो स्वस्थ व्यक्ति हो या फिर जो हल्की फुल्की मानसिक समस्याओं से जूझ रहा हो, उसको अपना दिमाग फिट रखने के लिए क्या रूटीन रखना चाहिए, किस रूटीन का पालन करना चाहिए?
0: बिल्कुल, जिससे स्वस्थ व्यक्तियों के लिए भी है और जो स्वस्थ होना चाहते हैं
1: जी
0: उन
1: जी
0: सबके लिए है। सबसे पहली चीज तो है कि उनका मॉर्निंग जो रिचुअल है, मॉर्निंग में कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए कि जो आपके पूरे दिन को फिट रखे। जैसे मैं अपने जो कॉलर रहते हैं उनको एक टेक्निक बताता हूँ, सेवर्स। सेवर्स जिसमें सिक्स चीजें होती है, छह चीजें होती है। जैसे एस, सबसे पहला एस वो हो गया साइलेंस, मतलब आप उठ रहे हैं तो उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद, आप कम से कम, अगर आप उनका शेड्यूल बहुत ज्यादा बिजी होता है तो हम उनको सिर्फ 2 मिनट का बताते हैं। अगर उनके पास टाइम होता है तो हम कहते हैं आप कम से कम 5 मिनट के लिए, जिसे कह सकते हैं मेडिटेशन में जाइए। और मेडिटेशन में क्या करना है, आपको प्रॉपर पोजीशन में आके कोई भी आपको ध्यान या कोई मंत्र नहीं जपना है, कुछ भी नहीं करना है, बस सांसों पे अपने ध्यान देना है कि कैसे नाक से सांस ऊपर जा रहे हैं और कैसे नाक से सांस बाहर आ रहा है, बस केवल 2 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करना है, आपको अफर्मेशन करना है। पहले एस हो गया, फिर ए आया, ए से अफर्मेशन, यानी जो भी चीजें आपको चाहिए फ्यूचर में वो चीजें आप लिखिए, वो आप उसको नोट डाउन करिए या उसको दोहराइए बनी बन। लाइक एक स्टूडेंट है तो वो चाहता है कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स आऊं, या मैं क्या करूं कॉलेज में टॉप कर दूं, या मैं आईएएस बन जाऊं। वी से हो गया विजुलाइजेशन, यानी उसको विजुलाइज करिए, आप उसको आप आंखें बंद करके और उस चीजों को होते हुए
1: देखिए, महसूस करिए,
0: प्रेजेंट में हो रही है आपके साथ, उसका
1: होगा नहीं बल्कि उसको प्रेजेंट टेंस में करिए
0: उसको।
1: जैसे अगर किसी को पैसा चाहिए बहुत, तो ये सोचे कि हाँ पैसा आ रहा है मेरे पास, ये ना कि आएगा,
0: आएगा नहीं, वो है। आप अपने आप को उस सिचुएशन में ले आके देखिए कि आप वहां पे हो। जैसे इसमें एक छोटा सा और जोड़ना चाहूंगा, एक हमारे साइकोलॉजिस्ट थे, पहले तो वो फार्मासिस्ट थे।

0: कूले, क्विल करके, एमाइल क्विल नाम था उनका। तो वो पहले फार्मासिस्ट थे, उनको क्या करते थे जब दवाइयां देते थे तो दवाइयां देते टाइम बोल देते थे कि ये दवाई बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा, फायदा करेगी।
1: अच्छा।
0: और किसी किसी से नहीं बोलते थे, जिनको ये बोल देते थे उनके ऊपर उस दवा का बहुत अच्छा असर देखने को मिला। फिर उन्होंने क्या किया, अपना एक सेंटर डेवलप किया जहां पे वो मरीज को लाते थे, लिटाते थे और उससे सिर्फ अफर्मेशन बोलते थे, मतलब उसको सिर्फ बोलते थे कि तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम स्वस्थ हो रहे हो, तुम पूरी तरीके से स्वस्थ हो रहे हो। तो कई बार मरीज चिढ़ जाता था कि अरे सुन लिया ना, एक ही चीज को बार बार क्यों बोलते हो। तो कहता मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, तुम्हारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो तुम्हारे मन में अचेतन मन है, जो सबसे पावरफुल माइंड है, वहां तक बात पहुंचानी है। जब वहां तक बात पहुंच जाएगी तो वो तुम्हें अपने आप स्वस्थ कर देगी, क्योंकि अनकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल होता है। फिर आता है एस ए वी ई, ई से हुआ एक्सरसाइज।
1: अच्छा।
0: एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, जबकि हम उसको एक्सरसाइज को ही इग्नोर कर देते हैं। तो एक्सरसाइज में आप या तो जिम जा सकते हैं या आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आपका बहुत रूटीन हेक्टिक है तो आप योगा करें। योगा में भी आप कुछ नहीं कर रहे हैं तो एक सिर्फ एक योगा करें, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में टोटल 12 स्टेप होते हैं, वो 12 स्टेप ही आपको पूरा पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाएगा। पूरे बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। 5 से 7 राउंड सूर्य नमस्कार करिए, स्टार्टिंग में 1-2 राउंड से स्टार्ट करके। उसके बाद आता है आर, आया
1: आर आता है,
0: आर आता है आर से रीडिंग।
1: रीडिंग
0: कुछ 2 मिनट से लेके 5 मिनट के लिए सुबह उठ के कुछ ना कुछ अच्छा पढ़िए। जब आप कुछ अच्छा पढ़ते हैं, लाइक किसी की बायोग्राफी पढ़ लिया, लाइक एपीजे अब्दुल कलाम हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, एलन मस्क हो गया, कोई भी ऐसे पर्सन हो गए, या आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए, जैसे अरुणिमा सिन्हा हो गई, तो उनके बारे में पढ़े। 2 मिनट से लेके 5 मिनट ही पढ़े डेली, थोड़ा ही पढ़े, उससे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। फिर स्क्रिप्टिंग आता है एस से। अब स्क्रिप्टिंग मतलब आप लिखिए कि अगर आपको सक्सेस पाना है या अगर आप किसी दूसरे को बता रहे हो सक्सेस के लिए, तो आप उसमें क्या चीजें बताओगे, कैसे कोई सक्सेस पा सकता है, उसको अपने विचार लिखिए।
1: अच्छा।
0: हाँ, ये जो 6 चीजें है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है।
1: तो हम उम्मीद करते हैं कि आप भी अगर किसी मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं तो कम बैक करेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जी ने जो आपको टिप्स दिए हैं उसको आप फॉलो करेंगे और उसका लाभ जरूर उठाएंगे। डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इतने अच्छे अच्छे टिप्स दिए आपने, उसके लिए आपका बहुत बहुत
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे सेहतनामा। विशेषज्ञ थे डॉक्टर अभिषेक प्रताप सिंह और आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे मिथिलेश श्रीवास्तव जी। हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं ये संदेश।
3: आकाशवाणी के दीवानों के लिए एक हम छोटा सा कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, इसका नाम है आकाशवाणी के दीवाने। जी हाँ, आप अगर आकाशवाणी के दीवाने हैं, आप सब में दीवानगी है आकाशवाणी के प्रति, तो आप मोबाइल उठाइए, अपना वीडियो बनाइए और वीडियो में बताइए कि आपने पहली बार आकाशवाणी को कब सुना और अपनी एक यात्रा के बारे में बताइए कि कब कब सुनते रहे, किन हालातों में सुने रेडियो का।
2: हम आकाशवाणी के बरेली केंद्र से बोल रहे हैं 100.4 मेगाहर्ट्ज पर। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिन्हें हम रिले कर रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा करें।

0: PM सूर्यघर.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगंध क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
4: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा किए अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी DGP। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा किए। कार्यक्रम के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न मुद्दों पर अपने विचार रखे। श्री मोदी ने कहा कि सरकार देश की अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के लिए प्रयासरत है। श्री मोदी ने देशवासियों से भीषण गर्मी के मौजूदा मौसम के दौरान अत्यधिक सावधानी बरतने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
7: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
6: प्रधानमंत्री ने लोगों से गर्मी से राहत के लिए आम पन्ना, छाछ, लस्सी, सत्तू, शरबत, बेल पन्ना, पनाकम, नीरमोर, सांभरम, कोकम शरबत और सोल कढ़ी का सेवन करने की भी अपील की है।
7: हमारे यहाँ गर्मी से लड़ने का तरीका भारत के अलग अलग क्षेत्रों की परंपरा का हिस्सा है और इसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना की झलक भी मिलती है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, इनमें से ज्यादातर चीजें हमारी अपनी रसोई से निकली है। आप भी गर्मी के दौरान देसी पेयजलों का खूब आनंद लीजिए।
6: प्रधानमंत्री ने काशी के लंगड़ा, महाराष्ट्र के अल्फांजो, गुजरात के केसर और पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम की चर्चा करते हुए कहा कि हर क्षेत्र के आम का स्वाद अनूठा और उसकी महक अनोखी होती है।
7: महाराष्ट्र और कोंकण का हापुस, अल्फांसो, गुजरात का केसर, यह तो आमरस की जान है। उत्तर प्रदेश का दशहरी और मेरी काशी का लंगड़ा, बिहार का जरदालू, चौसा, मालदा, हर नाम के साथ लोगों की यादें जुड़ी हुई है। दक्षिण भारत जाइए तो बंगन पल्ली, तोतापुरी, नीलम, मलगोवा, बंगाल का हिमसागर, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का सुवर्ण रेखा, यानी जगह बदलती है, आम का रूप रंग और उसका स्वाद भी बदल जाता है।
6: श्री मोदी ने कहा कि भारतीय आम ने वैश्विक बाजार तक पहुंच बनाई है और आम हमारी कृषि अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में एक नहर में गंगा डॉल्फिन को बचाने वाले वीडियो का भी उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि नमामि गंगे अभियान के तहत बनाई गई भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्री मोदी ने कहा कि गंगा डॉल्फिन संरक्षण से नदी की जैव विविधता और अमूल्य प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण भी होता है।
7: डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बहुत खास है। इसे एक चलते फिरते अस्पताल की तरह तैयार किया गया है। इसमें

0: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें।

0: डॉल्फिन को सुरक्षित रखने की व्यवस्था, ऑक्सीजन की सुविधा, विशेष स्ट्रेचर बचाव के उपकरण है, यानी अगर कोई डॉल्फिन घायल हो जाए, नहर में फंस जाए या नदी से कट जाए तो तुरंत उसकी मदद की जा सकती।
1: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के बस्ती के आकाश गुप्ता का जिक्र किया, जिन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर गांव की मनोरमा नदी को साफ किया। श्री मोदी ने देशवासियों से अपील की है कि वे अपने आसपास समाज की बेहतरी के लिए लगातार काम कर रहे लोगों को पहचानें और स्वयं भी अच्छे कार्यों से जुड़ें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मन की बात कार्यक्रम में गंगा डॉल्फिन बचाओ और बस्ती के आकाश गुप्ता का उल्लेख किए जाने पर प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से श्री योगी ने कहा कि पर्यावरण और जीव संरक्षण के प्रति जन जागरूकता बढ़ाती इस प्रेरक पहल को राष्ट्रीय मंच पर स्थान देने पर प्रधानमंत्री का आभार। मन की बात में काशी के लंगड़ा आम का जिक्र किए जाने का काशीवासियों ने स्वागत किया है। वाराणसी क्षेत्र के MLC धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा लंगड़ा आम का उल्लेख किए जाने से वाराणसी की कृषि और स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान मिलेगी।
2: जी, बनारस का लंगड़ा दौड़ता है विश्व भर में, तो बनारस के लंगड़े की प्रशंसा उन्होंने की। आज बहुत बड़े क्षेत्र में अभी भी हमारे किसान लंगड़ा आम की खेती करते हैं। बनारस धन्य है, बनारस के लंगड़ा आम का स्वाद ही कुछ और होता है।
1: बस्ती के रहने वाले आकाश गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा मन की बात में नाम लिए जाने से और बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है।
3: आसपास के जितने भी गांव के लोग हैं, नदी के पास जितने भी गांव हैं, हम चाहेंगे सब युवा हमसे जुड़े और इस काम को एक अभियान बनाए, जिससे कि नदी पूरा साफ हो सके। क्योंकि हम 5 से 6 लोग 7 लोग नदी को पूरा साफ नहीं कर सकते जब तक कि सब लोग एक साथ ना।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। 1991 बैच के वरिष्ठ IPS अधिकारी राजीव कृष्ण को राज्य का पुलिस महानिदेशक बना दिया गया है। श्री राजीव कृष्ण अभी तक कार्यवाहक DGP के तौर पर कार्य कर रहे थे। वर्ष 2022 के बाद प्रदेश को स्थायी DGP मिल गया है। संघ लोक सेवा आयोग से मंजूरी मिलने के बाद गृह विभाग ने श्री कृष्ण की नियुक्ति का आदेश जारी कर दिया है। श्री राजीव कृष्ण जून 2029 तक इस पद पर बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश शासन ने तात्कालिक प्रभाव से 21 जिलों में नए मुख्य चिकित्सा अधिकारी की तैनाती की है। आज जारी तबादला सूची के अनुसार प्रादेशिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के संयुक्त निदेशक ग्रेड एवं विभिन्न अस्पतालों में तैनात चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्ति CMO के पद पर की गई है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार डॉक्टर हरिनंदन प्रसाद जालौन, डॉक्टर रमेश मिश्रा सोनभद्र, डॉक्टर रंजन गौतम बाराबंकी और डॉक्टर अजय कुमार शर्मा को उन्नाव का CMO बनाया गया है। इसी प्रकार डॉक्टर पंकज कुमार मऊ, डॉक्टर मुकेश कुमार वाराणसी का CMO बनाया गया है। अपर निदेशक लखनऊ डॉक्टर GP गुप्ता को सिविल अस्पताल का निदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने आज आगरा में ताजगंज क्षेत्र के पुरानी मंडी चौराहा स्थित लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर हवन पूजन किया। इस दौरान श्री बघेल ने एक बाइक यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि बिना विरासत का सम्मान किए प्रगति संभव नहीं है।
4: जो जात वर्ग क्षेत्र धर्म पुरखों का सम्मान नहीं करता वो आगे नहीं बढ़ता, और हमारे पुरखे ऐसे हैं जिन्होंने 12,776 टूटे हुए मंदिरों का जीर्णोद्धार कराया, तमाम सड़कें प्यावो धर्मशाला बनाई, लोक कल्याणकारी काम किए हैं। इसलिए ऐसी जयंतियों से जागृति आती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संघर्ष करने की क्षमता, संघर्ष से सत्ता, सत्ताओं से इतिहास बनता है।
1: वाराणसी में भी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की 301वीं जयंती उल्लासपूर्ण माहौल में मनाई गई। प्रदेश भर में आज उत्तर प्रदेश संयुक्त BEd प्रवेश परीक्षा 2026 शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी को परीक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परीक्षा के लिए 72 जनपदों में 1,011 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। परीक्षा की निगरानी के लिए एक हाईटेक कमांड कंट्रोल रूम बनाया गया था। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हो गई। आईपीएल 2026

0: इसका फाइनल मुकाबला आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटन के बीच खेला जा रहा है। आरसीबी ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी और बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान जताया है। इस दौरान कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बिजली कड़कने की भी चेतावनी दी गई है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ साझा की अपने विचार। कहा, देश के धरोहर स्थलों के संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास कर रही है सरकार। प्रधानमंत्री ने प्रदेश के दशहरी और लंगड़ा आम की किस्मों समेत गंगा डॉल्फिन बचाओ अभियान का किया जिक्र। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जताया आभार। 1991 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को बनाया गया उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक। वर्ष 2022 के बाद मिला पहला स्थायी डीजीपी। और राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई जिलों में आंधी बारिश के बाद लोगों को गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग ने कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का जताया अनुमान। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: बड़ी बहू,
2: ये तुम्हारी ना।
1: इतनी भी क्या जल्दी थी?
2: अरे और छोटी, ये तुम्हारी ना।
1: और ये मेरी गुड़िया की ना।
3: पर दादी, आपके नाम?
4: सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो।
2: शुभ शुभ बोलो।
3: क्या
4: RBI कहता है?
5: जानकार बनिए।

0: आकाशवाणी का ये बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। आइए सुनते हैं जनमंच। आज का विषय है तंबाकू मुक्त समाज आज की आवश्यकता। प्रतिभागी हैं अमन गुप्ता और संदीप यादव। आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं ब्रजेश तिवारी।
1: श्रोताओं, आपने ट्यून किया है 100.4 FM आकाशवाणी का बरेली केंद्र और लेकर हाजिर हैं हम प्रोग्राम जनमंच। और हर बार की तरह इस बार भी बात होगी एक समसामायिक मुद्दे पर, और वो समसामायिक मुद्दा जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, वो समसामायिक मुद्दा जो हम सब डेली रूबरू होते हैं उन सारी चीजों से। तो ये विषय है जनमंच, जहां बात होती है जन की, जनता की, जनता के लिए। और इस प्रोग्राम में जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, हमेशा होता है वो विषय जो होता है जनता का, जनता के लिए। तो आज जो हमारा विषय है वो है तंबाकू मुक्त समाज आज की आवश्यकता। श्रोताओं, हम देखते हैं जरा जरा से छोटे छोटे बच्चे आजकल तंबाकू और नशे का शिकार हो रहे हैं, और एक फैशन बन रहा है, और कहीं ना कहीं बीमारियों को हम आमंत्रित करते हैं। साथ ही साथ तंबाकू का सेवन दो तरीके से होता है, एक सक्रिय रूप से, एक निष्क्रिय रूप से। सक्रिय रूप से वो आदमी जो उसका सेवन कर रहा है, और निष्क्रिय रूप से वो आदमी जो उससे प्रभावित हो रहा है। तो कुल मिलाकर के समाज में तंबाकू का जो जोर है वो चारों तरफ व्याप्त है। अब समय आ गया है कि हमें बहुत निचले स्तर से इसको सुधारने और संवारने की आवश्यकता है, जिसके माध्यम से हम समाज में एक तंबाकू मुक्त समाज की अवधारणा की संकल्पना को साकार कर सके। खैर, ये था हमारा आज का विषय और उससे संबंधित रूपरेखा और प्रस्तावना। प्रोग्राम के लिए हमारे स्टूडियो में हमारे ही समाज के दो प्रतिनिधि, जो अपने अपने क्षेत्रों में एक बेहतरीन काम कर रहे हैं और एक अन्य अन्य विभिन्न पेशों से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। आज हमारे मेहमान हैं अमन गुप्ता जी, जो कि एक पेशे से कलाकार भी हैं, साथ ही साथ अपना एक उद्यम यानी कि रूप सज्जा और साज सज्जा के क्षेत्र में अपना एक उद्यम भी चलाते हैं। साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम में हैं संदीप जी, जो कि एक पेशेवर अकाउंटेंट हैं और एक कंपनी में बतौर अकाउंटेंट काम करते हैं। दरअसल हमारे इस कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को जोड़ने का उद्देश्य यही होता है श्रोताओं, कि वो अपनी नजर से, अलग अलग नजरों से समाज के उन समसामायिक मुद्दों को देखें और देखते हैं और अपनी राय रखते हैं। तो कार्यक्रम में आपका अमन गुप्ता जी और संदीप जी बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद। धन्यवाद।
1: तो जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे आज के हमारे विषय से अमन जी और संदीप जी, कि जो तंबाकू हम लोग देख रहे हैं कि

0: आजकल नौनिहाल छोटे छोटे बच्चे, इतनी कम उम्र के बच्चे तंबाकू के से घेर में फंस गए हैं। तो यहीं से शुरू करते हैं कि भाई तंबाकू का जो इस्तेमाल है, जो छोटे लोग चाहे बड़े लोग चाहे किसी भी प्रकार के वर्ग के लोग कर रहे हैं, वो इस समाज पर कैसे असर डालता है, क्या लगता है आपको अमन जी?
1: जी, मेरे को जैसे आपने शुरुआत में बताया था कि छोटे छोटे बच्चे, मतलब अब कोई उम्र की सीमा नहीं रह गई है। अब
0: जी
1: आपको 7 साल, 8 साल, 10 साल का बच्चा भी सिगरेट पीते हुए, गुटखा खाते हुए आराम से किसी भी सड़क के किनारे मिल जाएगा।
0: जी
1: इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आजकल के लोगों की जो मानसिकता हो गई है,
0: जी
1: युवाओं की मानसिकता, जो नए नए छोटे छोटे बच्चे,
0: जी
1: ये प्रभावित हो रहे हैं हमारे आसपास होने वाले जितने भी प्रमोशंस हैं। जैसे हम सोशल मीडिया पर देखते
0: जी
1: हैं, हर
0: जी
1: एक बच्चे के पास फोन है
0: जी
1: तो
0: जी
1: वो स्क्रॉल कर रहा है, रील्स देख रहा है, नए नए ऐसे ऐसे एड्स देख रहा है।
0: जी
1: फिल्में जितनी भी हैं आजकल,
0: जी
1: आजकल
0: जी
1: फिल्मों में हीरो को भी इस तरह से प्रेजेंट किया जाता है कि जो हीरो सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी के एंट्री ले रहा है, तो लोगों को बड़ा मजेदार लगता है,
0: भौकाल एकदम होती
1: भौकाल।
0: है।
1: हाँ, आदमी
0: हाँ,
1: इससे इतना ज्यादा प्रभावित हो चुका है कि उसको लगता है कि अगर मैं भी सिगरेट पीना शुरू कर दूं
0: तो
1: या
0: मैं भी
1: मैं,
0: वैसा
1: हाँ
0: दिखूंगा।
1: जी, जैसे आप देखेंगे कि बड़े बड़े एक्टर ये गुटखा खाते हुए ऐड कर रहे हैं, तो ये लोग, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो लोगों को अपना आइडल मानते हैं,
0: जी जी
1: इनको देखते देखते इनको भी लगता है कि हाँ, शायद कोई भला भला
0: हाँ,
1: गुटखा खाने से
0: बिल्कुल
1: बढ़िया
0: बिल्कुल सही बात
1: रहेगा।
0: है। तो जो बड़े बड़े एक्टर हैं, मतलब
1: बड़े
0: जैसा
1: बड़े
0: आपने,
1: अभिनेता,
0: हाँ
1: हाँ
0: अभिनेता, इन
1: जी
0: लोगों ने एक अपना अलग जगाना, मतलब एक उसको एंडोर्स कर रहे हैं उन चीजों
1: जी
0: को।
1: जी जी
0: हालांकि बीच बीच में न्यायालयों द्वारा इस तरीके की टिप्पणियां
1: जी
0: की जाती रही हैं कि इस प्रकार के लोग जिनका समाज पर एक गहरा प्रभाव है
1: जी
0: वो इस तरीके के विज्ञापन करने से बचें।
1: बिल्कुल
0: कुछ लोग जो है वो, कुछ बड़े अभिनेता या बड़े रुतबे वाले लोग हो जो होते हैं, वो बहुत बड़ी धनराशि मिलने पर भी इस प्रकार के विज्ञापन नहीं
1: नहीं
0: करते।
1: करते हैं, नहीं करते
0: इसका
1: हैं।
0: जैसे कि हम लोगों ने,
1: सचिन
0: हाँ
1: तेंदुलकर
0: इस तरीके से
1: साहब
0: बहुत
1: हैं,
0: सारे, हाँ नहीं करते
1: उन्होंने
0: वो,
1: आज तक कभी
0: नहीं।
1: ऐसा,
0: संदीप जी, जैसा कि अमन जी ने बताया कि छोटे छोटे बच्चे इन तरीके की चीजों से प्रभावित हो जा रहे हैं और समाज में, आपको क्या लगता है कि समाज में ये जो तंबाकू है ये कैसे प्रभाव डाल रहा है, तंबाकू का प्रयोग या इस तरीके की धूम्रपान का प्रयोग, ये किस प्रकार से अफेक्ट कर रहा है समाज को?
1: जैसे कि अमन जी ने बोला,
0: जी
1: आपने
0: जी
1: बोला,
0: जी
1: ये ना केवल उस पर्टिकुलर व्यक्ति या
0: हाँ
1: उस बच्चे पे जो भी उसका सेवन कर रहा है, ना केवल उस पे असर डाला है,
0: जी
1: बल्कि उसके पूरे परिवार पे,
0: जी
1: पूरे समाज पे
0: जी
1: विभिन्न विभिन्न तरीकों से
0: असर डालता
1: असर
0: है,
1: डाला
0: जरूर
1: है,
0: असर डालता है। तो
1: फाइनेंशियली,
0: हाँ हर तरीके से,
1: हर
0: हाँ
1: तरीके से। ना कि वो एक अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, बजाय उसके वो पर्टिकुलर एक नशे के बारे में दिन रात बस उसी के बारे में
0: उसी में
1: सोच,
0: लगा
1: कि
0: हुआ है।
1: उसको
0: हाँ
1: कैसे एक अर्जन करना है और
0: हाँ
1: उसके ब्याह पे
0: अच्छा,
1: कैसे
0: उसके
1: एक
0: पीछे
1: नशे।
0: पूरी कहानी है उसकी, उसका अपना सोशल दायरा है, अपने लोग हैं, अपनी कहानी है कि मैं, अगर मैं अपने आप को बेचारा साबित करना, मतलब अपने आप को पीड़ित महसूस
1: पीड़ित
0: करना है,
1: महसूस
0: किसी ना
1: करना,
0: किसी जबरदस्ती का गम अपने ऊपर ले
1: ले
0: लेना
1: लेना
0: है
1: है
0: किसी,
1: और
0: तो बहाना, मतलब ये
1: बहाना
0: हाँ
1: है।
0: ये सारी चीजें। खैर अब बात कर रहे हैं, तो संदीप जी ये बताइए कि ये जो नशा है, नशा तंबाकू इस प्रकार की जो भी नशा है धूम्रपान, ये बच्चा व्यक्ति कोई भी कर सकता है, जो भी व्यक्ति इसको कर रहा है ये उसकी व्यक्तिगत पसंद है या इन पर कोई सामाजिक दबाव भी होता है?
1: ये मैं आपको बताना चाहूंगा, ये कोई सामाजिक दबाव नहीं है। ये एक जो आज सोशल नेटवर्किंग जो चल गया है, और एक फैशन, एज अ फैशन युवाओं ने अपने अंदर एक एज अ फैशन दिखाने के लिए इसे आज समाज में ये बढ़ता जा रहा है कि मैं आज सिगरेट का सेवन कर रहा हूँ या गुटखे का सेवन, तो ये एक फैशनेबल तरीके से इसको देख देख के जो दूसरे
0: दूसरे
1: युवा
0: हैं वो
1: हैं
0: प्रभावित होते
1: या
0: हैं।
1: और लोग हैं, इससे बहुत इंस्पायर हो रहे हैं। आज सोशल नेटवर्क ऐसा है कि छोटी सी छोटी चीजों को लोग देख के प्रभावित हो रहे हैं और उसके अग्रसर काम कर रहे हैं, जो
0: अच्छी
1: भी है।
0: बात आपने कही। तो अमन जी, अब जो पहले हिस्से में आप बात कर रहे थे
1: जी
0: कि सामाजिक दबाव, जैसे बड़े बड़े अभिनेता, बड़े लोग जिन जो जिनका अपना एक बहुत बड़ा प्रभाव है,
1: जी
0: अपनी एक फैन फॉलोइंग है, वो लोग जो है वो एंडोर्स करते हैं चीजों को, तो लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं उसको
1: बिल्कुल
0: खाने से,
1: बिल्कुल
0: कि ये वाला हम जो है गुटखा खा लेंगे तो इस तरीके से दिखेंगे, या किसी फिल्म में जो अभिनेता ने अपनी धांसू एंट्री की है और स्मोकिंग या फिर सिगरेट, एक केवल लिख देने भर से कि धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, क्या ये इतना ही काफी है? और समाज में निजी जो पसंद है इन चीजों को करने की वो ज्यादा प्रभावी है या फिर ये सामाजिक दबाव भी एक काम करता है?
1: देखिए, ये असल में सही मुझे जैसा लगता है वो पॉइंट ये है कि शुरुआत तो हमेशा इसकी अपनी निजी चॉइस से ही होती है, आपकी
0: हाँ
1: पर्सनल पसंद से ही होती
0: आ
1: है।
0: गया बस।
1: ठीक है, आप यहीं से शुरुआत करते हैं कि आपने किसी को देखा सिगरेट पीते हुए या तंबाकू खाते हुए, तो आपने सोचा कि लाओ एक बार ट्राई करके देखता हूँ। यही ट्राई आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेके आता है, अगर आप उसे सही समय पर ना रोके या और इसे या फिर ना करें, तो ये क्या होता है, आगे चल के आपको धीरे धीरे शौक आपकी आदत बनता है, और वो आदत आगे चलते चलते धीरे धीरे आपकी मजबूरी बन जाता है।
0: मजबूरी बन,
1: तो ये कहना तो पूरी तरह से सही नहीं है कि ये

0: पूरी तरह से प्रभावित हैं लोग, इसमें आपकी खुद की पसंद भी है, आपने
1: पसंद
0: किसी को करते हुए देखा, आपकी इच्छा जागी और आपने शुरू किया।
2: मुझे ऐसा लगता है कि परिवार को इसमें हस्तक्षेप युवाओं को लेके या अपने परिवार के बच्चों को लेके बहुत
1: जी
2: ज्यादा करना चाहिए
1: जी
2: कि गलत चीजों को
1: मतलब बच्चा कहाँ है, जा रहा है,
2: कहाँ
1: किस
2: है,
1: तरीके,
2: क्या
1: मतलब
2: कर रहा है,
1: सर्विलियंस रखना है
2: क्योंकि आजकल
1: तो।
2: सिर्फ युवाओं में सिगरेट का एक ऐसा ट्रेंड चल गया
1: हाँ
2: है
1: हाँ बहुत
2: कि
1: छोटे छोटे बच्चे, मैं हम सभी अपने आसपास देख रहे होंगे, जैसा
2: हाँ
1: आपने जिक्र किया कि बहुत छोटे छोटे बच्चे सिगरेट का
2: जी
1: सेवन कर
2: जी
1: रहे
2: जी
1: हैं,
2: बिल्कुल
1: और उसको वो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जोड़कर देख रहे हैं,
2: बिल्कुल
1: और
2: बिल्कुल, कोई
1: कुछ
2: भी अकेला नहीं पीता है सिगरेट,
1: हाँ
2: सब गुट में
1: गुट
2: है।
1: में अपना एक जो है। तो अच्छा, बात आई गुट की और इस तरीके की, तो जो आपकी संगति है, क्या लगता है आपको कि ये जो नशा मुक्त समाज की आवश्यकता जो हम बता रहे हैं और ये जो नशे के इम्पैक्ट करने की बात कर रहे हैं, इसमें ये जो संगति है ये कहां तक प्रभाव डालती है?
0: ये संगति तो बहुत, सबसे ज्यादा प्रभाव संगति डालती है।
1: हाँ
0: आप किन लोगों के साथ उठ बैठ रहे हैं, आपके दोस्त, आपके मिलने वाले किस प्रवृत्ति के हैं, किस मानसिकता के हैं, ये सबसे ज्यादा असर डालता है। मतलब घर पे आपके जितने भी माँ बाप, भाई बहन, जितने भी लोग हैं, वो
1: जी जी
0: अपने
1: जी
0: छोटे जो बच्चे हैं इन लोगों पर बिल्कुल ध्यान दे इस चीज पर कि वो किन से मिल रहे हैं, इनके दोस्त किस तरह के हैं। क्योंकि क्या होता है कि कोई लड़का ऐसा है जो सिगरेट नहीं पीता, कोई भी गलत काम नहीं करता, तो उसको उसके फ्रेंड सर्कल में इस तरह से देखा जाता है कि अरे ये तो बेकार है, अरे ये तो बोरिंग है।
1: अच्छा,
0: लोगों को एक्साइटमेंट लगता है कि हाँ वो स्कूल से निकलने के बाद वो वहां सिगरेट पी रहे हैं।
1: मतलब सिगरेट पी रहा है तो वो बढ़िया है, सिगरेट
0: हाँ
1: स्टाइल से पी रहा है तो और बढ़िया
0: जी
1: है,
0: जी जी
1: एक मुंह से लेके नाक से
0: ये
1: निकाल रहा है तो
0: फैशनेबल है।
1: थोड़ा और अच्छा है, और
0: हाँ
1: गोल गोल छल्ला बना ले रहा है तो वो थोड़ा एक स्टेप
0: बिल्कुल
1: और ऊपर है
0: बिल्कुल,
2: ये समाज में एक रुतबे का काम कर रहा है।
1: तो श्रोताओं, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम जनमंच, और आज बात हो रही है नशा मुक्त समाज आज की आवश्यकता विषय पर। हमारे साथ स्टूडियोज में हमारे मेहमान हैं अमन गुप्ता जी और संदीप जी, और अपने अपने विचार आप रख रहे हैं। क्या लगता है संदीप जी की, जैसे बात की आपने कि इन सब चीजों का, गुट का, संगति का बड़ा अच्छा, बहुत बड़ा गहरा प्रभाव पड़ता है जो है बच्चे पर या किसी भी व्यक्ति, तो इसमें हम लोग कई बार ये भी देखते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं या जो हमसे उम्र में बड़े हैं,
0: बिल्कुल
1: वो लोग भी कई बार छोटे बच्चे से कहते हैं जा बेटा जरा ये ले आ, जा बेटा जरा तंबाकू ले आ, गुटखा ले आ, तो एक ये भी चलन हम लोग समाज में देखते हैं, तो ये भी क्या प्रभाव डालता है बच्चों पर या फिर नई पीढ़ी को विकसित कर रहा है इस दिशा में जाने के लिए?
2: बिल्कुल, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि ये चीज बिल्कुल प्रभावशाली है। सबसे पहले हमारे समाज में उस परिवार विशेष को खड़ा होना पड़ेगा युवाओं के साथ कि यह चीज गलत है, उस समाज के या परिवार के जो लोग हैं इन सबसे दूरी बनाने के लिए, या अगर आप परिवार में उस हिसाब का व्यक्ति
0: असल
2: है।
0: में होता ऐसा है कि जैसे घर का कोई बुजुर्ग है,
1: जी
0: उसने 4-5 साल, 6 साल, 8 साल के बच्चे को दुकान भेज दिया कि जाओ एक बीड़ी का बंडल ले आओ,
1: जी
0: जो बच्चा अभी तक इसके बारे में नहीं जानता था, लेकिन खरीदने के बाद अब उसे पता चला है कि ये बीड़ी है,
1: हाँ
0: इससे हमारे बाबूजी जो है नशा करते हैं या
1: हाँ
0: इसे पीते हैं तो धुआं छूटता है,
1: हाँ
0: फिर वो उन्हें करते हुए देखता है। इस तरह से धीरे धीरे बच्चे इंस्पायर होते हैं ये सब छोटी छोटी चीज,
2: तो परिवार को थोड़ा सा इसको प्राइवेट,
1: मतलब बड़ों को भी
0: हाँ
1: ध्यान देना है।
0: सबसे जरूरी बात यह है कि धूम्रपान घातक इसलिए और भी है, जैसे अगर कोई मान लीजिए उदाहरण के तौर पर मैं धूम्रपान कर रहा हूँ तो ये मेरे लिए तो घातक ही है, अगर मैं इस कमरे में बैठ के कर रहा हूँ तो ये आप दोनों के लिए भी घातक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ये इसे कहते हैं पैसिव स्मोकिंग, जैसे आप
1: बिल्कुल
0: बैठे हैं
1: बिल्कुल
0: तो आप, जैसे आपने बताया था ना कि एक प्रत्यक्ष और
1: हाँ,
0: अप्रत्यक्ष रूप
1: अप्रत्यक्ष
0: से आप
1: बिल्कुल पैसिव
0: धूम्रपान,
1: स्मोकिंग
0: पैसिव
1: जी,
0: स्मोकिंग।
1: हम इसकी बात भी आगे करेंगे, और एक्टिव स्मोकिंग से ज्यादा खतरनाक होती है पैसिव
0: पैसिव
1: स्मोकिंग,
0: स्मोकिंग
1: तो हम उस विषय पर भी बात करेंगे। तो जैसा कि बात की आपने कि आप संदीप जी, आपने भी बताया और आपने भी बताया कि ये जो हमारे संगति है जहां हम रह रहे हैं, ये भी बहुत बड़ा जिम्मेदार है युवाओं को, आज के लोगों को इस दिशा में धकेलने के लिए। अब बात करते हैं कि हम तंबाकू मुक्त अभियान चलाते हैं, तंबाकू मुक्त समाज की अभी कल्पना करते हैं, तो क्या लगता है कि तंबाकू मुक्त अभियान में सरकार, स्कूल या परिवार, ये तीन जो हमारे जहां जहां बच्चे इन्वॉल्व हो जाते हैं, खासतौर से बच्चा सब ज्यादा से ज्यादा समय परिवार में बिताता है, उसके बाद अपना जो समय है वो स्कूल में बिताता है, घर के बाहर,
0: बिल्कुल
1: और बाकी भाई सरकार भी समय समय पे कुछ ना कुछ नियम कायदे लेके
0: नियम
1: आती है, जिससे कि जैसे स्कूलों के बाहर ना बिके, सार्वजनिक स्थानों पर
0: जी बिल्कुल
1: इस तरीके के कुछ नियम भी हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें ये लोग किस प्रकार से अपनी अपनी भूमिका निभा सकते हैं?
0: जी। देखिए जैसे आपने बताया सरकार इसमें पूरी तरह से अपनी भूमिका निभा रही है। कई मैंने ऐसे खुद देखा है कई जगहों पर जहां जहां स्कूल्स हैं वहां 100 मीटर के दायरे में दाएं बाएं आगे पीछे तंबाकू, गुटखा, पान, बीड़ी इसकी दुकानें ना हो इसका विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन सरकार सब कुछ नहीं कर सकती। काम समाज में हम ही लोगों को करना है
1: जी।
0: अगर मैं देखता

0: कि मेरे आसपास दो चार लोग खड़े हुए हैं
1: जी
0: और बच्चे हैं जो मुझे देख रहे हैं, अगर मैं वहां खड़े होकर धूम्रपान कर रहा हूँ बीच
1: जी
0: समाज में, तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए तो नुकसानदेह है ही है, साथ में औरों के लिए भी है जो मुझे देखकर इंस्पायर होंगे या मुझे
1: बिल्कुल
0: देखकर अपनी आदत डालेंगे।
1: बिल्कुल
0: तो सरकार अपना काम कर रही है, सरकार कई तरह के अभियान शुरू कर रही है, प्रचार कर रही है, जगह जगह पोस्टर्स लगा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। अब आप देखते हैं सिनेमा हॉल्स में, मूवीज में एड्स दिए
1: एडवर्टीजमेंट,
0: जाते
1: हाँ
0: हैं
1: हाँ
0: कि
1: मैंडेटरी है
0: हाँ,
1: वो।
0: और वो
1: हाँ
0: मैंडेटरी, आप उसको स्किप नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा, लेकिन कई लोग उसे कॉमेडी में निकाल देते हैं ये वो, लेकिन आदमी समझ नहीं रहा है कि ये तंबाकू या
1: जी
0: धूम्रपान या
1: जी
0: नशा
1: हाँ
0: एक व्यक्ति विशेष के लिए ही नहीं, उसके पूरे परिवार के लिए कितना घातक है।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपको संदीप जी इस विषय के साथ ही एक कदम और आगे बढ़ा, सब तंबाकू मुक्त अभियान या तंबाकू मुक्त समाज की जो अवधारणा है, इसमें परिवार

0: मुक्त अभियान या तंबाकू मुक्त समाज की जो अवधारणा है, इसमें परिवार और जो है स्कूल, अगर बच्चों की बात करें, स्कूल कॉलेज, ये किस तरीके से अपनी भूमिका निभा सकते हैं, कैसे मतलब इसको और आगे बढ़ा सकते हैं?
1: मुझे लगता है कि स्कूल्स में और परिवार, तो खैर अपने बच्चों को कोई भी नहीं चाहता कि वो
0: नशा करे
1: या इन सारी चीजों को में अग्रसर हो। फिलहाल स्कूल्स में मुझे लगता है कि जैसे सारी क्लासेस चलाई जा रही हैं या असेंबली हो रही है, तो वहाँ पे एक टॉपिक ये भी बच्चों के बीच में रखा जाए, ज्यादा नहीं 10 मिनट का 15 मिनट का रखा जाए स्कूलों में, कि हाँ जो युवा हैं या जो युवा अग्रसर
0: आगे बढ़ गए हैं,
1: 9th के 10th के जो बच्चे हैं, जो 11th 12th में जा रहे हैं, शायद इन लोगों के लिए एक 10 मिनट या 15 मिनट का एक पीरियड ऐसा हो कि उनके इसके जो दुरुपयोग हैं
0: उसके बारे में बताया जाए,
1: उसके बारे में बताया जाए और समाज में बताया जाए कि इससे ना केवल इससे आपको सबसे ज्यादा हानि होनी है, आपके परिवार को नहीं, आपको हानि होनी है, आपके भविष्य को हानि होनी है।
0: आपने एक बात जरूर इम्पोर्टेंट कही कि भाई परिवार तो अपनी भूमिका कोई नहीं चाहता, कि परिवार का व्यक्ति कोई नहीं चाहेगा कि बच्चा उनका जो है नशा करे या तंबाकू का सेवन करे, लेकिन हमने बात की अभी इससे पहले वाले स्टेप में यही बात कर रहे थे कि घर का कोई बुजुर्ग बड़ा अगर इस चीजों का सेवन करता है तो वो जरूर बच्चे के मन को या आने वाली युवा पीढ़ी को प्रभावित करता है कि भाई जब हमारे दादाजी कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे पापा कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं, बड़े भैया कर रहे हैं तो हम क्यों नहीं। तो अगर परिवार की भूमिका की बात करें तो परिवार शायद अपनी भूमिका इस प्रकार से अदा कर सकता है कि एक एग्जाम्पल सामने से आके सेट करे कि भाई जब तक
1: बच्चे,
0: हाँ बच्चे देख रहे हैं तो कम से कम उन्हीं के बहाने हम छोड़ दें। और मेरे पास ऐसे कम से कम 10 एग्जाम्पल हैं निजी जीवन में मेरे, जिन्हें मैं जानता हूं जो अलग अलग प्रकार के नशों का सेवन करते थे, लेकिन जब वो एक पिता बन गए, एक बच्चों के बाप बन गए, तो उन्होंने पहले तो वो नशा करना मतलब उन बच्चों के सामने बंद किया, फिर जब बच्चे थोड़े और बड़े हुए तो अब उन्होंने कहा नहीं यार बच्चों को पता चल ही रहा है, तो उन्होंने खुद भी छोड़ा। बच्चे तो माता पिता को देख के सीख ही रहे हैं कि भाई वो अगर नशा कर रहे हैं तो हम करें, लेकिन माता पिता भी चाहे तो बच्चों के भय से इसको करना छोड़ सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये बिल्कुल सही।
0: क्या लगता है अमन जी, इसमें कुछ की अगर बात करें, की पॉइंट्स की बात करें कि स्कूल या परिवार क्या क्या कर सकते हैं आपके नजर से, और समाज इसमें सरकार को भी ऐड कर लीजिए, कि क्या कुछ रह जा रहा है पॉइंट्स में कि इससे हम उनको रोक सकते हैं? या
2: देखिए मुझे लगता है गंभीरता, सबसे ज्यादा गंभीरता की कमी है। मतलब मुझे लगता है आज के समय में सिगरेट और तंबाकू को बहुत बड़ा नशा नहीं माना जाता है। लोग मतलब युवा उसे ऐसा नहीं समझते कि ये बहुत घातक है। उन्हें लगता है कि ठीक है सिगरेट पीने से क्या हो जाएगा, लेकिन ये लोगों के बीच में स्लो पॉइजन का काम कर रहा है। ये आज नहीं होगा, ये धीरे धीरे आपके अंदर डेवलप हो रहा है, और ये समय आएगा जब आपके फेफड़े काम करना बंद कर देंगे, गले में या मुंह में कहीं कैंसर हो जाएगा, जब आपके जीवन पर आ जाएगी, आपका परिवार सफर कर रहा होगा, तब क्या होगा आपको समझ में आएगा कि कितना। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज्यादा कमी है वो है गंभीरता की। लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट, ये मतलब अभी आप अगर बात करते हैं गांजा चरस या किसी अलग किसी भी ड्रग्स की, तो लगता है कि हाँ बड़ा नशा है। तंबाकू कोई खैनी खा रहा है तो आपको लगता है ये खैनी तो खा रहा है, कोई बात नहीं।
0: तो उसको बल्कि बता देते हैं कुछ लोग,
2: हाँ,
0: कि औषधि है, इसे खाने से जे नहीं होता वो नहीं होता।
2: जैसे कई लोगों को मैंने बोलते हुए सुना है कि जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जितने नए आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, या किसी भी क्षेत्र में पैशनेट काम कर रहे हैं, उनको आप गांजा पीते हुए देखेंगे, तो उनसे जब बात करेंगे कि भाई ये क्यों करते हो, तो उनका कहना है कि इससे फोकस बनता है, कॉन्सेंट्रेट होते हैं, मतलब कर पाते हैं अच्छे से। ये लॉजिक नहीं समझ में आ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन करने के लिए आप मेडिटेशन कीजिए, आप कुछ और कीजिए, कोई एक्सरसाइज। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी है और इसकी गंभीरता की कमी है। जब इसको अहम मुद्दे की तरह समझाया जाएगा
0: तो
2: कि ये चीज इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपके साथ साथ आपके साथ वालों के लिए भी घातक है।
1: मुझे ऐसा लगता है अमन जी से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार मेडिकल्स में आप कोई भी जो 12 साल या 15 साल का युवा है वो जब जाता है या नींद की गोलियां कुछ ऐसी ड्रग्स
0: कुछ ऐसी जो प्रोहिबिटेड ड्रग्स है
1: तो उसको मना कर दिया जाता है, इस प्रकार का कोई अभियान ये जो छोटी छोटी दुकानें हैं जो सिगरेट्स बेचती हैं या और जगहों पे हैं, इन लोगों को भी सरकार को कुछ ऐसा करना चाहिए कि कोई अगर युवा इनके पास आता है तो उसको ये सारी चीजें ना दी जाए जब तक कि वो देखा ना जाए। और फिलहाल मेरे हिसाब से तो किसी को नहीं देना चाहिए, फिलहाल छोटी छोटी चीजों के अभियान से ही
0: कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी,
1: हाँ, कि बैन किया
0: तो,
1: जाए।
0: जी बिल्कुल, हम इसी की पॉइंट्स की बात कर रहे हैं अमन जी, कि जैसा कि संदीप जी ने कहा कि कम से कम कुछ ऐसा कर दें कि बच्चों को ना दें, और मेरे ख्याल से शायद कुछ राज्यों ने ऐसे निषेध भी कर रखे हैं, बहुत सारे लोगों ने शराब को बैन कर रखा है।

0: कुछ बच्चों और नियम तो है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद से, माननीय उच्चतम न्यायालय का जो ऑर्डर है उसके अनुसार आप जो है स्कूल के 200 मीटर के दायरे में ये गुटखा पान बीड़ी सिगरेट नहीं,
1: हाईवे रोड के अंदर
0: इस तरह, फिर शराब की दुकान तो हाईवे से
1: 200 मीटर अंदर होनी चाहिए।
0: लेकिन आप देखिए खैर उनका जो उसका उसको सेवन करने वाला लोग है, आप 200 मीटर नहीं 200 किलोमीटर अंदर कर दीजिए।
2: असल में मेरा कहने का मुद्दा यही है, सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, योजनाएं ला रही है। आप देखिए कि अभी हाल ही में गुटखा पान बीड़ी सिगरेट सब पर रेट बढ़ गए, व्यक्ति विशेष को पेट्रोल के रेट बढ़ने से बड़ी तकलीफ है कि सिलेंडर के बढ़ गए ये हुआ, लेकिन सिगरेट वही 2 रुपए 5 रुपए महंगी मिल रही है, कोई नहीं बोल रहा है,
0: कोई फर्क नहीं।
2: फिर भी खरीद रहे हैं और आराम से उसका सेवन कर रहे हैं, वो 20 भी हो जाएगी तो भी ले लेंगे,
0: तो भी लेंगे।
2: उनको समझने की जरूरत यह है कि अगर आप कैलकुलेट करना बैठे, अगर एक व्यक्ति एक दिन में एक सिगरेट भी पीता है 20 रुपए की, और वो महीने भर में आप अगर 500, 600, 700 रुपए भी खर्च कर देते हैं, इतने रुपए अगर आप अगर अपने किसी लाइफ इंश्योरेंस पे खर्च करें, आप अगर कोई ऐसा निवेश कर दें, तो आने वाले समय में आपके लिए आपके लिए नहीं तो परिवार के लिए कुछ ऐसा कर जाएंगे आप जो आपको पता भी नहीं होगा कि मैंने कर दिया।
0: बिल्कुल सही बात है कि ये सारी चीजें जो आपने
1: अभी बताई। ये तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 का शुभारंभ 9 अक्टूबर 2025 को किया गया है सरकार के द्वारा, तो उसकी मुहिम आगे तक चलाई जा रही है और सरकार का ऐसा मानना है कि 2047 तक हम अपने देश के युवाओं को या किसी भी तरीके किसी भी वर्ग के लोगों को नशा से एकदम मुक्त कर देंगे और तंबाकू मुक्त कर देंगे भारत को।
0: जी जी,
1: फिलहाल
0: देखिए किसी भी काम को करने की पीछे मंशा यही होती है शुरू करने की, कि एक डेडलाइन रख के कि हमको यहाँ पर इस लक्ष्य को प्राप्त कर लेना,
1: कर लेना।
0: कोई भी बात हो, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि इस समय सोलर ऊर्जा का चल रहा है, सौर ऊर्जा चल रहा है, तो इसके लिए भी एक लक्ष्य निर्धारण किया गया कि पहले 25 लाख जो है कनेक्शन, और आप देखिए कि अगर इंटेंशन अच्छी हो तो बड़े से बड़े लक्ष्य इतने छोटे लगने लगते हैं कि वो 25 लाख एक समय जब ये अभियान की प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना की शुरुआत की गई थी तो इतना बड़ा लग रहा था, लेकिन वो विद इन टाइम पीरियड अपना अचीव भी कर लिया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा ऊपर पहुंच गया। सभी राज्यों को मिलाकर बात करें और चाहे विशेषकर उत्तर प्रदेश की बात करें, तो उसी प्रकार से ये नशा मुक्त अभियान 3.0 की आपने बात की, इसके पीछे का भी इच्छा और मंशा यही है कि जो हमारी एक बहुत बड़ा धनराशि हम लोग स्वास्थ्य पे, जैसे कि अमन जी ने बात की कि अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप किसी चीज से प्रभावित हो जाएंगे तो जो है वो आपको समझ में आती है, एक बड़ी धनराशि हम लोग इसकी उपचार में खर्च कर देते हैं। परिवार के परिवार तबाह हो जाते हैं, तब एक समय पर जाके हमको ये पता चलता है कि नहीं भाई ये तो इतना बड़ा पॉइंट था, हमें बचना था लेकिन हम तो फंस गए। खैर अब हम आते हैं उपचार के बारे में। अब हमने समस्या के बारे में बहुत सारी चर्चा की, तो अमन जी मैं हम फिर से उसी प्रश्न पे आते हैं कि कुछ की पॉइंट्स बताइए जो स्कूल कॉलेज परिवार समाज सरकार अपना के इस बीमारी को आइडेंटिफाई करे और दूर कर सकती है, जैसे क्या क्या कर सकता है परिवार स्कूल प्रशासन समाज, क्या क्या करना चाहिए कि जो हम जैसे कि संदीप जी ने कुछ देर पहले कहा था कि भाई बच्चों को हम हो सकते ना दें जो नाबालिग है, ऐसा नियम भी है नाबालिग को ना, जो बच्चा नाबालिग है उसको हम तंबाकू नहीं दे, लेकिन चूंकि क्या है उसके पीछे एक रेवेन्यू है, सबको लगता है अच्छा कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, छोटी छोटी खोखे खुल गए उनके ऊपर कोई बाउंडेशन
1: नहीं,
0: बाउंडेशन की बात हो रही है, तो इस तरीके से क्या कुछ की पॉइंट्स लगता है आपको कि क्या क्या कर सकते हैं?
2: देखिए दोनों तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। एक ऑफिशियल तरीका ये है कि आप जितने भी वेंडर्स हैं, आप जिन जो लोग ये माल खरीद रहे हैं, देखिए ये कोई आलू प्याज टमाटर तो है नहीं कि अच्छी चीज है कोई भी बेच सकता है, ये एक नशा है, एक ऐसी लत आप बेच रहे हैं जो 2-5 रुपए में इंसान को आसानी से लग जाती है और जो जीवन बर्बाद कर देती है, तो ये देखने में 5-10 रुपए की चीज है लेकिन बहुत घातक चीज है। तो आपको कोई कानून बनाना चाहिए, जैसे शराब के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, हर कोई शराब नहीं बेच सकता, उसके लिए कड़े कानून है और आप उसे कहीं भी उठा के पी नहीं सकते, उसके भी कानून है। इसको भी उसी नजरिए से देखा जाए कि हर कोई खोखा खोल के नहीं बैठ सकता, ठीक है आपको करना ठीक है, आप कुछ और बेचिए, समोसे टिक्की बताते जो करना है करिए, लेकिन पान बीड़ी सिगरेट तंबाकू इस तरह के नशों के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसकी एक जैसे आप बच्चे जाके शराब नहीं खरीद सकते, ऐसे तंबाकू भी मत खरीदने दीजिए, इससे जो दुकानदार है उनको डर रहना चाहिए कि मेरा लाइसेंस रद्द हो सकता है या दुकान बंद हो सकती है, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि जैसे इसको ऐसे चर्चा का विषय मत बनाइए कि बस स्कूल्स ने एक बात कर दी और खत्म हो गया, नहीं, तो मैंने पहले कहा था गंभीरता समझिए, इसके बारे में बात करनी शुरू कीजिए आपस में, परिवार वाले अपने बच्चों को समझें कि उनकी आजकल क्या संगत है, क्या आदतें पड़ रही हैं, फिर उनसे पूछताछ करें। पूछताछ का मतलब ये नहीं डांटना डपटना,
0: केवल उस पर दृष्टि रखिए,
2: उनसे बातचीत करिए, उनको

0: समय समय पर समझाइए, गाइड कीजिए, एक दोस्त की तरह, एक भाई की तरह उनको समझाइए। मुझे लगता है अगर अभी सही समय पर अगर उन्हें समझा दिया, हालांकि कई सारे ऐसे मैंने युवा देखे हैं जो ये चीज करने के बाद समझे और उन्होंने छोड़ना शुरू किया है, कि उन्होंने गंभीरता को समझा कि मुझे अचानक से मेरे को ना सांस लेने में दिक्कत होने लगी है, या मेरा स्टैमिना पहले जैसा नहीं है, जरा सा चलता हूं तो सांस फूल जाती है। बिल्कुल होगा, आप जब धूम्रपान लगातार कर रहे हैं, फेफड़े आपके कमजोर हो चुके हैं, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो लोग गंभीरता समझ के उसे कर भी रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, दूसरा तरीका ये है कि इसको ऐसा मुद्दा बनाए जो चर्चा का विषय हो, स्कूल्स में सिर्फ एड की तरह ना समझाया जाए, बल्कि उनसे बातचीत की जाए, इसके फायदे नुकसान या इसके तरीके क्या है, इसको कैसे रोका जाए, इससे क्या क्या हानियां हैं, इसके बारे में बात की जाए और उन्हें समझाया जाए।
1: जैसे योगा क्लासेस है मेरे हिसाब से, ऐसी नशा मुक्ति क्लासेस भी होनी चाहिए।
2: संदीप जी, नशा मुक्ति केंद्र, क्लासेस और इस तरीके की चीजें अपने अपनी जगह काम कर रही है, और बल्कि आजकल तो प्रोफेशनल हो गई है और व्यवसाय है इधर। लेकिन हम बात कर रहे हैं अब संदीप जी आपकी नजर से, कि परिवार, स्कूल, समाज, प्रशासन, जो भी आपकी नजर में है, कुछ की पॉइंट्स बताइए जो ऑलरेडी नहीं है, अब नहीं हमारे पास, हम लोग कैसे अपने बच्चों, नौनिहालों को, आने वाली पीढ़ी को इससे बचा सकते हैं।
1: मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो जो इसका ओरिजिन है, परिवार और समाज और बाकी सारी चीजें तो बात की हैं, मुझे लगता है सबसे पहले तो सरकार को कदम उठाना चाहिए जो इसके ओरिजिन है, जहां बन रहा है, और ऐसे देशों से जहां से हमारी फ्लाइट्स हैं, अदर चीजें आ रही हैं वहां पे, हालांकि सरकार बहुत सारे कदम उठाती है और पोर्ट्स हैं,
2: मतलब इन पे सर्विलियंस बढ़ा,
1: हाँ सर्विलियंस बढ़ा दें, ताकि जो चीज आएगी नहीं तो उसका प्रयोग ही क्यों होना है। और बाकी अगर आ जा रही है तो मैंने तो पहले ही बताया था कि छोटे छोटे की पॉइंट्स हैं, परिवार को अपने आप में थोड़ा सा समझना चाहिए, और बाकी सारी चीजें हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं और ट्यूशन क्लासेस हैं, सारी जगहों पे
2: अवेयरनेस
1: बहुत जरूरी
2: है। श्रोताओं, तो आज की हमारी ये चर्चा यहाँ थी कि किस प्रकार के तमाकू मुक्त जो समाज की आवश्यकता है, आज की प्रबल आवश्यकता है, हमें इससे अवधारणा को साकार करना है। और श्रोताओं, हम लोग एक दलदल की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने नौनिहालों को बढ़ा रहे हैं, एक्टिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग की बात की, कि केवल उस तमाकू और नशे को ग्रहण करने वाला ही व्यक्ति नशा नहीं कर रहा है, बल्कि जो धुआं छोड़ रहा है या अन्य लोग भी प्रभावित हो रहे हैं, वो ज्यादा प्रभावित, धुएं को छोड़ रहा है तो वो अनफिल्टर्ड है, जो दूसरे की श्वास नलियों में जा रहा है, फेफड़े को अफेक्ट कर रहा है। खैर, नशा एक समाज की एक ऐसी बुराई है जिसे हम सब लोगों को मिलकर दूर करना होगा। जिस प्रकार इसको करने वाले लोग संगठित हो जाते हैं, उसी प्रकार अब आवश्यकता है कि अन्य लोग भी संगठित हों इसके प्रति, की जो लोग कर रहे हैं उनको हम जो है वो समझाएं और अपने न करने वालों संगठन की तरफ आकर्षित करें। तो श्रोताओं, उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा कार्यक्रम अच्छा लगेगा। हम आज की अपनी ये सार्थक चर्चा के लिए हमारे स्टूडियो में पधारे संदीप जी आपका और अमन गुप्ता जी आपका अनेक अनेक आभार व्यक्त करते हैं। और श्रोताओं, नशा निश्चित रूप से एक सामाजिक बुराई है, इससे दूर रहिए और जो लोग कर रहे हैं उनको भी दूर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
3: जनमंच, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। आज का विषय था तंबाकू मुक्त समाज, आज की आवश्यकता। प्रतिभागी थे अमन गुप्ता और संदीप यादव। आपसे जानकारी प्राप्त कर रहे थे ब्रजेश तिवारी।

ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। श्रोताओं, जनमंच के माध्यम से हम समसामयिक विषयों पर कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। आशा है आपको अच्छे लगते होंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया हमें दे सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी केंद्र बरेली उत्तर प्रदेश, पिन कोड है 243001। ये आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM और न्यूज ऑन AIR ऐप पर रात्रि के 8 बजे

0: जहें, अब आप सुनिएगा मुझे याद है जरा जरा। इसमें माया देवी जी से अतीत के पन्ने पलट रहे हैं ब्रजेश तिवारी।
1: साथियों नमस्कार, ट्यून किया है आपने 100.4 FM और सुन रहे हैं प्रोग्राम मुझे याद है जरा जरा। और ये वो कार्यक्रम है जिसमें हम शामिल करते हैं हमारे उन सभी श्रोताओं को जो एक लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से, आकाशवाणी से। और चूंकि आकाशवाणी वर्ष पूर्ण कर रहा है अपने 90 वर्ष, ये सिलसिला यूं ही चलता रहे अनवरत, इसी कामना के साथ कार्यक्रम में आज हमारे साथ स्टूडियोज में है हमारी आज की मेहमान माया देवी। तो आइए माया देवी से उनकी जीवन से जुड़े रेडियो के संबंध में, उनका से वो रेडियो से जुड़ी रही, इन सब बातों पर बात करते हैं माया देवी जी से। माया देवी जी, आपका स्टूडियोज में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो माया देवी जी, ये कार्यक्रम है मुझे याद है जरा जरा, और इसमें कार्यक्रम में हम अपने उन सभी पुराने श्रोताओं को या जो लंबे समय से हमारे रेडियो से जुड़े रहे हैं उनसे बात करते हैं। तो पहली बार या आपको जब तक याद आता हो, कब आपने रेडियो सुना, किस उम्र से रेडियो सुना?
2: रेडियो तो हमने समझ लो 12-13 साल की उम्र से सुना
1: सुन
2: है,
1: रहे थी।
2: सुन रहे
1: हैं।
2: शादी के बाद में नहीं सुना,
1: नहीं सुन
2: पाया। शादी से पहले तक सुना है हमने।
1: तो शादी से पहले तक आप सुन रही थी रेडियो, तो क्या अच्छा लगता था? मतलब रेडियो में एक विशेष प्रकार के कौन से कार्यक्रम, जैसे कि मतलब गीत संगीत के प्रोग्राम या हमारे आकाशवाणी से तो हर तरीके के कार्यक्रम जाते हैं, तो कैसी चीजें आपको पसंद रहती थी?
2: हेलो बरेली ज्यादा सुनते थे।
1: अच्छा।
2: और चीजें ज्यादा सुनते थे दोपहर में, जो सखी सहेली आती,
1: हाँ हाँ।
2: सुबह के लिए रामायण वगैरह जो चीज आती थी,
1: हाँ।
2: वो सुनते, शाम के लिए जो कृषि वो दिखाते हैं
1: जी। तो यानी कि आप गीत संगीत के कार्यक्रमों से जुड़ी रहीं, और साथ ही साथ चूंकि आप बताया कि आपने ग्रामीण परिवेश में रहीं, तो ग्रामीण परिवेश में होने के नाते हमारे सभी किसान साथी हमारा किसान वाणी कार्यक्रम सुनते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपके कान में पड़ता।
2: तो अच्छा, इकट्ठे होके सुनते थे।
1: इकट्ठे होके सुनते थे। अच्छा, घर में कौन कौन रेडियो सुनता था?
2: घर में भाई थे, पिता पापा थे, सभी लोग इकट्ठे अपने चला लेते, सुनते रहते बैठे बैठे अपने सभी लोग।
1: तो जो हमारे किसान वाणी कार्यक्रम में लोकगीत भी बजते हैं, जो ढोला और इस तरीके की चीजें जो यहाँ की हैं, वो आप लोगों को कैसी लगती थी?
2: अच्छा लगता था वो तो सुनते।
1: अच्छा, रेडियो आपने सुना, तो रेडियो से आपके जीवन में क्या बदलाव आया? आपको क्या लगता है कि रेडियो एक आम इंसान के जीवन में कितना महत्वपूर्ण है?
2: अच्छा लगता था
1: उसमें हम लोग, जैसे महिलाओं के लिए कार्यक्रम जो आपने सखी सहेली की बात की, और हमारे आकाशवाणी बरेली का कार्यक्रम है घर अंगना, तो इसमें हम लोग जो है महिलाओं के संबंध में ही बात करते थे, नारी संसार में उनसे जुड़ी। तो आपने इतने सारे कार्यक्रम सुने हमारे यहाँ से, तो आपको क्या लगा, कुछ बदलाव आया आपके जीवन में, आपको क्या फायदा महसूस हुआ?
2: फायदा उसमें ये है, अपने सुनते थे, अपने जो बताते थे सखी सहेली में, सब काम में
1: महिलाओं से
2: सम्मान में, सिलाई है, कढ़ाई है अपने।
1: अच्छा, उनके रोजगार के हेतु,
2: रोजगार के लिए जो अपने सुनाते थे, करते,
1: तो आपको
2: करते भी थे।
1: अच्छा,
2: हाँ।
1: तो आपको कुछ फायदा मिला इससे?
2: हाँ, फायदा मिला था। अपने कढ़ाई में जो बताते वो करते, सिलाई है, सिलाई तक बनाते
1: करते थे,
2: करते रहते,
1: और उसमें रेडियो चलता रहता था, और समय भी
2: अपने
1: अच्छा चलता था, और साथ ही साथ
2: मनोरंजन भी।
1: अच्छा, आपको बताए माया देवी जी की इस आकाशवाणी इस वर्ष 90 वर्ष का हो रहा है, 90 साल हो गए आकाशवाणी को, तो ऐसे में आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी, क्या लगता है कि ये किसी इस तरह और कैसे प्रसार हो, इसका कैसे और बढ़ेगी?
2: अच्छा है ना?
1: लोगों
2: को भाई अच्छा लगा है, अच्छा लगता है,
1: अच्छा लगता है,
2: अच्छा लगता है।
1: अच्छा, कभी जैसे आपने बताया कि इस परिवार के सभी लोग जो हैं वो एक साथ बैठ के रेडियो सुनते थे, है ना? आज के इस दौर में जब मोबाइल घर घर में आ गया है, डिश दुनिया भर की चीजें हैं मनोरंजन की, ऐसे में रेडियो कहीं पीछे नहीं छूट गया है?
2: नहीं, बहुत से लोग हैं जो अभी रख रहे हैं,
1: अभी रख रहे हैं
2: रेडियो सुनते हैं।
1: तो आपके आसपास या आपके जानने में ऐसा लगता है कि आपके गांव में, या अभी आप तो ससुराल में हैं, मायके में अभी भी क्या सुना जाता है रेडियो?
2: हाँ, सुना जाता है,
1: अभी भी सुना जाता है
2: रेडियो है, मगर जय घर पे हमारे नहीं है, पास में है, पड़ोस में।
1: अच्छा, जैसे पड़ोस में।
2: सुनते हैं लोग अभी,
1: यानी कि अभी भी 90 साल का जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी लोग सुनते हैं,
2: समझ लो सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं अपने गर्मियों में,
1: जी जी,
2: तो बस चला लेते हैं, सुनते रहते हैं रेडियो अभी।
1: अच्छा, एक बात और बताइए माया देवी जी, अब बात करते हैं रेडियो से थोड़ा सा हटके, हम देखते हैं आजकल के जो बच्चे हैं, जो बड़े हो रहे हैं, मान लीजिए उनको जेन जी कहते हैं, वैसे हम लोग हो गए ना, तो हम लोग के बाद जो है जेन जी, ये लोग जो है मोबाइल और इन सब चीजों में इनका बहुत रुझान है, क्या लगता है आपको कि मोबाइल या ये इससे इनका विकास हो रहा है या कहीं ये पीछे जा रहे हैं?
2: नहीं, मोबाइल से कोई विकास नहीं है, है? नहीं।
1: और मतलब कहीं ना कहीं ये मोबाइल इनके जीवन में विकास में भूमिका नहीं निभा रहा है?
2: नहीं नहीं।
1: अच्छा, तो आपको क्या लगता है कैसे एक बच्चे के पालन पोषण, आपने बताया कि आप भी एक बच्चे की माता जी हैं, कैसे आपको लगता है कि बच्चों को हम कैसे संस्कारवान बनाएं, बच्चों को अच्छे संस्कार दें?

0: उनसे उन्हें काम काज में लगाए, तो उसके लिए क्या लगता है आपको कि मोबाइल या इस प्रकार के अन्य तरीके की चीजों से कैसे दूर रखे?
1: अब ये उन्हें अच्छे संस्कार दो,
0: हाँ
1: अपने अच्छा सिखाओ,
0: हाँ,
1: मोबाइल से दूर रखो, अपने जो काम की बातें वो सिखाओ,
0: अच्छा
1: चलाओ अपने
0: उसमें बिल्कुल। तो ये बात आपने सही की कि बच्चों को अच्छा संस्कार दो।
1: अच्छा,
0: अच्छा संस्कार देने में आकाशवाणी की भूमिका को कैसे मानती हैं आप? कैसे देता है, क्या संस्कार पोषित करता है आकाशवाणी?
1: अच्छा देता है,
0: है?
1: अच्छा लगता है, अच्छा भी देता है अपने,
0: और ज्ञान की बातें और संस्कार के साथ
1: संस्कार देता है।
0: तो एक बात और बताइए माया देवी जी, जैसे आपने बताया कि सुबह होती थी आप लोगों की वो रामचरितमानस,
1: हाँ,
0: से लगा
1: वो
0: दिया।
1: सुनते थे।
0: अच्छा, रोज सुनते थे?
1: वो रोज सुनते थे प्रेम से।
0: तो कुछ ऐसा बताइए, मतलब एक दिन की पूरी रूपरेखा बताइए, जैसे सो के उठे तो कैसे रेडियो पढ़ा, फिर कैसे कैसे काम किया, कौन कौन क्या करता था, कुछ उस बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए तो वो ज्यादा जुड़ पाएंगे।
1: चला देते थे,
0: हाँ,
1: अपने उठे, काम वाम करा, अपने चला दिया, बस चलता रहता, वो काम करते रहते अपने।
0: अच्छा, और सभी अपने अपने काम में लगे रहते?
1: सभी अपने अपने काम में लगे रहते।
0: तो रेडियो जैसे एक जगह रखा रहता था?
1: एक जगह रख देते बस।
0: तो आप लोग जैसे किचन उचन के काम करते थे, पिताजी लोग अपने दरवाजे के काम कर रहे हैं, या अपने खेती किसानी की तैयारियाँ?
1: ये है।
0: अच्छा, और सभी उसी रेडियो से सुनते थे?
1: उसी रेडियो से सुनते थे।
0: कभी ऐसा भी हुआ कि जैसे भाई बहनों में इस बात का, मतलब कई बार झगड़ा होने लगता था कि भाई ये गाने वाला कार्यक्रम आ रहा है या तो मैं ये रेडियो अपने पास रख लूं, तो भाई या कोई ऐसा बोले मैं अपने पास रख लूं, ऐसा भी कुछ हुआ?
1: वो जब कहा तो मैं चाहता था तभी ज्यादा करते थे।
0: अच्छा,
1: वैसे नहीं।
0: अच्छा, मैं चाहता था तो,
1: मैं चाहता था तब नहीं,
0: तो रेडियो नहीं मिलता था?
1: नहीं मिलता था।
0: तो और मैच में आपका रुझान नहीं था?
1: नहीं
0: है ना, आप लोग को गाने
1: नहीं था। हमें तो गाना अपने जो सखी सहेली में ज्यादा करके बताते थे,
0: हाँ,
1: तो ज्यादा पसंद था।
0: और आपको बताते चले माया देवी जी की सखी सहेली जैसे कार्यक्रम, ठीक वैसे ये विविध भारती से आता है, हम लोग रिले करते थे आकाशवाणी से और आज भी करते हैं, इसी तरीके का आकाशवाणी बरेली से कार्यक्रम जाता है नारी संसार, और पहले एक और कार्यक्रम जाया करता था घर अंगना, है ना, तो नारी संसार और घर अंगना, तो अब नारी संसार जाता है लगातार, इसमें आज भी उसी तरीके की बातें की जाती है, ज्ञान की, स्वावलंबन की, रोजगार की, है ना, सुरक्षा की, महिलाओं के साथ दुनिया भर की चीजें हैं उनसे जुड़ी सारी बातें की जाती है, अपने खाने को कैसे तो स्वादिष्ट बनाए ये भी बताया जाता है ना। माया देवी जी, कभी ऐसा हुआ कि रेडियो पे कभी कोई रेसिपी बताई गई हो और आपने उसको सुन के अपने घर में बना के ट्राई किया हो?
1: हाँ, बनाया था।
0: क्या बनाया था?
1: जो बिना अंडे का चीला बनाते हैं,
0: हाँ,
1: उसमें बेसन वेसन, हाँ, डाल के सब्जी, हाँ, डाल के वो बनाया था।
0: अच्छा, तो घर वालों ने उसको खाकर क्या कहा था?
1: अच्छा लगा था।
0: अच्छा लगा था,
1: अच्छा लगा,
0: यानी कि आकाशवाणी से ये एक लाभ हुआ है ना।
1: ये अब भी बनाते हैं।
0: अच्छा, अब भी बनाते हैं,
1: कभी मन हो जाए तो बनाते हैं।
0: चलिए, कभी किसी दिन बुलाइए तो हम लोग भी आते हैं खाने, पूरी टीम के साथ
1: बनाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल। खैर, ये तो मजाक की बात रही, लेकिन देखिए श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मुझे याद है जरा जरा, आज कार्यक्रम में हमारी मेहमान है माया देवी जी और हम याद कर रहे हैं उनके अनुभव रेडियो से जुड़े हुए। जैसा कि माया देवी जी ने बताया कि आप सिलाई भी करते। अच्छा, सिलाई जो है आप अपनी केवल अपने परिवार या अपने लिए करती हैं, या जैसे कभी गांव खेड़े के लोग भी कह देते हैं कि ये सिल दे, तो मतलब धन के?
1: नहीं, अपने लिए, जैसे अपने, हाँ, परिवार के लिए, सबके, हाँ, लिए सिल देते,
0: हाँ,
1: अपने लिए सिलते, वैसे किसी के लिए नहीं सिला जैसे अभी तक।
0: अच्छा,
1: हाँ,
0: तो इसमें रेडियो ने आपकी ये मदद की कि आपने रेडियो चला दिया और अपना
1: सिलते रहते,
0: आनंद आता, कढ़ाई भी करी। अच्छा, और जो हमारी महिलाएं हैं जो रेडियो भी सुनती हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी कि कैसे वो अपने जीवन को आगे बढ़ा सकती हैं, परिवार को अच्छे से संभालें, क्या कुछ कहना चाहेंगी उनके लिए?
1: उसमें यही है, अपने सुने,
0: हाँ,
1: हर बात सच्ची होती है अपनी, हाँ, अच्छी लगता है सुनते हुए
0: जी,
1: अपने रोजगार है,
0: हाँ,
1: आगे बढ़ेंगी तभी उनमें फायदा है आगे बढ़ने, हाँ, में अपने।
0: इससे फायदा, एक ये फायदा भी हम बता सकते हैं श्रोताओं कि देखिए, चाहे बात महिलाओं की करें, चाहे बात युवाओं की करें, युवाणी कार्यक्रम की, चाहे बच्चों का जो अंकुर कार्यक्रम है उसके लिए करें, चाहे किसान साथियों का कार्यक्रम किसान वाणी की बात करें, इसमें हमेशा कोई ना कोई बात किसी विषय पे की जाती है। मान लीजिए किसान किसान बात की, तो कई बार ऐसा क्या है, अब उन्हें नहीं पता है कि भाई इसके लिए कौन सी दवा चाहिए, तो हमारे यहाँ वैज्ञानिक आते हैं, वो बताते हैं, कई बार ऐसा भी हुआ। तो कभी ऐसा हुआ कि रेडियो पर आपके पिताजी या आपके भाई लोग सुन रहे हो और फसल में उनको लाभ हुआ हो, ऐसा?
1: हाँ, जो उसमें माऊ लग जाती थी
0: जी,
1: तो उसमें ये आकाशवाणी में बताते हैं जो किसान वाड़ी आती,
0: हाँ,
1: है,
0: हाँ, हाँ,
1: उसमें बताया, उसमें लगाया था, लाभ हुआ था,
0: लाभ हुआ था,
1: लाभ हुआ था।
0: देखा श्रोताओं, तो रेडियो एक, फायदे अनेक, और आकाशवाणी यूं ही 90 वर्षों तक सबके प्रिय नहीं बना हुआ है, यही सारे लोग हैं जो आज भी जुड़े हुए हैं आकाशवाणी से। अच्छा, तो माया देवी जी एक बात बताइए, तो गीत आपको किस प्रकार के पसंद आते थे, कोई गीत आपको याद हो जो बहुत पसंद आता हो? ऐसा
1: लोकगीत ज्यादा अच्छे लगते
0: हैं। अच्छा, तो गीत संगीत का सिलसिला हुआ, लोकगीत का हुआ, आपने

0: सिलाई बुनाई कढ़ाई की बात की, तो माया देवी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है कार्यक्रम में। तो अच्छा माया जी, कहाँ तक पढ़ाई लिखाई की आपने?
1: 5वीं तक करी थी।
0: 5वीं तक। आगे क्यों नहीं पढ़ी?
1: आगे नहीं, मम्मी को जरा बीमार होने
0: हाँ
1: लगी, घर पे भाई की शादी नहीं हुई
0: हाँ
1: थी,
0: हाँ
1: तो उसकी वजह से हम आगे नहीं
0: नहीं
1: पढ़
0: पढ़े।
1: पाए।
0: लेकिन माया देवी जी, आपको देख के ऐसा लगता है, बात करके ऐसा लग रहा है कि आप भले ही प्राथमिक तब पढ़ी, लेकिन आपके अंदर जो आत्मविश्वास है, आपने खुद से सिलाई कढ़ाई करी, अपने परिवार को आगे लेके चली, आज आप परिवार को भी अच्छे से संभाल रही हैं और एक कुशल गृहिणी हैं, तो लगता नहीं है। लेकिन हाँ, पढ़ने लिखने की कोई उम्र नहीं होती, आगे जब आपका मन करे तब आप कभी भी शुरू कर सकती हैं।
1: वो
0: सबके
1: तो
0: साथ
1: है।
0: समस्याएं होती ही हैं जीवन में। पहले लोग मतलब इतना ज्यादा बाहर निकलना भी नहीं होता था शायद ये भी।
1: नहीं निकलने देते, क्यों,
0: हाँ
1: गांव में ज्यादा था ही नहीं, बाहर
0: हाँ
1: जाने नहीं
0: बाहर
1: देती
0: जाने
1: थी।
0: नहीं देते थे।
1: नहीं
0: तो खैर कोई बात नहीं, आदमी अपने जीवन से खुशहाल होना चाहिए, इसमें ये एक
1: बस
0: बहुत बड़ी चीज है। अच्छा माया देवी, एक बात और बताइए, जो हमने बात बीच में शुरू की थी कि जो आज के बच्चे हैं, ये जो जो फास्ट फूड है, ये जो बाहर का भोजन है, जो देख रही होंगी खा के काफी लोग बीमार पड़ते हैं,
1: बीमार होते हैं।
0: तो आप भी क्या करती हैं और हमारी अन्य महिलाएं जो श्रोता है वो भी क्या करें अपने बच्चों को बाहर के खाने से बचाने के लिए?
1: बाहर के खाने से बचाएं,
0: हाँ
1: बचाएं जो घर का चीज है,
0: हाँ
1: अपने घर पे बना दो, घर पे
0: हाँ
1: खिला दो,
0: अच्छा,
1: मगर बाहर का खाना अच्छा नहीं है।
0: आपके बच्चे को क्या पसंद है?
1: बच्चों को जो बाहर का पसंद होता
0: हाँ
1: है,
0: हाँ
1: बनाए जो चीज बना दो कि मम्मी
0: हाँ
1: बाहर से ले आओ,
0: हाँ
1: तो वो हम घर पे बना देते
0: अच्छा,
1: हैं,
0: घर पे बना
1: घर
0: देते
1: पे
0: हैं।
1: बना देते हैं हम।
0: तो जो हमारी सभी श्रोता महिलाएं सुन रही हैं, चाहे जो भी गृहिणी सुन रही हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगी ये बच्चों को जो खान पान है जो अनियमित हो रहा है इसको लेके?
1: यही है, अपने बच्चों को जो बाहर से ज्यादा चीज नहीं खिलाएं,
0: हाँ
1: जो पसंद है अपने घर पे खिला दें, बना बना के हर
0: हाँ
1: तरीका के आए,
0: जी
1: अब तो दिखाते हैं उसमें,
0: जी जी
1: जो चीज है अपने बनाओ, घर पे खिला दो बच्चों को,
0: हाँ, बाहर का परहेज
1: बाहर
0: कराएं।
1: का परहेज।
0: तो श्रोताओं, हम भी अपने कार्यक्रमों में बताते रहते हैं कि भाई बाहर के खाने से परहेज करिए, क्योंकि बाहर जो है उसको बनाने में किस प्रकार के ऑयल का यूज किया गया है, किस प्रकार का सामान लगाया गया है, ये हम सबको नहीं पता। तो उन सब चीजों से बचाने के लिए आवश्यक है कि वो बच्चे जो चीज खाना चाहते हैं कोशिश करिए कि अपने घर में ही बना के खिला
1: खिला
0: दीजिए। अच्छा माया देवी जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पायदान पे आ गए हैं, एकदम अंतिम चरण में। तो हमारे को ये बताइए कि आकाशवाणी अब 90 साल इस साल पूरे कर रहा है, पहले तो इसको ध्यान में रख के बताइए कि कैसे रेडियो और ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और अपने जीवन में इसका लाभ लें। हाँ
1: यही है, अपने फायदा की चीज है रेडियो सुनना, जो रेडियो सुनेंगे अच्छा लगेगा, अपने ज्यादा ज्यादा से ज्यादा अपना अच्छा होगा,
0: हाँ मतलब वो ज्यादा ज्यादा कार्यक्रम
1: ज्यादा
0: सुने।
1: ज्यादा कार्यक्रम सुने
0: अच्छा
1: अपने।
0: एक बात बताइए और, कि भाई आज जैसा कि आपने बताया कि गांव में आपके पिताजी चाहे आपके जो पास पड़ोस में आज भी सुनते हैं लोग
1: आज
0: इकट्ठा
1: भी
0: होकर,
1: सुनते
0: हैं,
1: हैं।
0: तो आप रेडियो पर बोलेंगी तो वो लोग सुनेंगे, कैसा लगेगा, क्या अनुभूति होगी जरा बताइए।
1: अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा जब सुनेंगे सब लोग,
0: हाँ
1: तो अच्छा
0: तो
1: लगेगा, उन्हें भी अच्छा लगेगा कि
0: हाँ,
1: हाँ हम
0: क्या
1: अच्छा चल
0: लगता है
1: रहा।
0: आपको कि आपके चाचा ताऊ क्या कहेंगे आपसे सुन के, फोन करके जब वो सुन लेंगे तो क्या कहेंगे फोन करके, कुछ बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: यही है, अपने अच्छा लगता है, अपने
0: हाँ
1: बोलेंगे यही कहेंगे, हाँ अच्छा लग
0: कि
1: रहा है भाई,
0: बताओ
1: बोल
0: इतने,
1: कितना,
0: हाँ इतने सालों से हम
1: इतने
0: रेडियो सुन रहे
1: सालों
0: हैं,
1: से बोल
0: आज
1: रहे
0: हमारी
1: हैं,
0: बिटिया बोल रही
1: आज
0: है।
1: हमारी बिटिया बोल रही है, अच्छा लगेगा भाई उन्हें।
0: तो खैर माया देवी जी, बिल्कुल आप एक लंबे अरसे से रेडियो से जुड़ी रही और उस दौर से जब बहुत चीजों का अभाव था, और आप आज भी सुनती रेडियो और आपके गांव में आज भी सुना जाता है,
1: सुना जाता है।
0: आपने रेडियो को सुनकर अपने परिवार को आगे बढ़ाया, अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, और रेडियो ने आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो आपने बहुत सारी बातें हमसे साझा की, चलते चलते एक बार फिर से हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी सभी श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगी आप?
1: बहुत अच्छा है, अपने सभी लोग सुने प्रेम से,
0: हाँ
1: और खूब भैया आकाशवाणी की सब खूब
0: हाँ
1: वो
0: जी।
1: अच्छा लगे।
0: तो माया देवी जी, आप हमारे स्टूडियोज में आई, आपने इतनी ढेर सारी हमसे बातें की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद।
2: मुझे याद है जरा जरा, अभी आप सुन रहे थे एक कार्यक्रम, मेहमान थी माया देवी जी और आपसे बातचीत कर रहे थे ब्रजेश तिवारी। यह आकाशवाणी का बरेली केंद्र है 100.4 FM पर। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। कृपया कुछ पलों की प्रतीक्षा कीजिए।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल की गाय भजन। इसी के साथ सुगम संगीत का कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब प्रस्तुत है चित्रपट से। सबसे पहले आइए सुनते हैं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाजों में आजा नचले फिल्म का ये गीत।

इस गीत के साथ ही चित्रपट से कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:45 होने को हैं। थोड़ी ही देर में समाचार प्रसारित किए जाएंगे हमारे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑन मार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव में भाजपा ने 4 में से 3 नगर निगमों में जीत हासिल की। म्यांमा में एक इमारत में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत। भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष युगल खिताब जीता। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की और उनके प्रेरणादायक कार्यों और उपलब्धियों का उल्लेख किया। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने केरलम के साजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के अलुवा में साजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। साजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। साजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश में बस्ती के आकाश गुप्ता के प्रयासों का भी उल्लेख किया जिन्होंने अपने मित्रों के साथ मनोरमा नदी को साफ करने का अभियान चलाया।
1: बस्ती के आकाश गुप्ता अपने गांव की मनोरमा नदी को देखकर बहुत दुखी होते थे। श्रीमान आकाश ने तय किया कि शिकायत नहीं करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। उन्होंने अपने दोस्तों को साथ लिया। सिर्फ जाल था, फावड़ा था, टोकरी थी और सबसे बड़ी ताकत थी कुछ बदलने का संकल्प। ये युवा नदी में उतरते थे, जलकुंभी निकालते थे। धीरे धीरे मनोरमा नदी का वह हिस्सा फिर से साफ दिखने लगा। आसपास के लोगों का ध्यान भी इस काम की तरफ गया। लोगों में स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ी।
0: प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु की शिक्षिका गिरिजा अम्मा की भी बात की जिन्होंने मन की बात से प्रेरित होकर देश के सैनिकों के लिए रोज 1 रुपया दान करने की अपील बच्चों से की और इससे मिले लगभग 40 लाख रुपए प्रधानमंत्री को सौंपे।
1: तमिलनाडु के नागरकोइल में मेरी मुलाकात एक टीचर से हुई। करीब 3 दशक पहले भी मैं उनसे मिला था। मैं बात कर रहा हूँ गिरिजा अम्मा जी की। इस मुलाकात के दौरान कुछ युवा स्टूडेंट्स भी उनके साथ थे। गिरिजा अम्मा जी करीब 15 स्कूल चलाती हैं। इनमें चेन्नई का जय गोपाल गरोड़िया हिंदू विद्यालय बहुत प्रमुख है। उनकी देशभक्ति की भावना हर भारतवासी को प्रेरित करने वाली है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरिंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतिस्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान 4 अलग अलग इवेंट में 4 नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।
0: श्री मोदी ने देश की अमूल्य सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने के सरकार के प्रयासों पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड की हाल ही की अपनी यात्रा का उल्लेख किया जहां एक विशेष समारोह में चोल काल के प्राचीन ताम्रपत्र भारत को वापस किए गए। प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे पहल के अंतर्गत संरक्षण के प्रयासों की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की एक नहर में फंसी गंगा डॉल्फिन को भारत की पहली गंगा डॉल्फिन बचाओ एम्बुलेंस की मदद से सफलतापूर्वक बचाया गया।

0: है। देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है। बोर्ड ने कहा कि वो अपने सेवा प्रदाता के ऑनमार्क पोर्टल में पाई गई खामियों पर कड़ी निगरानी रख रहा है, जिन्हें हाल ही में सार्वजनिक रूप से उजागर किया गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने कहा कि विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों एक दल पिछले कुछ दिनों से इन प्रणालियों को मजबूत करने और पोर्टल को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए काम कर रहा है। बोर्ड ने बताया कि पहचानी गई खामियों को दूर कर लिया गया है। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगमों में से 3 में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई।
1: हिमाचल प्रदेश के नगर निगम चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए धर्मशाला, सोलन और मंडी नगर निगमों में कब्जा जमाया है। वहीं पालमपुर नगर निगम में कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल की है। धर्मशाला में भाजपा ने 17 में से 11 वार्ड जीते हैं, जबकि कांग्रेस को 5 वार्डों में सफलता मिली है। सोलन में भाजपा ने 10 और कांग्रेस ने 6 वार्ड जीते। मंडी में भाजपा ने 14 में से 12 वार्डों में जीत दर्ज कर दबदबा बनाया, जबकि कांग्रेस को 1 वार्ड मिला। पालमपुर में कांग्रेस ने 15 में से 11 वार्ड जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल की, जबकि भाजपा को 4 वार्ड मिले। इस बीच जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के चुनावों की मतगणना भी पूरी हो गई है। ये चुनाव पार्टी चिन्हों पर नहीं लड़े गए थे, फिर भी भाजपा और कांग्रेस दोनों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों की जीत का दावा किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
0: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। चीन की सीमा से लगभग 3 किलोमीटर दक्षिण में स्थित ये क्षेत्र सशस्त्र गुट तांग नेशनल लिबरेशन आर्मी के नियंत्रण में है। ये गुट म्यांमार की केंद्रीय सरकार के खिलाफ संघर्ष में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउलाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के राष्ट्रपति कल 5 दिन की भारत यात्रा पर बिहार के गया पहुंचे थे। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है जिसमें कैबिनेट मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी और उद्योगपति शामिल हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 12 वर्ष के तकनीकी बदलाव के दौरान भारत प्रौद्योगिकी लेने वाले की बजाय प्रौद्योगिकी का नेतृत्व करने वाला बनकर उभरा है। उन्होंने दूरदर्शन न्यूज के साथ एक पॉडकास्ट में आज ये बात कही।
2: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत तेजी से वैश्विक स्तर पर प्रौद्योगिकी के विकास में भागीदारी कर रहा है और नवाचार की दिशा में भविष्य तय कर रहा है। उन्होंने कहा कि देश ने अंतरिक्ष, परमाणु ऊर्जा, क्वांटम तकनीक और जैव प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में विशेष प्रगति हासिल की है। उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए सामूहिक रूप से आवश्यक वैज्ञानिकी और तकनीकी आधार बना रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि एआई तकनीक स्वास्थ्य देखभाल, कृषि, संचार और जनसेवा के

0: क्षेत्र में एक परिवर्तनकारी शक्ति बनकर उभर रही है। उन्होंने कहा कि भारत कुशलता में सुधार करने के लिए एआई युक्त प्रणाली और मानव विशेषज्ञता के बीच समन्वित तरीका अपनाकर चल रहा है। आनंद की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: आवासन और शहरी कार्य तथा विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने त्रिपुरा में शहरी स्वच्छता और विद्युत अवसंरचना को मजबूत करने के लिए कई पहलों की घोषणा की है। अगरतला में त्रिपुरा के विद्युत मंत्री रतन लाल नाथ के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मनोहर लाल ने कहा कि राज्य में अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियों को उन्नत करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि राजनीतिक नेतृत्व सार्वजनिक जीवन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है और रचनात्मक आलोचना निष्पक्ष और संतुलित होनी चाहिए। उन्होंने ये बात केरलम के कोट्टयम में मलयालम दैनिक दीपिका के 140वें स्थापना दिवस समारोह के उद्घाटन के दौरान कही। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
2: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में छत्तीसगढ़ के 7 पर्यटक और वाहन चालक शामिल हैं। ये दुर्घटना 29 मई की रात को चुरा उपमंडल के बैरागढ़ सच दर्रा किलर सड़क पर उस समय हुई जब एक कार खाई में गिर गई। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में सेना ने पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पर स्थिति द्वारों पर आधार के जरिए प्रवेश और निकास प्रणाली की शुरुआत की है। इससे सीमा के पास रहने वाले निवासियों की आवाजाही सुगम होगी। सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। फाइनल में आज भारत की पुरुष डबल्स जोड़ी ने इंडोनेशिया के फजर अल्फियन और मोहम्मद शोहिबुल फिक्री को हराया। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस जीत पर खिलाड़ियों को बधाई दी है। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 17वें ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 115 रन बना लिए हैं। फ्रांस में चैंपियंस लीग में पेरिस सेंट जर्मेन की आर्सेनल पर जीत का जश्न मना रहे फुटबॉल प्रशंसकों और पुलिस के बीच हुई झड़पों में कुल 219 लोग घायल हो गए हैं। मौसम विभाग ने कल गुजरात, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ओडिशा, दक्षिण भीतरी कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में तूफान की संभावना है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिमी राजस्थान में भी तूफान का अनुमान है। मंगलवार तक तेलंगाना, कोंकण, गोवा, सौराष्ट्र में भी इसी तरह की स्थिति रहेगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में प्रकृति संरक्षण, स्थानीय समस्याओं के समाधान और अन्य सामाजिक कार्यों में लोगों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेल आयोजनों में उभरते खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन की भी प्रशंसा की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए ऑनमार्क पोर्टल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की टीम तैनात की। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच फाइनल मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आपके लिए।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: लीजिए पेश है प्रोग्राम आज के फनकार। दोस्तों आज के फनकार हैं अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला।
1: बहुत

0: दोस्तों, फिल्मकार राज खोसला के कृतित्व की बातों का जिक्र जब होता है तो तमाम लोग उन्हें बतौर निर्देशक, निर्माता या पटकथा लेखक के रूप में जानते हैं। लेकिन राज खोसला एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर भी रहे थे। 31 मई 1925 को पंजाब के लुधियाना में जन्मे राज खोसला बहुआयामी प्रतिभा के स्वामी थे। वो जब गायक बनने की चाह लेकर तत्कालीन बॉम्बे आए तब वो ऑल इंडिया रेडियो में बाकायदा म्यूजिक स्टाफ के रूप में कार्य करते थे।
1: तो

लीजेंड फिल्मकार और जाने माने अभिनेता गुरुदत्त के सहायक रहे राज खोसला ने 1956 में जो फिल्म निर्देशित की वो थी फिल्म

राज खोसला को आरंभ से ही वुमेन्स डायरेक्टर कहा जाता रहा है। दोस्तों, फिल्में जो भी हों, लेकिन नारी के चरित्र को राज खोसला ने बड़ी महत्ता दी है अपनी फिल्मों में। 1964 में उन्होंने निर्देशित की फिल्म वो कौन थी, जिसमें अभिनेत्री साधना को मिस्ट्री गर्ल कहा।

1966 में आशा पारेख अभिनीत फिल्म बनाई दो बदन। इस फिल्म के लिए अभिनेत्री सिमी गरेवाल को फिल्म फेयर का बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था राज खोसला की फिल्म दो बदन के लिए।

0: 1969 में राज खोसला निर्देशित फिल्म आई थी दो रास्ते। अभिनेत्री मुमताज के अभिनय को भला कौन भुला सकता है।
1: मैं

राज खोसला निर्देशित 1978 की फिल्म थी मैं तुलसी तेरे आंगन की। दोस्तों इस फिल्म के लिए अभिनेत्री नूतन को मैच्योर एज में फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी प्राप्त हुआ था।

जाने माने फिल्मकार और सदाबहार हीरो देवानंद ने राज खोसला की प्रतिभा को पहचाना था शुरू में, और राज खोसला के डायरेक्टर बनने का ये सिलसिला शुरू हुआ था 1954 में बनी फिल्म बिलाप के साथ। इस फिल्म के हीरो थे देवानंद और नायिका थी गीता बाली, और उसके बाद राज खोसला ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा।

0: चूंकि राज खोसला शास्त्रीय संगीत के जानकार थे, क्लासिकल सिंगर थे, यही वजह है कि अपनी फिल्मों की नायिकाओं के किरदार की महत्ता बनाए रखने के साथ साथ ही उनकी फिल्मों का संगीत भी बेहतरीन होता था।
1: देख

0: अपनी शैली से हटकर, स्टाइल से हटकर भी चंद फिल्मों का निर्देशन किया दोस्तों। इसमें प्रमुख है 1958 की फिल्म सोलवा साल।
1: हसीनों ने बुलाया, गले से भी लगाया, बहुत समझाया, यही ना समझा।

1971 में डकैत ड्रामा जैसी फिल्म बनाकर राज खोसला ने धूम मचा दी थी। याद होगा आपको, वो फिल्म थी मेरा गांव मेरा देश।

राज खोसला ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 21 फिल्मों का निर्देशन किया, जिसमें अमिताभ बच्चन, जीनत अमान और शत्रुघ्न सिन्हा अभिनीत फिल्म भी शामिल है, और ये फिल्म है दोस्ताना।

राज खोसला निर्देशित मैं तुलसी तेरे आंगन की फिल्म को 1978 का बेस्ट मूवी के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। दोस्तों, राज खोसला ने अपनी हर एक फिल्म के संगीत को बेहतर से बेहतरीन बनाए रखा। 9 जून 1991 को राज खोसला ने अपने जीवन की अंतिम सांस मुंबई में ली।

वो तो यकीनन इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन राज खोसला की फिल्में और उन फिल्मों का गीत संगीत हमेशा उनकी यादों को तरोताजा बनाए रखेगा।

0: क्या।
1: तो ये था कार्यक्रम आज के फनकार, केंद्रित था अपने दौर के जाने माने फिल्मकार राज खोसला पर। कार्यक्रम में प्रस्तुति सहयोग दिया आकांक्षा सिंह ने, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। और अब दीजिए आज के इस प्रोग्राम से अपने दोस्त राजेंद्र त्रिपाठी को भी इजाजत। नमस्कार।
2: आज के फनकार।

0: A-grade artist of Akashvani Kadapa. He has performed extensively across India at various cultural sabhas and temples and has been honored with prestigious position of Kanchi Kamakoti Asthana Vidwan.
1: आज के कार्यक्रम में श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली के साथ डोलू पर श्री वीएन बालचंदर संगति देंगे। श्री वीएन बालचंदर आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध डोलू वादक हैं। उन्होंने श्री एन लक्ष्मी नारायण तथा तिरुच्चरई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई जैसे प्रतिष्ठित गुरुओं से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वे आकाशवाणी के टॉप ग्रेड कलाकार हैं।
0: इन टुनाइट्स कंसर्ट श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। श्री वीएन बालचंदर इज अ रिनाउंड डोलू आर्टिस्ट फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ही रिसीव्ड ट्रेनिंग अंडर डिस्टिंग्विश्ड गुरुस इंक्लूडिंग श्री एन लक्ष्मी नारायण एंड तिरुच्चारई टीजी मुथु कुमार स्वामी पिल्लई। ही इज ए टॉप ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी।
1: श्री येरैया अपने सैक्सोफोन वादन की शुरुआत कर रहे हैं निन्नु कोरी युनन्नुरा से। ये रचना टी सिंगाराचारी की है जो राग वसंत और आदि ताल में निबद्ध है।
0: श्री येरैया बिगिंस हिज सैक्सोफोन रिसाइटल विद निन्नु कोरी युनन्नुरा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ टी सिंगाराचारी इन राग वसंता सेट टू आदि ताल।

0: अभी आप सुन रहे थे राग वसंत में एक रचना जिसके बोल थे निन्नु कोरी युनन्नुरा। अब श्री येरैया एवं मंडली प्रस्तुत कर रहे हैं नाद लोलुड़ई। ये रचना संत त्यागराज की है जो राग कल्याण वसंत में और रूपक ताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंटिन्यूज हिज रिसाइटल विद नाद लोलुड़ई, ए कॉम्पोजिशन ऑफ त्यागराजा इन राग कल्याण वसंता सेट टू रूपक ताल।

0: अभी आप सुन रहे हैं श्री असनापुरम येरैया एवं पार्टी का सैक्सोफोन वादन। आपके साथ डोलू पर संगति कर रहे हैं श्री वीएन बालचंदर। अब प्रस्तुत है निन्नु जेप्पा कारणमेनी। ये रचना पठनम सुब्रमण्यम अय्यर की है, राग है मंदारी और ये रचना आदिताल में निबद्ध है।
1: Now you'll be listening to Ninnu Jeppa Karanamemi, a composition of Patnam Subramanya Iyer in Rag Mandari, set to Aditaal.

0: अगली प्रस्तुति है सामगान प्रियकरम। ये रचना गुरु सुरजानंद की है। राग कीरवाणी में ये रचना मिश्र चापू ताल में निबद्ध है।
1: यू आर नाउ लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरप एर्रैया इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। श्री एर्रैया नेक्स्ट प्रेजेंट्स सामगान प्रियकरम, ए कॉम्पोजिशन ऑफ गुरु सुरजानंद इन राग कीरवाणी सेट टू मिश्र चापू ताल।

0: श्री येरैया एवं मंडली अपनी प्रस्तुति का समापन कर रहे हैं तुरुमला तिरुपति वेंकट रमणा से। ये रचना अन्नामाचार्य की है। राग है वृंदावन सारंग, जो आदिताल में निबद्ध है।
1: श्री येरैया कंक्लूड्स हिज रिसाइटल विद तिरुमला तिरुपति वेंकट रमणा, ए कॉम्पोजिशन ऑफ अन्नामाचार्य इन राग वृंदावन सारंगा, सेट टू आदिताल।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री असनापुरम येरैया एवं मंडली का सैक्सोफोन वादन। दोनों पर संगति दी श्री वीएन बालचंदर ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कड़पा के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया और इसका प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया गया।
1: यू हैव बीन लिसनिंग टू द सैक्सोफोन रिसाइटल बाय श्री असनापुरम येरैया एंड पार्टी इन द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। ही वॉज एकम्पनीड ऑन स्पेशल डोलू बाय श्री वीएन बालचंदर। This program was recorded in the studios of Akashvani Kadapa, and this broadcast came to you from the studios of Akashvani Delhi.
2: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित किए जाएंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यों में असाधारण योगदान करने के लिए आज अनेक नागरिकों की सराहना की। श्री मोदी ने आकाशवाणी पर अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए सामाजिक कार्यों के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने केरल के शाजी वलाशेरिल के बारे में बात की। ये निशुल्क तैराकी क्लब चलाते हैं जिसमें 15,000 से ज्यादा लोगों को तैराकी सीखने में सहायता की गई है।
1: केरलम के आलुवा में शाजी वलाशेरिल जी एक स्विमिंग क्लब चला रहे हैं। अब तक 15,000 से ज्यादा लोग यहाँ तैरना सीख चुके हैं। शाजी जी ने दिव्यांग बच्चों को भी स्विमिंग सिखाई है। शाजी वलाशेरिल जी का जीवन हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। सेवा करने के लिए बहुत बड़े साधन जरूरी नहीं होते, जरूरी होता है एक अच्छा इरादा और लगातार किया गया प्रयास। इन्हीं के दम पर हजारों लोगों के जीवन में बदलाव लाया जा सकता है।
0: देश की खेल उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने खिलाड़ी गुरविंदर वीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विन शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार को झारखंड के रांची में आयोजित नेशनल सीनियर

0: सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन स्पर्धा में नए राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए बधाई दी।
1: कुछ दिन पहले ही झारखंड के रांची में नेशनल सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन हुआ। इसमें करीब 800 एथलीट ने हिस्सा लिया। इस दौरान चार अलग अलग इवेंट में चार नेशनल रिकॉर्ड टूटे। गुरिंदरवीर सिंह, विशाल टीके, तेजस्विनी शंकर, देव मीणा और कुलदीप कुमार, इन साथियों ने अलग अलग कैटेगरी में नए रिकॉर्ड बनाए। मैं इन सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं।
0: देश में भीषण गर्मी पर चिंता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री ने इस संबंध में लोगों से सरकारी सलाहों पर अमल करने का अनुरोध किया और सुरक्षित रहने के लिए एहतियातन कदम उठाने को कहा। मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के तीसरे चरण के अंतर्गत ओडिशा, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर में कल से मतदाताओं की पहचान शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि जिन पात्र मतदाताओं के मतगणना प्रपत्र 28 जून तक मतदाता पंजीकरण अधिकारी को प्राप्त हो जाएंगे, उन्हें मसौदा मतदाता सूची में शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल प्रदेश के चार नगर निगमों में से तीन में स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। 17 मई को हुए नगर निगम चुनावों के लिए मतगणना आज पूरी हो गई। भारतीय जनता पार्टी ने धर्मशाला, सूरन और मंडी नगर निगमों में जीत हासिल की है। वहीं कांग्रेस ने पालमपुर नगर निगम में जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में सत्ताधारी महायुति गठबंधन ने आगामी विधान परिषद चुनावों के लिए 17 सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप दे दिया है। समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी 11 सीट पर, शिवसेना 4 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी 2 सीट पर चुनाव लड़ेंगी। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने पहले ही 17 में से 15 सीटों के लिए अपने बंटवारे की घोषणा कर दी थी, जिसमें कांग्रेस 8 सीट पर, शिवसेना यूबीटी 4 और शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी 3 सीट पर चुनाव लड़ेगी। शेष नासिक और नांदेड़ सीटों पर अभी विचार विमर्श जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउन लाइन के साथ वार्ता करेंगे। इस बातचीत से दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंधों को और मजबूती मिलेगी। बातचीत के दौरान सुरक्षा और संपर्कता समेत भारत और म्यांमार के समग्र संबंधों पर विचार विमर्श होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में म्यांमार के राष्ट्रपति से मुलाकात की। म्यांमार के उत्तर पूर्वी हिस्से में एक भवन में हुए विस्फोट में 45 से अधिक लोगों की मौत हो गई और 70 लोग घायल हुए हैं। खबरों के अनुसार इस भवन में खनन के लिए विस्फोटक रखे गए थे। अहमदाबाद में आईपीएल क्रिकेट के फाइनल में गुजरात टाइटंस ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 156 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 14 ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today lauded several citizens for their outstanding contributions towards nature conservation, solving local problems and other social causes, highlighting their inspiring initiatives and achievements. Addressing the nation in his monthly program Mann Ki Baat on Akashvani, Mr. Modi spoke about Saji Valasheril of Keralam, who runs a free swimming club that has helped more than 15,000 people learn swimming. Highlighting India's sporting achievements, Mr. Modi applauded record-breaking performances by emerging athletes at the National Senior Athletics Federation competition held in Jharkhand's Ranchi. Expressing concern over the prevailing heatwave conditions, the Prime Minister urged people to follow official advisories and take precautions to stay safe. He also encouraged the consumption of traditional summer beverages.
1: इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में बहुत गर्मी पड़ रही है। तेज धूप, गर्म हवाएं, ऐसे मौसम में अपना ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पानी पीते रहिए, धूप में अगर निकलना ही पड़े तो थोड़ा संभल कर निकले। इस दिशा में सरकार की भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट्स ने जो गाइडलाइंस जारी की है वो भी भूलिएगा नहीं।
2: Prime Minister Narendra Modi